सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्व

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका

अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

0: और पाइरिजो सल्फिरोन 80 ग्राम को टैंक मिक्स करके
1: और साइज जब छोटा होगा तो उसी रफ्तार में वो आपके फसल को भी उस समय में थोड़ा धीमा धीमा रफ्तार करेंगे और उसको कंट्रोल भी थोड़ा सा आप कर सकते हैं आसानी से। लेकिन जब यही कीट जब है खाते खाते जब कुछ वो 3-4 इन स्टार वाले फेज में जब चले जाएंगे तो उस कंडीशन में ये ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा मोटा हो जाता है और उस कंडीशन में वो जो सिंपल आपका जो कीटनाशी है उससे हो सकता है कि उसका नियंत्रण ना हो। तो सबसे पहले तो आपको पहचानने का हमने तरीका बता दिया, अब ये क्षतिग्रस्त कैसे करता है, ये किस किस भाग को मक्का के किस किस भाग को क्षतिग्रस्त करता है, ये कब कब आता है, तो ये इसके आने का टाइमिंग जो है ये कभी भी आ सकता है। लेकिन मुख्यतः जो है जब हमारा मक्का जब मुख्यतः जब 4-5 पत्तियों का हो या कह लें कि एक महीने के जब आसपास होता है उसके आगे जब बढ़ना होता है तो उस समय में इसका प्रकोप देखने को मिलता है। अब ये करेगा क्या कि आपकी जो पत्तियां हैं जो बढ़ने वाली पत्तियां हैं उसी के ऊपर ये आक्रमण करता है, उसको ये पूरी तरह से खा जाता है और खाने के साथ साथ बहुत बार ये होता है कि आपका जो पत्तियां हैं उसको ये जाली नुमा बना देंगे। जाली नुमा कहने का मतलब ये आर पार उसको कट नहीं करते, आर पार उसको खा करके ख़त्म नहीं करते बल्कि नीचे से वो खुरच लेते हैं, उनका जो हरा जो पत्तियां का जो हरा भाग होता है उसको खुरच के उसको खा जाते हैं और पत्ती जो है वो लगेगा कि पेपर की तरह जैसे कि जो अखबार या जो कोई कागज होता है उसमें कैसे थोड़ा थोड़ा दिखते रहता है उस टाइप से आपके पत्तियां दिखेंगी, जो तना छेदक में ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा अगर आपको सिम्टम दिख रहा है कि एक तो आपके पत्तियां को पूरा जो कंठ वाले हैं जो बढ़ने वाले उसको तो खा ही गया और जो दूसरी जो पत्तियाँ बची हुई हैं उसको आर पर दिख रहा है बहुत सारे पत्तियों में, तो ये हो सकता है कि आपका ये फॉल आर्मी बम के चलते ऐसा हो रहा है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा जो है कि ये जो कंठ में है ये कंठ में छुपा हुआ रहता है, तो जब कंठ की आप जब देखेंगे उसको जब खोलेंगे तो वहाँ पे ये इनके कीट आपको दिखाई देंगे आसानी से। साथ ही साथ वहाँ उसके बहुत सारे मल मूत्र भी उसमें रखे रहते हैं जिनकी संख्या ज़्यादा होती है, उनका साइज भी जो पिलेट साइज बोलते हैं तो वो मतलब वो बड़ा बड़ा होता है। तो ये हो गया। अब अगर ये ज़्यादा आपको इसका प्रकोप हो गए तो ये 3-4 दिन में आपके जो मक्के की फसल है उसको पूरी तरह ये नष्ट कर देते हैं। अब ये जो आपका जो फॉल आर्मी बम है ये जब अगर मक्का अगर क्या पौधा अगर नहीं रहे जब मक्का हम हार्वेस्ट कर लेते हैं तब ये कहाँ जाता है, तो ये जो फॉल आर्मी बम है ये मुख्यतः जितने भी जो ग्रामनी फैमिली के जो हमारे फसल है तो उन पे भी मैंने कहने का मतलब ये है कि ये आपका ज्वार बाजरा ये सब पे भी ये जा सकता है शिफ्ट कर सकता है। अगर इनको इधर से अगर मक्का ख़त्म हो गया मक्का कोई काट लिए तो आसपास में अगर ये लगी हुई हैं तो उस पे भी जा सकता है। अब तो इसीलिए ये नहीं कहते हैं कि मक्का अगर नहीं होगा तो ये नहीं रहेगा, इसके कई अल्टरनेट होस्ट है, इस अल्टरनेट होस्ट पे ये चले जाते हैं शिफ्ट कर जाते हैं। इसके जो व्यस्क हैं वो एक रात में बहुत लंबी लंबी दूरी तक ये चले जाते हैं, लगभग 80-100 किलोमीटर भी ये उड़ सकते हैं, ऐसी इनमें कैपेसिटी है इनके जो व्यस्क हैं उनका। इनका जो जो क्षति करने वाला है ये इनके व्यस्क क्षति करते हैं जो चलते हैं, जो चल के सिकुड़ते हुए चलते हैं उस ये क्षतिग्रस्त करते हैं। तो ये हमको लगता है कि ये चीज़ें हो गई, ये काफ़ी आपको समझने के लिए हो गया। दूसरी बात ये है कि आपको अगर किसान भाई अलग अलग टाइमिंग में अगर मक्का को लगाते हैं, कोई मक्का आज लगाए कोई फिर उसके 15 दिन बाद लगाते हैं कोई फिर उसके 15 दिन बाद लगाते हैं, अगर और उस क्षेत्र में अगर इसका प्रकोप ज़्यादा है तो वैसे कंडीशन में किसान भाइयों को सलाह दिया जाता है कि सारे किसान भाई मिल करके एक साथ अपने मक्का के फसल को लगाएं, ताकि ये होता क्या है कि अलग अलग अगर अवस्था में आपके पौधे रहते हैं तो उसको ये ज़्यादा क्षतिग्रस्त करते हैं, उसके और ये एक को क्षतिग्रस्त करते हुए फिर जो

पौधा उस अवस्था में आता है तो उधर वो शिफ्ट करके उधर वो आ करके उसको ज़्यादा क्षतिग्रस्त करते हैं। तो इसीलिए अगर जिधर इनकी समस्या ज़्यादा होती है वहाँ पे किसान भाइयों को चाहिए कि सब किसान भाई मिल करके एक ही टाइम में अपना जो है इसके बीज को लगाइए, ताकि पौधा आप सब किसान भाइयों का पौधा एक टाइप का रहे और इनका प्रकोप कम से कम हो। साथ ही में अगर जहाँ भी ये होगा तो अगर एक किसान भाई के फील्ड में अगर दिखाई दे रहा है तो हो सकता है कि दूसरे जगह भी ये मूव करें। और इसका जो है कि अगर 100 में से 5 पौधे में अगर आपको दिखता है कि ऐसा हो गया है, इसका फॉल आर्मी वर्म की समस्या है, तो आपको इसका कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन अगर इसे कम है तो आप इसको नज़रअंदाज कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों ये मैं बोलूँगा कि जब भी अगर ऐसा आपको दिखे तो आपको अपने खेत को फ्रिक्वेंट, मतलब है कि हर दिन लगभग आपके फील्ड में खेत में जाना चाहिए कि इनका क्या स्थिति है, कहीं कोई मतलब इसका कैसे फैलाव है, ज़्यादा तो फैल नहीं रहा है, तो वैसे आपको इसको रोकथाम करना है। अब क्या है कि इसको कैसे, इसका उपचार कैसे करें, तो वो उपचार तो हम कुछ आपको बताए हैं कि अलग अलग टाइम ना दे करके एक साथ रोपाई करें। दूसरी बात है कि हमको इसकी तैयारी शुरू से ही करनी पड़ेगी। हम अच्छे गुणवत्ता वाला बीज लें सबसे पहले, जो लोकल बीज का चयन ना करें, अच्छी गुणवत्ता वाली बीज लें जिसमें किसी भी कीट का प्रकोप कम से कम होता है। खाद समुचित मात्रा में देना है। बहुत किसान भाइयों में ये रहता है कि हम यूरिया ज़्यादा दे देंगे तो हमारा जो है बटवाड़ ज़्यादा होगा, हमारी फसल ज़्यादा होगा। लेकिन जो अनुशंसित मात्रा है यूरिया देने से का, उससे अगर हम जब ज़्यादा देते हैं यूरिया तो क्या होता है कि ये फसल में तेज़ी से बटवाड़ होता है। उसके जो फिजिकल कंडीशन है, मतलब जो पौधे की पत्तियां या पौधे की लंबाई बढ़ने की जो होता है वो तेज़ी से होता है, और उसका जो टिशू है, सेल है, वो मुलायम हो जाता है। और ये ऐसा होने के चलते जो फॉल आर्मी वर्म या कोई भी कीट उसको आसानी से उसको क्षतिग्रस्त करते हैं। साथ ही साथ अगर कभी तेज हवा आई तो उसमें आपका गिरने की भी समस्या रहती है। इसीलिए यूरिया की मात्रा उतना ही देना है जितना अनुशंसित है। साथ में फर्टिलाइज़र में जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाश तीनों देने की होती है संतुलित मात्रा, उसमें पोटेशियम की कमी कभी नहीं करें। अगर आप पोटेशियम की कमी करते हैं, जिसको म्यूरेट ऑफ पोटाश बोलते हैं, तो इसके चलते भी आप में कीटों की समस्या ज़्यादा होती है। पोटेशियम ऐसा उर्वरक है जो आपको कीटों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, इसीलिए पोटेशियम आपको देना ही है, म्यूरेट ऑफ पोटाश देना है। और जो हम लोग जो उसके बोलते हैं कि अलग अलग, ऐसा नहीं है कि यूरिया एक ही बार में दे देना है, उसको बांट बांट करके फसलों के अलग अलग फेज में देना है, तो वो आपको करना है। साथ में जब अगर हम केमिकल पे जब आ जाते हैं कि उसको रासायनिक विधि से कैसे करना है, ये सब तो आपको बचाव के लिए करना है, लाइन आपको मेंटेन करना है, पौधे से पौधे की दूरी आपको जो है वो मेंटेन करना है। और इन सारे चीज़ों को करते हुए भी अगर जब फॉल आर्मी वर्म का जब आपका प्रकोप होता है, तो एक सिंपल है, अगर पहला और दूसरा स्टेज में है तो इमामेक्टिन बेंजोएट, जो 5SG इमामेक्टिन बेंजोएट 5SG जो झिल्ली की तरह होता है, झिल्लीनुमा होता है, इसको पहले आपको थोड़ा सा पानी में घुलाना है, और जब घुल जाए तब इसको फिर से आप अपने जो स्प्रेयर है उसमें इसको डाल करके करना है। अब इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है किसान भाइयों, इसको 10 लीटर पानी में मात्र 4 ग्राम आपको ये झिल्ली वाला दवा लगता है। मतलब पहले उसको पानी में घुलाना है, मतलब आप हिसाब से कर लीजिए, अगर आपका पीठ वाला अगर 15 लीटर का है स्प्रेयर, तो उसके लिए आपको कि पहले एक छोटा सा ढक्कन या कोई भी पात्र में 6 ग्राम आपको कीटनाशी डालना है, ये इमामेक्टिन बेंजोएट डालना है, और उसके बाद डालने के बाद उसको जो है आपको फिर आपको स्प्रेयर में डाल करके उसको शाम के समय में छिड़काव करना है, जनरली 4 बजे के आसपास करना है, और उसको मेर पे भी करिए। ये है। दूसरी बात है कि जब अगर थर्ड और फोर्थ स्टेज में जब चला जाता है, तो दो कीटनाशी और है जो आपको थोड़ा ये कॉस्टली है लेकिन आप लोगों को जानना चाहिए। एक है उसमें थायोमेथोक्जम 12.6% प्लस लैम्डा साइलोहोलेथ्रिन 9.6%, इसकी जो है 0.25 ग्राम, मतलब कहने का

0: मतलब है कि ये इसकी 1 ml दवाई जो है 4 लीटर पानी में आपको डालना है, मतलब कहे कि अगर 15 लीटर वाला स्प्रेयर है तो उसमें 4 ml दवाई थायोमेथोक्जाम 12.6% प्लस लैम्डा सैलोहोलो 3 9.5% का देना है। और जब भी आप कीटनाशी जब देते हैं तो उसमें जो है कोई जो उसको हम लोग बोलते हैं कि शैम्पू या वेटिंग कोई भी चीज़ उसको आपको देना है, ताकि वो आपके सर्विस टेंशन को बढ़ाता है, आपके कीटनाशी की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। और दूसरा जो एक और इंसेक्टिसाइड है उसका नाम है स्पाइनोटोरम। स्पाइनोटोरम 11.7%, इसकी 0.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में और कुछ स्टिकर मिला करके इसको आपको छिड़काव करना है। इसके छिड़काव करने से आपका जो है ये फॉल आर्मी वर्म की जो समस्या है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये सारी बातें हैं, इन सारी चीज़ों को कर करके आप अपने जो मक्के की जो फसल है उसमें कीट का नियंत्रण कर सकते हैं और अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं।
1: जी, तो श्रोताओं अभी आपने फॉल आर्मी वर्म के बारे में जाना और ये कीट की पहचान हम कैसे करेंगे इस कीट की और साथ ही इसका प्रबंधन कैसे करेंगे, ये सारी जानकारी डॉक्टर साहब ने आपको दी है। और आशा करते हैं आज के इस वार्ता से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। नमस्कार। उन्नत कृषि

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
5: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित BP जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
6: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी
1: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
6: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
6: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें 0 डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
6: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
6: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रखो,
6: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी

0: किसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं, समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन एफएम। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज़ एफएम ग्रीन पर फिर से आ गया है कार्यक्रम अंग उमंग, जिसमें हम लेकर आते हैं आप सभी के लिए हमारे अंग प्रदेश यानी भागलपुर की संस्कृति। और मैं हूँ अनु।
1: और मैं हूँ ईश्वर चंद्रा। साथियों, दानवीर कर्ण की भूमि अंग क्षेत्र और इसकी बोली अंगिका। इसी अंगिका में कई गायन शैलियां प्रचलित हैं, जिसे कि आप हमारे अलग अलग भागों में सुनते आ रहे हैं। और आज भी एक अनोखे गायन शैली की चर्चा करेंगे, साथ में उस गाथा को भी सुनेंगे जो इस अंग क्षेत्र की पहचान है।
0: जी हाँ, आज हम बात करेंगे बिहुला विषहरी की, और इस बारे में जानकारी और कुछ सुनाने के लिए हाजिर हैं आज हमारे बीच हमारे समुदाय के साथी श्री ताराकांत ठाकुर जी।
2: हम मैं ताराकांत ठाकुर अपने सुनी के प्रणाम करे छे, सादर प्रणाम करे छे, और बताए ले लो छे कि बिहुला विषहरी के की महत्व छे हमरो क्षेत्र में।
1: ताराकांत जी, बिहुला विषहरी जो एक त्योहार भी है, एक गाथा भी है, एक परंपरा भी है, और यहाँ के जन जीवन में कहते हैं कि बिहुला विषहरी भले ही एक दिन के लिए हम पूजते हैं, लेकिन वर्ष भर जो है हमारे ये जीवन शैली में संचारित होती है, इसे कैसे देखते हैं?
2: बिहुला विषहरी जीवन भर या सालों भर संचालित होता है, इसके लिए हम एक दूसरे नज़र से इसको देखते हैं कि प्रकृति में हर जीव का अपना एक महत्व है। ये बिहुला विषहरी जो पूजा जाता है, ये तो मुख्य रूप से नाग कन्या है, सर्पिनी है, वह पांचों बहन सर्पिनी है। वो पांचों बहन कौन है? कहते हैं कि एक बार भगवान शंकर मान सरोवर में स्नान कर रहे थे, नहाने के क्रम में भगवान शंकर के पांच केश टूट गए और वो उन पांचों केशों से पांच विष कन्याओं ने जन्म लिया। अब ये पांचों बहन कहने लगी कि मृत्यु लोक में हमारी पूजा होनी चाहिए, ये भगवान शंकर

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

0: लेकर आते हैं आप सभी के लिए हमारे अंग प्रदेश यानी भागलपुर की संस्कृति, और मैं हूँ अनु
1: और मैं हूँ ईश्वर चंद्रा। साथियों, दानवीर कर्ण की भूमि अंग क्षेत्र और इसकी बोली अंगिका। इसी अंगिका में कई गायन शैलियां प्रचलित हैं, जिसे कि आप हमारे अलग अलग भागों में सुनते आ रहे हैं, और आज भी एक अनोखे गायन शैली की चर्चा करेंगे, साथ में उस गाथा को भी सुनेंगे जो इस अंग क्षेत्र की पहचान है।
0: जी हाँ, आज हम बात करेंगे बिहुला विषहरी की, और इस बारे में जानकारी और कुछ सुनाने के लिए हाजिर हैं आज हमारे बीच हमारे समुदाय के साथी श्री ताराकांत ठाकुर जी।
2: हम मैं ताराकांत ठाकुर अपने सुनी के प्रणाम करे छे, सादर प्रणाम करे छे, और बताए ले लो छे कि बिहुला विषहरी के की महत्व छे हमरो क्षेत्र में।
1: ताराकांत जी, बिहुला विषहरी जो एक त्योहार भी है, एक गाथा भी है, एक परंपरा भी है, और यहाँ के जनजीवन में कहते हैं कि बिहुला विषहरी भले ही एक दिन के लिए हम पूजते हैं, लेकिन वर्ष भर जो है हमारे ये जीवन शैली में संचारित होती है, इसे कैसे देखते हैं?
2: बिहुला विषहरी जीवन भर या सालों भर संचालित होता है, इसके लिए हम एक दूसरे नज़र से इसको देखते हैं कि प्रकृति में हर जीव का अपना एक महत्व है। ये बिहुला विषहरी जो पूजा जाता है, ये तो मुख्य रूप से नाग कन्या है, सर्पिनी है, वह पांचों बहन सर्पिनी है। वो पांचों बहन कौन है? कहते हैं कि एक बार भगवान शंकर मान सरोवर में स्नान कर रहे थे, नहाने के क्रम में भगवान शंकर के पांच केश टूट गए और वो उन पांचों केशों से पांच विष कन्याओं ने जन्म लिया। अब ये पांचों बहन कहने लगी कि मृत्यु लोक में हमारी पूजा होनी चाहिए, ये भगवान शंकर से कहने लगी। तब भगवान शंकर बोले कि यदि मृत्यु लोक में चांदो सौदागर पूजा दे देते हैं तब तुम्हारी पूजा मृत्यु लोक में होने लगेगी, अन्यथा तुम्हारी पूजा मृत्यु लोक में नहीं होगी। लेकिन चांदो सौदागर पूजा देने के लिए तैयार नहीं थे। तब पांचों बहन गुस्से में आकर चांदो सौदागर से बोलने लगी कि यदि तुम हमको पूजा नहीं दोगे तो शादी के रात में ही हम तुम्हारी पुत्री को विधवा कर देंगे। अब इसके लिए चांदो सौदागर ने काफ़ी व्यवस्था की, शादी की तैयारी हुई, शादी हुई, और विश्वकर्मा से बोला गया कि लोहे और बांस का ऐसा घर बनाया जाए जिसमें एक भी जीव जंतु प्रवेश नहीं कर सके। लेकिन विश्वकर्मा से एक महीन छेद या तो छूट गया या उसको मिला के उससे छुड़वा दिया गया। उसी छेद से नाग कन्या प्रवेश कर गई और बाला बिहुला के पैर के पास बैठ गई और सोचने लगी कि बिना अपराध का तो मैं इसको डसूंगी नहीं, अब क्या करें, प्रतीक्षा में है।

0: देवा
1: बोल रही है कि हम बिना अपराध का डसें कैसे। नींद में पैर से ठोकर लग गई और ठोकर लगते ही नाग कन्या ने बाला को डस लिया। अभी तो ये विष कन्या बोल रही है कि
0: अच्छा, ये विष कन्या बोल रही है,
1: विष कन्या बोल रही है, नागा बोल रही है कि हम कैसे इसको डसें
0: जी। तो ये तो कथा है और जो इसमें गाथा है उस कथा के अलग अलग स्वरूपों को गाई जाती है।
2: तो चलिए इसी गाथा को आगे बढ़ाते हैं और ताराकांत जी और इनके साथियों के साथ सुनते हैं कि जब नागा यानी सांप ने बाला लखंदर को डस लिया तब नवविवाहित कन्या अपनी विरह को कैसे।

0: अब हम आते हैं बिहला बिशहरी जो त्योहार है अंग क्षेत्र में, इस त्योहार को किस तरीके से मनाया जाता है?
1: बिहला बिशहरी के त्योहार को विशेषकर हमारे क्षेत्र में, भागलपुर के क्षेत्र में, अंग के प्रदेश में इतने धूमधाम से मनाए जाते हैं, हमको लगता है कि इससे अधिक धूमधाम शायद ही किसी पर्व में होता होगा। एक महीने पहले से ही इसकी तैयारी होने लगती है, इसकी सभी इसके गाथा गाने वाले अपने मंडली के साथ इसका अभ्यास करने लगते हैं, इसलिए कि बिहला बिशहरी का जो गाथा है उसका राग धुन और ताल बोल कुछ और गाथा से अलग है, इसलिए वो लोग पूरे अभ्यास के साथ और काफ़ी श्रद्धा के साथ इसकी पूजा करते हैं।
2: जी, जैसा कि श्री ताराकांत ठाकुर जी ने हम सभी को बताया, और ये जो कथा है, लोक कथा है, वो घर घर प्रचलित है, और कुछ जो यंगस्टर्स हैं, जो अभी नए बच्चे आए हैं युवा पीढ़ी में, वो इस त्यौहार को तो मनाते हैं लेकिन इसके पीछे क्या कहानी है, क्या आस्था है, उसे नहीं जानते हैं। जैसे कि मंजूषा कला, और मंजूषा कला की हम बात करते हैं तो अंग प्रदेश की जो ये बिहला बिशहरी की जो झलक है वो मंजूषा कला से भी मिलती है। तो हमारा जो ये कार्यक्रम है, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी लोगों को, जी हाँ, जो हमारी जो मिट्टी है, हमारी जो संस्कृति है, हम उससे जोड़ना चाहते हैं।
0: तो जैसा कि अनु ने कहा कि इसकी झलक मिलती है मंजूषा कला में, तो ताराकांत जी, मंजूषा कला जो है वो एक तरीके से बिहला बिशहरी के ही इर्द गिर्द घूमती है, तो उसमें एक हम देखते हैं कि एक पुरुष है, एक स्त्री है, एक नाग है, और अलग अलग संदेश जो है इसमें दिखाई देता है। मंजूषा कला के जरिए कई बार जल संरक्षण की बात होती है, कई बार खेती में वैज्ञानिक पद्धति की बात होती है, तो ये मंजूषा कला में इसका क्या योगदान है, ये भी आप बताएं।
1: मंजूषा कला वहीं बिहला बिशहरी के गाथा से ही प्रचलित हुई है। एक प्रकार का कहिए कि सब ले जाने के लिए जो अभी डब्बा बनाया जाता है काठ का, जिसमें कि बर्फ डाल के सब को कहीं दूर दराज ले जाया जाता है, उसी प्रकार उस समय जिस बक्से में, जिस डलिए में, डलिया बोला जाता है उस समय प्राचीन काल में, उस बाला के शरीर के, मृत शरीर को इंद्रलोक ले जाने के लिए बिहुला ने बनवाया था, वही मंजूषा है। उसी मंजूषा को आज अनेक रूप में विकसित होते लोग देख रहे हैं, लेकिन सही मंजूषा वही है। और इसमें बिशहरी पूजा में मंजूषा की इतनी प्रधानता है कि एक दिन उसके लिए अलग है। जितने भी भक्त हैं बिशहरी के, बिशहरी जहाँ जहाँ जिस स्थान में बिशहरी की पूजा होती है, वहाँ के भक्त सारी तैयारी के साथ, ढोल नगाड़े बाजे के साथ मंजूषा लाने के लिए सिर्फ जाते हैं। एक दिन मंजूषा लाने का ही दिन रखा जाता है, और मंजूषा लाके फिर अपने स्थान पर रखते हैं, बाद में फिर उसकी पूजा होती है।
0: तो साथियों, आज आपने बिहला बिशहरी की गाथा को सुनी और

उत्तराखंड ठाकुर जी ने इसकी कथा और इसकी गाथा दोनों को आपको सुनाया, तो हर अंग उमंग कार्यक्रम में एक से एक हीरे मोती निकाल कर लाते हैं। इसी क्रम में हम एक कृषि गीत भी हर अंग उमंग में सुनाते हैं। तो पेश है अंगिका भाषा में ही एक कृषि गीत जो हमारे किसान समुदाय के साथियों के लिए समर्पित है, जिसे गा रही हैं हमारे ही सामुदायिक कलाकार निभा कुमारी।

जी हाँ, तो अंग उमंग कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। आप सभी आज इस कार्यक्रम में सुन रहे थे बिहुला विषहरी, हमारे अंग प्रदेश की ये लोक गाथा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले दिन एक नई जानकारी के साथ इसी कार्यक्रम में। नमस्कार।

कहते हैं जब बिहुला ने रसोई बनाकर बाला को खिला पिला दिया तो बाला ने राम राम कह के अपना प्राण त्याग दिया। यह देखकर बिहुला रोने लगी, जिसे सुनकर उसकी सास सोनिका वहाँ आई और बिहुला को बुरा भला कहने लगी। तब बिहुला ने नागा को दिखाकर कहा कि देखिए, इसी ने आपके बेटे को काटा है। इसी कथा से संबंधित एक रोचक प्रसंग मैं आप लोगों को गीत के माध्यम से सुनाने का प्रयास कर

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण

0: बाल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
1: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
2: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
1: क्या क्या क्या?
0: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
1: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
4: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढककर खांसो।

0: just to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.
1: So, see you at the vaccination center soon.
2: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
3: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार, ये है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ और आप सुन रहे हैं मुझे बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम ग्रीन पर। दोस्तों, उन्नत कृषि कार्यक्रम में जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लेकर आते हैं खेती से जुड़ी बातें हमारे किसान भाइयों के लिए। और आज भी एक खास विषय हम लेकर आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं धान में खरपतवार प्रबंधन के बारे में। तो जी हाँ, आज इस विषय को लेकर हमारे बीच हैं डॉक्टर मनीष राज, जो कि विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट कृषि विज्ञान केंद्र सबौर बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। और आज बहुत सारी जानकारियां हमें इनसे मिलने वाली हैं, तो चलिए सुनते हैं। और सबसे पहले तो आपका स्वागत है और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कौन कौन से खरपतवार सीधे बुआई वाले धान में पाए जाते हैं और खरपतवार नियंत्रण क्यों महत्वपूर्ण है, थोड़ा इसके बारे में बताएं।
4: धन्यवाद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि धान हमारे देश के प्रमुख फसल है, लेकिन इसमें खरपतवारों का प्रकोप एक बड़ी समस्या बनी हुई है। सीधी बुआई वाले धान में खरपतवारों का नियंत्रण विशेष रूप से महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि खरपतवार फसलों के साथ साथ पोषक तत्व, पानी और धूप के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे फसल की उत्पादकता और गुणवत्ता में कमी आती है। इसमें अलग अलग तरीके का खरपतवार पाया जाता है, जैसे कि सावा घास, जंगली घास, जंगली चावल और मोथा, साइनोटिस एक्जेलरिस, दूब घास इत्यादि।
3: जी, इसके बाद सीधी बुआई वाले धान में खरपतवार नियंत्रण के कौन कौन से तरीके हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं।
4: जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि किसान भाइयों कि खरपतवार नियंत्रण के कई तरीके हैं, जैसे कि कृषि प्रबंधन तकनीक, मशीनों का उपयोग और रासायनिक नियंत्रण। बात करें कृषि प्रबंधन तकनीक के बारे में, तो इसमें हम सीधी बुआई, इसमें हम समय पर बुआई कर सकते हैं और उसकी जो बीज दर है उसका हम सही मात्रा में उपयोग कर सकते हैं, जिससे खरपतवार की वृद्धि को हम नियंत्रण किया जा सकता है। दूसरी बात रहा कि अगर हम मल्चिंग अगर हम करते हैं तो उससे क्या होता है, दो तरह का मल्चिंग होते हैं, जैविक मल्चिंग होते हैं और प्लास्टिक मल्चिंग होते हैं। जैविक मल्चिंग हम मुख्यतः हम धान गेहूं समय हम कर सकते हैं, जिसमें खेत में फसल अवशेषों, पत्तियों या भूसे का मल्चिंग करने से खरपतवार की वृद्धि में कमी होती है और मिट्टी की नमी बनी रहती है। जबकि प्लास्टिक मल्चिंग की बात करें तो यह मुख्यतः वेजिटेबल और फ्रूट्स में इसका उपयोग किया जाता है, जिससे खरपतवार के वृद्धि को प्रभावी रूप से रोका जा सकता है।
3: कौन कौन से हर्बिसाइड्स सीधे बुआई वाले धान में उपयोग किए जाते हैं?
4: सबसे पहले हर्बिसाइड को उपयोग करने के लिए आपको विशेषज्ञों का सलाह लेनी पड़ती है। अलग अलग फसलों में अलग अलग तरह के हर्बिसाइड आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप धान के बारे में अगर हम बात किया जाए तो धान में एक प्री इमरजेंस होते हैं और एक पोस्ट इमरजेंस होते हैं। अगर आपकी भूमि सिंचित है उसमें हम प्री इमरजेंस में पेंडीमेथिलीन 30% EC, जिसमें 3.3 लीटर पेंडीमिथिलीन प्रति हेक्टेयर के दर से आप बुआई के 72 घंटे के अंदर उसे उपयोग कर सकते हैं। यह 3.3 लीटर जो दवा है वह 5 लीटर पानी में मिलाकर हम 1 हेक्टेयर खेत में हम इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम 25 से 30 दिन के बाद अगर एक हाथ से निराई करते हैं तो पूरी फसल के अवधि के दौरान खरपतवार मुक्त वातावरण मिलता है। दूसरी बात है कि अगर हम ट्रांसप्लांटेड धान की बात किया जाए तो उसमें हम प्रेटिला क्लोर 30.7% EC को हम उपयोग करते हैं, जो कि हम बिछरा को लगाने के बाद 72 घंटे के अंदर 6 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हम उसे उपयोग करते हैं। जबकि पोस्ट इमरजेंस

0: हर्बिसाइड का बात किया जाए तो अगर प्री इमरजेंस का उपयोग करने के बावजूद भी अगर खेतों में खरपतवार आया है तो 15 से 20 दिन या 2 से 3 पत्ती जब खरपतवार आ जाए तो उस टाइम पे 20 पायरीबैक सोडियम 10 SL 100 ml और पायरीजो सल्फिरोन 80 ग्राम को टैंक मिक्स करके 1 एकड़ खेत में हम उसको उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम 120 लीटर पानी में मिलाकर हम इसका उपयोग करते हैं।
1: खरपतवार नियंत्रण के लिए निवारक उपाय कौन कौन से हैं?
0: जी हाँ, खरपतवार नियंत्रण के लिए बहुत सारे निवारक उपाय हैं, जैसे कि स्वच्छ बीजों का उपयोग करना, मिट्टी की सही तैयारी और फसल चक्र अपनाना, जैसे निवारक उपाय अपनाए जा सकते हैं। स्वच्छ बीजों में अगर हम स्वच्छ और प्रमाणित बीजों का उपयोग करते हैं उससे जो खर पतवार होते हैं उसके वृद्धि में कमी आती है। अगर हम मिट्टी के अच्छे से तैयारी किया जाता है, गहरी जुताई करते हैं जिससे मिट्टी में छिपे खरपतवारों को बीज को नष्ट किया जा सकता है। और एक क्रॉप रोटेशन जो फसल चक्र है, फसल चक्र अलग अलग फसल चक्र अपनाकर जो एक तरह के जो खरपतवार जो आते हैं उसका वृद्धि को हम रोक सकते हैं। दूसरी बात है कि आप अगर कोई भी फसल हो जिसे हम टाइमली सोइंग करते हैं उससे फसल के बढ़ने में तेजी आती है और खरपतवार को बढ़ने में उसको रोका जा सकता है।
1: रासायनिक विधि का उपयोग करते समय किसानों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: जैसे कि सभी किसान भाइयों जानते ही हैं कि रासायनिक विधि का उपयोग करते समय कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि खरपतवार नाशक को सही समय पर और सही मात्रा में उपयोग करें, छिड़काव के लिए सही उपकरण का चयन करना अति आवश्यक है और उसके रखरखाव का अलग से ध्यान रखें। छिड़काव के समय आप मौसम के स्थिति के बारे में जानकारी होना जरूरी है। उस समय अगर तेज हवा या बारिश का समय हो तो उस समय छिड़काव न करें। बात किया जाए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का, तो जैसे कि दस्ताना, चश्मा, मास्क का उपयोग करना चाहिए। उपयोग के बाद अगर कोई भी हर्बिसाइड या खरपतवार नाशी बची हुई रासायनिक दवा को सुरक्षित स्थान पर रखें या उसे पशुओं से दूर रखें।
1: तो श्रोताओं, अभी आप जान रहे थे धान में खरपतवार नियंत्रण के बारे में, और आज इस वार्ता को लेकर हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीष राज। तो आशा करते हैं कि आपको धान में खरपतवार नियंत्रण के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी। अगले दिन मिलेंगे आपसे एक नए विषय के साथ। फ्रिक्वेंसी यही है 90.8 MHz। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: राजू, पिन्नी
3: और तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
2: 11 दोस्त?
3: टीकू वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
2: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
3: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
2: लेकिन ऐसा क्यों?
3: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
2: टीकी, तो इसका हल क्या है?
3: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ, हाँ, हाँ।
0: इस

0: कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना, खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
5: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। स्वागत करती हूं आपका हमारे विशेष कार्यक्रम किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं उन पशुपालक भाई बहनों के बारे में जो इस बात से परेशान होंगे कि जब उनके फार्म से बहुत सारे वेस्ट निकलते हैं उसका किस तरीके से वो प्रबंधन कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पशु अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में, किस तरीके से वो उसका उपयोग कर सकते हैं और उससे भी वो मुनाफा कमा सकते हैं। आइए जानते हैं हम डॉक्टर ज्योति माला साहू से। मैम, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं सस्य विज्ञान विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
6: धन्यवाद।
5: मैम, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि पशु अपशिष्ट प्रबंधन क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है।
6: देखिए, पशु अपशिष्ट प्रबंधन का अर्थ है पशुओं से उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट, जैसे गोबर, गौमूत्र, बिछावन की सामग्री और अन्य जैविक अवशेषों का वैज्ञानिक एवं सुरक्षित तरीके से संग्रह करना, भंडारण करना, उनका उपयोग करना और निपटान करना। यह पशुपालकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पशुशाला स्वच्छ रहती है और जहाँ स्वच्छता होगी वहाँ रोगों का खतरा कम होगा, इससे पर्यावरण प्रदूषण भी घटता है। साथ ही साथ इसका उपयोग हम जैविक खाद बनाने के लिए, बायोगैस बनाने के लिए कर सकते हैं जिससे खेती की लागत कम होगी और पशुपालकों की अतिरिक्त आय भी बढ़ सकती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्वच्छता, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक लाभ की दृष्टियों से ये अत्यंत आवश्यक है।
5: जी मैम, अगर उचित प्रबंधन ना किया जाए तो क्या ये पर्यावरण पर प्रभाव डालता है?
6: देखिए, उचित प्रबंधन ना करने पर इसका पर्यावरण पर तो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, इसके साथ ही साथ मानव और पशुओं के स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि खुले में पड़ा हुआ पशु अपशिष्ट जो होते हैं वो दुर्गंध फैलाते हैं, मक्खियाँ, मच्छर और अन्य रोग कारक जीवों को वो उनकी संख्या को बढ़ावा देते हैं। इससे मानव में डायरिया, हैजा, टाइफाइड और अन्य संक्रामक रोग बढ़ने का खतरा होता है। साथ ही साथ पशुओं में भी विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं और खास करके इस मौसम में जो अभी चल रहा है बारिश का मौसम, तो वर्षा के दौरान क्या होता है कि पशु अपशिष्ट जल स्रोतों में मिलकर पानी को प्रदूषित करते हैं जिससे मानव और पशुओं के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और खुले में इस तरह से अगर अपशिष्ट हैं तो उनके सड़ने से मीथेन और अन्य हानिकारक गैसें उत्पन्न होती हैं जो कि वायु का प्रदूषण करती है और जलवायु परिवर्तन में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसलिए अगर पशु अपशिष्ट का वैज्ञानिक तरीके से संग्रह, उपचार और उपयोग किया जाता है तो हम जलवायु परिवर्तन पे काम कर सकते हैं, इन पे सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं और इससे मीथेन जैसी हानिकारक गैसें का उत्सर्जन कम होगा और ग्लोबल वार्मिंग को भी नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी। इसके उपयोग से जैसे कि अभी देख रहे हैं कि LPG सिलेंडर का क्राइसिस है तो इनके उपयोग से जीवाश्म ईंधन पर से निर्भरता कम हो सकती है और इसके अलावा जैविक खाद का उपयोग करके हम रासायनिक उर्वरकों पर भी जो निर्भरता है उनको कम कर सकते हैं।
5: तो मैम, प्रबंधन के कौन कौन से वैज्ञानिक तरीके हैं?
6: देखिए, जो भी पशुपालक भाई बहन है वो गोबर को खुले में ना फेंकने के बजाय अगर इन्हें गड्ढों में या इकाइयों में डालकर उच्च गुणवत्ता वाली खाद तैयार कर सकते हैं, है ना। इसमें आता है कंपोस्टिंग जिसमें गोबर एवं अन्य पशु अपशिष्ट को नियंत्रित परिस्थितियों में सड़ाकर खाद बनाई जाती है। दूसरा है वर्मी कंपोस्टिंग जिसमें केचुओं की सहायता से, इसमें एक विशिष्ट प्रजाति का केचुआ आता है जो लाल रंग का होता है, इसे एसिना फेटिडा कहते हैं। तो इनकी सहायता से गोबर या अपशिष्ट को विघटित किया जा सकता है। तीसरी वैज्ञानिक विधि है

0: गोबर को बायोगैस संयंत्र में डालकर उससे मीथेन उत्पन्न करना, और इस मीथेन का उपयोग हम खाना बनाने में या बिजली उत्पादन करने में कर सकते हैं। इस बायोगैस संयंत्र से निकलती है स्लरी, जिनका उपयोग हम डायरेक्ट खेत में कर सकते हैं, और स्लरी में बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है। इसके अलावा गौमूत्र को अलग से एकत्र करके जैविक तरल खाद, जिसे जीवामृत कहते हैं, वो बनाया जा सकता है, जो कि जैव कीटनाशक, एक अच्छा जैव कीटनाशक है। इसके अलावा डेयरी फार्म से निकलने वाले जो भी गंदे पानी होते हैं उनका उपचार किया जा सकता है, तो इसके लिए सेटलिंग टैंक बिठा सकते हैं, ऑक्सीकरण पॉन्ड बना सकते हैं और बायोफिल्टर का भी उपयोग कर सकते हैं, तो पानी का उपचार कर सकते हैं और इन उपचारित पानी को पुनः सिंचाई में उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा सूखे गोबर हैं, उनके गोबर के कंडे बनाए जा सकते हैं, और एक महत्वपूर्ण है बायोचार, इसको बनाया जा सकता है, जो कि एक वैकल्पिक ईंधन के रूप में उपयोगी है।
1: मैम, बायोचार क्या होता है?
0: देखिए, बायोचार एक ठोस पदार्थ है जो कि कार्बन से परिपूर्ण होता है। यह गोबर, फसल अवशेष, लकड़ी के टुकड़े, पत्तियां और अन्य जैविक पदार्थों को एक सीमित ऑक्सीजन में, या कह लो कि कम हवा में गर्म करके बनाया जा सकता है, तो इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं पायरोलिसिस। अब ये सारे अवशेषों को भट्टी में डाला जाता है, जिसका तापमान होता है 300 से 700 डिग्री सेल्सियस। तो इसे कम ऑक्सीजन में गर्म किया जाता है, और इस प्रक्रिया में जो जैविक पदार्थ होते हैं वो पूरी तरह जलने के बजाय कार्बन युक्त बायोचार में बदल जाती है। और इसकी विशेषता यह है कि इसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं जो कि मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखते हैं, तो यह मिट्टी में लंबे समय तक रहता है और यह पानी और पोषक तत्वों को पकड़ के रखता है, और साथ ही साथ यह सूक्ष्म जीवों के लिए भी एक अच्छा वातावरण तैयार करता है, और यह बायोचार खास करके अम्लीय मिट्टी के सुधार में सहायक होते हैं और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में भी बहुत लाभदायक है ये।
1: मैम, बायोगैस संयंत्र के लिए कितना गोबर लगता है और गैस कितना बनता है और लागत कितनी होती है इसकी?
0: देखिए, बायोगैस उत्पादन के लिए गोबर की जो मात्रा होती है वो संयंत्र के आकार पर निर्भर करती है। सामान्य तौर पर 1 घन मीटर बायोगैस संयंत्र के लिए प्रतिदिन लगभग 25 से 30 किलोग्राम ताज़ा गोबर और उतनी ही मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। यह गोबर लगभग 1 से 2 गाय या भैंस से आसानी से मिल जाता है, और इसी प्रकार अगर 2 घन मीटर का संयंत्र हो तो लगभग 50 से 60 किलोग्राम गोबर प्रतिदिन हमें चाहिए होगा। अब उत्पादन की बात करें तो 1 घन मीटर बायोगैस संयंत्र से प्रतिदिन लगभग 1 से 1.5 घन मीटर गैस बनती है, जो कि लगभग 1 LPG सिलेंडर के एक हिस्से के बराबर ऊर्जा देती है। तो उसी तरह से हिसाब लगा लेंगे कि अगर 2 से 3 घन मीटर संयंत्र है तो यह होगा कि एक परिवार के एक दैनिक खाना बनाने की जरूरत को वो पूरा कर सकता है। अब बात करते हैं कि समय की, तो कितना समय लगता है। अगर एक बार बायोगैस संयंत्र बैठा दिए तो संयंत्र को चालू करने के बाद गैस बनने में लगभग 30 से 45 दिन लगते हैं, क्योंकि गोबर को सड़ा कर उनका गैस बनाना है, जिसको फर्मेंटेशन कहते हैं, तो इसमें समय लग जाता है। और इसके बाद प्रतिदिन गैस बनती रहती है अगर गोबर और पानी की सही मात्रा उसमें डाली जाए तो। अब लागत की अगर हम बात करें तो एक घरेलू संयंत्र से लागत लगभग 25,000 से 60,000 रुपये तक हो सकती है, और बड़े संयंत्र की लागत उससे अधिक हो सकती है। साथ ही साथ अगर कोई योजनाएं हैं तो उनसे सब्सिडी भी मिल सकती है, जिससे वास्तविक खर्च काफ़ी कम हो जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा लाभ यही है कि हर महीने LPG गैस पर जो होने वाला खर्च है वो बच जाता है, और साथ ही साथ जैविक खाद भी मिल जाती है, जिससे खेती का खर्च भी कम हो जाता है।
1: जी मैम, तो क्या इस क्षेत्र में सरकार की भी कोई योजनाएं हैं और क्या कोई ऐसी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है हमारे पशुपालक भाई बहन को?
0: जी हाँ, पशु अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं जिनके माध्यम से सरकार सहायता प्रदान कर रही है। बिहार राज्य की बात करें तो पहले योजनाएं थी बायोगैस संयंत्र बैठाने के लिए, पर अभी फिलहाल ये योजना बिहार सरकार में नहीं है। केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार की नेशनल बायोगैस एंड ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोग्राम

0: इसके तहत ये योजना है जो बायोगैस संयंत्र स्थापना के लिए सहायता देती है। इसके अलावा गोवर्धन स्कीम के माध्यम से गोबर और जैविक कचरे को धन में बदलने, बायोगैस और जैविक खाद उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा कृषि और पशुपालन विभाग समय समय पर प्रशिक्षण दे रही है, जागरूकता कार्यक्रम और तकनीकी परामर्श भी उपलब्ध करा रही है। तो पशुपालकों को मैं सलाह देना चाहूँगी कि वे अपने जिले के पशुपालन विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र से संबंधित या फिर कोई भी संबंधित सरकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं और उनसे होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी, तो मैम क्या पशु अपशिष्ट का खाद और ईंधन के अलावा भी किसी प्रकार से उपयोग किया जा सकता है?
0: जी हाँ, बायोगैस के अलावा पशु अपशिष्ट से कई और लाभकारी उत्पाद बनाए जा सकते हैं। बाजार में हाल ही में कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट की काफी अच्छी मांग है और इसके अलावा गोबर से गोबर के उपले, दिए, अगरबत्ती और प्राकृतिक पेड़ जैसी कई वस्तुएं बनाई जा सकती है जो कि ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने में सहायक है। और आजकल गोबर आधारित जैविक खाद और ऑर्गेनिक खेती के उत्पादन में काफी इनके मांग में काफी तेजी बढ़ रही है, जिससे किसान सीधे बाजार में बेचकर अतिरिक्त आय कमा सकता है। तो इस प्रकार पशु अपशिष्ट को केवल कचरा ना मानकर अगर सही तरीके से उपयोग किया जाए तो ये आय का एक अच्छा स्रोत हो सकता है।
1: अंत में आप हमारे पशुपालक भाई बहनों को कोई संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं पशुपालकों को यही संदेश देना चाहूंगी कि वो ये वैज्ञानिक विधि का उपयोग करें।
1: तो पशुपालक भाई बहन, जो भी आपके एनिमल फार्म से वेस्ट आता है उसका आप उपयोग करें, सदुपयोग करें, और इससे न केवल आपको फायदा होगा बल्कि पर्यावरण को भी काफी फायदा पहुंचेगा। तो आज के लिए इतना ही मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही उपयोगी बातें बताई।
0: धन्यवाद।
1: तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: उन्नत कृषि
3: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी टीबी मुक्त भारत बनाए,
4: खुद भी बचे देश भी बचाए।
5: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
6: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So see you at the vaccination center soon.
7: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
8: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
9: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन एफएम।
2: उन्नत कृषि।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मोटे अनाज के बारे में जिसे कि श्री अन्न भी कहा जाता है। आज हम बात करने वाले हैं बाजरा के बारे में। बाजरा जो कि कुछ ऐसे क्षेत्रों में उगाया जाता है जहां वर्षा काफी कम होती है। तो आइए आज हम बाजरा की वैज्ञानिक खेती के बारे में विस्तार से जानते हैं डॉक्टर आनंद

0: कुमार से, सर आप हैं अनुवांशिकी एवं पौधा प्रजनन विभाग से, सर आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: किसान भाइयों, आज हम लोग जो बात करेंगे वो बाजरा की वैज्ञानिक खेती कैसे करें और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लें और अपनी आय वृद्धि कैसे करें, इसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे।
0: जी सर, तो सर सबसे पहला सवाल यही है कि बाजरा की वैज्ञानिक खेती अपनाने से किसानों का क्या उत्पादन लाभ भी मिलता है किसानों को, और पोषण सुरक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो क्या इस क्षेत्र में भी लाभ मिलते हैं?
1: जैसा कि किसान भाई हम लोग जानते हैं कि बाजरा प्रमुख श्री अन्न फसलों में से एक है, और जहां तक वैश्विक स्तर पर हम लोग देखते हैं तो यह छठी सबसे महत्वपूर्ण धान्य फसल है। इसका जो खेती होता है वो मोस्टली कहाँ होता है, जहां शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्रों के लिए है, जहां पर सूखा की स्थिति रहती है और वहां की भूमि क्या होती है, कम उर्वरा शक्ति वाली होती है, और ये उच्च तापमान जहां पर टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है वहां जीवित रहने में ये सक्षम होती है। इसके लिए सबसे अच्छी जो मिट्टी होती है वह हल्की मध्य भूमि में सबसे अच्छी उपज देती है, इसलिए सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए एक किसानों के लिए एक वरदान है। जैसा कि आजकल हम लोग देखते हैं कि बदलती जलवायु परिस्थिति में बाजरा एक क्या है, एक जलवायु सहिष्णु फसल के रूप में उभर रहा है, और बाजरा अत्यधिक पौष्टिक अनाज है। इसमें देखिएगा प्रोटीन का मात्रा जिसे चावल के अपेक्षा बहुत ज़्यादा है, 11.5% होती है, फाइबर होती है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम तथा अन्य खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसका हरा चना में और भूसा पशुओं के लिए भी उत्तम चारा के रूप में हम लोग किसान भाई उपयोग करते हैं। तो बाजरा की खेती में कम लागत भी बहुत कम लगता है, कम पानी की आवश्यकता पड़ता है, और आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बाजार में इसकी मांग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इसीलिए किसानों की आय बढ़ाने तथा खाद्य सुरक्षा एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने में बाजरा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
0: जी सर, अगर हम बाजरा की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु की बात करें और किस तरह की मिट्टी होनी चाहिए और बुआई का सही समय क्या है?
1: जैसा कि किसान भाई हम लोग जानते हैं कि बाजरा को जो है वह शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त फसल है। तो बाजरा की खेती कैसे भूमि में हम लोग कर सकते हैं, तो ऐसे खेत जो दोमट बलुई एवं बलुई भूमि में है तो उसमें सफलतापूर्वक हम लोग कर सकते हैं। और एक बात का हम लोग को ध्यान रखना है कि भूमि में जल निकास की सुविधा अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि अधिक समय तक खेत में पानी भरा रहना फसल को नुकसान पहुँचा सकता है, और वर्षा के पश्चात जैसे ही मानसून शुरू हो के पहले प्रथम जुताई में मिट्टी पलटने वाले हल या डिस्क हैरो से हम लोग खेत को जुताई कर देनी चाहिए, और इसके पश्चात हैरो द्वारा एक क्रॉस जुताई करके पाटा लगाकर खेत को एकदम समतल कर देना चाहिए कि कहीं भी पानी नहीं जमे। तो जहाँ तक हम लोग बीज दर के बारे में बात करेंगे तो बाजरा की बुआई का समय किस्मों के पकने की अवधि पर निर्भर करता है। तो बाजरा में तीन तरह का फसल हम लोग लेते हैं, तो बाजरा में दीर्घायु जो लॉन्ग ड्यूरेशन होता है वो 80 से 90 दिनों में पकने वाली किस्मों की बुआई करते हैं। इसके लिए जो उचित समय होता है वह जुलाई के प्रथम सप्ताह में है, तथा मध्यम अवधि जो 70 से 80 दिनों में किस्मों में पकने की होती है उसकी बुआई 10 जुलाई तक हर हालत में कर देनी चाहिए, और जो शीघ्र और जल्दी जो अर्ली होती है वो 65 से 70 दिनों में पकने वाली किस्में होती है उसका बुआई हम लोग 10 से 20 जुलाई तक कर सकते हैं। और जहां तक बीज दर का बात है तो बाजरे की फसल के लिए उचित बीज दर 3 से 4.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। तो बाजरा की बुआई हमेशा पंक्ति में करना ज़्यादा फायदा होता है। तो बाजरा की यदि बुआई यदि पंक्ति में करते हैं तो जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी होती है वह 40 से 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और पौधा से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो बीजों की हम लोग बुआई करेंगे तो उसमें गहराई होना चाहिए 2.5 से 3 सेंटीमीटर। इसी तरह हम लोग अब बात करेंगे खाद एवं उर्वरक के बारे में, तो किसान भाइयों को चाहिए कि बुआई के लगभग एक माह पूर्व 7 से 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद या सरा हुआ जो गोबर हुआ कंपोस्ट का प्रयोग करें, और शुष्क जहां पर शुष्क क्षेत्र होता है जैसे कि हम लोग जमुई गया ये सब जो क्षेत्र है में अच्छी फसल प्राप्त करने हेतु उर्वरक की जो अनुशंसित मात्रा होती है वह 40-20-20 यानी 40 kg नेत्रजन, 20 kg फॉस्फोरस और 20 kg पोटास प्रति हेक्टेयर, तथा शुष्क क्षेत्रों के लिए जो खाद की मात्रा होती है वो 60-30-20 यानी नेत्रजन 60 kg, 30 kg फॉस्फोरस और पोटास 30 kg। तो बुआई के समय फॉस्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा तथा नेत्रजन की आधी मात्रा का प्रयोग करना चाहिए, और एक महीने के बाद जो शेष बची हुई नेत्रजन होती है उसको हम लोग को खेत

0: में डाल देना चाहिए।
1: जी सर, अब हम बात करते हैं उन्नत और अनुशंसित किस्मों के बारे में, तो बाजरा की कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं और उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?
0: जैसा कि किसान भाई, अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए बाजरा में चाहिए कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संकर किस्में का उपयोग करें, तो बाजरा में संकर और जो संकुल है, जिसको हम लोग कंपोजिट किस्में बोलते हैं, वो दोनों तरह की किस्में उपलब्ध है। तो बाजरा के जो उन्नत संकर किस्में, अनुशंसित उन्नत संकर किस्में हैं, उसमें सबसे अच्छा प्रो एग्रो 9001 है, जिसको हम लोग 25 जुलाई से 15 अगस्त तक लगा सकते हैं। इसकी जो परिपक्वता अवधि, पकने की अवधि है, वो 85 से 87 दिनों में तैयार हो जाती है और 52 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हम लोग इसकी उपज ले सकते हैं। और इसकी विशेषता है कि देर से पकने वाले प्रभेद ये हैं, और जो इसमें मृदु रोमिल आशिता, इसको हम लोग डाउनी मिल्ड्यू रोग कहते हैं, झोंका के प्रति इसमें सहने की क्षमता होती है और ये जैव समर्थित प्रभेद है। तो इसमें आयरन की मात्रा 45 ppm और जिंक की मात्रा 37 ppm होती है। उसी तरह दूसरा प्रभेद जो 2024 में रिलीज हुई है, वो है HBH191294, ये भी 25 जुलाई से 15 अगस्त की है और ये इसकी परिपक्वता अवधि ये 84 दिनों में तैयार हो जाती है और इसकी औसत उपज 41 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसी तरह PBS 1879 और कावेरी सुपर बॉस, ये भी बहुत अच्छी प्रभेद है कावेरी सुपर बॉस, ये भी 25 जुलाई से 15 अगस्त इसका बुआई का समय है और इसकी ये भी 50 दिनों में तैयार हो जाती है और ये भी उपज 34 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देती है। और इसके दानों में भी आयरन की मात्रा बहुत अच्छी मात्रा होती है, जैसे 46 ppm होती है और जिंक की मात्रा 40 ppm। इसी तरह और भी बहुत अच्छी प्रभेद है जो बहुत अच्छा उपज दे रही है, जैसे HSB 67 या MPM H17 या GHB 538। तो किसान भाइयों को जो भी अच्छी कहीं से भी अच्छे संकर बीज मिले वे लगा सकते हैं। इसी तरह यदि किसान भाई संकुल किस्में लगाना चाहते हैं तो उसमें धन शक्ति और PC 701, जिसको हम लोग पूसा कंपोजिट 701 कहते हैं, ये लगा सकते हैं। इसकी उपज थोड़ा जो संकर किस्में होती है उससे कम होती है।
1: जी सर, अब आप हमें ये बताइए कि अगर हम बाजरा के प्रमुख रोगों और कीटों के बारे में बात करें तो वो कौन कौन से हैं और उनके प्रभावों को कैसे कम किया जा सकता है और क्या समेकित प्रबंधन किसान भाई बहन कर सकते हैं?
0: जैसा कि किसान भाई, बाजरा में जो प्रमुख रोग लगते हैं उसमें मृदा रोमिल आशिता रोग, जिसको हम लोग डाउनी मिल्ड्यू कहते हैं, और इसमें स्मट, जिसको कंडुआ रोग कहते हैं, और अर्गट तथा रतुआ रोग, ये मोस्टली यही जो रोग हैं वो बाजरा में लगते हैं। तो रोगों को नियंत्रित करने के लिए सबसे अच्छा है कि जो हम लोग बताए हैं प्रतिरोधी किस्म, उसका उपयोग करें। तो उसका देखिएगा कि उसमें आपको डिजीज़ बहुत कम लगेगा। तो ये सबसे ज़्यादा इसमें जो बाजरा में लगता है वो डाउनी मिल्ड्यू यानी मृदा रोमिल आशिता रोग। इसको आप लोग कैसे पहचानेगा? तो इसके पहचानने का सबसे बड़ा लक्षण है कि पत्ती के जो निचली सतह होती है उस पर सफ़ेद अलैंगिक बीजाणु जनन से संक्रमित हरिमाहीन पर्ण आपको दिखाई देगा और गंभीर स्थिति में ये जो संक्रमित पौधे होते हैं वे छोटे रह जाते हैं तथा उसमें देखिएगा कि पुष्प गुच्छ उसमें नहीं बन पाता है और हरी बालियां जैसे लक्षण उसमें आपको दिखाई देंगे। इसका प्रबंधन है कि एक ग्रीष्मकालीन, जब ग्रीष्म सीजन रहता है उसमें गहरी जुताई कर दें, या यदि आप रोग दिखाई दे तो एक दवा आती है मेटालेक्जिल एप्रोन, जिसको हम लोग एप्रोन 35 ST, उसको 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से आप, या चिटोसिन दवा आती है जो 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से आप बीजोपचार कर दें, तो इसे देखिएगा कि इसका जो इसका रोग आपको उसमें नहीं लगने की समस्या रहेगा। यदि आप दूसरा जो रोग है वो है स्मट, ये इस बीमारी में देखिएगा कि पौधे की जो बाली होती है उसमें दाने हरे रंग एवं बड़े हो जाते हैं। इस बीमारी के कारण देखिएगा कि बाद में ये जो दाने हरे रहते हैं वे काले पड़ जाते हैं तथा पूरे फफूंद के स्पॉट आपको भरे दिखाई देते हैं। तो ग्रसित बालियों को आप खेत से हटाकर तुरंत जला दें, या पत्ती निकलने की अवस्था में पुष्प गुच्छ पर जिनेब दवा आती है उसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप दो छिड़काव कर दें, फिर 15 दिनों के बाद पुनः उसको रिपीट कर दें। तीसरा जो बीमारी है अर्गट, इस रोग को आसानी से पहचाना जा सकता है। इस रोग में संक्रमित जो पुष्प जो बाली में पुष्प रहते हैं मलाई जैसे रंग हल्के गुलाबी रंग के मधुरस पदार्थ का स्राव होता है। इसमें अनेक जो कोनाइडिया होते हैं कुछ दिनों के बाद यह पदार्थ भूरा और चिपचिपा हो जाता है और बाद में काले पदार्थ के रूप में बदल जाता है। तो फसल पर जो हम लोग बाली जो जिसको हम लोग सिट्टी बोलते हैं उस जैसे ही बनता हो उसमें 2.5 किलो जो जिनेब फपोदनाशक जिनेम दबा

0: होती है या 2 किलो मैनकोजेब दवा कम से कम 3 से 4 छिड़काव जो 3 से 15 दिनों के पर अपना करते रहें। इसी तरह हम लोग बात करेंगे जो प्रमुख कीट लगते हैं, तो बाजरा में जो प्रमुख कीट लगते हैं उसमें देखिएगा कि सूट फ्लाई, जिसको हम लोग परोह मक्खी बोलते हैं, तो इसको पहचानने का है कि जैसे ही ये मक्खी ये इसका कीट का प्रभाव होता है तो देखिएगा कि बाजरा का जो बीच वाला केंद्रीय तना होगा वो सूखने लगेगा और परों जो मक्खी का जो सबसे बड़ा ये रहता है कि प्रकोप होने पर अंकुरण के 10 या 20 दिनों के बाद जो फसल पर साइपरमेथ्रिन एक दवा आती है उसका छिड़काव कर दें, तब इससे बचाव हो सकता है। उसी तरह दूसरी प्रमुख जो कीट है वो सफ़ेद मक्खी है, तो सफ़ेद मक्खी का जो सुंडी जिसको हम लोग ग्रब कहते हैं वो जड़ों पर हमला करता है और पौधों को क्या करता है, मृत्यु के कारण देखिएगा कि जो पौधा और पौधा के बीच में क्या होता है, बीच में पौधा मर गया तो अंतराल आपको ज़्यादा दिखाई देगा। और व्यस्क जो इसका कीट होता है वो जो बाजरे की दुधिया अवस्था में जो फूल और दाना बनता है उसको खा जाता है। तो इसका प्रबंधन का सबसे अच्छा उपाय है बीज के साथ 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से एक बाजार में कार्बोफिरोन दवा 3G आती है, उसको जो बुआई के समय उसके लिए कूड़ा जो बनाते हैं उसमें वो डालते जाएं, तो इसका देखिएगा कि इस कीट को वो आपके खेत में नहीं लगेंगे।
1: जी सर, तो आपने जो उपयोगी बातें बताई उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहनों के लिए ये काफी महत्वपूर्ण साबित होगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो किसान भाई बहनों आप बाजरा की खेती कीजिए और खेती को वैज्ञानिक तरीके से कीजिए तो आपको काफी लाभ होगा। तो उम्मीद है कि हमारी आज की ये चर्चा आपके लिए उपयोगी साबित होगी। आज के लिए इतना ही, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपनी फसलों का भी विशेष ध्यान रखें। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: अटेंशन अटेंशन अटेंशन ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन, this is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
3: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.

0: आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना?
5: खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
6: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
6: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
6: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
6: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
6: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य

0: केंद्र पर एनएम दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्वस्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
2: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन। और आज उन्नत कृषि में एक खास विषय हम लेकर आए हैं, अदरक की। जब हम बात करते हैं तो इसकी सुगंध से ही, जी हाँ, हमारा घर, हमारा माहौल काफ़ी खुशबूदार हो जाता है। और जब इसे सब्जियों में या फिर आप किसी भी पकवान में डालते हैं तो वो स्वादिष्ट तो बन ही जाता है। जी हाँ, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, अदरक की खेती के बारे में आज हम जानेंगे। और इस विषय को लेकर डॉक्टर विजय कुमार सिंह हमारे साथ हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि अदरक का महत्व और इसकी खेती में जो समस्याएं आती हैं उनके बारे में थोड़ा बताएं।
3: मसाला फसलों में अदरक का महत्वपूर्ण स्थान है। अदरक को पौराणिक ग्रंथों में महौषधि के नाम से सुशोभित इसलिए किया गया है क्योंकि यह अनेक बीमारियों का अचूक दवा है, परंतु बवासीर के रोगियों के लिए जहर का काम करता है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मसाला फसल है जिसकी भूमिगत गांठों का उपयोग प्राचीन काल से होता चला आ रहा है। इस मसाला के गांठों को परकंद कहते हैं। ताजे तथा कच्चे परकंदों को अदरक तथा सूखे परकंदों को सूंठ कहा जाता है। सोंठ मनुष्य के अतिरिक्त पशुओं के अनेक रोगों की अचूक दवा है। भारत में अदरक की खेती सबसे अधिक केरल राज्य में होती है। अदरक की खेती में कुछ समस्याएं आती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अदरक की खेती से प्रति इकाई भूमि से अन्य फसलों की तुलना में लगभग 3 से 4 गुना अधिक शुद्ध आय प्राप्त होती है, फिर भी इसकी खेती का विस्तार तेजी से नहीं हो पा रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि अदरक उत्पादन में बीज पर बहुत अधिक खर्च होता है। 1 हेक्टेयर अदरक बोने के लिए लगभग 18 से 20 क्विंटल बीज की आवश्यकता होती है। यदि बीज का दाम हम 150 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से अगर जोड़ें तो लगभग 3 लाख रुपया बीज पर ही खर्च होता है 1 हेक्टेयर में। इतनी बड़ी रकम सभी किसान नहीं खर्च कर सकते हैं तथा जो किसान इसकी खेती करते भी हैं वे बहुत छोटे पैमाने पर। दूसरी समस्या है कि यह 2 फसल अवधि में तैयार होती है, अर्थात इसको तैयार होने में लगभग 8 महीना लग जाता है। तीसरी समस्या है कि इसमें परकंद विकलन रोग का बहुत अधिक प्रकोप होता है, जिसके चलते फसल 85 से 95% तक लगभग नष्ट हो जाती है।
2: इसकी खेती के लिए जलवायु, खेत का चुनाव एवं तैयारी तथा खाद एवं उर्वरकों के बारे में बताएं।
3: अदरक की सफल खेती के लिए गर्म तथा नम जलवायु उपयुक्त होती है। अच्छी उपज के लिए बुआई से अंकुरण तक साधारण वर्षा, पौधों की शाकीय बढ़ाव के समय नियमित एवं अधिक वर्षा तथा फसल खुदाई से 1 माह पहले मौसम सूखा रहना चाहिए। भूमि वैसा होना चाहिए जिसमें उचित जल निकास का प्रबंध हो और उसमें जीवांश युक्त पदार्थ अधिक मात्रा में मौजूद हो तथा मिट्टी बलुई दोमट हो जिसमें कि अदरक की उपज अच्छी हो सके। भारी मिट्टी में परकंदों का विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। रबी की इसकी खेत की तैयारी के लिए जब रबी की फसल कट जाए उसके

0: के बाद अप्रैल माह में मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई कर, कल्टीवेटर से 3-4 जुताई कर मिट्टी को भुरभुरी तथा समतल बना लें। यह एक लंबी अवधि की फसल है, इसलिए इसको खाद एवं उर्वरक अधिक मात्रा में चाहिए। साधारणतः 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की सरी खाद या कंपोस्ट के अलावा नाइट्रोजन 100 से 120 किलोग्राम, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 80 से 100 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। फास्फोरस की पूरी मात्रा और पोटाश की आधी मात्रा खेत जुताई के समय तथा पोटाश की शेष आधी मात्रा एवं नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुआई के 50 से 60 दिन बाद निकाय गुराई के समय दें। बुआई के 80 से 90 दिन बाद नाइट्रोजन की आधी मात्रा पौधों के पंक्तियों के दोनों तरफ डालकर मिट्टी चढ़ा दें। फसल अवधि के दौरान 2 बार मिट्टी अवश्य चढ़ाएं। अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे जस्ता, लोहा, बोरन इत्यादि प्रचुर मात्रा में रहना चाहिए। मिट्टी की जांच करा लें ताकि यह हम जान सकें कि इसमें कोई सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी तो नहीं है।
1: बुआई का समय, बीज, प्रकंद का साइज और बुआई के विधि के बारे में बताएं।
0: अदरक की खेती से अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए सही समय पर बुआई करना अति आवश्यक है। अनुसंधान से यह पाया गया है कि जहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वहां अदरक की बुआई 15 से 31 मई के बीच अवश्य कर दें, परंतु जहां सिंचाई की सुविधा नहीं है वहां इसकी बुआई वर्षा प्रारंभ होते ही कर दें। अदरक पर हुए अनुसंधान परिणामों से यह सिद्ध हो चुका है कि अदरक का बीज प्रकंद ऐसी फसल से लेना चाहिए जिसमें पिछले वर्ष रोग नहीं लगा हो। अधिक पैदावार के लिए हमेशा स्वस्थ बीज प्रकंद जिसका वजन 18 से 20 ग्राम हो तथा जिसमें 3 से 4 स्वस्थ कलियां हो का चुनाव करें। बीज प्रकंदों को 3 मिनट तक 0.5% एगालोल या 30 मिनट तक 0.1% सेरेसोन के घोल में डुबोकर उपचारित कर लें। उपचारित बीज प्रकंदों की बुआई हमेशा कतारों में करें। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर तथा पौधा से पौधा की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखें।
1: इसके बाद बारी आती है निकाई गुड़ाई, सिंचाई, खुदाई, तो इसके बारे में बताएं।
0: साधारणतः अदरक की फसल में खरपतवार की संख्या एवं बढ़ाव को देखते हुए 2 से 3 निकौनी की आवश्यकता पड़ती है। प्रथम निकौनी बुवाई के 45 दिनों बाद, दूसरी निकौनी 60 दिनों बाद तथा तीसरी निकौनी 100 से 120 दिनों बाद करें। सिंचाई की जहां तक सवाल है तो प्रथम सिंचाई बुवाई के 3 से 4 दिन बाद ही कर देनी चाहिए। सामान्यतः अदरक के वानस्पतिक वृद्धि के लिए यदि वर्षा न हो तो 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए ताकि खेत में पर्याप्त नमी बना रहे। बरसात के बाद 2-3 सिंचाई करनी पड़ सकती है। जब फसल तैयार हो जाए तो इसकी खुदाई करनी पड़ती है। अदरक की फसल साधारणतः 7 से 8 महीना में तैयार हो जाती है। अदरक के प्रकंदों से अर्क निकालने के लिए अगात खुदाई कर सकते हैं। अदरक को बुआई के 5 से 6 माह बाद कच्चा अदरक उपयोग हेतु या बाजार भाव अधिक हो तो खोदा जा सकता है। कच्चे अदरक का भंडारण एवं सोठ बनाने के लिए सदैव फसल पूर्ण परिपक्व हो जाए तभी खुदाई करनी चाहिए। खुदाई के

0: 15 से 20 दिन पहले सिंचाई बंद कर देनी चाहिए।
1: और अब आगे बढ़ते हैं इसके प्रमुख प्रभेदों, रोगों एवं कीटों के बारे में जानकारी दें।
0: अदरक की बहुत सारी प्रमुख प्रभेदे हैं, जिसमें कि एक नदिया प्रभेद है जो कि यह पश्चिम बंगाल की वैरायटी है। उसी प्रकार एक मरान है, रियो डी जिनेरो, यह बहुत ही मशहूर वैरायटी है। यह ब्राज़ील देश का वैरायटी है, परंतु हमारे यहाँ यह बहुत ही लोकप्रिय वैरायटी है। उसी प्रकार सुप्रभा है, सुरुचि है। अब अदरक में कुछ रोग लगते हैं जो कि प्रमुख हैं, मृदुल या प्रकंद विगलन रोग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रकंद सड़ने लगता है, पत्ता झुलस जाता है। दूसरा है पर्ण धर धब्बा रोग, यह भी एक बहुत प्रमुख बीमारी है। तो इन दोनों बीमारियों को रोकने के लिए डाइथेन M45 का 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर उसका छिड़काव करते हैं, और यह छिड़काव 15-20 दिन के अंतराल पर पुनः उसे दोहराते हैं। अदरक में ऐसे कीट का प्रकोप कम होता है, लेकिन इसमें एक है तना छेदक। इसके रोकथाम के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट कीटनाशक दवा जो है उसका 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। एक होता है रीफ रोलर, इसके शिशु जिसे कैटरपिलर कहते हैं, हरा रंग का होता है। अदरक की पत्तियों को मोड़कर शिशु उसी के भीतर रहता है और भीतरी पत्ती को खाता रहता है। इसका आक्रमण अगस्त से अक्टूबर तक पाया जाता है। इसके रोकथाम के लिए अभी बताए गए कीटनाशी दवा इमामेक्टिन बेंजोएट का 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। अतः इस प्रकार से अदरक की खेती अगर किया जा सके तो हम भरपूर आय प्राप्त कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अदरक की वैज्ञानिक खेती के बारे में, और आशा करते हैं आज की इस वार्ता से आप जरूर लाभान्वित होंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। उन्नत कृषि,
2: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी, बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी, टीबी मुक्त भारत बनाए,
3: खुद भी बचे देश भी बचाए।
4: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
6: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
7: कितने दोस्त हैं?
8: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी
7: और तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
8: 11 दोस्त?
7: टीकू, देखो वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके।

0: बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
1: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
0: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूरदराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: टीकी, तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है, तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो,
1: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन एफएम।

0: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है उन्नत कृषि कार्यक्रम में। उन्नत कृषि कार्यक्रम में आज की जो बातचीत होने वाली है बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, खास तौर से उन किसानों के लिए जो खेती गृहस्थी से आय नहीं कमा पा रहे हैं, अपने घर के लिए खेती कर रहे हैं पर बहुत ज्यादा मुनाफा उन्हें नहीं मिल पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ज्यादातर किसान परंपरागत खेती करते हैं, और अब बात करें अपने बिहार के तो बिहार में 82% लोग खेती करते हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुनाफा नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों है और किस तरीके से परंपरागत खेती से हम व्यावसायिक खेती की ओर बढ़ सकते हैं और आय मुनाफा कमा सकते हैं, इसके बारे में आज हमारे साथ विस्तार से बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अविनाश कुमार। सर आप हैं सहायक प्राध्यापक कृषि अर्थशास्त्र से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: जी धन्यवाद मैम, और आप सभी को नमस्कार किसान भाई बंधुओं। जैसे मैडम ने बताया, जो किसान आज सब जगह आप सुन रहे हैं जो ये व्यवसाय करना चाहिए, व्यवसाय करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। आज भी हम अगर देखें तो किसान का मतलब, लोग किसान नाम सुनते ही ऐसा लगता है जो किसान फटे पुराने कपड़े में गरीब, एक पर्यायवाची है आज भी। उसका मूल कारण क्या है? आज भी बहुत सारे किसान, अगर बिहार की बात करें तो परंपरागत खेती पर आश्रित हैं। जैसे हम लोग आज भी धान गेहूं मुख्यतः, जो खरीफ की बात करें तो ज़्यादातर जमीन में हम धान लगाते हैं और कुछ जमीन में दाल वगैरह लगा लेते हैं, नहीं तो आज भी हम लोग धान पे आधारित ही खेती करते हैं और रबी में जो है गेहूं पर आश्रित हैं। और यहाँ वर्षों से ये बात चल रही है जो आमदनी किसानों की कैसे बढ़ाई जाए, उसमें अगर आप देखें किसान भाई बंधु तो आप धान गेहूं अगर उतने एरिया में, जितने एरिया में आप लगाते हैं उतने एरिया से अगर धान गेहूं का उत्पादन किया जाए और उसको बेचा जाए तो बहुत ज़्यादा आमदनी आप नहीं निकाल सकते। तो आज के जो मार्केट, जिस तरह से मार्केट में डिमांड बढ़ा है, आप एक बात और मैं बता दूँ, पहले एक विचारधारा ये थी जो खेती, व्यवसायिक खेती उन्हीं के लिए या उन्हीं किसानों के लिए है जो जमींदार हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है। लेकिन भाइयों आज के टाइम में सारी विचारधारा ये बदल गई है, अब वही आप लोगों को समझने की आवश्यकता है। थोड़ा ध्यान से समझिए, अगर आपके पास अच्छी खासी ज़मीन है, 20 बीघा ज़मीन है, 30 बीघा ज़मीन है, तो आप कुछ ज़मीन में आप धान गेहूँ लगा सकते हैं, उसी में कुछ में दाल लगा लिए, कुछ में आपने सब्जी लगा लिए, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन बिहार जैसे प्रांत में, राज्य में लगभग किसान छोटे और सीमांत हैं। उस कंडीशन में अगर जिनके पास ज़मीन कम है तो आमदनी निकालने में दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा आमदनी नहीं हो पाएगी। तो वो क्या कर सकते हैं? पहले लगभग हर किसान के घर में गाय भैंस हुआ करती थी, आज नहीं होता है। लेकिन आज हमें फिर से उस तरफ मुड़ने की आवश्यकता है। आप कम जमीन है, आप थोड़े से दुग्ध उत्पादन की तरफ आप जा सकते हैं, उससे आमदनी बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास उससे भी कम जमीन है तो बकरी पाल सकते हैं, और इन सब के लिए सरकार आज बहुत सारे सुविधाएं दे रही है। आप उसके बारे में जानकारी अपने नज़दीकी किसान कृषि विज्ञान केंद्र, आप बैंक से भी पता कर सकते हैं। उसके लिए बहुत अच्छी खासी लोन सब्सिडी के मिल जाती है, लोन अच्छे खासे लोन मिल जाता है। फिर अगर आपके, मान लीजिए उतना भी ज़मीन नहीं है, आपके पास लेबर कम है, तो आप पोल्ट्री कर सकते हैं, अगर आप उसके लिए आप कंफर्टेबल हैं तो। उतनी भी ज़मीन नहीं है तो मशरूम आप लगा सकते हैं, बहुत कम एरिया मशरूम लगा तो अच्छी खासी आमदनी आप पा सकते हैं। आप सुने होंगे मशरूम दीदी के नाम से, अनीता, श्रीमती अनीता देवी, उनको आज भारत सरकार से राष्ट्रपति पुरस्कार, राष्ट्रीय स्तर के सारे, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के सारे पुरस्कार उनको मिला है। और एक छोटे से घर से उन्होंने शुरुआत की थी और आज उनके 10 लाख की आमदनी है। तो आज ये जो एक धारणा थी, जो जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है वही व्यावसायिक कृषि कर सकते हैं, अब वो विचारधारा बदल गई है। हम लोग जो वैज्ञानिक लोग हैं, कृषि वैज्ञानिक लोग हैं, अब इस पे हम लोगों ने इस पे अध्ययन करके और जो अलग अलग विभाग के वैज्ञानिक हैं इस पे काम करके, जो कैसे कम ज़मीन से ज़्यादा उत्पादन किया जा सकता है। तो जैसे मैंने बताया, कम ज़मीन है तो आप दुग्ध उत्पादन कर सकते हैं, और भी कम जमीन है तो बकरी पाल सकते हैं, और भी कम जमीन है तो आप पोल्ट्री लगा सकते हैं, जमीन नहीं है तो आप पोल्ट्री आप मशरूम लगा सकते हैं। तो

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि,

0: इसीलिए जो आज जो जिस तरह से मार्केट डिमांड, जैसे बाजार की जो डिमांड बढ़ी है बाजार में, उसके कारण से आज व्यवसायिक खेती की तरफ किसान अगर मुड़ेंगे तो अच्छी खासी आमदनी बना पाएंगे।
1: सर, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप ये बताएं कि पारंपरिक खेती क्या है।
0: जी देखिए मैम, पारंपरिक खेती जो है, हम जो मौसम आधारित खेती कर रहे हैं या जो पुराने समय से जो चलते आ रहे हैं, पर वो उसी वैसे ही हम खेती करते आ रहे हैं। जैसे बिहार में अगर देखा जाए तो लगभग, उत्तर भारत का हाल देखिए तो लगभग जो है बाढ़ पीड़ित है, दक्षिण बिहार तरफ जो है सूखा रहता है, फिर भी हम लोग खरीफ में धान आधारित फसल लगाते हैं, धान लगाते हैं और मेन जो ज़्यादा एरिया में क्षेत्रफल में धान लगाते हैं और कुछ एरिया में थोड़ा दाल लगा लिए, कम वहाँ पर पानी उपलब्ध है तो कुछ में सब्जी लगा लिए। और रबी में भी ऐसे ही है, रबी में भी हम मूलतः गेहूं लगाते थे, आजकल थोड़ा थोड़ा जैसे हमने व्यावसायिक खेती की बात करना शुरू की है तो आज थोड़ा थोड़ा आप देखेंगे, जो आप गंगा के उत्तर तरफ चले जाइए तो जिस एरिया में पहले लोगों को अनाज मिलता नहीं था आप बोल सकते हैं, आज वहां पर मक्का आज पूरे भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो यही अभी हमें सोचने की ज़रूरत है, जो कैसे जो आप परंपरागत खेती कर रहे हैं, अब वही धान गेहूँ पर आश्रित है, तो ऐसे उसको व्यावसायिक बना सकते हैं। जैसे अगर बहुत ज़्यादा पानी उपलब्ध नहीं तो दलहन ज़्यादा लगा सकते हैं। अगर आपका गांव, आपका घर शहरी क्षेत्र से नज़दीक है, शहर के आसपास है, भागलपुर के नज़दीक है या किसी शहर के आसपास नज़दीक है, आप फूल लगा सकते हैं। फूल आप होटल्स में, हॉस्पिटल में, ऑफिस में आजकल बहुत, और आज तो हर घर में, हर गाँव में बर्थडे पार्टी, आज शादी विवाह में फूलों की मांग बढ़ गई है, तो आप फूल लगा सकते। ये बहुत अच्छा व्यवसाय है और बहुत ज्यादा इसमें मांग और बढ़ने वाली है। तो यही हुआ जो परंपरागत से व्यावसायिक खेती।
1: तो सर, अभी आपने बताया व्यावसायिक खेती, तो इसके बारे में भी विस्तार से बताइए कि व्यावसायिक खेती क्या है।
0: हाँ, व्यावसायिक खेती का मतलब ये होता है मूलतः जो कोई भी काम आप व्यवसाय के तौर पे करें, व्यवसाय मतलब उससे आमदनी ज़्यादा ज़्यादा बढ़ा पाएं, आपका मूल जो आपका जो आपका लक्ष्य है वो है आमदनी बढ़ाना, उसको बोलते हैं कोई भी काम उसको बोलते हैं व्यवसायिक कार्य। खेती की बात करें तो ऐसा खेती, ऐसा फल, ऐसा सब्जी, ऐसा अनाज उगाएं जो मांग, मतलब बाजार का मांग है, बाजार आज उसको चाह रही, जैसे आजकल बहुत बात चल रही है ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फसल, तो आप बाजार के मांग के आधार पे जो आप खेती करेंगे तो ऑटोमेटिकली आके आमदनी बढ़ेगी, वही व्यावसायिक खेती हो।
1: और सर, अभी जो बदलाव हो रहा है पारंपरिक खेती से व्यावसायिक खेती की ओर, ये क्यों है और कारण क्या है?
0: जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। उसका कारण ये है, एक तो बाजार का मांग जैसे बढ़ा, लोगों की आमदनी बढ़ी, तो आमदनी बढ़ी तो सब लोग अच्छा खाना खा सकते हैं। अच्छा, अब पहले सब लोग दूध नहीं खा पाते थे, सब दिन फल नहीं खा पाते थे, अब आमदनी बढ़ने के कारण जैसे मांग बढ़ा है, उसके कारण से सरकार ने, बिहार राज्य सरकार हो कि केंद्र सरकार हो, सभी ने अब योजनाएं बढ़ा, ऐसे ऐसी योजनाएं बनाए गए हैं, सरकारी योजनाएं बनाए गए जिससे ऐसे फसलों को, व्यावसायिक फसलों के मांग को पूरा करने के लिए किसान को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाए, उसके लिए आपको जैसे मैंने बताया लोन दिया जाता है, उसके लिए जैसे आप अगर डेयरी के लिए, आप गाय के लिए भी आपको लोन मिलता है, बकरी पालने के लिए लोन मिलता है, पॉली हाउस में टमाटर उगाना चाहते हैं, खीरा उगाना, उसके लिए लोन मिलता है, तो इसलिए सरकारी योजनाएं उसमें योजना और जो है समर्थन मूल्य बढ़ा है, बाजार में बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों नए फसलों के लिए, फल फूल के लिए मांग बढ़ी है, फिर आय बढ़ाने की आवश्यकता है, आज सबकी खर्चा बढ़ा है तो आय भी बढ़ाना आवश्यकता है, तो ये भी एक कारण है जो हमें अब जो परंपरागत खेती से हमें व्यावसायिक खेती की तरफ मुड़ना पड़ेगा। फिर नई तकनीकी और उसकी जानकारी, आज किसान बंधुओं के पास लगभग सभी लोग मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन यूज करते हैं, उसमें सबको आप यूट्यूब पर देख सकते हैं नई नई तकनीकें आ गई है, उस तकनीकी से कैसे खेती को और अच्छा बनाया जा सकता है, उससे आमदनी कैसे बढ़ाई जा सकती है। फिर आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग, आप देखिए पहले परंपरागत खेती की बात करें तो हल बैल लोग रखते थे, हल बैल से ही खेती बाड़ी करते थे, आज देखिए गांव में आप बैल नहीं मिलेगा, आपको लकड़ी का हल नहीं मिलेगा, और आप अभी आप देखिए ट्रैक्टर, अब जो ट्रैक्टर से जुड़ा हुआ मशीन है, थ्रेसर है, अब तो खेत में ही कटाई हो जाती है, वहीं पैक हो जाती है और

0: सीधे मार्केट चला जाता है। तो इससे जो आधुनिक कृषि या व्यावसायिक कृषि के लिए आसान भी हुआ और उसके लिए किसान बंधु के लिए मतलब उससे आमदनी बढ़ाने में मदद भी हो रही है।
1: यानी कि जिस तरीके से परिस्थितियां बदल रही है, बदलते परिस्थिति के साथ जरूरी है कि पारंपरिक खेती से व्यावसायिक खेती की ओर बढ़ जाएं।
0: जी जी हाँ।
1: तो सर बिहार में क्या ऐसा उदाहरण देखने को मिलता है?
0: जी देखिए हम लोगों को ऐसे जैसे सुनते हैं जो बिहार केवल बिहार के लोग गरीब होते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप लोगों को मैं बताऊं, बिहार देश में अग्रणी राज्य है सब्जी उत्पादन में। उसमें से जैसे बैंगन हो गया, फूलगोभी हो गया, पत्ता गोभी हो गया, भिंडी हो गया और इस तरह के फसलों में बिहार अग्रणी राज्यों में से फर्स्ट प्रथम या द्वितीय स्थान में आता है। तो हमारे यहाँ सब्जी उत्पादन के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र है, मौसम अनुकूल है, तो सब्जी ऊपर आप उधर की तरफ आप जा सकते हैं, सब्जी उत्पादन की तरफ जा सकते हैं। फल उत्पादन में सब जानता है लीची आम केला में बिहार नंबर वन है पूरे देश में। फिर पपीता आजकल बहुत लोग लगा रहे हैं, ड्रैगन फ्रूट लगने लगा है, गांव-गांव में लोग लगाने लगे हैं। तो ये जो बदलाव के उदाहरण है इससे दूसरे किसान बंधु भी इसके बारे में जानकारी आप हमारे यहाँ विश्वविद्यालय से जानकारी ले सकते हैं, नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से, कृषि विभाग से, और बाकी तो आपके हाथ में मोबाइल फोन है, सारी जानकारी उपलब्ध है।
1: तो सर जैसे कि बदलाव हो रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ चुनौतियां तो आ रही होगी, तो कौन कौन से चुनौतियां हैं इसमें?
0: देखिए एक कंसेप्ट है चकबंदी, किसान भाई लोग शायद जानते होंगे। चकबंदी का मतलब ये होता है जो आपके पास चाहे 2 बीघा ही जमीन हो, 2 बीघा के 2 बीघा एक ही जगह हो, तो उससे क्या फायदा होगा, सारे जमीन को एक बार आप अपने अनुसार उसको घेराबंदी कर सकते हैं, पशुओं से बचा सकते हैं, या थोड़ा मोड़ा जो लोग परेशान करते हैं चोरी हो जाती है उससे भी बचा सकते हैं, और उसी में अगर 2 बीघा है वहीं पर आप पंप गाड़ सकते हैं, आप बोर्डिंग लगा सकते हैं, सिंचाई में आपको सुविधा होगी, उसमें आपको सारा काम करने में आसान होगा एक जगह। तो जो सबसे बड़ी बिहार में चुनौतियां हैं वो है छोटे और बिखरे हुए खेत। अगर है भी एक तो कम जमीन है भी तो एक इस टोला में है, एक मतलब उस बाध में बोलते हैं, बाध बोलते हैं, खेत बोलते हैं, एक पूर्वी टोला पूर्वी पुबारी बाध में है, पश्चिम बाध में है, एक बर्मोत्तर में है, तो बहुत दूर दूर खेत बता है। तो किसानों को जो उसमें जो अलग अलग जो मतलब गतिविधियों में आसान दिक्कत होती है, और छोटे खेत में आप एक खेत के लिए अब ट्रैक्टर लगाना वो भी महंगा पड़ेगा, तो एक बड़ी समस्या है पूंजी की कमी। आज भी जो बिहार में जो छोटे सीमांत किसान हैं उनके पास पूंजी की कमी है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि आप मान लीजिए आप फूल के तरफ जाते हैं या दुग्ध उत्पादन के लिए जाते हैं, या तो लागत शुरू में जो लागत होती है थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो ये चुनौतियाँ हैं। फिर अब तो परिवहन आसान हो गया है, बहुत अच्छा हमारे यहाँ बहुत अच्छी सड़कें बन गई है, फिर भी भंडारण जो आज भी है थोड़ी सी समस्या बनी हुई है, और हमारे यहाँ बाजार तक सीधी पहुँच आज भी हमारे यहाँ जो है रेगुलेटेड मार्केट नहीं है, तो जिससे सीधे बाजार तक हम नहीं पहुँच पाते हैं, और बहुत सारे किसान आज भी उनको जागरूकता की कमी है।
1: सर हमने चुनौतियों के बारे में तो बात कर लिया, लेकिन जो बदल रहे हैं, जो पारंपरिक खेती से व्यावसायिक खेती की ओर जा रहे हैं, उनमें किस तरीके के रुझान देखे जाते हैं?
0: जी ये जैसे जैविक खेती के बारे में मैंने बताया, ऑर्गेनिक फार्मिंग आजकल सभी किसान बंधु सुने होंगे या जानते होंगे, बहुत ज़्यादा मांग बढ़ रहा है जैविक खेती। क्योंकि जो जैविक खेती का मतलब ये हो जो रासायनिक जो हम खाद या दवाई डालते हैं वो कम से कम डालें, क्योंकि उससे स्वास्थ्य पर जो बहुत ज़्यादा उसका बुरा असर हो रहा है। अब लोगों को धीरे धीरे इन सब बातों की जानकारी हो रही है, तो अब लोग अवेयर हो रहे हैं जो अब कैसे जैविक खेती से स्वास्थ्य लाभ होता है, और इसीलिए जैविक खेती की काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ा है। और एक होता है जो क्लस्टर में खेती करना, मान लीजिए आप छोटे किसान हैं तो 10 लोग मिलके एक टाइप का फसल उगाइए और वो 10 लोग मिलके एक जगह आप मार्केट में बेचेंगे तो ज़्यादा बिकेगा। फिर हॉर्टिकल्चर, जैसे मैंने हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी में आपका फल फूल आपका जो औषधीय पौधे भी आज के समय में या आने वाले समय में बहुत बड़ा आमदनी का स्रोत हो सकता है किसान भाई बंधुओं के लिए। इसके बारे में भी आप जानकारी उपलब्ध कर सकते हैं। किसान समूह FPO का नाम सुने होंगे, किसान उत्पादक संघ के आप बना के बहुत अच्छा आमदनी आप बढ़ा सकते हैं। जी
1: जी तो सर जैसे कि आपने ये सारी बातें बताई, व्यावसायिक खेती के बारे में भी बताया और पारंपरिक खेती के बारे में भी बताया, लेकिन अगर दोनों की तुलना करें तो किस किस पैमाने पे कौन बेहतर है?
0: जी जी, देखिए बेहतर तो बिल्कुल व्यावसायिक खेती की तरफ जाना चाहिए, और बेहतर की बात करें तो जैसे देखिए पारंपरिक खेती में क्या था, हम जीविका आश्रित थे, जो

0: अपने परिवार का भरण पोषण हो जाए, खाना हो जाए, सालों भर के लिए हम उसे उतना उगा लें, वो हो गया। लेकिन जो व्यवसायिक खेती वो मूलतः लाभ आधारित है। हमारा मेन लक्ष्य क्या होता है, हमारा लाभ कमाना, आमदनी बढ़ाना। फिर उसमें जो क्या है, पारंपरिक खेती क्या है, उसके लिए छोटे जमीन था तो पारंपरिक खेती लोग करते थे। लेकिन जो व्यवसायिक खेती वो थोड़ा सा, या तो आपके पास ज़्यादा जमीन हो या नहीं तो छोटे जमीन हो तो आप उसको समूह में FPO बनाइए। फिर पारंपरिक खेती में मतलब पुराने तकनीक से हो जाता था, अब जो है व्यवसायिक खेती में आधुनिक तकनीक चाहिए। तो यही सब अंतर है। पारंपरिक खेती कम लागत में हो जाती थी, व्यवसायिक खेती में थोड़ी सी लागत ज्यादा है। जी,
1: तो सर इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या है?
0: देखिए, बिहार जैसे राज्य हम लोग ये जानते हैं, अगर आप भाई बंधु अगर आप लोगों को पता होगा, जैसे राजस्थान देख लीजिए या और भी पश्चिम भारत, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, वहाँ इतनी पानी की समस्या है, सिंचाई की समस्या, फिर भी वो हमसे ज़्यादा आमदनी कमा रहे हैं, ज़्यादा खेती को और उन्नत बना लिए हैं। तो ये निष्कर्ष ये है, हमारे यहाँ पानी की सालों भर सुविधा है और बहुत जमीन की जो मिट्टी की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। तो बिहार में कृषि तेजी से बदल रहा है और हमारे लिए ये जो जलवायु, अनुकूल जलवायु के कारण से तेजी से बदल रहा है। दूसरा, व्यावसायिक खेती से किसानों की आय बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। जैसे मैंने बताया, वही एक बीघा में धान लगाइए, वही एक बीघा में अगर सब्जी और फूल लगा लीजिए तो आप 10 गुना तक ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। उससे भी ज़्यादा हम 2 गुना की बात करें, 2 गुना से बहुत ज़्यादा आप आमदनी बढ़ा सकते हैं। फिर कुछ चुनौतियाँ, जैसे हमने बात किया तो उस चुनौतियाँ, सब जगह चुनौतियाँ हैं, जीवन में चुनौतियाँ हैं, खेती में आप किसी भी चीज़ में देखेंगे आपके व्यवसाय चुनौतियाँ हैं, लेकिन उस चुनौतियाँ उससे आगे आप निकलेंगे तो आप बहुत ज़्यादा आमदनी बढ़ा सकते हैं। फिर जो आखिरी जो है निष्कर्ष ये है, सही नीति और तकनीक से भविष्य बहुत अच्छा आप कर सकते हैं, उससे आपकी कृषि आमदनी भी बढ़ेगी, आपकी मिट्टी भी संरक्षित रहेंगे और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा। जी,
1: यानी कि किसान भाई बहन जो वर्षों से पारंपरिक खेती करते आ रहे हैं, वो जब व्यावसायिक खेती की ओर बढ़ेंगे तब थोड़ी सी चुनौतियां तो आएंगी, उसे आगे बढ़ते हुए आप उन सारी चुनौतियों को पार कर सकते हैं। जैसे कि सर ने बताया, हर चुनौती का कोई ना कोई समाधान मिल जाता है, लेकिन व्यावसायिक खेती की ओर जैसे आप बढ़ेंगे, चुनौतियों को पार कर बढ़ेंगे, तो फिर आप पाएंगे कि आपकी आय बढ़ गई है, आप बहुत बेहतर आप खेती गृहस्थी से कमा पा रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है सर, आपने बताई, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे कार्यक्रम में। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है हमारी आज की ये चर्चा आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। हमें अभी के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
2: उन्नत कृषि,

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित BP जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई।
5: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। क्यों इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं।

0: जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एएनएम दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। यूएमएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
2: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
3: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
2: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
3: आपकी सेहत की बातें,
2: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
3: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
2: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
3: वो कहाँ पर?
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
3: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। और लेडीज फर्स्ट में आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, और ये विषय है खास तौर से उन महिलाओं के बारे में जो कामकाजी हैं। और आज के समय में हर दूसरी महिला कामकाजी हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि ये उन्हें इंडिपेंडेंट बनाता है, आत्मविश्वासी बनाता है, लेकिन कई बार उनके साथ कुछ ऐसा घटित होता है कि उनका कॉन्फिडेंस, उनका आत्मविश्वास डगमगा जाता है, और ख़ास तौर से ये उसी जगह पर होता है जहां वो काम करने जाती हैं। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं कामकाजी महिलाओं के एक बेहद ही अच्छे साथी के बारे में, एक ऐसे साथी के बारे में जो उन्हें उनके कार्यस्थल पर उन्हें सुरक्षित महसूस कराता है। और उनका ये साथी है, या फिर कहें कि उनकी ये दोस्त है, शी बॉक्स। शी बॉक्स क्या है, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, कई बार ना क्या होता है कि महिला अपने काम पे निकली, बहुत ही अच्छे से निकली, लेकिन वहाँ पर उन्हें असहज महसूस होता है, क्योंकि उनके साथ कोई अनुचित व्यवहार कर देता है या फिर कोई उनसे ऐसी अभद्र बातें कह देता है कि महिला को बहुत बुरा लगता है, या फिर किसी लड़की को बहुत अजीब महसूस होता है। ऐसे में वो परेशान हो जाती है कि किससे कहें, क्या कहें और कैसे कहें, इसका क्या निदान निकलेगा, इसका समाधान निकलेगा। और आज इन्हीं सारे सवालों का जवाब हम जानने वाले हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि महिलाओं का, कामकाजी महिलाओं का साथी या फिर कामकाजी महिलाओं की दोस्त कौन है, शी बॉक्स ये क्या है। अगर मैं आपको शी बॉक्स का पूरा नाम बताऊं तो वो है सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, यानी कि ये एक ऐसा बॉक्स है जहां पर आप यौन उत्पीड़न के बारे में बातें बता सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों, ये भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा शुरू किया गया है, और एक ये ऑनलाइन पोर्टल है, यानी कि आप घर बैठे बैठे या ऑफिस में ही आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और इसका उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित रखना। पता है, सबसे ज़रूरी बात ये है कि अब चुप रहना नहीं है, डरना नहीं है, बल्कि ज़रूरी है कि आप अपनी आवाज़ उठाएं और आप इससे संबंधित विभाग तक पहुँचें, तभी आप खुद को सुरक्षित रख पाएंगे। और सिर्फ अपने आप को नहीं, बल्कि जिन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार किया है ना, वो सिर्फ आपके साथ व्यवहार नहीं करेगा गलत, और लड़कियों के साथ भी वो गलत व्यवहार ही करेगा। इसलिए ज़रूरी होता है कि वैसे लोगों को जितनी जल्दी हो सके रोक दिया जाए। और आप आवाज़ उठाएंगे तो यकीन मानिए कि आपका डर ख़त्म होगा, लेकिन उस इंसान के अंदर डर ज़रूर आ जाएगा कि अब हमें ऐसी कोई भी घटना को अंजाम नहीं देना है जिससे किसी महिला को परेशानी हो। शी बॉक्स कैसे काम करता है और ये कानून से कैसे जुड़ा है, आइए इसके बारे में जानते हैं। अगर हम शी बॉक्स के कानून के बारे में बात करें तो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्कप्लेस एक्ट, यानी कि पॉश एक्ट 2013 में आया था, और इसी के तहत शी बॉक्स को लाया गया था। और अगर हम बात करें कि इस कानून के अनुसार क्या क्या होता है, तो सबसे पहले तो जरूरी है कि हर संस्था के अंदर शिकायत की जांच 90 दिनों के अंदर पूरी हो जानी चाहिए। और इसके साथ ही ये भी ज़रूरी होता है कि महिला अपनी पहचान को गोपनीय रख सकती है। अगर वो शिकायत कराती भी है तो ऐसे में उनकी पहचान बिल्कुल गोपनीय रहती है। और कौन शिकायत कर सकता है, तो जो भी सरकारी कर्मचारी है या फिर प्राइवेट कंपनी में भी अगर आप काम कर रही हैं तो भी आप शिकायत कर सकती हैं। यहाँ तक कि अगर आप इंटर्न हैं तो भी आप शिकायत कर सकती हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रही हैं या फिर आप अस्थाई कर्मचारी हैं और आपके साथ कोई

दुर्व्यवहार हुआ है तो भी आप शिकायत कर सकती हैं। ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल आपके लिए ही है, आपको सुरक्षित करने के लिए है, आपको ये बताने के लिए है कि आप अपने घर के बाहर, आप अपने वर्क प्लेस पे भी बिल्कुल सेफ हैं। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको शीबॉक्स के आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा। अगर हम शीबॉक्स के आधिकारिक वेबसाइट के बारे में आपको बताएं तो इसका आधिकारिक वेबसाइट है shebox.wcd.gov.in, यानी कि shebox.wcd.gov.in। इस वेबसाइट पर आप जाइए और आपकी जो भी शिकायत है आप दर्ज कराइए और यकीन मानिए 90 दिनों के अंदर आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा और आपकी जो भी शिकायत है उसके बारे में बिल्कुल काम किया जाएगा और साथ ही आपकी पहचान भी गोपनीय रखी जाएगी। आप जैसे ही आधिकारिक वेबसाइट पर जाते हैं वहाँ पर आपसे आपका जो भी विवरण है वो पूछा जाएगा और आपके साथ जो घटना हुई है उसका भी विवरण वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा और ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर सबमिट कर देंगे। और ध्यान रखें कि ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो उनमें छोटी सी छोटी जो डिटेल होती है ना वो भी बहुत ज़रूरी होती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी परेशानी का समाधान मिले तो जो भी वहाँ पर पूछा जा रहा है बिल्कुल ईमानदारी से लिख दीजिए, भले ही वो थोड़ा लंबा हो पर लिखिए ज़रूर। और इसके बाद आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिलता है जिसे आप अपनी शिकायत की स्थिति देख सकते हैं कि आपने जो शिकायत की है वो अब कहाँ तक पहुँची है। दोस्तों, आखिर शीबॉक्स ज़रूरी क्यों है ये तो बिल्कुल आप समझ ही गई होंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई महिलाएं डर के कारण चुप रह जाती है कि लोग क्या कहेंगे, कहीं नौकरी चली गई तो क्या होगा। और साथ ही सबसे बड़ा जो हमारे मन में सवाल होता है वो ये होता है कि कोई विश्वास नहीं करेगा। कई बार लोग कहते हैं कि ये लड़की बहुत नाटक कर रही है, इनके तो बहुत नखरे हैं। ऐसी स्थिति भी उत्पन्न कर दी जाती है कि महिलाएं ये सारी बातें सोचकर ही चुप रह जाती है और उन्हें लगता है कि अगर बात करेंगे तो बात बढ़ेगी। जी नहीं, याद रखिए कि अगर आप बात करेंगे तो बात रुकेगी और आप अपने साथ साथ दूसरी महिलाओं को भी सुरक्षित करेंगी, क्योंकि आज जो आपके साथ कोई गलत कर रहा है ना तो वो कल दूसरों के साथ भी गलत करेगा और उसका मन लगातार बढ़ता जाएगा और आज वो छोटी सी घटना को अंजाम दे रहा है कल किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। इसलिए ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, आपकी नौकरी चली गई तो क्या होगा और कोई विश्वास नहीं करेगा तो क्या होगा। हो सकता है कि शुरुआत में आपके साथ बहुत कम लोग खड़े हों लेकिन आपका साथ देने के लिए शी बॉक्स है। और ध्यान रखिए कि आपकी नौकरी नहीं जाएगी क्योंकि आपकी जो पहचान है वो बिल्कुल गोपनीय रखी जाएगी और लोग क्या कहेंगे ये हम क्यों सोचे। बस इतना सोचिए कि आप खुद को सुरक्षित रखिए और जब आप अपनी जगह पर सही होती हैं तो उसका परिणाम भी सही ही आता है। ध्यान रखिए कि कोई भी चुप्पी समस्या को ख़त्म नहीं करती है बल्कि उसे और मजबूत कर देती है। इसलिए शी बॉक्स महिलाओं को ये भरोसा देता है कि उनकी बात सुनी जाएगी। दोस्तों, कई बार हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न क्या होता है। दोस्तों, यौन उत्पीड़न के अंतर्गत बहुत सारी घटनाएं आ सकती है। मान लीजिए आपके ऊपर किसी ने अनुचित टिप्पणी कर दी, मोबाइल पर आपको कोई अश्लील संदेश भेजता है या फिर किसी भी तरीके से आपको कोई अश्लील संदेश भेजता है या फिर आपको कोई बिना अनुमति के छूता भी है तो ये भी यौन उत्पीड़न का मामला होता है। अगर आपको किसी ने ऐसी कोई बात कह दी, आपके शरीर पर कोई टिप्पणी कर दी तो ये भी यौन उत्पीड़न ही है। और कई जगहों पर ये देखा जाता है कि प्रमोशन के बदले गलत प्रस्ताव दिए जाते हैं, प्रमोशन के बदले गलत फेवर मांगे जाते हैं तो ये भी यौन उत्पीड़न का ही मामला है। और आप बहुत विश्वास के साथ बिना डरे शी बॉक्स पर इन बातों के कंप्लेन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डरा रहा है, आपके ऊपर कोई दबाव बना रहा है किसी चीज़ के लिए तो भी आप शी बॉक्स पे कंप्लेन कर सकते हैं। अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है आपके साथ तो ध्यान रखिए कि ये मजाक नहीं है, ये अपराध है। अगर कोई मजाक मजाक में भी आपसे कुछ अश्लील बातें कर रहा है या कोई ऐसी टिप्पणी कर रहा है, अगर उसे आपको असहज महसूस हो रहा है तो उसे कहिए, रोकिए कि मुझे बुरा लग रहा है। और अगर इसके बाद भी वो रुकता नहीं है और अपनी हरकतों को जारी रखता है तो आप कंप्लेन करने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। और दोस्तों, जब तक हमारी नारी बोलेंगी नहीं ना तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी। और जब नारी बोलती है तो सबसे ज़रूरी होता है कि हम नारी ही उनका साथ दें।
डटकर उनका साथ दे, तभी अन्याय खत्म होगा। क्योंकि आज लगभग हर जगह पर जहां भी महिलाएं काम कर रही है, वहां कोई ना कोई एक ऐसा इंसान जरूर होता है जिसके इरादे गलत होते हैं, जिसकी सोच गलत होती है। और कई बार ऐसे लोग मजाक मजाक में ऐसी बातें कह जाते हैं जो आपको बिल्कुल असहज कर देता है और

0: कुछ पल के लिए नहीं, बल्कि वो बातें बहुत लंबे समय तक हमारे मन में रह जाती है और हम उस बारे में सोचते रहते हैं और खुद को समझाते रहते हैं कि मजाक ही तो था। जी नहीं, ये मजाक नहीं था। अगर आपको कोई बात असहज कर रही है तो आप साफ साफ कहिए कि मुझे ये बात नहीं पसंद है। अगर सामने वाला समझदार है और वो उसने जानबूझकर आपके साथ वो मजाक नहीं किया है तो वो समझ जाएगा कि हाँ इससे नहीं पसंद है तो आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन अगर उसने जानबूझकर किया है और आपको असहज महसूस कराने के लिए ही किया है तो वो नहीं रुकेगा और वो सिलसिला दोहराएगा, तो फिर आपको उसे रोकना होगा, आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकती हैं। अच्छा, जो भी हमारी महिला मित्र सुन रही हैं या फिर जो पुरुष भी सुन रहे हैं, क्या आपके कार्यस्थल पर कोई इंटरनल कमिटी है जहां पर ऐसे परेशानियों का समाधान किया जाता है? क्या आप जिस संस्था में काम करते हैं वहां पर पोष की यानी कि POSH की ट्रेनिंग होती है? इस ट्रेनिंग में ये समझाया जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, यौन उत्पीड़न क्या है और क्या क्या व्यवहार अनुचित माना जाता है, मजाक और उत्पीड़न में क्या फर्क होता है, क्योंकि कई बार लोग मजाक और उत्पीड़न में फर्क भूल जाते हैं और कई बार लोग जानबूझकर ही ऐसी हरकतें करते हैं और उसे मजाक का नाम दे देते हैं। शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं ये भी पोष की ट्रेनिंग में बताया जाता है, और IC की भूमिका क्या है यानी कि इंटरनल कमिटी की भूमिका क्या है ये भी आपको पोष ट्रेनिंग में बताया जाता है। और महिलाओं के बारे में तो हमने बात कर ली, उनके लिए शी बॉक्स है और महिलाएं खुद भी उनके लिए हैं, लेकिन पुरुषों का साथ भी बहुत जरूरी होता है। पुरुषों के लिए बस एक छोटा सा संदेश ये है कि ये जो मुद्दा है ना, ये सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं है। सम्मान देना दोस्तों हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर आप दूसरी महिला को सम्मान देंगे तो आपके घर के जो लड़के हैं ना वो भी यही सीखेंगे कि महिलाओं को कैसे सम्मान देना है। कहीं ना कहीं आप एक बेहतर समाज बनाने के लिए आप अपनी तरफ से एक छोटी सी कदम उठाते हैं तो आपके घर की लड़कियां भी सुरक्षित रहती है। तो दोस्तों ये सिर्फ महिलाओं की नहीं पुरुषों की भी जिम्मेदारी है कि अगर आपके सामने कोई दूसरा पुरुष ऐसी हरकतें कर रहा है जो कि उचित नहीं है तो आप उसे रोकिए। पता है आपके ऐसा करने से जिस महिला के साथ ये हो रहा है उसके मन में आपके लिए सम्मान तो बढ़ेगा ही, इसके साथ ही वो और भी ज्यादा सशक्त महसूस करेंगी, उनके अंदर एक विश्वास आएगा कि कोई है जो उनका साथ देने के लिए है, एक समाज है जो बेहतर है। उन्हें ये विश्वास होगा कि समाज में आज भी कुछ बेहतर लोग मौजूद हैं। दोस्तों तो जो जागरूक पुरुष हैं जो एक बेहतर समाज बनाना चाहते हैं वो ज़रूर अपने आसपास गलत होते हुए देखते होंगे तो रोकते होंगे। और दोस्तों शी बॉक्स सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, ये एक सुरक्षा कवच है और ये एक कदम है महिलाओं की गरिमा और सम्मान को बचाने के लिए। दोस्तों अगर आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ कार्यस्थल पर उत्पीड़न होता है तो चुप मत रहिए, शिकायत कीजिए, क्योंकि लेडीज फर्स्ट का मतलब ही है महिलाओं की सुरक्षा सबसे पहले, सम्मान पहले और अधिकार बराबर की। तो दोस्तों इन्हीं कुछ बातों के साथ मुझे यानी कि आपकी होस्ट आपके दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। उम्मीद है कि आप चुप नहीं रहेंगी अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो, और जो पुरुष भी सुन रहे हैं वो भी ये समझेंगे कि अगर आप एक बेहतर समाज बनाना चाहते हैं अपने आप के लिए, अपने घर की औरतों के लिए, तो फिर आपको भी आवाज़ उठाना ही पड़ेगा। आवाज़ उठाइए क्योंकि आपकी आवाज़ ही आपकी ताकत है। जाने से पहले खास बात की अपना और अपने अपनों का रखें खास ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट।
1: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
2: कब से?
1: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
2: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुड़बक।
1: खांसी?
2: हाँ।
1: इसको तो एक आध महीना हो गया।
2: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
1: डॉक्टर, खांसी तो है।
2: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो TB हो सकता है।
1: TB?
2: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
1: ठीक है।
2: TB किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। TB हारेगा देश जीतेगा।
3: सुनो सुनो सुनो सभी एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार।

0: अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
1: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
0: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज उन्नत कृषि में हम बात करने वाले हैं प्याज के बारे में, जो कि काफी महत्वपूर्ण जगह रखता है हमारे किचन में, और ऐसे में बाजार में इसकी मांग भी काफी ज्यादा होती है। तो किसान भाई बहनों को खरी प्याज की खेती से मुनाफा भी अच्छा होता है, लेकिन अगर कुछ गलती हो जाए, कीटों का प्रकोप हो जाए, तो काफी हद तक मुनाफा कम हो सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप वैज्ञानिक तरीके से खरीफ प्याज की खेती करें, और आज इस बारे में हमें विस्तार से बताने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संगीता श्री। आप हैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, आप हैं चेयरमैन सब्जी विज्ञान विभाग के। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
5: धन्यवाद उमा। प्याज एक महत्वपूर्ण कंद वाली फसल है, इसका महत्व स्थानीय खपत के साथ साथ निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जित करने के कारण भी है। भारतीय आहार में प्याज का बहुत अधिक उपयोग होता है। किसान प्याज की खेती वैज्ञानिक तरीके से कर अच्छी उपज ले सकते हैं। प्याज की खेती मुख्यतया रबी मौसम में की जाती है, लेकिन प्याज का भंडारण अक्टूबर माह के बाद तक करना संभव नहीं होता है, क्योंकि कंद अंकुरित हो जाते हैं। इस अवधि यानी कि अक्टूबर से अप्रैल में प्याज की उपलब्धता कम होने तथा परिवहन खर्चे के कारण दाम बढ़ जाते हैं, परंतु प्रयोगों से सिद्ध हुआ है कि खरीफ में भी प्याज का अच्छा उत्पादन किया जा सकता है और इससे प्याज को सालों भर उपलब्धता बनी रहेगी।
4: तो मैम अगर हम खरीफ प्याज के लिए भूमि का चयन करें और खेती की तैयारी करें, तो किस तरीके से ये सारी चीजें करनी होती है?
5: प्याज की खेती हर प्रकार की भूमि में की जाती है, जिसमें जीवाश्म की भरपूर मात्रा हो व जल निकास का अच्छा प्रबंध हो, आसानी से की जा सकती है, परंतु दोमट तथा बलुई दोमट मिट्टी उत्तम होती है। खरीफ प्याज की खेती ऊंची भूमि या उठी हुई क्यारियों पर करना लाभदायक होता है। खरीफ में खेती हेतु खेत चयन में सावधानी रखनी पड़ती है। भूमि जल निकास की सुविधा हो।
4: तो मैम खरी प्याज की खेती के लिए किस प्रकार की भूमि होनी चाहिए और किस प्रकार से हमें खेत की तैयारी करनी चाहिए?
5: प्याज की खेती हर प्रकार की भूमि जिसमें जीवाश्म की भरपूर मात्रा हो व जल निकास का अच्छा प्रबंध हो, आसानी से किया जा सकता है, परंतु दोमट तथा बलुई दोमट मिट्टी उत्तम होती है। खरीफ प्याज की खेती ऊंची भूमि या उठी हुई क्यारियों पर करना लाभदायक होता है। खरीफ में खेती हेतु खेत चयन में सावधानी रखें कि चयनित भूमि में जल निकास की सुविधा हो एवं वर्षा का पानी खेत में जमा ना होने पाए। प्याज की खेती 5.5 से 6.5 pH मान वाली भूमि में सर्वोत्तम होती है। भूमि को ग्रीष्म ऋतु में गहरी जुताई करने के बाद रोपाई करने के लिए 2-3 बार कल्टीवेटर चलाकर भुरभुरा बना लेना चाहिए।
4: और अगर मैम हम बात करें किस्मों की, तो किस प्रकार का किस्म होना चाहिए और पौध तैयार करने का उचित समय क्या होता है? साथ ही नर्सरी कैसे तैयार करना चाहिए खरीफ प्याज के लिए?
5: खरीफ में बोने के लिए जो रिकमेंडेड वैरायटी है वो है एग्रीफाउंड डार्क रेड, N53, अर्का कल्याण, अर्का प्रगति, बसवंत 780 इत्यादि। एग्रीफाउंड डार्क रेड रोपाई के 95 से 110 दिनों पश्चात तक तैयार होती है और इसकी औसतन उत्पादन 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। खरीफ प्याज हेतु नर्सरी में पौध तैयार करने के लिए बुआई 15 से 30 जून तक करना अति आवश्यक

0: होता है। इसके बाद बुआई करने पर कंद के उत्पादन में फर्क पड़ता है। बुआई के लगभग 1.5 से 2 महीने बाद रोपाई कर देना चाहिए। अधिक उत्पादन लेने हेतु सदैव पौध तैयार करके रोपण द्वारा ही खेती करनी चाहिए। नर्सरी हेतु उपजाऊ उपयुक्त जल निकास एवं सिंचाई की सुविधा युक्त भूमि का चयन करना चाहिए। प्याज का 6 से 8 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त रहता है। 1 हेक्टेयर की फसल लेने हेतु 500 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल यानी कि 1.25 मीटर चौड़ी तथा 8 मीटर लंबी क्यारियां पर्याप्त होती है। बीज को थीरम अथवा बेवेस्टिन दवा की 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से उपचारित करके बोना चाहिए। 10 से 15 दिनों के अंतराल पर 0.2% कप्तान या 0.2% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नामक रसायन के घोल से नर्सरी बेड पर छिड़काव करना चाहिए। सामान्यतः 1.5 से 2 माह में पौधा तैयार हो जाती है। खरीफ प्याज उत्पादन हेतु सेट से तैयार करना उत्तम होता है। सेट तैयार करने के लिए बीज को नर्सरी क्यारियों में 15 फरवरी से 1 मार्च की अवधि में बीजा जाता है। इसके बाद पौधों की नर्सरी में ही छोटी छोटी गांठें तैयार हो जाती है। खरीफ प्याज की पैदावार करने के लिए 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गांठों की आवश्यकता होती है। गांठों का साइज 1.5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक का होना चाहिए। अच्छी प्रकार से खेत में प्याज की रोपाई पंक्तियों में 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर करना चाहिए। पौध से पौध की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखना अच्छा होता है।
1: जी मैम, ये तो पौध की दूरी की बात होगी। अगर अब हम खाद उर्वरक के बारे में बात करें तो किस प्रकार इनका प्रबंधन किया जा सकता है?
0: सबसे पहले भूमि की तैयारी के समय 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर सड़ा हुआ गोबर खाद अच्छी तरह मिट्टी में मिला देना चाहिए। उर्वरक की मात्रा का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर करना चाहिए। खरीफ प्याज की अधिक पैदावार लेने हेतु नाइट्रोजन 120 किलोग्राम, स्फूर 80 किलोग्राम एवं पोटाश 100 किलोग्राम तथा सल्फर 20 से 25 किलोग्राम की आवश्यकता होती है। नत्रजन की 1/3 तथा स्फूर, पोटाश और सल्फर की पूरी मात्रा रोपाई के पहले खेत की आखिरी जुताई के समय डालें। बची हुई यूरिया की मात्रा खेत में 2 बार में डालें और इसके उपरांत तुरंत सिंचाई कर दें। इसके अतिरिक्त प्याज को सूक्ष्म तत्व जैसे मैंगनीज, तांबा, जिंक, मॉलिब्डेनम या बोरॉन की भी उपयुक्त मात्रा की आवश्यकता होती है। मृदा परीक्षण के में इन तत्वों की मात्रा कम होने पर प्रयोग करना चाहिए।
1: मैम, जल प्रबंधन कैसे करें और खरपतवार नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं?
0: खरीफ में प्याज की खेतों में जल निकास की उचित व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है। साधारणतः खरीफ में सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी 2 बारिश के मध्य ज्यादा अंतराल होने पर खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए सिंचाई करनी चाहिए। कंद विकास के समय फसल में पानी की कमी होने से उत्पादन अधिक प्रभावित होता है, अतः कंद विकास की अवस्था में सिंचाई की व्यवस्था करनी आवश्यक होती है। अच्छे प्याज उत्पादन हेतु खरपतवार नियंत्रण महत्वपूर्ण पहलू है। खरीफ मौसम में खरपतवार अधिक होते हैं, अतः नियमित निराई गुड़ाई कर खेतों के खरपतवार को नियंत्रित रखना चाहिए। रासायनिक निंदा नियंत्रण हेतु पेंडामिथिलीन 30% एसी का 3.5 से 4 मिलीमीटर प्रति लीटर का अनुप्रयोग एवं इसके बाद रोपाई के 40 से 60 दिनों पश्चात हाथ से 1 बार निराई गुड़ाई करने से प्रभावी खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है।
1: रोग और कीटों से बचाव के लिए मैम किसान भाई बहन क्या कर सकते हैं?
0: प्याज में जो मुख्य रूप से रोग लगते हैं वो है आद्र गलन, जो कि नर्सरी में ज्यादा दिखते हैं, और बैगनी पर्ण धब्बा, और कीटों में प्रमुख है थ्रिप्स। आद्र गलन बीमारी मुख्य रूप से पौधशाला में होती है। इस रोग में पौधे का निचला हिस्सा जो कि जमीन के पास होता है कवक के संक्रमण के कारण गल जाता है और पौध गिर जाती है। इस रोग की रोकथाम के लिए उचित विधि से पौध प्रबंधन

0: आवश्यक है। सर्वप्रथम पौधशाला की क्यारियों को जमीन से 15 से 20 सेंटीमीटर ऊपर बनाना चाहिए एवं पानी के निकास की उचित व्यवस्था रखनी चाहिए। बोने के पूर्व कार्बेंडाजीम या थीरम 2.5 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीजोपचार करना चाहिए। कप्तान नामक फफूंद नाशक 2 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से बीज क्यारी को पानी के घोल से तर बतर कर देना चाहिए। जिस स्थान पर पौध क्यारी बनानी है उस भूमि को ग्रीष्म ऋतु में गहरी जुताई कर पॉलिथीन शीट से सॉइल सोलराइजेशन कर देना चाहिए। बैगनी धब्बा, इस रोग में पत्तियों एवं पुष्प वृंद पर बैगनी केंद्र वाले सफेद लंबवत धब्बे बनते हैं। खरीफ की फसल में इस बीमारी का प्रकोप ज्यादा होता है। इस रोग के लक्षण प्रकट होने पर मैनकोजेब 3 ग्राम प्रति लीटर या कार्बेंडाजीम 2 ग्राम प्रति लीटर या हेक्साकोनाजोल 1 मिलीलीटर प्रति लीटर का पानी में घोल बनाकर 12 से 15 दिनों के अंतराल में छिड़काव करना चाहिए। नतजन युक्त उर्वरक का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्याज में छिड़काव करते समय घोल में चिपकने वाले पदार्थ जैसे टीपॉल 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर स्टिकर का प्रयोग करें ताकि घोल पत्तियों पर ठीक से चिपके, क्योंकि प्याज की पत्तियां चिकनी खड़ी और गोलाई युक्त होती है। अब कीट की बात करें तो थ्रिप्स प्याज का प्रमुख रूप से हानि पहुंचाने वाला कीट है। ये कीट पत्तियों का रस चूसते हैं जिससे पत्तियों पर असंख्य सफेद निशान बन जाते हैं। इस कीट के नियंत्रण हेतु सर्वप्रथम रोपाई के पूर्व पौधों की जड़ों को 2 घंटे तक कार्बोसल्फान 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के घोल से उपचारित करना चाहिए। फसल में कीट नियंत्रण हेतु 12 से 15 दिन के अंतराल पर डाइमिथेट 1 मिलीलीटर प्रति लीटर या साइपरमेथ्रिन 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के घोल का छिड़काव करना चाहिए। कीटनाशक के सही प्रभाव हेतु चिपकने वाले पदार्थ जिसे हम स्टिकर कहते हैं जैसे कि सैंडोविट या टीपॉल 2.5 ग्राम प्रति लीटर का प्रयोग करना चाहिए।
1: जी मैम, और अगर हम प्याज की खुदाई की बात करें तो कब खुदाई करनी चाहिए और उपज कितनी होती है खरीफ प्याज की?
0: सामान्यतः जब प्याज के कंद परिपक्व हो जाते हैं तो पत्तियां पीली होकर गिरने लगती है। प्याज की फसल रोपाई के 4 से 5 माह में परिपक्व हो जाती है। इस समय सिंचाई खुदाई के 10 दिन पूर्व तक रोक देना चाहिए। पत्तियों को पैरों से या ट्रैक्टर चालित यंत्रों से तोड़ देना चाहिए जिससे प्याज की गर्दन टूट जाए। इसे फसल को गिराना कहते हैं। इस प्रक्रिया के 1 हफ्ता बाद प्याज के कंदों को खोद कर निकालना चाहिए। खोदे हुए कंदों की सूखी पत्तियों एवं जड़ों को काट कर इन्हें छायादार पेड़ या शेड में 1 हफ्ता तक सुखाया जाता है। खरीफ में उत्पादित प्याज को लंबे समय तक भंडारण नहीं किया जा सकता है। इसे तुरंत ही बाजार में खपत हेतु बेच देना चाहिए। उचित प्रबंधन से 250 से 350 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है।
1: जी मैम, मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहनों के लिए जो खरीफ प्याज की खेती करना चाहते हैं उनके लिए ये वार्ता काफी उपयोगी साबित होगी। तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप अपना और अपनी फसलों का विशेष ध्यान रख रहे होंगे। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

0: कोरोना कितनी गंभीर बीमारी है, टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों इतने जीरो?

0: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
2: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। और कृषि में आज हम किसी फल या सब्जी के बारे में या फिर किसी अन्य तरह के फसल के बारे में बात नहीं करने वाले, आज हम बात करने वाले हैं फूलों की खेती से आय के नए अवसर के बारे में। हमारे बिहार में फूलों की डिमांड है लेकिन खेती नहीं हो रही है, इसके पीछे क्या वजह है और क्या चुनौतियां हैं, इसके बारे में आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर स्वप्नील भारती। मैम आप हैं डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद।
2: मैम आपसे पहला जो सवाल है वो ये है कि फूलों की खेती आज के समय में इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो गई है?
3: ये बहुत ही अच्छा सवाल है उमा, और सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि आज के समय में क्या हो गया है कि फूलों की खेती सिर्फ एक पारंपरिक कृषि गतिविधि नहीं रह गया है। अभी क्या है कि तेज़ी से ये जो फूलों का डिमांड है हमारा वो तेज़ी से बढ़ रहा है। ये एक उभरता हुआ व्यवसाय है और ये उद्यमशीलता आधारित क्षेत्र बन चुका है। यदि हम कुछ वर्ष पहले की बात करते हैं तो फूलों का उपयोग मुख्य रूप से सिर्फ धार्मिक कार्यों या फिर पूजा पाठ या फिर घर की सजावट इन्हीं सब चीज़ों में किया जाता था, यहीं तक सीमित था हमारा फूलों का उपयोग। लेकिन अगर वर्तमान समय की हम बात करते हैं तो समाज में जो हमारा है या फिर समाज में और बाज़ार में इसकी ज़रूरतें जो हैं वो बदल रही हैं। अभी इसकी उपयोगिता जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अभी फूलों की मांग हमारी इवेंट मैनेजमेंट होते हैं, जो कंपनीज होती हैं, जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं, उसमें काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। चाहे वो हमारा शादी हो या फिर कोई भी कॉरपोरेट इवेंट्स हो या फिर कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हो, उन सब में हमें फूलों की सजावट की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। इसके साथ साथ कोई भी शादी होती है हमारे घर में या फिर कोई पूजा का समारोह हो रहा है, उस समय भी हमारा जो फूल है वो एक अनिवार्य हिस्सा है हमारे ज़िंदगी का, जीवन शैली का। इसी प्रकार होटल्स में, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स में जो कट फ्लावर्स होते हैं, जो डेंटल वाले फूल होते हैं, जो ताज़े होते हैं, उनकी उपयोग से वातावरण जो है वो आकर्षक होता है, साथ ही साथ प्रीमियम लुक देता है वो होटल्स में। तो इससे क्या है कि जो वो होटल का जो भाव है वो भी बढ़ जाता है, जो कमरे का रेंट, वो सब चीज़ें भी हम फूलों की वजह से वो सारी चीज़ें जो हैं वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं हमें। इसके अलावा हाँ, साथ ही साथ जो फूल है उसका सिर्फ हम सजावट के लिए नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, ये परफ्यूम या फिर जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ है उसमें भी इसका कच्चे माल के रूप में काफ़ी बड़े पैमाने पर इसका उपयोग हो रहा है। जैसे कि हम बात करें अगर कुछ फूलों की, गुलाब हो गया हमारा, रजनीगंधा है, जास्मिन है जिसे हमारे प्रदेश में चमेली के नाम से हम जानते हैं, तो इनका इत्र या फिर इनसे जो गुलाब जल बनाते हैं हम, जल या फिर इत्र, उसका उपयोग हम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में करने लगे हैं और इन चीज़ों को हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। एक्सपोर्ट में हम इसके साथ साथ गुलाब या फिर गुलाब हो गया, कार्नेशन हो गए, ऑर्किड हो गए, इन सब के डंठल भी हम एक्सपोर्ट मार्केट में कर रहे हैं। इसकी वजह से हमें विदेशी मुद्रा जो है वो भी अर्जित हो रही है और किसानों की जो आय है वो सिर्फ हमारा सीमित नहीं है सिर्फ हमारे यहाँ देशी मुद्रा के लिए, वो विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर रहे हैं। तो इसी वजह से किसानों की जो आय है वो भी हमारी वृद्धि हो रही है। तो

ये बढ़ती मांग को अगर देखा जाए तो किसान को जो पारंपरिक फसलें हैं हमारी उसके तुलना में अगर हम फूलों की खेती कर रहे हैं तो वो आपको अधिक लाभ दे रहा है, क्योंकि ये कम समय में आप इसकी अच्छी खेती कर सकते हैं और साल भर आप खेती कर सकते हैं। आप बार बार फूल तोड़ सकते हैं, 4-6 महीने में ही आपने कितनी बार डंठल तोड़े, कितनी बार आपने फूल तोड़े, तो इस वजह से जो है हमारा डिमांड जो है, जो मार्केट में जो उपलब्धता है फूलों की, हमेशा बरकरार रह रही है।

0: चीज़ें कि कम लागत में आप अधिक मुनाफा कैसे कमा सकती हैं, तो उसके लिए आपके पास सबसे सबसे जो प्रमुख हमारा जो फसल है, जो सबसे प्रमुख जो फूल है वो है गेंदा, जिसकी मांग जो है वो हमारी पूरे वर्ष किसान भाई बनी रहती है। चाहे वो त्यौहार हो या फिर कोई भी फंक्शन हो, सजावट हो, किसी भी चीज़ों में हमारा गेंदा जो है वो हमेशा उसकी मांग बनी रहती है। इसको लगाना भी, और सबसे है कि ये तीनों सीज़न में, जो हमारा ग्रीष्म ऋतु हो या फिर वर्षा ऋतु हो या फिर शीत ऋतु हो, ये तीनों सीज़न में हमें इसकी ज़रूरत रहती ही रहती है। तो अगर आप गेंदे की खेती कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ इसे प्राप्त हो सकता है। दूसरा जो है वो है गुलाब। गुलाब भी बहुत अत्यंत लाभदायक है, क्योंकि आपको पता है कि इससे इसका जो कट फ्लावर है वो हमारा ईस्टर में, क्रिसमस में, मदर्स डे में या फिर न्यू ईयर में, वैलेंटाइंस डे में, इन सब समय में हमारा कट फ्लावर जो है उसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ी रहती है। इसके अतिरिक्त भी पूरे साल कोई ना कोई फंक्शंस, मदर्स डे, फादर्स डे, डॉटर्स डे, ये सारी चीज़ें भी आती रहती हैं, या फिर शादियों का समारोह चल रहा है, कोई फंक्शन चल रहा है, तो उन सब में भी हमें कट फ्लावर्स की आवश्यकता पड़ती है। तो गुलाब एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है जिसका डिमांड हमको पूरे साल मिलती रहता है। गुलाब में ही आपको जो देसी गुलाब है उसकी भी खेती अगर आप कर रहे हैं तो आप उसे गुलाब जल बना सकते हैं, या फिर आप उसे एक पंखुड़ी बना सकते हैं, फिर आप उसको मिठाइयों में यूज़ कर सकते हैं, उसका फिर रोज़ शरबत बना सकते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छा लाभ देगा ये फसल भी। एक बार आप इस फसल को लगाएंगे और आपको 7 वर्षों तक इसे फ़ायदा मिल सकता है। तीसरी जो फसल है किसान भाई वो है ग्लैडियोलस की। ग्लैडियोलस साल में एक बार आप लगा सकते हैं, सितंबर माह से हम लगाना उसको शुरू करते हैं, लेकिन आप 6 से 8 महीनों तक इसके स्पाइक को काट के बेच करके आप अच्छा आय अर्जित कर सकते हैं। फिर आपका आता है रजनीगंधा। रजनीगंधा भी एक बहुत प्रमुख फसल है और इसकी खेती बहुत ही आसान होती है। इसे आपने एक बार लगाने के बाद में आप 3 वर्षों तक इसमें फूल ले सकते हैं, जिसमें आप कट के फ्लावर के रूप में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको लूज में यानी खुले यानी ढीले फूलों में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि हमारा बहुत माला बनता है शादियों में, जो हमारे वरमाले होते हैं वो भी होता है, वो आप बना करके इसको बेच सकते हैं, या फिर भगवान को अर्पित करने के लिए भी फूल हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। ये है। उसके अतिरिक्त रजनीगंधा और ग्लैडियोलस में 2 प्रमुख चीज़ें हैं, जो कि है कौर्म और इसका कंद। उसे भी आप बेच करके आप अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। फिर आता है एक बहुत प्रमुख फसल, एक ऑर्किड है, जरबेरा है। इन दोनों की खेती हम पॉली हाउस में करते हैं ताकि पॉली हाउस में करके और फिर इसका जो क्वालिटी ऑफ द फ्लावर होता है, जो फूलों की गुणवत्ता होती है, वो पॉली हाउस में बहुत अच्छी रहती है। तो इसी वजह से हम इनकी खेती पॉली हाउस में करते हैं और फिर हम इसे बाज़ार में बेचते हैं, जो कि सजावट के रूप में काफ़ी काम आता है। और एक सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहूँगी कि ऑर्किड एक ऐसा फूल है जिसकी जो वास लाइफ, यानी जो आप उसको रखते हैं या फिर उसको आप कहीं सजावट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो आप कम से कम वो 10 से 15 दिनों तक वो फूल बहुत फ्रेश रहता है। तो इसलिए इसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, अभी भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इन सब फूलों की खेती आप करके बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं।
1: तो मैम, क्या छोटे और सीमांत किसान भी फूलों की खेती से अच्छा लाभ कमा सकते हैं?
0: हाँ जी माँ जी, बिल्कुल। हमारे किसान भाई, आप किसी भी कोई भी सीमांत हो या फिर कोई भी छोटे किसान हो, कितनी भी भूमि आपके पास हो, आप उसमें खेती करके आराम से अच्छा आय अर्जित कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास, मान लीजिए किसान भाइयों के पास, हमारे प्रदेश में बहुत बड़े बड़े पैमाने पर भूमि नहीं होती है, लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ 1 से 2 बीघा भी ज़मीन है, उसमें भी आप गेंदा या रजनीगंधा, जो मैंने आपको बताया, अगर उन फसलों की आप खेती करते हैं, तो जो आप पारंपरिक खेती जो आप कर रहे हैं, दलहन का, तिलहन का, गेहूं, ये सब चीज़ों का, उसकी तुलना में हमारे किसान भाई आप 2 से 3 गुना ज़्यादा मुनाफा अर्जित कर सकते हैं। क्योंकि इसका मुख्य कारण, सबसे ज़रूरी जो कारण है वो ये है कि इन फूलों की अगर हम तुलना करें किसी भी प्रकार की फसलों से, तो इनका जो डिमांड है, इनकी जो बाज़ार में मांग है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इसका मूल्य बहुत बेहतर होता है। और अगर हम किसी सीज़न से अतिरिक्त इसको हम उगा पा रहे हैं, तो इसको आपको बहुत अच्छा भाव आपको बाज़ार में मिलता है। साथ ही साथ इसकी तुड़ाई, कोई फसल जब हमारा होता है, जैसे दलहन या तिलहन, उसकी तुड़ाई हम एक ही बार कर पाते हैं, किंतु इन फूलों की खेती में क्या है, आप जितना उनकी तुड़ाई करेंगे आपको उतनी फूल आपको प्राप्त होती।

0: जाते हैं। तो इनकी तुड़ाई आप बार बार कर सकते हैं, बहुत बार कर सकते हैं, 3 से 4 कटाई तो आप कर ही लेंगे। तो इसकी वजह से आपको नियमित आय भी मिलते रहता है, आपको आय सिर्फ एक बार नहीं डिपेंड होना पड़ता है, आपको हमेशा मिलते रहेगा। इसके अलावा हम पॉली हाउस या फिर नेट हाउस के उपयोग से भी किसान हमारे जो हैं वो नियंत्रित वातावरण में, जो कि एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है, उसमें आप उच्च गुणवत्ता वाले फूल बहुत अच्छे से उगा सकते हैं। इससे मौसम जो है वो निर्भर नहीं, मौसम पे कम निर्भर करेगा हमारा फूल का जो है, और उससे आप ऑफ सीज़न जब हम उसको उगाते हैं तो आपको कीमत बहुत अच्छी मिलती है मार्केट में।
1: तो मैम, फूलों की खेती शुरू करने के लिए किसानों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: हाँ जी उमा, ये ना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इनमें बहुत सारी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका विशेष तौर पर हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले है कि मिट्टी और जलवायु, क्योंकि मिट्टी और जलवायु का अगर वो सही चयन कर रहे हैं तभी हमारे जो कोई भी फूल है या फिर कोई भी फूलों की फसल है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी उस ज़मीन में। क्योंकि क्या है कि हर फूलों का जो है, हर फूल हर फसल की अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं। किसी को सैंडी मिट्टी, सैंडी लोम जो बोलते हैं हम, उस वो मिट्टी चाहिए, किसी को क्ले मिट्टी चाहिए होता है। लेकिन हमारा जो प्रदेश है उसमें हमारी जो मिट्टी है, जो गंगा के किनारे की मिट्टी होती है ना, बहुत अच्छी मानी जाती है। तो इसमें अगर हम फूलों की खेती किसान भाई करते हैं तो काफ़ी अच्छे गुणवत्ता वाले आपको फूल प्राप्त होंगे। उससे दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि आपके जो बीज होंगे वो हमेशा उच्च गुणवत्ता वाले ही बीज होने चाहिए, या फिर बीज नहीं तो अगर आप पौधे खरीद कर ला रहे हैं मार्केट से तो वो जो पौधा भी है उसका, वो पौधा काफ़ी स्वस्थ होना चाहिए, उसमें कोई बीमारी नहीं लगी होनी चाहिए। तो जब भी हम बीज या फिर पौधा लेकर आते हैं तो एक प्रिकॉशनरी के तौर पर हम किसान भाई क्या करेंगे कि उसको ट्रीटमेंट कर लेंगे कोई भी फफूंद नाशक। वैसे तो जो हम बीज खरीदते हैं उसमें लिखा रहता है कि वो बैवेस्टीन या फिर थायरम के साथ में वो ट्रीट किया हुआ है, लेकिन फिर भी हमको एक सेफ साइड पे रहना है तो हम पौधों को, उसके जड़ को या फिर बीज जो है उसको हम, या फिर कंद होता है हमारा, कंद बल्ब कुछ भी जो भी हमारी जो सीड प्लांटिंग मटेरियल है उनको हम कोई भी फफूंद नाशक के साथ में आधे घंटे तक उसमें घोल बनाकर रखते हैं। उसके बाद उसको छाया में सुखाने के बाद तभी आप इसे खेत में लगाएं। तो ये बहुत अच्छा आपका प्रिकॉशनरी मेजर हो जाएगा, जैसे कि जो भी मिट्टी से जनित आपकी बीमारी होगी वो पौधों में आपकी नहीं लगती हैं। साथ ही आपको सिंचाई एवं पोषण प्रबंधन का विशेष तौर पर ध्यान रखना है ताकि जो आपके पौधे हैं उनका जो विकास है, उनकी जो वृद्धि है वो संतुलित रहे और फूलों की गुणवत्ता काफ़ी अच्छी होती रहे। इसके अलावा जो आपकी एक सब बहुत ही ज़रूरी चीज़ है वो है कि बाज़ार में मांग और मूल्य, ये दोनों चीज़ों की जानकारी हमारे किसान भाइयों को होनी चाहिए। उसी के तहत हमारी कौन सी चीज़ किस एरिया में, हमारी कौन सी डिमांड सबसे ज़्यादा है, उसी के बेसिस पर उसी पर्टिकुलर फसल का खेती चयन करना चाहिए करने के लिए। उसके अलावा जो है सबसे जो लास्ट में अंत में जो सबसे ज़रूरी बात है वो है कटाई के बाद जो प्रबंधन, वो कैसे करेंगे, उसमें पैकिंग आपको करनी होती है। कटाई के बाद हम कोई भी फूल को तुरंत पानी में डालते हैं, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप उसे दूर मार्केट में भेज रहे हैं तो आपके पास परिवहन, उसके आपके पास कोई गाड़ी होनी चाहिए उसे दूर मार्केट में भेजने के लिए। उसके बाद तुड़ाई का समय आपको बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कब तुड़ाई करें। अगर आपको बहुत दूर मार्केट में भेजना है तो आप कोशिश करें कि रात में ही, शाम में ढलते ही तुड़ाई कर ले ताकि रातों रात आपका फूल चला जाए मार्केट में और सुबह होते ही आपकी फूल बिक्री के लिए शुरू हो जाए। अगर आप लोकल मार्केट में उसकी बिक्री कर रहे हैं तो उसके लिए आपको देखना है कि आप अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे से 4-5 बजे तक आप अपनी तुड़ाई कंप्लीट कर लें और उसके बाद आप उसे स्थानीय मार्केट में भेज करके आप अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं।
1: तो मैम, फूलों की खेती से जुड़े जो नए अवसर हैं वो कौन कौन से हैं?
0: हाँ, ये जो एक किसान भाई हमारा जो एक सेक्टर है वो थोड़ा पीछे रह गया है, जिसके बारे में जानकारी जो है वो अब बनी है। सिर्फ फूलों की खेती जो है वो सिर्फ फूलों तक ही अब सीमित नहीं रह गया है। हमारा जो फ्लोरिकल्चर का जो क्षेत्र है वो अब आय के कई नए, आय के यानी कि जो हमारा कमाने का बहुत अच्छा नवसर जो है वो काफ़ी ज़्यादा वो तेज़ी से पैदा कर रहा है। और हमारे किसान और युवाओं इस चीज़ की थोड़ी उन्हें कम जानकारी होती है, बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो पहला है हमारा कट फ्लावर का इंडस्ट्री। कट फ्लावर यानी कि हमारा डंठल वाली जो फूल होते हैं उस फूलों की आवश्यकता

0: शक्ता महानगरों में जो हमारे बड़े बड़े शहर हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा ही रहती हैं, काफ़ी ज़्यादा मांग है उनकी। अब सब महानगरों के अलावा भी अब छोटे छोटे शहरों में भी धीरे धीरे उनकी मांग बढ़ने लगी है, क्योंकि अब लोगों का रुझान जो है वो काफ़ी ज़्यादा फूलों की तरफ आकर्षण हो रहा है। किसी भी फंक्शन में कहीं भी, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, शादी हो, गाड़ियों को ही सजावट करना हो क्योंकि शादियों में, तो उस समय अब क्या है कि लोगों को देखने के लिए, लोगों की आँखों को वो अच्छा लगना चाहिए, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा हमारे कट फूलों की आवश्यकता जो है वो बढ़ते जा रही है। दूसरा जो हमारा लूज़ फ्लावर होता है, किसान भाई, लूज़ फ्लावर मतलब कि जो खुले फूल होते हैं, जैसे कि हमारी ये गेंदे की, तो गेंदे का माला बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बिक्री होता है, तो गेंदे का माला या फिर गुलाब के माले शादियों के लिए भगवान पे चढ़ाने के लिए, या फिर किसी भी त्यौहार, किसी भी समाव, किसी भी पूजे वाले कार्यक्रम में सजावट के लिए हमारा इन फूलों, खुले फूलों का काफ़ी डिमांड है। तो ये दो चीज़ों की तो सब लोगों को आइडिया है कि हाँ, कट फ्लावर भी होता है, क्लूज भी होता है, पर तीसरा हमारा आता है वैल्यू एडिशन, जो हमारा सबसे ज़्यादा बहुत ही इसमें ये सबसे अच्छा आय का स्रोत है, और विशेष करके हमारी महिलाओं के लिए। हमारी महिलाएं जब खेत से फूल कट जाते हैं उसके बाद, उसमें वैल्यू एडिशन का यही मतलब हो गया, जब हमने तुराई कर लिया उसके बाद हम उस फूल में क्या कर सकते हैं, उसके बाद आप उनसे गुलाब है तो गुलाब जल, इत्र, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स में आप उसे भेज सकते हैं। उसके अलावा आप उसको चाहे तो ड्राई करके ड्राई फ्लावर के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। अभी फ्लोरल ज्वेलरी का बहुत कॉन्सेप्ट चल रहा है, आप देख सकते होंगे कि मेहंदी में, शादियों में मेहंदी में, या फिर संगीत में, या फिर हल्दियों में, हल्दी के कार्यक्रम में आजकल फ्लोरल ज्वेलरी का बहुत कॉन्सेप्ट है। तो ये सारी चीज़ों, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना करके भी अच्छी आय अर्जित की जा सकती हैं। फिर चौथा जो हमारा सेक्टर है, लैंडस्केपिंग और गार्डनिंग, ये बहुत अच्छा क्षेत्र है, क्योंकि इसमें क्या है कि अभी पार्क हो गया, या फिर होटल हो गया, या फिर बड़े बड़े इंडस्ट्री भी होते हैं, या फिर सरकारी या फिर बहुत सारी जैसे हमारी परियोजनाएं हैं CPWD की, NTPC की, या फिर हमारे यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, बहुत सारे स्कूल्स होते हैं, उन सबको अब सजावट चाहिए, सबको ग्रीनरी चाहिए। तो ये ग्रीनरी कैसे आएगा? ये ग्रीनरी आएगा आपका लैंडस्केपिंग करने से। तो लैंडस्केपिंग भी एक बहुत अच्छा विकल्प है जिसमें हम सजावट करते हैं, और ये बहुत ही अच्छा स्रोत है इनकम का। इसमें आप छोटे से एरिया को भी अगर आप सजावट करते हैं, उसका लॉन बिछाते हैं, या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा आप इनकम कमा सकते हैं। फिर एक आता है ऑनलाइन डिलीवरी का प्लेटफॉर्म, जिसके माध्यम से आजकल आप देख रहे होंगे ऑनलाइन डिलीवरी में फर्न्स एंड पेटल्स बोल करके भी एक है, जो कि पौधों को भेजता है, लोग गिफ्ट ऑर्डर करते हैं, लोग पौधे, अभी फ्लिपकार्ट में हो गया, सब जगह अभी जितने भी हमारे ऑनलाइन डिलीवरीज है, तो आप चाहें तो आप अपना एक अलग से भी, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो अलग से भी पौधे सप्लाई कर रहे हैं, सीड सप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं, तो एक ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म भी हमारा बहुत अच्छा आय का स्रोत है। और सबसे लास्ट में जो है वो है कि एक्सपोर्ट मार्केट, जो भी चीज़ हम कर रहे हैं अगर हमारी अच्छी क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता आ रही है, तो हम एक्सपोर्ट करके और हम उससे विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर सकते हैं।
1: तो मैम, मतलब ये बहुत ही एक अच्छा अवसर है जिनके पास ख़ास तौर से छोटे ज़मीन है, छोटी जगह है, वो फूलों की खेती से बहुत अच्छी आय कमा सकते हैं।
0: जी बिल्कुल, जिनके पास भी छोटा जगह हो, कम भूमि हो, आप छोटे मोटे फूल, आपको बहुत बड़े पैमाने पे बड़ी चीज़ें नहीं लेनी है। हमारा गेंदा हो गया, आप गेंदे से शुरुआत कर सकते हैं, आप रजनीगंधा से शुरुआत कर सकते हैं। आप देख लीजिए कि स्थानीय मार्केट में सबसे ज़्यादा ज़रूरत किन चीज़ों की हो रही है, तो आप ऐसे छोटे छोटे कम कम, जिसके जिसमें लागत भी आपकी ज़्यादा ना लगे, वैसे फूल लेकर के आप ये व्यवसाय जो है वो शुरुआत कर सकते हैं बहुत अच्छे से।
1: तो किसान भाई बहनों, आज की हमारी ये वार्ता आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी, मुझे यकीन है, क्योंकि हमारे बिहार में फूलों की डिमांड है, बस ज़रूरत है कि आप अच्छी तरीके से डिमांड को समझें, बाजार को समझें और खेती शुरू करें। मैम बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी बातें बताई।
0: थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप लोगों का भी।
1: तो दोस्तों, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।
3: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
4: कब से?
3: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
4: अरे भाई साहब।

0: क्रिकेट की नहीं, हम आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुड़बक।
1: खांसी? हाँ। इसको तो एक आध महीना हो गया।
0: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही कुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
1: डॉक्टर, खांसी तो है।
0: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
0: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
1: ठीक है।
0: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात। आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
3: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
2: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का। तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
4: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं, खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है। तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM, CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल, चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है। देखिए, क्योंकि एचपीवी संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है।

है और ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में माँ बनने पर असर पड़ेगा। बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका माँ बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है, बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है। बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा। जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा, इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों याद रखिए, अफवाह से नहीं, सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही, लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
0: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। धमधा ग्राम सुखरी कला छत्तीसगढ़ से अमित जंगेल, शकुन जंगेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंगेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: धरती केवल हमारी नहीं आने वाली पीढ़ियों की भी अमानत है। आइए इसे स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित रखने का संकल्प लें।
0: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके प्यारे प्यारे संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गाँव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में कहानी न्याय की कुर्सी एवं लालच नाटक के रूप में सुनी एवं पसंद आई। कहानी शिक्षाप्रद लगी और सुखद संदेश देने में भी कामयाब हुई। ये दोनों कहानी सुनवाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: अगला संदेश हमें मिला है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का।
2: गोकाबिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मूरज जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल के साथ इनके बच्चे।
0: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी लिखते हैं,
0: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में ये भी जानिए श्रृंखला में पारंपरिक मेला उत्सव पर जो जानकारी सुनाई जा रही है बेहद पसंद आ रही है। जॉनबिल मेला और हॉर्नबिल मेला पर जानकारी बहुत ही अच्छी लगी। आगे आपने लिखा है,
2: आप जब मेला उत्सव पर कार्यक्रम प्रसारित कर रहे होते हैं तो हम इतने मग्न हो जाते हैं, सचमुच हम मेले में ही घूम रहे हों और मेले का आनंद ले रहे हों। मेला उत्सव पर कार्यक्रम सुनवाने के लिए सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी एवं समस्त उमंग टीम का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
0: आप सभी श्रोताओं को उमंग कार्यक्रम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। श्रृंखला ये भी जानिए श्रृंखला में आप सबका एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस के इस विशेष महीने में स्वागत है। श्रोताओं, अगले सप्ताह हम अपने देश का स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इस विशेष सप्ताह में हम चर्चा करेंगे भारत की आजादी की लड़ाई में शामिल कुछ ऐसे लोगों की जिनकी चर्चा कम होती है।
2: आंदोलन के बड़े बड़े और मुख्य नेताओं को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इस सप्ताह उमंग कार्यक्रम का प्रयास रहेगा उन लोगों को सामने लाना जो बहुत ज्यादा चर्चित नहीं रहे।
0: तो करते हैं शुरुआत और आज करते हैं बात एक महान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के बारे में। तो विमलेश जी, अब आपकी बारी।
2: जी अजीत जी, बिरसा मुंडा भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, आदिवासी जननायक और समाज सुधारक थे। उन्हें आदिवासी समाज में श्रद्धा पूर्वक धरती आबा यानी धरती का पिता कहा जाता है। आबा मुंडारी और संथाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पिता।
0: जी श्रोताओ, उन्होंने अंग्रेजी शासन और शोषण के विरुद्ध आदिवासी समाज को संगठित किया तथा सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक सुधारों का नेतृत्व किया। आइए अब लेते हैं जानकारी उनके प्रारंभिक जीवन की। उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को उलीहातू नामक गांव में हुआ था जो तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी में स्थित था और अब झारखंड राज्य में है।
2: बचपन में उनका परिवार आर्थिक कठिनाइयों से जूझता रहा। उन्होंने कुछ समय तक मिशन स्कूल में शिक्षा प्राप्त की, लेकिन बाद में अपनी संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण का संकल्प लिया। आदिवासियों की दुर्दशा देखकर उनका मन हमेशा विचलित रहता था।
0: वे चाहते थे कि उनकी दशा में सुधार हो, वे शिक्षित हों और उनका शोषण न हो।
2: जी।
0: उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया जिसमें उन्होंने आदिवासी समाज से कहा कि वे अंधविश्वास और सामाजिक बुराइयों को छोड़ें, स्वच्छता और शिक्षा को अपनाएं,
2: नशाखोरी से दूर रहें,
0: अपनी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करें
2: और एकजुट होकर अपने अधिकारों की रक्षा करें।
0: जी, तो श्रोताओं, उनकी शिक्षाओं ने आदिवासी समाज में आत्मविश्वास और जागरूकता की भावना पैदा की।
2: ये वो समय था जब अंग्रेजी शासन जमींदारों और महाजनों द्वारा आदिवासियों का शोषण कर रहा था। उनकी भूमि छीनी जा रही थी और उन पर भारी कर लगाए जा रहे थे।
0: बिरसा मुंडा ने लोगों को संगठित कर एक सामूहिक विद्रोह आयोजित किया जिसे उलगुलान कहा जाता है। उलगुलान शब्द का अर्थ है महाविद्रोह। यह आंदोलन केवल अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं था बल्कि अन्याय, शोषण और भूमि अधिकारों के लिए

0: भी था। उनका नारा था
1: अबुआ दिसुम अबुआ राज, यानी हमारा देश हमारा शासन। यही नारा प्रसिद्ध जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी सिदो और कानू द्वारा भी दिया गया था।
0: श्रोताओ, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उलगुलान आंदोलन बहुत प्रभावशाली बन गया और इसके कारण अंग्रेजी हुकूमत परेशान हो गई। अंत में अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जेल में रहते हुए 9 जून सन 1900 को रांची केंद्रीय कारागार में मात्र 25 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।
1: उनके आंदोलन का प्रभाव इतना व्यापक था कि बाद में अंग्रेजों को आदिवासियों के भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनों में परिवर्तन करना पड़ा।
0: श्रोताओ, उनकी जन्मतिथि 15 नवंबर को पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है। उनके नाम पर अनेक विश्वविद्यालय, संस्थान, संग्रहालय और हवाई अड्डे के साथ साथ कई सरकारी योजनाएं भी संचालित होती हैं।
1: बिरसा मुंडा का जीवन हमें सिखाता है कि अन्याय के विरुद्ध साहस पूर्वक खड़े होना, अपनी संस्कृति का सम्मान करना और समाज की भलाई के लिए कार्य करना ही सच्ची देशभक्ति है। वे भारतीय इतिहास के ऐसे अमर नायक हैं जिनका संघर्ष आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा।
0: जी हाँ श्रोताओ, धरती आबा बिरसा मुंडा का जीवन स्वाभिमान, संगठन और राष्ट्र प्रेम का अद्वितीय उदाहरण है। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से हमारा आज का प्रश्न है,
1: बिरसा मुंडा द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ किए गए विद्रोह का क्या नाम था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: बिरसा मुंडा द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ किए गए विद्रोह का क्या नाम था? 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपना संदेश या प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: श्रोताओ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट में दिए गए विकल्पों और निर्देशों का पालन कीजिए और मनचाही पाठ्य पुस्तक डाउनलोड कर लीजिए।
0: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ऑडियो बुक्स यानी ध्वनि पुस्तकों के रूप में सुनना चाहते हैं तो टाइप कीजिए NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको हमारी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतर उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही साथ उमंग कार्यक्रम में प्रसारित कार्यक्रम भी आप इस चैनल पर सुन सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, आइए अब चलते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर
0: और सुनते हैं कार्यक्रम जलियांवाला बाग।
1: इस कार्यक्रम में जलियांवाला बाग के बारे में जानकारी दी गई है कि किस प्रकार यहां आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाले असंख्य देश प्रेमियों को स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अपने प्राणों को न्योछावर करना पड़ा और इस भीषण जनसंहार की घटना का आंदोलन पर क्या असर पड़ा।

0: ये बात उस वक्त की है जब पहले महायुद्ध में हिंदुस्तानियों ने विदेशी सरकार की तन मन धन से सहायता की और इसके बदले में भारतीयों को मिला रॉलेट बिल।
1: रॉलेट बिल ने पुलिस को बिना वारंट के लोगों को गिरफ्तार करने, नजरबंद करने और तलाशी लेने के पूरे अधिकार दे दिए। अदालतों में पैरवी करने की मनाही कर दी गई।
0: इस कानून का सीधा सा मतलब था व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंत। 6 फरवरी 1919 को रॉलेट बिल नाम के दो बिलों को बड़ी काउंसिल में पास करने के लिए पेश किया गया। 24 फरवरी के दिन गांधी जी ने ऐलान किया कि अगर बिलों को पास कर दिया गया तो सारे देश में सत्याग्रह होगा, और 30 मार्च 1919 को रॉलेट बिल के विरोध में देशव्यापी हड़ताल की योजना बनाई गई। लेकिन इस हड़ताल की तिथि बढ़ाकर 6 अप्रैल कर दी गई, पर दिल्ली खबर न पहुंचने की वजह से 30 मार्च को ही हड़ताल हुई।
1: लेकिन इसी बीच पहला बिल मार्च के तीसरे सप्ताह में पास कर दिया गया, जो रॉलेट एक्ट कहलाया।
2: मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो।
3: हमारा पहला प्रस्ताव है कि काला कानून रॉलेट एक्ट वापस लिया जाए।
2: रॉलेट एक्ट।

पूरे देश में हड़ताल हुई। पंजाब के सभी नगरों में यह हड़ताल शांतिपूर्वक रही। 9 अप्रैल के दिन रामनवमी थी। रामनवमी के अवसर पर अमृतसर में हिंदू मुसलमानों ने जुलूस निकाला।

0: और नो।
1: ये हिंदू मुसलमानों की कौमें एक होकर तो हमारा सरदर्द बन जाएंगी। क्यों नहीं डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया जाए? इससे आवाम का जोश भी ठंडा पड़ जाएगा। Yes. Hey, you, come up.
2: इसी बीच गांधी जी भी पंजाब जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें वहां पहुंचने से पहले ही पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार कर वापस बंबई भेज दिया गया। नेताओं की गिरफ्तारी से पंजाब और ज्यादा उत्तेजित हो उठा और अमृतसर को सेना के हाथों सौंप दिया गया। सेना का सर्वे सर्वा था जनरल डायर। 11 अप्रैल को अमृतसर में जनता ने हड़ताल की और जुलूस निकाला। 12 अप्रैल को अमृतसर एक सैनिक कैंप बन गया। जनरल डायर ने हवाई जहाज से शहर का निरीक्षण किया और गली गली फौजी मार्च कराया गया।

0: बताकि
1: जनरल डायर के सामने नारे लगाने की ऐसी हिम्मत की चाहता है इन्हें गोलियों से भून डालूं। नो नो नो, मुझे इससे बेहतर मौके का इंतजार करना होगा।
2: इंतजार, जनरल डायर ने और ज्यादा इंतजार नहीं किया। 12 अप्रैल को जुलूस के नेताओं को गिरफ्तार करके उन्हें हथकड़ियां पहनाई गईं और रामबाग ले जाकर उन्हें पेड़ों से बांध दिया गया। निगरानी के लिए डायर ने गोरखों को तैनात कर दिया। दमन चक्र सख्त होता जा रहा था। अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। अमृतसर में आसपास के गांव से लोग बैसाखी का त्योहार मनाने पहुंचे थे। बैसाखी के मेले में भाग लेने आए इन लोगों ने अपना डेरा जलियांवाला बाग में जमाया हुआ था। इसी बीच जनरल डायर ने यह ऐलान कराया था कि शहर में कोई मीटिंग न की जाए, लेकिन यह ऐलान सब लोगों तक पहुंचा नहीं। जलियांवाला बाग में नेताओं की रिहाई के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया। बैसाखी मनाने आए लोगों ने जब मीटिंग की भीड़ देखी तो कौतूहलवश वे भी इसमें शामिल होने पहुंच गए। शाम 4:30 बजे के लगभग जलियांवाला बाग में 10,000 के करीब लोग जमा हो चुके थे, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। वातावरण में विरोध था, तनाव अपनी चरम सीमा पर था।
3: भाइयों और बहनों, सुनिए सुनिए, भाइयों और बहनों, माताओं और बच्चों, आज की सभा में हम कुछ जरूरी प्रस्ताव रखना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सब हमारा साथ देंगे।
4: भारत माता की
5: जय,
4: भारत माता की
5: जय,
4: भारत माता की
5: जय।
3: इन प्रस्तावों को पास करके हम इन्हें सरकार के पास भेजेंगे ताकि हमारी मांगे फौरन पूरी की जा सके।

0: पूरी करो,
1: हमारी मांगे
0: पूरी करो।
2: हमारा पहला प्रस्ताव है कि काला कानून रोलेट एक्ट वापस लिया जाए।
0: रोलेट एक्ट
3: वापस लो,
0: रोलेट एक्ट
3: वापस लो,
0: रोलेट एक्ट
3: वापस लो।
2: ये सभा 10 अप्रैल के दिन हुए गोलीकांड की निंदा करती है और शहीदों के परिवार के साथ सहानुभूति प्रकट करती है। सरकार से अनुरोध करती है कि डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को फौरन रिहा किया जाए।
1: सत्यपाल को
3: रिहा करो,
1: डॉक्टर किचलू को
3: रिहा करो,
1: सत्यपाल को
3: रिहा करो,
1: डॉक्टर किचलू को
3: रिहा करो।
4: सभा चल रही थी और उधर जनरल डायर अपने सिपाहियों के साथ जलियांवाला बाग के एकमात्र दरवाजे पर आ डटा। जलियांवाला बाग के चारों ओर दीवारें थीं और केवल एक ही दरवाजा था जिससे अंदर आया जाया जा सकता था। इसी दरवाजे पर डायर के सैनिकों ने अपनी खूनी बंदूकें तान ली।

0: लोग एकमात्र दरवाजे की ओर भागे और गोलियां उन्हें बीनती रही। कुछ लोग दीवारों पर चढ़े जिससे कि दूसरी ओर कूदा जा सके, लेकिन कोशिश बेकार रही। गोलियों की बौछारों से बचने के लिए कुछ कुएं में भी कूदे, लेकिन मौत उनका वहां भी इंतजार कर रही थी। पूरे 10 मिनट तक मौत का नंगा नाच होता रहा।
1: गोली चलाना बंद क्यों कर दिया? आई से फायर, फायर अगेन।
2: सर, सर कारतूस खत्म हो गए हैं।
1: और शट अप। ठीक, ये सबक काफी है। अब

मौत का दरिंदा जब दरवाजे से हटा, तब रतन देवी उस मौत के मैदान में अपनों को खोजती हुई पहुंची।

0: Masinleri lazzi dekarte masi.
1: Papa.
0: Masi. Masinleri lazzi
1: dekarte. Kar diya, kar diya.
2: जब कोई हिंदुस्तानी किसी अंग्रेज अफसर को मिले तो उसे सलाम करे, अगर घोड़े पर सवार हो तो हिंदुस्तानी अंग्रेज की शान में घोड़े से

0: उतर जाए। अगर हिंदुस्तानी छाता लगाए हो तो नीचे झुका ले। पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। पंजाब की खबरों के बाहर जाने पर रोक लगा दी गई।
1: और यही वजह थी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर कांग्रेस के नेताओं को कई हफ्ते बाद मिली।
0: इस खबर के मिलते ही भारतीयों के मन दुख, ग्लानि और आक्रोश से भर गए। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि का त्याग कर दिया। उन्होंने कहा कि अब वो समय आ गया है कि जब सम्मान पदक शर्म पदक लग रहे हैं। डायर की मनमानी करतूतों के कारण पूरे पंजाब में विद्रोह भड़क उठा और इसी के साथ ही अंग्रेजी हुकूमत के बढ़ते दमन चक्र की वजह से कसूर, गुजरावाला और लाहौर में भी विद्रोह की आग भड़क उठी। ये सब देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के 6 महीने बाद अक्टूबर 1919 में हंटर जांच समिति नियुक्त की, जिसको जलियांवाला बाग में हुए हत्याकांड की जांच करनी थी।
2: जनरल डार।
3: यस सर।
2: आप जब जलियांवाला बाग में पहुंचे तो आपने क्या किया?
3: मैंने गोली चलाने का हुक्म दिया।
2: क्या ये हुक्म आपने फौरन दिया?
3: यस, मैंने पहुंचते ही गोली चलाने का हुक्म दिया।
2: क्या वार्निंग नहीं दी?
3: नो, क्योंकि हमारे सुबह के ऐलान के बावजूद भी लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। उन्हें कोई भी मीटिंग करने से मना कर दिया गया था। वैसे उन्हें मेरे आने की चेतावनी तो मिल ही गई होगी।
2: फिर गोली चलाने का क्या मकसद था?
3: मेरा मकसद गोली चलाकर फीट को टिटर बिटर करना नहीं था। मैं चाहता था कि इस तरह की फायरिंग के बाद पूरे पंजाब के लोगों में कुछ ऐसा डर बैठ जाए कि दोबारा ऐसा करने की हिम्मत ही ना हो।
0: जनता को डराने धमकाने के इस शर्मनाक तरीके को हंटर जांच समिति ने ताक पर रख दिया। हंटर जांच समिति की कार्यवाही केवल इस हत्याकांड पर लीपापोती करती रही और डायर को बरी कर दिया गया।
1: लेकिन कांग्रेस ने पंजाब की घटनाओं की सही जानकारी लेने के लिए अपनी एक समिति नियुक्त की, जिसके प्रमुख सदस्य थे सर्वश्री मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, देशबंधु चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, बद्रुद्दीन तैयब जी और जयकर। इस समिति ने 3 महीने तक पंजाब की घटनाओं का अध्ययन किया। समिति ने पंजाब के प्रशासकों की घोर निंदा की, प्रमुख रूप से पंजाब के गवर्नर माइकल ओडायर और सेना के जनरल डायर की भर्त्सना की गई।
4: कांग्रेस का दिसंबर अधिवेशन सन 1919 में पहले से ही अमृतसर में होना निश्चित हुआ था और वही हुआ। इस अधिवेशन में कुछ सदस्यों ने जलियांवाला बाग के अमानवीय एवं निर्मम हत्याकांड के खिलाफ जबरदस्त आवाज उठाई।
5: हम मांग करते हैं कि जनरल डायर को अपने पद से हटा दिया जाए।
6: पंजाब के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
7: अब भारतीयों का विश्वास वायसराय कोर्ट से उठ गया है, उन्हें अब ब्रिटिश सरकार द्वारा वापस बुला लेना चाहिए।
5: आज के इस अधिवेशन में हम संकल्प लेते हैं कि जलियांवाला बाग के शहीदों की याद हम अमर करेंगे और जलियांवाला बाग को राष्ट्रीय शहीद स्मारक बनाएंगे।
4: जलियांवाला बाग हत्याकांड में लगभग 1000 शांति

0: लिए निहत्थे एवं असहाय लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस हत्याकांड ने भारतीय जनमानस को स्तब्ध कर दिया और इस तरह जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक मोड़ बन गया।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जलियांवाला बाग।

0: दीक्षा, शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: खत्म हुआ झगड़ा।
2: पहाड़ा पहाड़ा पहाड़ा, मैं नहीं सिखाता पहाड़ा।
3: माँ देखो, भैया मुझे पहाड़ा नहीं सिखा रहा।
2: मैं खेलने नहीं जाऊं, जैसे ही मैं खेलने जाऊंगा वैसे ही पहाड़े की रट लगा देगी। मैं तो जा रहा हूँ।
3: मैं फेल हो जाऊंगी, सब हंसेंगे।
2: ये तेरा रोज रोज का नाटक। अच्छा बाबा, मैं खेलने नहीं जाता। छह एकम छह,
3: एकम छह,
2: छह दुनी बारह,
3: छह दुनी बारह।
4: राहुल, खेले नहीं आ रहे?
2: अरे यार, तुम लोग जाओ, मैं नहीं आ सकता। छह ती अठारह,
3: छह ती अठारह,
2: छह चौक।
1: क्या ये आदर्श स्थिति है? क्या आप इसे यूं ही चलने देंगे? क्या आप बच्चों को दूसरे के हितों से अपने हितों को जोड़ना नहीं सिखाएंगे?
5: अरे मीना, तू रो क्यों रही है? और राहुल, तू खेलने नहीं गया?
2: माँ, मीना कहती है मुझे पहाड़ा सिखा।
5: तो क्या इसलिए तू खेलेगा नहीं?
2: मैं क्या करूं? क्या मीना को पहाड़ा ना सिखाऊं?
5: पहाड़ा तो जरूर सिखाओ, पर तुम्हारा खेलना भी तो जरूरी है।
2: ये कैसे होगा? मैं खेलूं भी, पहाड़ा भी सिखाऊं?
5: ये तो तुम दोनों जानो, लेकिन रोना धोना झगड़ा नहीं।
1: वाह, क्या बात है! लेकिन क्या बच्चे हल निकाल पाएंगे?
3: जब भी मैं पहाड़ा सिखाने को कहती हूँ, तुम खेलने चले जाते हो।
2: तू पहाड़े की बात ही तब करती है। अच्छा, अब रो मत। अच्छा बता, तू किसी और समय पहाड़ा याद नहीं कर सकती? तेरा मन शाम को खेलने को नहीं करता?
3: करता है, पर पहाड़ा।
2: तो ये नहीं हो सकता कि हम दोनों ही शाम को खेल लें?
3: फिर पहाड़ा कब?
2: देख, मैं रात को देर तक पढ़ता हूँ, तू जल्दी सो जाती है, तो तू जल्दी उठा भी कर, सुबह एक दो घंटे मुझसे पढ़ लिया कर।
3: तब तू कहेगा कि मैं सो रहा हूँ।
2: नहीं कहूँगा ना, मैं भी सुबह जल्दी उठा करूँगा और तुझे पहाड़ा सिखाऊंगा।
3: पक्का?
2: पक्का।
3: फिर गुस्सा तो नहीं करेगा?
2: क्यों करूँगा, तू तो मेरी छोटी बहन है।
3: हाँ सच? तो फिर मैं खेलने जाऊँ?
2: चप्पल तो पहन लो, मैं भी आ रहा हूँ।
1: कमाल है भाई, ठीक ही है, दूसरे की जरूरत को समझे बिना अपनी जरूरतें पूरी करना कहां तक ठीक है? क्या उमा देवी की तरह आप अपने बच्चों को अवसर देते हैं कि वे विवाद का ऐसा हल स्वयं निकालें जिसमें दोनों पक्षों का फायदा हो?
6: तो श्रोताओं, इसी कार्यक्रम के साथ अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता, जगबंधु
7: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
6: नमस्कार, नमस्कार।

0: कॉलरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
6: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
5: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
7: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
5: चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
8: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
5: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
9: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
5: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। किसान भाई बहनों, जब बारिश का मौसम होता है ये बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन कई मायनों में हमें विशेष ध्यान रखने की भी जरूरत होती है, और खास तौर से हमारे पशुओं के लिए जो बेजुबान होते हैं। और पशुओं की देखभाल इस मौसम में यानी कि बरसात के मौसम में किस तरीके से करनी चाहिए, इस बारे में हमें विस्तार से बताने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर MZ हुदासर। सर, आप हैं KVK सबौर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
10: धन्यवाद। देखिए किसान भाइयों, अभी जो बरसात का मौसम है ये काफ़ी सेंसिटिव मौसम होता है पशुओं के लिए। खास करके जो सबसे पहला हमें ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है कि हमारे जो जहाँ पर हम पशु रखते हैं उस

0: कैसे करना चाहिए पशुओं के लिए। अगर हम खाने के प्रबंधन के बारे में बात करें तो इस दौरान, इस मौसम के दौरान पशुओं का खान पान कैसा होना चाहिए?
1: देखिए किसान भाइयों, इस मौसम में आपको पशुओं की बहुत देखभाल करनी है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि अभी के मौसम में खास करके बाढ़ भी का सीज़न आ जाता है, पानी जगह जगह जमा हो जाता है, ग्रीन फोडर्स नहीं होते हैं, तो आपको ये आदत बना लेनी होगी कि आप इस समय हे और साइलेज बनाने की विधि जरूर सीख लें पहले, और हे और साइलेज को जो है आप बना के स्टोर करके रखें, जिससे कि ग्रीन फोडर्स की कमी आपको ना हो। दूसरा, आप मिनरल मिक्सचर आप जरूर अपने पशुओं को कम से कम 50 ग्राम प्रत्येक दिन के हिसाब से दें। तीसरा जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि खाना अच्छा होना चाहिए। चौथा जो आपको जो ध्यान देना है वो ये है कि आप इस समय पशुओं को नमक की मात्रा हर दिन कोशिश करें कुछ ना कुछ नमक दें। आप ये बात को सुनिश्चित करें कि जो आपने पूर्व से जो ग्रेन्स जमा किए हैं, जैसे बहुत सारे हमारे किसान हैं जो मक्का गेहूं वगैरह जमा करके रखते हैं, तो अगर उसमें फंगस लगा हुआ है तो उस फंगस लगे अनाज का उपयोग अपने पशुओं में नहीं करें। इन सारी बातों में को आप अगर ध्यान देंगे तो आप बरसात के दुष्प्रभाव से आप बहुत हद तक बच सकते हैं।
0: सर, बरसात के मौसम में कुछ खास तरह की बीमारियों से भी पशुओं को परेशानी होती है, तो वो कौन कौन सी बीमारी है जिनसे पशुओं को बचाना चाहिए?
1: देखिए, अभी के मौसम में खास करके खुरा एवं मुंह पका रोग, जिसको हम FMD कहते हैं, ये बीमारियों का प्रचलन अधिक होता है। तो ये जरूरी है कि किसान बरसाती के मौसम के लिए नहीं, इसका अकरेंस ज़्यादा देखने को मिलता है, तो अपनी पशुओं को साल में 2 बार टीका FMD वैक्सीन जो है हर 6 महीने पर 2 बार दे दें। दूसरा, जो परजीवी जनित बीमारियां हैं, चमोकन है, ठहल है, किलनी है, जू हैं, ये सब जो परजीवी रोग हैं ये आपके पशुओं के प्रोडक्शन को प्रभावित करते हैं, दूध की क्षमता को कम करते हैं, बीमारियों को फैलाने में मदद करते हैं। इससे बचाव के लिए आप निश्चित रूप से बरसात से पहले आप अपने पशुओं को या तो आइवरमेक्टिन या फिर फेनबेंडाजोल से डिवर्मिंग जरूर करा दें। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस समय थनैल जो गंदगी होती है, तो थनैला बीमारी आपके पशुओं को ज़्यादा प्रभावित करती है, तो उससे बचाव के लिए आप कोशिश करें जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स है, जो भी बचाव के तरीके हैं थनैल के, जैसे कि आप जब मिल्किंग करते हैं तो आप अपने हाथ को कोई भी साबुन से आप साफ करके दूध निकालें। दूध निकालने के बाद आप कोशिश करें कि कम से कम 1 से 1.5 घंटा आपकी पशु बैठे नहीं, उसको उस वक्त खाना लगा दें, और पोटासियम परमैंगनेट जो लाल पोटास के नाम से हमारे किसान भाइयों जानते हैं, दूध दूने के बाद एक कटोरे में एक चुटकी पोटासियम परमैंगनेट डाल के चारों जो हमारा टीट कैनाल होता है उसको, जो चारों जो थन का बांट होता है उसको आप डिप कर दें। अगर आप इतनी सावधानी बरतते हैं तो जो बहुत जो थनैल से आप परेशान रहते हैं इससे आपको बचाव बहुत हद तक हो जाएगा। इस और दूसरा जो अभी जो मौसम आता है, देखिएगा कि रात में थोड़ा मौसम ठंडा हो जाएगा, दिन में थोड़ी गर्म होगी, उमस होगी, तो आपको जो एक गलघोंटू बीमारी होती है HS, जिसको हम लोग हेमरेजिक सेप्टिसीमिया कहते हैं, वो बीमारी खास करके भैंसों में देखने को ज़्यादा मिलती है, तो आप ये कोशिश करें। और ब्लैक क्वार्टर जिसको लंगड़ी कहते हैं, तो रक्षा ट्रायोवैक नाम की वैक्सीन आती है जो FMD HS BQ तीनों के अगेंस्ट काम करती है, तो आप वैक्सीनेशन बिल्कुल करें। और अभी बरसात शुरू होने से पहले आप जिन लोगों ने भी कृमिनाशक दवा अपने पशुओं को नहीं दी हो, तो तुरंत एक कृमिनाशक दवा जो खास करके जो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र का इलाका है जहाँ जल जमाव होता है, उसमें आप बरसात शुरू होने से पहले एक बार कृमिनाशक दवा दे दें, और दूसरा बरसात ख़त्म हो जाए तब एक बार आप कृमिनाशक दवा दे दें। ये दवा आप अगर आप दे देंगे तो निश्चित रूप से आप अपने पशु को बरसात के दुष्प्रभाव से बचा सकते हैं।
0: सर, इस दौरान परजीवियों से भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है पशुओं को, तो परजीवी को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है?
1: देखिए किसान भाई जब एक गलती करते हैं, जब इनके पशुओं के शरीर पर परजीवी होता है, तो मैंने अभी बताया कि एक कृमिनाशक दवा वो जरूर दे दें। आपके पास जितनी पशु है सबको, या फिर अमितराज आप इस्तेमाल कर रहे हो या फिर आप आइवरमेक्टिन इस्तेमाल कर रहे हो, आपके यहाँ जो भी पशु है सारे पशुओं पर एक साथ इस्तेमाल करें, और इस अमितराज का घोल या फिर साइपरमेथ्रीन का घोल आप अपने सारे जो यहाँ पर पशुशाला है वहाँ रखते हैं वहाँ पर भी छिड़काव कर दें। तो अगर ये कर लेते हैं तो आपकी पशुएं जो बाह परजीवी है इससे सुरक्षित हो जाएगी और आपको ज्ञात नहीं है या है।

0: ये बता दें कि ये जो वाह परजीवी है वो आपके पशुओं में जो बहुत ज़्यादा बीमारी बड़ी होती है, जैसे खूनी पेशाब है, सर्रा है, ठिलेरियोसिस है, और ये सब काफ़ी पशुओं की बड़ी बीमारियां हैं। ये सब इन्हीं जो चमोकन, अठैल, किलनी, टिक्स, माइट, लाइस वगैरह जो परजीवी हैं, वाह परजीवी, इन्हीं के द्वारा एक जो संक्रमित पशु है उसे स्वस्थ पशु में फैलाया जाता है। तो इससे अगर आप उपाय कर लेंगे तो आपको इन जो जानलेवा बीमारियां हैं इससे भी आपको निजात मिलेगी। इसका आप बिल्कुल ध्यान रखें।
1: जी सर। सर, नवजात पशुओं के लिए हर मौसम में ज़रूरी होता है कि उनके लिए हम कुछ विशेष प्रबंधन करें, उनकी विशेष देखभाल करें। बरसात के मौसम में नवजात पशुओं की क्या विशेष देखभाल करनी चाहिए?
0: देखिए, बरसात के मौसम में खास करके जो नवजात बछड़े होते हैं उसकी विशेष देखभाल होती है। अगर आप जिस वक्त बच्चे जन्मते हैं उस समय आप उसको बिल्कुल जल्दी से सूखा जितना कपड़ा से रख के उसको पोंछ दें, उसके जो आप नाभि अगर सटी हुई रहती है माँ से तो उसको अच्छे सीजर से काट के टिंचर बेटाडीन से आप उसको साफ करके उसको बांध दें। उसके अलावा कोशिश करें कि वो मिट्टी में नहीं संपर्क करें उसका बच्चा ज़्यादातर, क्योंकि इससे कभी कभी टेटेनस होने का खतरा बढ़ जाता है। ये करें और कम से कम एक घंटे के बाद, जन्म होने के 1 से 2 घंटे के बाद आप अपनी जो गाय हैं, बछड़े हों या बाछी हो, उसको माँ का दूध जो कोलेस्ट्रम बहुत रिच होता है उसको ज़रूर दें। हमारे किसान भाई क्या करते हैं, खीस खीस उसको कहते हैं कि लोकल लैंग्वेज में, उसको नहीं पिलाते हैं जिससे बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं। उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन जी रहता है जो बच्चे को प्रतिरोधक क्षमता, रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता होती है। आप बच्चे के वजन का 1/10 भाग एक दिन में जरूर पिलाएं। ये नहीं किसान भाई गलती कर देते हैं कि लगातार पिला देते हैं जिससे पेट झरने लगता है, इसी के डर से किसान भाई नहीं पिलाते हैं। तो बच्चे के वजन का 1/10 भाग कोलेस्ट्रम आप उसको जरूर पिलाएं। अगर मौसम में तापमान 25 डिग्री से कम है तो आप वो हर संभव कोशिश करें कि उसके घर के अंदर, काफ़ी खास करके लगातार बरसात हो रही हो तो निमोनिया का प्रकोप विद बच्चे जिन नवजात बछड़ों में देखने को मिल सकता है उससे बचाव के लिए कम से कम उसके रूम का 25 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर रखें। अगर ये सारी बातें आप अगर बरसात के मौसम में आप अपनाते हैं या फॉलो करते हैं तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। और ये कोशिश करें कि जहाँ जल जमाव का क्षेत्र है अभी के मौसम में तो अपनी पशुओं को उधर अभी चराने से, ग्रेजिंग से भी बचें। आप अगर उससे उसमें क्या होता है, सारे वेक्टर्स जो कीड़े मकोड़े के वेक्टर्स होते हैं, स्नेल्स के द्वारा फैलाव होते हैं, वो फिर कृमि का जो अंडा है वो आपके पशु के पेट में फिर पुनः चला जाता है और फिर वो संक्रमण करता है और आपके पशु का प्रोडक्शन कम होता है। तो संतुलित राशन, घर का प्रबंधन, टीकाकरण, बरसात से पहले जो भी टीके की आवश्यकता है, FMDHS BQ, इसका टीकाकरण नियमित रूप से अगर आप करवा लेते हैं, और खाने की, भोजन की व्यवस्था, तो इस समय जो घास की बड़ी प्रॉब्लम होती है तो साइलेज और हे बनाना, जिस समय अभी बहुत ज़्यादा खेतों में बहुत ज़्यादा सूडान लगा हुआ होगा, मल्टी कट सोरगम लगा हुआ होगा, मक्का लगा हुआ होगा, इसको चॉपिंग करके साइलेज बैग में अगर आप एकत्रित कर लेते हैं तो आने वाले समय में आपको कोई परेशानी नहीं होगी।
1: जी सर। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो बातें बताई और विस्तार से बताई हमारे किसान भाई बहनों के लिए और ख़ास तौर से हमारे पशुपालक भाई बहनों के लिए ये काफ़ी फायदेमंद और उपयोगी साबित होगा। तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले खास बात की अपना और अपनी फसलों का और ख़ास तौर से अपने पशुओं का रखे विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: पिट गया बेल देना इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं, हम आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बक
2: खांसी?
3: हाँ।
2: इसको तो 1-2 महीना हो गया,
3: खुद की खांसी को 1-2 महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपने ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत

0: मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात। आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो, तो सोचते क्या हो? जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
2: सुहाना सफर और ये मौसम हसी।
1: टीको, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम। करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
3: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, आम का मौसम लगभग जा चुका है और फल तोड़ाई भी लगभग हो चुकी है, और फल तोड़ाई के बाद भी जरूरी होता है कि आप बागों का उचित प्रबंधन करें ताकि अगले वर्ष अधिक फल हो, अगले वर्ष भी आपको मुनाफा अच्छा हो। तो आज इसी विषय पर हम बात करने वाले हैं, यानी कि फल तोड़ाई उपरांत आम के बागों का प्रबंधन किस प्रकार करें। इस बारे में विस्तार से बताने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कुमारी करुणा मैम। आप हैं विश्वविद्यालय प्रोफेसर उद्यान विभाग फल से, आप हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
5: धन्यवाद उमा।
4: मैम, सबसे पहला सवाल यही है कि अभी आम के बागों से करीब सभी किस्मों के फल तोड़ाई हो चुकी है, तो अभी प्रबंधन कैसे करना चाहिए जिससे कि अगले वर्ष अधिक मात्रा में फल हो?
5: सर्वप्रथम मैं बताना चाहती हूँ कि फल तोड़ाई के बाद पौधों में खाद एवं उर्वरक का कमी हो जाता है, एवं पौधों के समुचित विकास एवं फलन के लिए नियमित रूप से खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इसके बगैर वृक्षों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, उनसे कम उपज प्राप्त होता है तथा फलों की गुणवत्ता भी निम्न स्तर की हो जाती है। पानी के जरिए ही वृक्षों के अंदर पोषक तत्वों का परिवहन होता है। जल जो है पौधों के प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, वाष्पोत्सर्जन इत्यादि कामों में आवश्यक होता है। इसके बिना ये सब कार्य जो है अवरुद्ध हो जाता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण के अभाव में वृक्षों की बढ़वार एवं फलत पर गहरा असर पड़ता है। पौधे भूमि से पोषण एवं जल के माध्यम से ही लेते हैं तथा यह जल पौधों को पाले से भी बचाता है। समुचित सिंचाई एवं उर्वरक से फलों का उपज, स्वाद, मिठास, गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी होती है। जल एवं पोषक प्रबंधन का तात्पर्य यह है कि कब दी जाए, कहाँ दी जाए एवं कितनी मात्रा में दी जाए, ताकि जल एवं पोषक का अधिकतम उपयोग तथा मिट्टी एवं पर्यावरण पर भी दुष्प्रभाव नहीं पड़े। जल एवं पोषक प्रबंधन के साथ साथ डालियों की हल्की कटाई छटाई भी आवश्यक है। यह कार्य भी फल तुराई के तुरंत बाद ही करना चाहिए। उच्च गुणवत्ता युक्त फल एवं अधिक फलन के लिए आवश्यक है कि पौधे के मांग के अनुरूप उसका पोषण प्रबंधन किया जाए। पौधे की सामान्य वृद्धि एवं विकास के लिए सभी 16 अनिवार्य पोषक तत्वों की पूर्ति आवश्यक है। सही समय पर सही उर्वरक एवं सही मात्रा का प्रयोग करके गुणवत्ता युक्त उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।
4: तो मैम, उचित समय क्या होता है जब आम के पौधों में पोषण की मात्रा देनी चाहिए?
5: आम में पोषण देने का उचित समय जुलाई अगस्त माह है, लेकिन पोषक तत्वों का अधिक वर्षा से होने वाली क्षति को देखते हुए कंपोस्ट की पूरी मात्रा एवं उर्वरक की 75% मात्रा जुलाई में और शेष मात्रा का प्रयोग अप्रैल के प्रथम माह में करना लाभप्रद है।

0: मैम, जब हम एक वयस्क पौधे की बात करते हैं तो आम के एक वयस्क पौधे में कुल खाद की कितनी मात्रा होनी चाहिए?
1: आम के वयस्क पेड़ में अनुशंसित खाद एवं उर्वरक की मात्रा इस प्रकार है, जैसे प्रति पौधे खाद एवं उर्वरकों की मात्रा में 60 किलोग्राम गोबर की खाद, 2 किलोग्राम यूरिया, 3 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट एवं 1.5 किलोग्राम म्यूरियट ऑफ पोटास एक वयस्क पेड़ के लिए अनुशंसित है। यह मात्रा 10 साल के बाद स्थिर हो जाता है। 10 साल के ऊपर जो पौधे हैं उसमें यही मात्रा प्रत्येक वर्ष प्रति पेड़ लगेगा। इस तरह से उर्वरक का डोज दिया जा सकता है।
0: अब हम बात करते हैं जल प्रबंधन की, तो मैम आम के बागों में जल प्रबंधन कैसे करना चाहिए?
1: पौधों की सिंचाई के समय हम इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि सिंचाई कब करनी चाहिए और कितनी मात्रा में की जानी चाहिए। अब सबसे पहला है सिंचाई कब करें। उद्यान की सिंचाई की आवश्यकता स्थान विशेष की वर्षा के परिणाम एवं वितरण, मिट्टी के प्रकार एवं बनावट, वातावरण की आर्द्रता और तापमान पर निर्भर करती है। चिकनी मिट्टी को बलुई मिट्टी की अपेक्षा एक बार में अधिक पानी की आवश्यकता होती है, परंतु बलुई मिट्टी में लगे हुए बाग की सिंचाई कम अंतराल पे और कम मात्रा में देनी चाहिए, क्योंकि इसमें जल धारण करने की क्षमता कम होती है। एक बार में इतना ही पानी दिया जाए जो संपूर्ण जल क्षेत्र को जड़ क्षेत्र को अच्छी तरह नम कर सके। जहां वर्षा कम होती है और इसका वितरण भी अनियमित हो तो सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है। सिंचाई जल की आवश्यकता वृक्ष की आयु पर भी निर्भर करता है। आम के वृक्ष फल देने की स्थिति में आने के बाद बाग की सिंचाई का व्यवस्था बदल जाता है। फल देने वाले वृक्षों को नवंबर से मार्च तक आमतौर पर सिंचित नहीं करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह इस अवधि में फूल धारण करने के लिए आवश्यक आंतरिक क्रियाएं संपन्न होती है। इसलिए इस अवस्था में सिंचाई का प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस अवधि में सिंचाई करने से संभव है कि वृक्षों में मंजर कम आए या फूल आने के बाद झड़ जाए। अतः यह जान लें कि फलने वाले वृक्षों की सिंचाई फल निकलने एवं स्पष्ट रूप से दाने लग जाने के बाद ही करना लाभकारी होता है। फलों के लगने तथा विकास के दौरान किसी भी अवस्था में पानी की कमी से फलों का विकास प्रभावित होता है तथा फल झड़ने की समस्या भी आती है। फल लगने के उपरांत 7 से 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि फल पूर्णतया विकसित ना हो जाए। एक बार की सिंचाई में इतना पानी अवश्य देना चाहिए कि वृक्षों का संपूर्ण जड़ क्षेत्र नम हो जाए। आम जैसे बहुवर्षीय वृक्षों की जड़ें काफी गहराई तक जाती है, परंतु प्रभावी रेशेदार जड़ों का अधिकांश भाग मिट्टी की सतह से 60 सेंटीमीटर की गहराई तक होती है। सिंचाई इतनी अवश्य करनी चाहिए ताकि जड़ क्षेत्र में पर्याप्त पानी बना रहे और पौधे का विकास ठीक प्रकार से हो। आवश्यकता से ज़्यादा या कम सिंचाई पौधे के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। अब सिंचाई किस प्रकार करें, तो सिंचाई करने का है जैसे कि पारंपरिक सिंचाई विधि है।

0: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
2: अरे भाई वाह, आज तो हमारे गांव में कुछ अलग ही माहौल है। सुबह सुबह इतनी भीड़ और ये लाउड स्पीकर से आवाज।
3: सभी लोग ध्यान दें, आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में HPV टीकाकरण शिविर लगेगा।
2: अरे ये HPV क्या होता है भाई, और इतनी भीड़ क्यों लगी है? अरे सेहतिया सिंह जी, इधर आइए, आप तो हमेशा सही जानकारी देते हैं, जरा बताइए ये क्या चल रहा है?
4: अरे प्रिया, आज बड़ा अच्छा दिन है, गांव के लिए भी और हमारी बेटियों के लिए भी। आज जो कैंप लगा है ना, ये कोई साधारण टीकाकरण नहीं है, ये आगे चलकर एक बहुत बड़ी बीमारी से बचाने वाला टीका है। पर HPV के बारे में विस्तार से बताने से पहले एक कहानी बताना चाहता हूँ। गांव का नाम था बड़की टोला। सुबह का समय था, सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन सावित्री देवी का दिन कब का शुरू हो चुका था। पहले चूल्हा जलाना, फिर पानी भरना, बच्चों को तैयार करना और उसके बाद खेत का काम। सावित्री देवी एक 12 साल की बेटी थी, गुड़िया। पढ़ने में तेज लेकिन थोड़ी शर्मीली। सावित्री चाहती थी कि उसकी बेटी कुछ बन जाए, उसकी जिंदगी उससे बेहतर हो। एक दिन गांव में आशा दीदी आई और उन्होंने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में HPV टीकाकरण शिविर लगने वाला है। उन्होंने समझाया कि ये टीका लड़कियों को आगे चलकर एक खतरनाक बीमारी सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। सावित्री देवी पहले थोड़ा हिचकिचाई। उन्होंने अपने पति रामलाल से बात की। रामलाल पहले तो बोले, अरे हमारी बेटी तो बिल्कुल ठीक है, उसे क्या जरूरत है टीके की। लेकिन आशा दीदी ने धैर्य से समझाया, भैया यही सही समय है, ये टीका बीमारी होने के बाद नहीं पहले काम करता है, अगर अभी लगवा दिया तो आगे चलकर बड़ी बीमारी से बचाव हो जाएगा। रामलाल कुछ सोच में पड़ गए। उन्होंने आसपास के लोगों से भी पूछा लेकिन किसी के पास पूरी जानकारी नहीं थी, बस अफवाहें थीं। तभी एक दिन उन्होंने रेडियो पर एक कार्यक्रम सुना जिसमें मेरे जैसे ही एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता समझा रहे थे कि ये टीका सुरक्षित है और क्यों जरूरी है। उस दिन के बाद रामलाल का नजरिया बदल गया। उन्होंने कहा, अगर एक छोटा सा टीका मेरी बेटी को जिंदगी भर की बीमारी से बचा सकता है तो हम क्यों पीछे रहें। अगले ही दिन सावित्री और रामलाल अपनी बेटी गुड़िया को लेकर कैंप पहुंचे। वहां कई और लड़कियां भी आई थीं। शुरुआत में गुड़िया थोड़ी डरी हुई थी लेकिन जब उसने देखा कि बाकी लड़कियां भी हिम्मत से टीका लगवा रही हैं तो उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा मैं भी लगवाऊंगी। टीका लगने के बाद बस थोड़ा सा दर्द हुआ लेकिन 2 दिन में सब ठीक हो गया। धीरे धीरे गाँव में और लोग भी प्रेरित हुए। सावित्री देवी अब खुद दूसरी महिलाओं को समझाने लगी। रामलाल भी पंचायत में इस विषय पर बात करने लगे। कुछ महीनों बाद बड़की टोला में एक बदलाव साफ दिखने लगा। ज्यादा लड़कियां टीका लगवा रही थीं, लोग अफवाहों की जगह सही जानकारी पर भरोसा करने लगे थे और सबसे बड़ी बात, अब बेटियों की सेहत को लेकर गंभीरता बढ़ गई थी। सावित्री देवी अक्सर कहती थी, पहले हम सोचते थे कि ये सब शहरों की बात है लेकिन अब समझ में आया कि हमारी बेटियों का भविष्य हमारे ही हाथ में है। ये कहानी सिर्फ सावित्री और गुड़िया की नहीं है, ये हर उस परिवार की कहानी हो सकती है जो सही समय पर सही फैसला ले।
2: अच्छा, लेकिन ये HPV नाम तो बड़ा भारी लग रहा है, जरा खुलकर विस्तार से बताइए।
4: देखिए, HPV का मतलब है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। नाम बड़ा लग रहा है पर बात आसान है। ये एक ऐसा वायरस है जो अगर शरीर में आ जाए और

0: में रहते रोका ना जाए तो महिलाओं में आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय के मुंह का कैंसर पैदा कर सकता है।
1: मतलब ये सीधी सीधी जानलेवा बीमारी तक ले जा सकता है।
0: हाँ, और सबसे खतरनाक बात क्या है जानती हो प्रिया?
1: क्या सेहतिया जी, अब तो आप थोड़ा डरा ही रहे हैं।
0: डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए कह रहा हूँ। इस बीमारी की सबसे बड़ी चालाकी ये है कि शुरू शुरू में इसका कोई लक्षण नहीं होता, ना कोई दर्द, ना बुखार, ना कोई परेशानी जिससे लगे कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है।
1: मतलब इंसान को पता नहीं चलता।
0: बिल्कुल, और यही वजह है कि जब तक लोगों को इसका पता चलता है तब तक कई बार बहुत देर हो चुकी होती है, बीमारी काफी आगे बढ़ चुकी होती है।
1: अरे बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक बात है। इससे बचने का कोई तरीका है या नहीं?
0: यही तो अच्छी खबर है प्रिया। जहाँ एक तरफ इसका इलाज मुश्किल हो सकता है, वहीं दूसरी तरफ इसका बचाव बहुत आसान है।
1: सच में? कैसे?
0: HPV वैक्सीन से, एक छोटा सा टीका जो आगे चलकर बड़ी बीमारी से बचा जा सकता है।
1: जरा इसे और आसान करके समझाइए ना, ताकि हमारे गाँव के लोग को भी अच्छे से समझ सके।
0: ठीक है, एक उदाहरण से समझिए। जब हम खेत में फसल लगाते हैं तो क्या करते हैं?
1: चारों तरफ बाड़ लगाते हैं ताकि जानवर अंदर ना घुसे।
0: बिल्कुल, ताकि फसल सुरक्षित रहे। ठीक वैसे ही ये वैक्सीन हमारे शरीर के लिए एक सुरक्षा की बाड़ की तरह काम करता है। ये वायरस को अंदर आकर नुकसान करने से रोकता है।
1: ओह, मतलब ये बीमारी को शुरू होने से पहले ही रोक देता है।
0: हाँ, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये कोई इलाज नहीं है कि बीमारी हो जाने के बाद काम आए, ये तो पहले से ही सुरक्षा देता है ताकि बीमारी हो ही ना पाए।
1: तो फिर ये टीका किसे लगवाना चाहिए, कोई खास उम्र होती है क्या?
0: हाँ, इसका सबसे ज्यादा फायदा तब होता है जब इसे सही उम्र में लगवाया जाए। आमतौर पर 9 से 14 साल की लड़कियों को ये टीका लगवाना सबसे अच्छा माना जाता है।
1: और अगर कोई इससे बड़ी उम्र की हो?
0: तो भी चिंता की बात नहीं है, ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेकर बाद में भी ये टीका लगवाया जा सकता है, लेकिन जितना जल्दी लग जाए उतना बेहतर।
1: सेहतिया जी, एक बात मेरे मन में आ रही है, ये तो लड़कियों का टीका है, तो इसमें पुरुषों का क्या भूमिका है?
0: यही तो सबसे अहम बात है प्रिया। महिलाओं की सेहत सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं होती, इसमें पूरे परिवार की, खासकर पुरुषों की भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है।
1: जरा विस्तार से बताइए।
0: देखिए, एक पिता की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बेटी को समय पर सही जानकारी दे और उसका टीकाकरण करवाए। एक भाई का कर्तव्य है कि वो अपनी बहन को समझाए, उससे डर या अफवाहों से दूर रखे। और एक पति का फर्ज है कि वो अपनी पत्नी की सेहत का ख्याल रखे, उसे हर जरूरी सुविधा और सहयोग दे।
1: सही कहा आपने।
0: अगर घर का पुरुष ही पीछे हट जाएगा या ध्यान नहीं देगा तो आधी लड़ाई तो वहीं हार जाएंगे, इसलिए पुरुषों की भागीदारी बहुत जरूरी है।
1: मतलब ये सिर्फ महिला स्वास्थ्य का मामला नहीं है?
0: बिल्कुल नहीं, ये पूरे परिवार का मामला है। जब एक महिला स्वस्थ रहती है तो पूरा परिवार स्वस्थ रहता है, और जब परिवार स्वस्थ होता है तभी गांव मजबूत बनता है।
1: लेकिन सेहतिया जी, एक बात है, गांव में तो तरह तरह की बातें चलती है। कोई कहता है कि यह टीका लगवाने से लड़कियां कमजोर हो जाती है, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आगे चलकर माँ बनने में दिक्कत होती है।
0: देखो प्रिया, यही सबसे बड़ी समस्या है, अधूरी और गलत जानकारी। ये सब जो बातें आपने सुनी है ना, ये सच नहीं है बल्कि अफवाहें हैं।
1: मतलब इनमें से किसी बात में सच्चाई नहीं है?
0: बिल्कुल नहीं, मैं आपको एक एक करके साफ कर देता हूँ। पहली बात, लोग कहते हैं कि टीका लगने से कमजोरी आ जाती है, जबकि सच्चाई ये है कि टीका लगने के बाद बस हल्का सा बुखार या हाथ में दर्द हो सकता है, जो एक दो दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं होती।
1: अच्छा, और जो लोग कहते हैं कि इससे आगे चलकर बच्चा पैदा करने में दिक्कत होती है?
0: वो भी पूरी तरह गलत है। इस वैक्सीन का मां बनने की क्षमता से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक वायरस से बचाने के लिए होता है और कुछ नहीं।
1: और एक बात जो अक्सर लोग कहते हैं, अगर लड़की बिल्कुल ठीक है तो टीका लगवाने की क्या जरूरत है?
0: यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। देखिए, ये टीका बीमारी होने के बाद नहीं बल्कि बीमारी होने से पहले काम करता है। अगर लड़की अभी स्वस्थ है तो वही सबसे सही समय है टीका लगवाने का। जैसे हम बारिश आने से पहले छाता रखते हैं, वैसे ही यह पहले से ही सुरक्षा देता है। जरा सोचो प्रिया, अगर एक छोटा सा टीका आपकी बेटी को एक बड़ी और जानलेवा बीमारी से बचा सकता है तो क्या हमें इंतजार करना चाहिए?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं। जब बचाव इतना आसान है तो देर क्यों करें? सेहतिया जी, एक बात बताइए, क्या हमारे गांव में भी लोग इसे लगवा रहे हैं?

0: हाँ, धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं और आगे भी आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कई लोग डर और अफवाहों के कारण पीछे हट रहे हैं। यही वजह है कि आज जैसे कैंप बहुत जरूरी है, ताकि सही जानकारी हर घर तक पहुंच सके। जहां जानकारी नहीं पहुंचती, वहां ऐसे कुछ रानी जैसा केस हो जाता है। उसी इलाके के पास एक और गांव था, छोटा पुरवा। यहां रहती थी कमला देवी और उनकी बेटी रानी। रानी भी गुड़िया की ही उम्र की थी, हंसमुख, चंचल और पढ़ाई में अच्छी। जब गांव में एचपीवी टीकाकरण की बात आई तो आशा दीदी यहां भी आई और लोगों को समझाने लगी। उन्होंने कमला देवी से भी कहा, बहन अपनी बेटी को टीका जरूर लगवा लेना। लेकिन कमला देवी के घर का माहौल थोड़ा अलग था। उनके पति महेंद्र इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने साफ मना कर दिया, ये सब नई नई बातें हैं, हमारे जमाने में कौन सा टीका लगता था, और हम तो ठीक हैं। कमला देवी भी डर गई। गांव में कुछ लोगों ने और बातें फैलाईं, इससे लड़की कमजोर हो जाएगी, आगे चलकर बच्चा नहीं होगा। इन अफवाहों के बीच सच की आवाज दब गई। रानी ने एक दिन अपनी माँ से पूछा, अम्मा मेरी सहेली गुड़िया टीका लगवाने गई थी, मैं क्यों नहीं जा सकती। कमला देवी के पास जवाब नहीं था, उन्होंने बस इतना कहा, बेटा तुम्हारे बाबूजी मना कर रहे हैं। समय बीतता गया, बात वहीं रह गई। सालों बाद जब रानी बड़ी हुई, शादी हुई और एक दिन उसे बार बार कमजोरी और असहजता महसूस होने लगी। शुरू में सबने इसे सामान्य समझा, लेकिन जब हालत बिगड़ने लगी तो उसे शहर के अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद जो बताया उसने पूरे परिवार को हिला दिया। यह सर्वाइकल कैंसर का मामला है और अब यह काफी आगे बढ़ चुका है। कमला देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें वही दिन याद आया जब आशा दीदी ने समझाया था, जब रानी ने खुद पूछा था। महेंद्र भी चुप हो गए, उनकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। उन्होंने धीमे से कहा, अगर उस दिन हमने टीका लगवा दिया होता तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। इलाज शुरू हुआ, लेकिन अब रास्ता मुश्किल था। बार बार अस्पताल के चक्कर, बढ़ता खर्च, परिवार की चिंता और दर्द। रानी की बीमारी ने सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं, पूरे परिवार को झकझोर दिया। आज कमला देवी हर घर जाकर एक ही बात कहती, अफवाहों पर मत जाओ, हमने अपनी गलती से बहुत बड़ा नुकसान देखा है, तुम ऐसा मत करना। उनकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन आवाज में एक विनती, अपनी बेटियों को बचा लो समय रहते।
1: तो जो लोग अभी हमें सुन रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए?
0: उन्हें इंतजार नहीं करना चाहिए, आज ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं, आशा दीदी से बात करें और अपनी बेटियों का नाम टीकाकरण के लिए दर्ज करवाएं। और सबसे जरूरी बात, जो सही जानकारी आपने आज सुनी है उसे दूसरों तक पहुंचाइए, अफवाहों को नहीं सच्चाई को फैलाइए।
1: तो दोस्तों, आज हमने जाना कि HPV क्या है, यह कैसे एक गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है और एक छोटा सा टीका कैसे हमें बड़ी परेशानी से बचा सकता है।
0: और याद रखिए, महिलाओं की सेहत सिर्फ उनकी अपनी जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। और सही समय पर लिया गया एक छोटा सा फैसला जिंदगी भर का बड़ा बदलाव ला सकता है। छोटी सी तैयारी, बड़ी बीमारी से बचाओ, बेटी का टीका, परिवार का भविष्य सुरक्षित बनाओ। तो चलिए, जाने से पहले लेंगे सेहत की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई।
1: तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए विषय और कुछ अलग जानकारी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए और सुनते रहिए आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन।

क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी

0: एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: अरे यार फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
2: कब से?
1: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
2: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं, हम आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बक
1: खांसी?
2: हाँ।
1: इसको तो एक आध महीना हो गया।
2: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
1: डॉक्टर, खांसी तो है।
2: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
2: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
1: ठीक है।
2: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
4: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
3: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
5: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं अनु और आज हमारे साथ उन्नत कृषि कार्यक्रम में हैं डॉक्टर महेश कुमार सिंह। मैं आप सभी को बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। मोटे अनाज की उपयोगिता आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, स्वास्थ्य की दृष्टि से तो ये लाभकारक है ही और जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से देखा जाए तो भी ये बहुत ज़्यादा लाभकारक है। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, ये जलवायु परिवर्तन क्या है, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को समझाएं।
1: देखिए, जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से आप यूँ कह सकते हैं कि 30 वर्षों के बाद जो हमारे जलवायु में परिवर्तन होती है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में परमानेंट चेंजेज होते हैं, जैसे कि एक 30 वर्ष का डाटा के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा टेम्परेचर बढ़ गया या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई या इस पार्टिकुलर प्लेस पर अधिक वर्षा हो रहा है या इस पार्टिकुलर प्लेस पे कम वर्षा हो रहा है, तो

0: वायु परिवर्तन में क्या होता है, क्लाइमेट चेंज क्या है, कि जो लॉन्ग टर्म, जो लंबे अवधि में पूरे एक रीजन में परिवर्तन होते हैं वो जलवायु परिवर्तन। लेकिन अब जलवायु परिवर्तन में हो क्या रहे हैं, चेंजेज क्या हो रहे हैं, ये जानने की जरूरत है। तो दूसरे शब्द में हम कहें तो जो हमारे वातावरण की जो फिजिकल स्टेटस है, जो वातावरण में जो चेंजेज हो रहे हैं, जो वेदर है, वेदर में जो परमानेंट चेंजेज हो रहे हैं, 30 साल या उससे ज़्यादा अवधि में जो चेंजेज हुए हैं, जो परिवर्तन हुए हैं, वो परिवर्तन ही जो है जलवायु परिवर्तन है। अब जलवायु परिवर्तन में क्या क्या परिवर्तित हो रहे हैं, तो आप देखिए कि आप 30 साल पहले की बात करिए तो बरसात कम हो रही थी, ज़्यादा हो रही थी, आज बरसात कम हो गई है
1: जी।
0: बरसात कम हो गई, पूरी सीजन में बरसात कम हो गई, साथ ही साथ जो बरसात की जो अवधि थी, जो उसकी इरेगुलरिटीज भी हो गई, कभी बरसात होगी एक महीने तक बरसात नहीं होगी, किसी दिन 200 मिलीमीटर बरसात हो जाएगा, फिर 15 दिन तक बरसात होगा ही नहीं, मतलब अनियमितता भी हो गई। बरसात की मात्रा तो कम हुई ही, अनियमितता भी हो गई
1: जी।
0: अब जब मॉइस्चर आपके धरती पर कम आएगा तो स्वाभाविक तापमान भी बढ़ेगा, क्योंकि पानी ही है, जो नमी है वही नमी ही टेम्परेचर को मेंटेन करती है
1: जी।
0: अब बरसात कम होने लगा तो आपका टेम्परेचर बढ़ने लगा, जो मिनिमम और मैक्सिमम तापमान है वो ज्यादा होने लगा। एक एवरेज की बात करें तो पूरे भारत में 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 3.2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पिछले 100 वर्षों में बढ़ चुका है
1: जी।
0: कहीं पे आधा 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा है तो कहीं पे 3.2 डिग्री सेंटीग्रेड। एक एवरेज की बात करें तो 0.84 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ गया। सुनने में तो लगता है कि 0.84 औसत टेम्परेचर बढ़ा है, लेकिन इतना टेम्परेचर बढ़ने से, मात्र इतना टेम्परेचर बढ़ने से हमारे पास जल संकट आ गया।
1: आप
0: देखिए कि जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जो वाष्पीकरण है वो बढ़ जाता है, जो इवेपोरेशन लॉसेस है वो बढ़ता, तो पानी की जो है स्कर्सिटी और होने लगी, हमारे सरफेस लेयर पे पानी की कमी होने लगी। अब दूसरा परिवर्तन क्या हुआ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा है वो भी आज 100 वर्षों में की तुलना में जस्ट दुगनी मात्रा हो गई। आज 420 ppm कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में है, और कार्बन डाइऑक्साइड होने से, ज़्यादा होने से भी हमारे लिए विपरीत प्रभाव पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो जो हमारी सीथरी क्रॉप हैं जिसमें धान है, गेहूं है, इन सब के लिए तो हानिकारक है, लेकिन जो चारा की फसलें हैं और C4 ग्रुप के क्रॉप हैं, C4 में ऐसे क्रॉप्स हैं जो है हाई टेम्परेचर पे ग्रो हो जाते हैं, जिसमें मक्का आता है, रागी है, सावा, कोदो, चीना, प्रोसो मिलेट्स हैं
1: जी।
0: ये सभी फसलें जो C4 ग्रुप की फसलें हैं, शुगर केन है, ये सभी फसलें ऐसे में थोड़ा सा अपने आप को अच्छे से एडजस्ट कर लेती हैं, उनके उत्पादन में बहुत ज़्यादा कमी नहीं आती है। लेकिन तापमान बढ़ने से या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से जो हमारी चारा की फसलें हैं, जिनकी हम केवल चारा के रूप में उसकी वनस्पतिक भाग को खाते हैं, तो होता यो है कि जो वनस्पतिक वृद्धि है वो ज़्यादा हो जा रही है हाई टेम्परेचर पर, टेम्परेचर बढ़ने से, क्योंकि प्रतिदिन जो हमारा ग्रोइंग डिग्री डे है या हम हीट डिट कहते हैं वो ज़्यादा मिल रहा है, तो वनस्पति ग्रोथ तो ज़्यादा होगी। लेकिन जो ग्रेन वाली फसलें हैं, धान और गेहूँ C3 ग्रुप की, इसकी उत्पादन घट रही है। तो अब देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन होने से हमारी जो मुख्य फसलें हैं धान गेहूं, इन सब की उत्पादन में भारी कमी देखी जा रही है। लेकिन जो C4 ग्रुप की फसलें हैं जिसमें हमारा मेज और मिलेट्स आता है, मिलेट्स में हमारे विभिन्न 7 प्रकार के मिलेट्स हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, सावा, मड़ुआ, कोदो, चीना, प्रोसो मिलेट, ये सभी फसलें हैं, तो इन सभी फसलों का उत्पादन पर बहुत विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है, बल्कि आज के डेट में ये सभी फसलें जलवायु के अनुकूल हम उनको लगा करके ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं, क्योंकि इन सभी फसलों में क्या है, हाई तापमान सहने की क्षमता है, अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन होने पर भी ये अच्छे से उसको अवशोषित करके भोजन का निर्माण करती हैं, और ये सभी फसलें कम जल चाहने वाली हैं
1: जी।
0: तो पानी की कमी होने पर भी ये सब फसलें अच्छे से हो जाती हैं। तो मेरा कहना है कि हम अगर ऐसे क्षेत्रों में, ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों में ये जो हमारे मिलेट्स की फसलें हैं जिसको हम पोषक अनाज कहते हैं या श्री अन्न की फसलें हैं, इनको ले करके हम जलवायु अनुकूल इनको अपना सकते हैं और अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, अभी देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन लगातार ये चेंज हो रहा है और होते रहेगा, और ऐसे में ज़रूरत होती है हम सभी को कि इस जलवायु परिवर्तन के हिसाब से ही हम चलें और

0: हम अपने आप को ढालें। खेती की बात करते हैं तो अभी आपने कहा था कि C4 क्रॉप्स जो ये मिलेट्स हैं, इनको सबसे पहले तो ये खेती के दृष्टि से अगर देखा जाए तो C3 क्रॉप से ये कैसे अलग है, इसके बारे में थोड़ा बता दें।
1: देखिए, जो जो भी C4 क्रॉप्स है इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है और उसको फिर फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा उसको फूड में बनाने की कैपेसिटी है, भोजन निर्माण करने की क्षमता है, इनमें ज़्यादा हो जाती है। तो हाई कंसंट्रेशन पर, CO2 के कंसंट्रेशन होने पर भी ये अच्छे से उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और भोजन का निर्माण करते हैं। और जितने भी C4 क्रॉप्स हैं देखा जाए तो ये थोड़ा सा हाई तापमान पर भी अच्छे से सर्वाइवल कर लेते हैं। तो अब हो क्या रहा है, जो जलवायु का परिवर्तन हो रहा है उसमें तापमान ऑलरेडी हमने बताया कि बढ़ रहा है, 0.8 डिग्री से लेकर 3.2 डिग्री सेंटीग्रेड अलग अलग जियोग्राफिकल सिचुएशन में बढ़ा हुआ है तापमान, और जल की भी कमी हो रही है। और इवन भूमिगत जल की भी देखिए कमी होती जा रही है, हर वर्ष जो है 1.2 मीटर तक जो है वाटर लेवल नीचे चला जा रहा है। तो आज के डेट में ये जो हमारी मोटे अनाज की फसलें हैं ये परिवर्तित जलवायु की आवश्यकता है, और अगर हम इनको नहीं अपनाएंगे तो आने वाले समय में हम गेहूं धान के द्वारा अत्यधिक जल का भी दोहन करेंगे और उत्पादकता भी घटती जा रही है। तो आने वाले समय में धान और गेहूं तो एक तरह से देखा जाए तो जो है उसकी एरिया बहुत ज़्यादा घट जाएगी, घटाना हमारी मजबूरी होगा क्योंकि उत्पादकता हमको नहीं मिल पाएगी। लेकिन वहीं जो हम C4 ग्रुप की हमारी मिलेट की फसलें हैं, चाहे ज्वार है, बाजरा है, सावा, मड़ुआ, कोदो, चीना, जो भी हैं, इन सबको हमें कहीं ना कहीं से एरिया को बढ़ाना है और जो हमारा जल संकट है उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। जो टेम्परेचर बढ़ा उसके अगेंस्ट भी ये सभी फसलें जो है आराम से सहनशील है, क्योंकि ये सभी फसलों का, मिलेट की सभी जो फसलें हैं मोटे अनाज की, सब 44 डिग्री 45 डिग्री तक आराम से सस्टेन करती हैं और उत्पादकता में कोई गिरावट नहीं होती, वहाँ तक उत्पादन मिलता रहता है। जबकि धान और गेहूं में जो है देखा गया है कि 35-36 डिग्री से ऊपर तापमान होने पर उसकी उत्पादकता में गिरावट होने लगती है। तो वही सिचुएशन है कि अब जब टेम्परेचर बढ़ जा रहा है तो ऐसे में हमको ये लगाना मजबूरी है। साथ ही बरसात भी कम हो रही है तो भी धान और गेहूं वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं उत्पादन दे पाएंगे, वहाँ भी हमें मिलेट को ध्यान रखना है। विभिन्न प्रकार के जो हमारे सूक्ष्म जीव है, बरसात कम होने से, मॉइस्चर कम होने से उनकी भी संख्या जमीन में घटने की संभावना हो जाती है। तो वहाँ पे धान गेहूं अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, वहाँ पे हमारा मिलेट फसलें हो जाती हैं। ठीक उसी तरह जहाँ जमीन थोड़ा सा कमजोर है, अनुपजाऊ है, वहाँ भी हम इन मिलेट फसलों को अच्छे से उगा सकते हैं और अच्छा उत्पादन लेकर के अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो इसलिए बदलते मौसम में जलवायु के अनुकूल ये जो मिलेट की फसलें हैं वो पूर्णतया जलवायु के अनुकूल हैं और किसान को प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा। अब तो हमारे मिलेट में ऐसी ऐसी प्रजातियां आ गई हैं, हर क्रॉप की ऐसी प्रजातियां आ गई हैं जो अच्छी उत्पादकता वाली हैं, और अच्छा उत्पादन मिलने से पर हेक्टेयर अगर 30-35 क्विंटल तक उत्पादन भी मिल जा रहा है तो किसानों को धान और गेहूं की तुलना में कहीं ज़्यादा प्रॉफिट है। साथ ही साथ ये सभी जो मिलेट की फसलें हैं, मोटे अनाज की फसलें हैं, ये ग्रीन हरित गैसेस का उत्सर्जन बहुत कम करती हैं। जैसे जब हम धान लगाते हैं तो हम खेत को जलमग्न करते हैं, पडलिंग करते हैं, थोड़ा सा पडलिंग करते ही एनरोबिक कंडीशन होता है, खेत में पानी स्टैंडिंग होता है, तो वहाँ से इथेन मिथेन जैसी हानिकारक ग्रीन हरित गैसें निकलने लगती हैं, इनके उत्सर्जन होने से पुनः वातावरण का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। जबकि जब हम मिलेट्स को लगाते हैं तो ये मोटे अनाज की फसलें जो ग्रीन हरित गैस है इसका उत्सर्जन बहुत ही कम करती हैं, धान और गेहूं की तुलना में 20 गुना कम करती हैं। तो जिससे क्या होता है, जो हमारा वातावरण है वो भी सुरक्षित रहता है। साथ ही साथ अब बात करें तो धान गेहूं में हम खाद और पानी भी ज़्यादा देते हैं। ज़्यादा खाद देने से क्या होगा कि खाद का जो पार्ट है या पेस्टिसाइड का जो कुछ पार्ट है, रेसिडुअल पार्ट है, वो कहीं ना कहीं से रिस करके भूमिगत जल में चला जाता है, भूमिगत जल को टॉक्सिक करता है। और मिलेट में हम खाद कम देते हैं और पानी भी कम देते हैं तो भूमिगत जल में रिसने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, या अगर जाता भी है तो बहुत ही कम जाता है। तो इसलिए जल भी हमारा जो भूमिगत जल है वो भी स्वच्छ और सुरक्षित रहता है। उसी तरह से वातावरण की अगर बात करें तो जब हम धान और गेहूं में उगाते हैं तो हम इन मिलेट फसलों की तुलना में दुगना फर्टिलाइजर देते हैं। और हमें पता है जैसे यूरिया हम दे रहे हैं नाइट्रोजन के लिए, तो यूरिया का केवल 30-35% भाग ही पौधा उपयोग में लाता है, बाकी 65% भाग इधर उधर नष्ट हो जाता है। नष्ट होने में उसका 18-20% भाग वाष्पीकरण के द्वारा वोल्टाइज होकर के एटमॉस्फेयर को जाके नाइट्रस ऑक्साइड गैस में कन्वर्ट होता है और कहीं ना कहीं से वो एटमॉस्फेयर को प्रदूषित करता है।

0: उसका 18 से 20% भाग रिस करके भूमिगत जल को जाके नाइट्रेट टॉक्सिसिटी देता है। और पंजाब हरियाणा को आप देख लीजिए ना, वहाँ अत्यधिक खाद देने से क्या हो रहा है, भूमिगत जो जल है, जो ग्राउंड वाटर है, उसमें नाइट्रेट की टॉक्सिसिटी बढ़ गई है। और वहाँ जो बच्चे आजकल पैदा हो रहे हैं वो नीले कलर के हो रहे हैं, तो उसको हम ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। ये नाइट्रेट की अधिकता से या नाइट्रेट की टॉक्सिसिटी से होती है। और ऐसे में हमारा भूमिगत जल में जब ये सब अवशेष रह जाता है, नाइट्रेट की टॉक्सिसिटी हो जाती है, अधिकता हो जाती है, तो कैंसर का भी कारण बन जाता है। तो देखा जाए तो जब हम मिलेट को लगाते हैं तो हम खाद कम देते हैं, पेस्टिसाइड भी कम यूज करते हैं, तो हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो भी सुरक्षित रहता है। हमारा खाद कम दिए तो एटमॉस्फेयर में इसका वोलेटाइजेशन लॉसेस भी कम होगा, तो कहीं ना कहीं से हमारा जल भी, लिथोस्फीयर यानी जल के जो स्रोत हैं वो भी सुरक्षित रहते हैं, एटमॉस्फेयर भी वातावरण सुरक्षित और शुद्ध रहता है। और साथ ही साथ हम अगर मनुष्यों की बात करें तो हमारे ह्यूमन बीइंग जब इसका कंजप्शन करते हैं मोटे अनाज का या मिलेट्स का फसलों का, तो विभिन्न प्रकार से वो उनके शरीर हिस्ट पुष्ट और स्ट्रांग रहती है, ऊर्जावान रहती है, और 200 से ज़्यादा बीमारियों से हम बचे सकते हैं इनका सेवन करके। इसलिए देखा जाए तो मिलेट्स फसलें, जो मोटे अनाज की फसलें हैं, ये हमारे मनुष्य के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत लाभकारी हैं। एनिमल को चारा खिलाते हैं वो भी हिस्ट पुष्ट रहते हैं, उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभकारी हैं। पर्यावरण को भी अगर देखें तो सुरक्षित और संरक्षित रखने में इन मिलेट फसलों का बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही साथ जो जल है, जल की संकट से भी निपटने के लिए एक अच्छा विकल्प के रूप में है। तो हम एक मिलेट की फसलों को लगा करके अपने पूरे इको सिस्टम को सुरक्षित एवं संरक्षित कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से थोड़ा विस्तार में बताइए कि कैसे ये लाभदायक है।
0: हाँ, देखिए, चूंकि हमारे रेडियो श्रोता हैं, यहाँ पे कुछ दिखाने का ऑप्शन तो है नहीं, नहीं तो मैं पूरा एक स्लाइड अगर देखने का ऑप्शन होता तो थोड़ा सा उनको और ज़्यादा क्लियर होता। मोटी मोटा तौर पे हम बता देते हैं कि हमारे शरीर को एक बैलेंस फार्म में विभिन्न प्रकार के प्रोटीन हैं,

गेहूं में क्या है, गेहूं में ग्लूटीन नामक प्रोटीन होती है। तो गेहूं का आप देखेंगे ग्लूटीन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण जो है गेहूं का आटा अच्छे से बन जाता है। लेकिन जब गेहूं के आटे से हम रोटी बना लेते हैं और उस रोटी को खाते हैं तो हमारे आटों में जाकर के वो कहीं ना कहीं से उसका कुछ भाग चिपक जाता है, क्योंकि गेहूं का जो आटा है या गेहूं में जो प्रोटीन है वो एडहेसिव नेचर की, चिपचिपे नेचर की कैरेक्टर्स की होती है। तो जब आंतों में भी हम खाते हैं तो आंतों की जो भिलाई होती है उसमें गड्ढे नुमा स्ट्रक्चर होते हैं, तो वो गड्ढों में ये जो हमारा ग्लूटीन नमक प्रोटीन है गेहूं का वो जाकर चिपक जाता है। इसके ऊपर फिर क्या है, लिपिड्स की जो प्रोफाइल्स हैं कुछ फैटी मटेरियल जाके चिपक जाते हैं। तो जब 2 से 3 दिन तक ये चिपके रह जाते हैं तो धीरे धीरे पेट में हमारे आंतों में क्या होती है, डिकम्पोजिशन है, सड़न की स्थिति होने लगती है। जो ही सड़न होती है इन खाद्य पदार्थों की, अनडाइजेस्ट पदार्थों की, तो क्या होता है धीरे धीरे खट्टा मीठा ढेकार एसिडिटी ये सब शुरू होने लगता है और वहीं से खेला शुरू होता है लो लेवल प्रोटीन की, लो डेंसिटी प्रोटीन की, जिसको हम लोग कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल क्या है ये भी समझ लेने की ज़रूरत है। आपकी आपकी धमनियों में जो है जब ये चिपचिपा मटेरियल जो उसको हम कोलेस्ट्रॉल कह रहे हैं या जो कह लीजिए कि एक कोलेस्ट्रॉल मटेरियल जो कि हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, जब हमारे धमनियों में ये फ्लो करता है तो कहीं ना कहीं से धमनियों के साइज को घटा देता है। और जब कोलेस्ट्रॉल के कण कभी कभी आपस में बंधे हुए होते हैं, जब ये कोलेस्ट्रॉल के कण टूट जाते हैं, टूट करके हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के जो वेंस हैं, जो न्यूरॉन्स वेंस हैं, जो उसमें जो बहुत महीन वाले वेंस हैं उसमें जाके जब फंस जाती हैं तो चोकिंग करने से क्या होता है, हमको पैरालिसिस हो सकता है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है, मतलब बहुत सी बीमारियों का उत्पत्ति शुरू होने लगता है। लेकिन अगर वहीं जब हम मोटे अनाज अर्थात मिलेट फसलों का कंजप्शन करते हैं, इनको खाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे प्रोटीन अच्छे अमाउंट में है, अच्छी रेशियो में प्रोटीन है, अच्छा कंसंट्रेशन है प्रोटीन का, लेकिन प्रोटीन जो है साथ ही साथ ग्लूटीन से मुक्त है, ग्लूटीन फ्री प्रोटीन है, वहाँ पे ग्लूटीन नामक प्रोटीन नहीं होती है मिलेट में। तो अब जब हम इसको पहली बात गूंथते हैं तो इसका आटा नहीं गूंथ पाते हैं, लेकिन इसको विभिन्न अलग से रूपों में जब हम खाते हैं तो कहीं ना कहीं से हमारे शरीर में जाकर के आंतों में ये चिपकता नहीं है। पहली बार जब आंतों में चिपकेगा तो डाइजेशन बेटर होगा। दूसरी बात है कि इसमें इन सभी फसलों में फाइबर जिसको हम रेशा बोलते हैं, रेशा की मात्रा भरपूर होती है, 10% से लेकर 15% के बीच में रेशा भी होती है। तो फाइबर पर्याप्त मात्रा में होने से जैसे इसबगोल की भूसी हम खाते हैं, जब हमारा कब्ज एसिडिटी होता है तो इसबगोल की भूसी शाम को हम खाते हैं, तो इसमें नेचुरल रूप में फाइबर है, नेचुरल रूप में रेशा है। तो रेशा युक्त अनाज होने से क्या होता है, हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, जो हमारा पाचन तंत्र है, वो बहुत हेल्दी रहता है और जो कुछ भी हम खाए पिए होते हैं उसको अच्छे से पचा लेता है, तो किसी प्रकार का कब्ज या एसिडिटी ये सब नहीं होता है। और अच्छा जब हमारा पाचन क्रिया रहेगा तो आगे हमको किसी प्रकार का कोलेस्ट्रॉल या हाई बीपी ये सब की समस्या नहीं आएगी। अब बात करते हैं इसमें फैट की। देखिए ये सभी मिलेट फसलों में जो फैट है वो चावल की तुलना में लगभग 2 गुना 2.5 गुना ज़्यादा मात्रा होता है फैट। और फैट यानी वसा हमारे शरीर के लिए बहुत लाभकारी है। विशेषकर बाजरा की बात करें तो 5% से लेकर 5.5% तक बाजरे में फैट होता है। उसके बाद चीना की बात करें, कौनी की बात करें, इसमें 3.5% तक फैट होता है। बाकी मिलेट्स में भी 2 से 2.5 के बीच में परसेंट के आसपास फैट होता है। तो ये फैट कहीं ना कहीं से हमारे लिए लाभदायक है और हमारे शरीर को एक मजबूती प्रदान करती है। ठीक उसी प्रकार से अब हम बात करते हैं इसमें मिनरल्स मटेरियल्स की, जिसे जो बोलते हैं एस मैटर। तो कैल्शियम, देखिए कैल्शियम जो है, जैसे रागी की बात करें, मड़ुआ की बात करें, तो मड़ुआ में जो कैल्शियम है वो 500 ppm अर्थात 500 मिलीग्राम से लेकर 750 मिलीग्राम तक प्रति 100 ग्राम दाने में मिल जाता है। अब एक स्वस्थ शरीर के लिए 500 मिलीग्राम कैल्शियम की ज़रूरत होती है। अगर 30 साल की उम्र तक के हम लोग हैं तो 500 मिलीग्राम कैल्शियम की हमें ज़रूरत है, अर्थात केवल 100 ग्राम मड़ुआ खाने से हमें कैल्शियम की पूर्ति हो गई। लेकिन 30 साल से ऊपर के उम्र के लोगों को 750 से लेकर के अगर 50 साल की उम्र वाले हैं तो 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो उतना कैल्शियम हमको चाहिए, तो एक रागी एक ऐसा सोर्स है, रागी को खाने से हमें ज़बरदस्त कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है। और आपको पता है कि गेहूं और धान में रागी की तुलना में 15 से 20 गुना
कम जो है कैल्शियम होता है, अर्थात रागी यानी मड़ुआ की बात करें तो इसमें धान की तुलना में 20 से 25 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है, गेहूं की तुलना में 10 से 15 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है। अब कैल्शियम का क्या लाभ है आपके मानव स्वास्थ्य पर, ये देख सकते हैं।

तो आप देखिए कि जो हमारी हड्डियां हैं, जो बोन्स है, हड्डियों से संबंधित सभी प्रकार की एक्टिविटी में, हड्डियों के फॉर्मेशन में, हड्डियों के निर्माण में, और कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है, फास्फोरस का बहुत बड़ा रोल है। अगर कैल्शियम की कमी है तो 20 से ज़्यादा बीमारियां हमारे शरीर में उत्पन्न होती हैं, जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोमलेशिया है, बोन फाइब्रोसिस है, बोन सिस्ट, बहुत सी चीज़ें होने लगती हैं। तो अगर हम इन मिलेट फसलों को अच्छे से कंजप्शन करते हैं तो हमारे शरीर में किसी भी प्रकार से कहीं से कैल्शियम की कमी नहीं होगी, और साथ ही साथ फास्फोरस भी पर्याप्त मात्रा में होती है। गेहूं और धान की तुलना में फास्फोरस भी इसमें 3 से 4 गुना ज़्यादा होता है। फास्फोरस का रोल भी कैल्शियम की तरह ही है, हमारे शरीर में जो फाइटिंग है, फाइटिक एसिड है, या हड्डियों से संबंधित फॉर्मेशन में फास्फोरस का भी रोल है। तो देखा जाए तो कैल्शियम और फास्फोरस मिलके हमारे जो बोन्स का स्ट्रक्चरल बैलेंस है उसको बनाने में मदद करता है। तो हड्डियों से संबंधित विकार के लिए ये दोनों मतलब ये मिलेट की फसलें बहुत लाभकारी हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हम अब हार्ट की बात करें तो इन मिलेट फसलों में क्या होता है, मैंगनीज बहुत पर्याप्त मात्रा में होता है, गेहूं और धान की तुलना में 3 गुना ज़्यादा मैंगनीज, और बहुत से फैटिक एसिड इत्यादि, बहुत अन्य प्रकार के फिनोलिक कंपाउंड्स भी होते हैं। तो जिसके चलते जो हमारा हार्ट का सिस्टम है वो एक मजबूती ढंग से काम करता है, हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में इनका रोल हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल को घटाने में भी इन मिलेट फसलों का, मिलेट दानों का बहुत बड़ा अहम रोल है, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाते हैं। अब अगर बात करते हैं पोटेशियम की, तो पोटेशियम भी इन फसलों में 500 मिलीग्राम या उससे ज़्यादा ही है, और हमारे शरीर में पोटेशियम का एक अहम रोल है, हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, हमारे शरीर की जो बहुत सी स्ट्रेस होती है, पोटेशियम की कमी होने पे स्ट्रेस हमारे अंदर डेवलप होते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो इन फसलों को खाने से हमारे अंदर तनाव भी कम हो जाता है, तनाव घट जाता है, और हमें कहीं ना कहीं से एक अंदर आत्मविश्वास जागृत होता है। फिर बात करते हैं हम जिंक की और सूक्ष्म लोहा की। देखिए विशेष रूप से लोहा की अगर बात करें तो बाजरा में जो है ऐसी बाजरा की प्रजातियां भी आ चुकी है जिसमें 60 से 65 ppm तक लोहा होता है, जबकि हमारे शरीर को प्रतिदिन 5 से 7 ppm ही लोहे की ज़रूरत होती है। गेहूं और चावल की तुलना में इसमें लोहा 20 गुना ज़्यादा है। तो अब देखिए कि बाकी जो मिलेट की फसलें हैं उसमें 10 से 12 गुना ज़्यादा लोहा है। हमारे देश में लोहा की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है, ये सबको पता है, और शहरी क्षेत्रों में करीब 70 से 80% महिलाएं कहीं ना कहीं से खून की कमी से ग्रसित हैं, लोहे की कमी से एनीमिया हो जाती है, और उसी तरह 60 से 65% पुरुष भी शहरी क्षेत्रों में एनीमिया के शिकार हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो करीब 60% महिलाएं और 50% पुरुष एनीमिया के शिकार हैं। जब हम मिलेट की फसलों को लेते हैं तो हमारे शरीर में लोहा और हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं से एनीमिया अपने आप दूर हो जाता है। तो हम भविष्य में जो मेडिकल पर बहुत सी खर्च करते हैं, सिर्फ हम मिलेट को खा करके अपने देश को सुरक्षित एवं स्वस्थ रख सकते हैं। बात करते हैं अब जिंक की, तो जिंक भी एक ऐसा सूक्ष्म पोषक तत्व है जो कि हमारे शरीर के लिए या किसी भी एनिमल सिस्टम या प्लांट सिस्टम के लिए भी अहम महत्वपूर्ण रोल होता है जिंक का, विशेषकर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छा करता है, शरीर को दिन भर एनर्जेटिक बनाए रखता है। अगर जिंक की कमी है तो शरीर आपका सुस्त हो जाता है, एनर्जी का लेवल कम महसूस करते हैं। लेकिन ये जो मिलेट की फसलें हैं इसमें जिंक जो है कहीं ना कहीं से गेहूं और चावल की तुलना में 2 से 2.5 गुना ज़्यादा होता है, और जो फोर्टिफाइड हमारी रागी की वेराइटीज हैं उसमें जिंक देखा गया है 40 ppm तक भी मिल जाता है। बाजरे की जो फोर्टिफाइड वेराइटी है उसमें भी 40-45 ppm तक जिंक मिल जाता है। तो जिंक और आयरन की मात्रा ज़्यादा होने से हमारा शरीर दिन भर एनर्जेटिक बना रहता है, चुस्त एवं दुरुस्त होता है। तो इस तरह से हम यूँ कह सकते हैं। अच्छा, अब एक बात करते हैं फाइबर की। तो चूंकि फाइबर यानी भूसी जो नेचुरल रेशा है वो मिलेट फसलों में 8 से 10% या और ज़्यादा होता है, 12% तक भी कुछ फसलों में है जैसे सामा मिलेट्स है, तो ये फाइबर हमारे आंतों को सही फंक्शन करने में मदद करता है। जैसे हमारा हमको जब कब्ज और एसिडिटी हो जाता है तो हम शाम को इसे उबाल के 2 चम्मच भूसी लेते हैं गुनगुने पानी के साथ या दूध के साथ। तो अगर हम मिलेट फसलों को खा रहे हैं तो हमको अलग से इसोगोल की भूसी या फाइबर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी इसमें 10% से लेकर 12-13% तक फाइबर होता है, रेशा होता है, जो हमारे आंतों को सही फंक्शन करने में मदद करती हैं और किसी प्रकार का कब्ज एसिडिटी होने से बचाती हैं। और जब हमारा पेट स्वस्थ रहता है, पेट का फंक्शन अच्छा रहता है, तो पूरा

0: शरीर का सिस्टम एनर्जेटिक बना रहता है और अच्छे से हम काम करते हैं। अब बात करते हैं स्किन के लिए भी हमारा रागी बहुत महत्वपूर्ण है। ये जितने भी मिलेट्स फसलें हैं इसमें कुछ फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं, फैटिक एसिड या बहुत सी चीज़ें ऐसे होती हैं जो त्वचा को एकदम साफ सुथरा और चमक के साथ मेंटेन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिए इन सब आज के डेट में हम देखें तो ओबेसिटी जो मोटापा है एक बहुत बड़ा अभिशाप हो गया है, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में मैदा या अनियमित खान पान की वजह से जो है मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है। तो जब हम मिलेट फसलों को करते हैं तो इसमें मौजूद जो कंपाउंड्स होते हैं ये मोटापे को घटाने में बहुत अहम रोल रखते हैं और आप प्रति महीने 2 से 3 किलोग्राम तक बॉडी वेट लूज कर सकते हैं इन मिलेट फसलों के कंजप्शन करके, लेकिन आपको गेहूं और चावल पूर्णतया उस अवधि में छोड़ना पड़ेगा। तो देखा जाए तो ये जो हमारे मिलेट की फसलें हैं, मोटे अनाज की फसलें हैं, हमारे मानव स्वास्थ्य में लगभग 200 से ज़्यादा बीमारियों या डिसऑर्डर को नियंत्रित करने में बहुत अहम रोल है। इवन एंटीऑक्सीडेंट से परिपूर्ण होती हैं ये मिलेट फसलें, तो एंटीऑक्सीडेंट से परिपूर्ण होने से हमारी जो हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल्स हैं उसको ये कंट्रोल में रखती हैं और हमारी जो है एंटी एजिंग की प्रॉब्लम है उसको भी ये नियंत्रण में रखती हैं। साथ ही साथ जो कैंसर जनरेट होते हैं, अगर एंटीऑक्सीडेंट आप परिपूर्ण ले रहे हैं तो कैंसर की सेल्स का जनरेशन नहीं होगा, कैंसर की सेल्स डेवलप नहीं होंगी। तो इस प्रकार से देखा जाए तो कहीं ना कहीं से ये फसलें हमको कैंसर से भी बचाव में मदद करती हैं, लेकिन कुछ हद तक ये मदद करती हैं। तो इस तरह से जो हमारे ये मिलेट की फसलें हैं देखा जाए शॉर्ट में हम कहें तो ये हमें कैंसर से बचाव कर सकती है, शुगर से बचाव कर सकती है, यह हार्ट की से संबंधित बीमारी या हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन से बचाव कर सकती है या किसी को हो गया तो उसमें भी लाभदायक है। पैंक्रियाज की एक्टिविटीज को सही करती है जिससे हमको शुगर नहीं होने देता है, या शुगर हो भी गया तो इनके लगातार कंजप्शन से हमारा शुगर लेवल भी घटने लगता है। तो इस तरह से हम हड्डियों की मजबूती से लेकर के पूरे शरीर को एक बैलेंस फार्म में रख सकते हैं मिलेट फसलों को खा करके।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इस जानकारी के लिए, कैसे हमारे लिए लाभकारक है इसके बारे में डॉक्टर साहब ने आप सभी को बताया। आशा करते हैं आज का ये वार्ता आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। अगले दिन एक अलग विषय के साथ हाजिर होंगे हम। फ्रीक्वेंसी जरूर याद रखें 90.8 MHz। नमस्कार। उन्नत कृषि

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चियों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं, खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है। तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए, क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है? बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी

सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा। जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं, तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा, इसके लिए आप अपनी आशा ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों, याद रखिए, अफवाह से नहीं, सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही, लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
2: CIET NCERT presents ऑडियो बुक आवर वंडरस वर्ल्ड, टेक्स्ट बुक ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज फॉर ग्रेड 5,
3: यूनिट 5, आवर अमेजिंग प्लैनेट, पेज नंबर 161, चैप्टर 10, अर्थ आवर शेयर्ड होम। At the left-hand corner of the page, there is a QR code, clicking on which you will be directed towards the additional information about the text. At the top of the page, there is a picture depicting a vibrant, lush forest ecosystem featuring deer and birds, with a large mountain in the background. Two children stand on the right, gently holding a depiction of earth, which is also crowned with a tree and more animals. The image conveys a theme of environmental protection and the interconnectedness of nature. The blue planet. After seeing the Earth from outside, the first thought that came to mind was that the Earth looks completely one. No border is visible from outside. It seems that no border exists, no state exists, no countries exist. We all are part of humanity and the Earth is our one home, and all of us are in it. These were the inspiring words shared by Group Captain Shubhanshu Shukla, the first Indian to reach the International Space Station, during his conversation.

0: जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
1: सुहाना सफर और ये मौसम हसी।
0: टीको, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित।

0: കൃഷി. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन. मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा. दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी किसान भाई बहनों को संबोधित विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में. उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं धान की बुआई के बारे में. किसान भाई बहनों, ऐसे बहुत सारे किसान भाई बहन होंगे जिन्होंने अभी तक धान की बुआई नहीं की है किसी वजह से. तो अगर आपने अभी तक धान की बुआई नहीं की है और आगे आप धान की बुआई करना चाहते हैं तो देर से किस्मों का चयन करना और देर से बुआई करने में बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है. तो देर से बुआई अगर आप कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें, ये बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर गायत्री कुमारी. आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं सस्य विज्ञान विभाग से. मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद उमा, थैंक यू. नमस्कार सभी को.
0: मैम, जिन किसान भाई बहनों ने अब तक बुआई नहीं की है वो देर से बुआई कैसे कर सकते हैं?
1: जी, देर से बुआई करने के लिए अभी जैसे जो समय है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई का, तो उसमें अब समझिए कि नर्सरी लगाने के लिए समय हमारे पास नहीं है. तो अभी कुछ तकनीकें होती हैं, जैसे धान की बुआई करने के तो बहुत सारी तकनीकें होती हैं. पहला होता है DSR, ट्रांसप्लांटिंग, SRI. तो ये सब चीज़ों के बारे में मैं बता दूंगी. हालांकि अगर हम देर से बुआई करने की बात करें तो उसमें आपकी सीधी बुआई करना यानी डायरेक्ट सीडेड राइस, डायरेक्ट सीडिंग करना अभी ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि अभी समय हमारा नर्सरी रेस करने का जा चुका है. अगर आप इस समय नर्सरी लगाते हैं तो समझ लीजिए 20 से 25 दिन आपको और लगेंगे और आपकी बुआई जो है मतलब ट्रांसप्लांटिंग जो है काफ़ी देर हो जाएगी, यानी अगस्त फर्स्ट वीक तक चला जाएगा. तो इसके लिए डायरेक्ट सीडिंग बहुत बेहतर रहता है अभी.
0: और किस तरीके से बुआई कर सकते हैं अभी?
1: डायरेक्ट सीडिंग का कहने का मतलब हुआ है कि हमने सीधे जो धान है, धान को लेकर हमें सीधे अपने मेन लैंड पर उसकी बुआई करनी है. तो सीधी बुआई करने का मतलब ये होता है कि हम यहाँ पे नर्सरी नहीं लगाते. हमने जो वैरायटी सिलेक्ट करना है, हमने जो समय सिलेक्ट करना है, तो उसके हिसाब से सिलेक्ट करना है कि अब हमारे पास जो समय है अपने नॉर्मल बुआई करने का वो जा चुका है. तो हम सीधी बुआई दो तरीके से करते हैं बेसिकली. एक होती है ड्राई DSR, एक होती है वेट DSR. ड्राई DSR मतलब सूखी बुआई और वेट DSR मतलब गीली बुआई. तो आपके खेत पर पानी कैसा है, किस तरह का जल जमाव हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इन दोनों में से आप क्या कर सकते हैं. एंड दूसरी चीज़ हो गई वैरायटी, जो किस्म की हम बात करते हैं. आपको ऐसी वैरायटी लेनी है जो कि DSR के लिए अच्छे से मतलब रूट एस्टैब्लिशमेंट, यानी जब हम पौधे को अपने बीजों को गिराएं तो उसमें अच्छे से एस्टैब्लिश हो जाए. तो और दूसरी चीज़ ये कि अगर हम मीडियम ड्यूरेशन वैरायटी लें, शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी लें, तो DSR के लिए वो बहुत बेहतर रहता है. तो कुछ चीज़ें जो है वो DSR के बारे में मैं डिस्कस कर देती हूँ यहाँ पर. तो सबसे पहली चीज़ DSR मतलब डायरेक्ट सीडिंग राइस, यानी सीधी बुआई. और इसमें हम जो मतभेद लेते हैं वो यूजुअली हम मीडियम ड्यूरेशन मतलब जो मध्य से बढ़ने वाले, मध्य मैच्योर होने वाले, या जो शॉर्ट ड्यूरेशन वैराइटीज़ होते हैं यानी जो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, उस तरह की वैरायटी हम लेते हैं. मतलब मीडियम मतलब कि 150 दिन के अंदर आपकी वैरायटी जो है वो मैच्योर हो जाएगी, और शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब कि 90 से 110 दिन के अंदर आपकी मैच्योरिटी, आपकी जो वैरायटी है वो मैच्योर हो जाएगी, मतलब बड़ी हो जाएगी खेत के अंदर. दूसरी चीज़ ये कि जब हम DSR करते हैं तो उसमें हम नॉर्मली पडलिंग नहीं करते हैं. अपने खेत को हम कैसे तैयार करते हैं? खेत को तैयार करने के लिए आप एक दो बार उस पे आप हैरोइंग कीजिए, आप खेत को कोड़िए अच्छे से, एक बार दो बार कोड़ कर उसके जो बड़े बड़े ढेर हुए होते हैं उसको आप अच्छे से तोड़ कर आप उसको मतलब मिट्टी को बिल्कुल तोड़ देना है. एंड ध्यान रखिए कि मैं पडलिंग करने नहीं बोल रही हूँ, आपको पडलिंग नहीं करना उसमें. जिस तरह से आप ट्रांसप्लांटिंग के लिए आप मिट्टी को कीचड़ बना देते हैं वैसा नहीं करना. DSR में हम सिर्फ मिट्टी को तोड़ देते हैं, इतने छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं कि वो हमारे धान के जैसे साइज होते हैं ना दाने के, उसी साइज से कम हो जाए. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि हमने जब मिट्टी को तोड़ दिया, उसको हैरोइंग कर दिया, उसके ऊपर क्या करते हैं, लेवलिंग कर देते हैं. हम अपने फील्ड के ऊपर उसको समतल कर देते हैं. तो समतल हमने इसलिए किया कि जब हम आपकी बुआई करेंगे तो बुआई करने के समय कुछ बीजें अपने सही जगह पर गिरेंगे, आप बुआई उसकी सही तरीके से कर सकेंगे. तो इसलिए लैंड को समतल करना बहुत ज़रूरी है. तीसरी चीज़, जो हम बीज लेते हैं, तो बीज को जो हम लेते हैं वो हम कोशिश करते हैं कि आपका जो पहले से अंकुरित बीज है अगर हम वो डालें तो आपकी बीज का एस्टैब्लिशमेंट बहुत अच्छे से होगा. तो उसको करने के लिए क्या करना है, हम जो अपने बीज लिए हैं तो बीज को आप बुआई के 72 घंटे पहले आप उसको पानी में भिगो दीजिए, और मतलब आप 72 घंटे तक रुकिए. उसके बाद जब थोड़ा सा अंकुरित हो जाता है, आपको थोड़ा सा उसके अंदर अंकुरण दिखने लगे बीज पे, तो आप उसको लेकर

उसको फिर हम उसकी बुआई करते हैं। तो लगभग समझिए 72 घंटे तक हम उसको अंकुरित करते हैं पहले, और उसको हम प्री जर्मिनेटेड सीड बोलते हैं, माने पहले से जो अंकुरित हो गया हुआ है बीज, हम उसको बोलते हैं ऐसा। तो उस बीज को हम लेकर हम उसको बुआई करते हैं। अब बुआई कैसे करना है, जो हमने ज़मीन तैयार किया था उसको लेवल कर लिया था, लेवल करने के बाद हम हैरो होता है हैंड से, हैंड हैरो यानी जो एक जिसको हम हिंदी में पंजा बोलते हैं कि यहाँ के किसान, तो उस पंजे से लेकर हमने लाइन बनानी है। अगर आपके पास ट्रैक्टर है, अगर आपका खेत बड़ा है, अगर आपके पास सीड ड्रिल है, तो हम डायरेक्टली सीड ड्रिल से भी गिरा सकते हैं, पर अगर प्लॉट आपका छोटा है तो आप पंजे को लीजिए, आप पंजे को लेकर उस एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक रस्सी खींचिए, उस रस्सी के मतलब रस्सी से जोड़ते हुए आप उस पंजे को खींचिए, लाइन बनाइए उस पंजे से। और लाइन कैसा बनना चाहिए, बहुत ज़्यादा गहरा लाइन नहीं बनाना है आपको, हल्के हाथ से लाइन बनाना है कि आपको 1 से 2 सेंटीमीटर का ही गहराई हो मिट्टी के अंदर। तो जब आप मिट्टी आप हल्के हाथ से जब उस पंजे को खींचते हैं यानी हैंड हैरो को खींचते हैं, तो आप 1 से 2 सेंटीमीटर तक की गहराई तक का लाइन बनता है आपके खेत के ऊपर, तो उस लाइन के ही ऊपर हम अपने बीज को डालते हैं। तो इस तरह से हम डायरेक्ट सोइंग करते हैं। अब डायरेक्ट सोइंग करने के लिए पहली चीज़ें जो होती है, मैंने बताया पहला सीड वैरायटी, आपको सिलेक्शन, आपकी वैरायटी की सिलेक्शन बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरी आपके सीड ट्रीटमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब सीड ट्रीटमेंट आप करिए क्योंकि सीड आपका स्वस्थ रहेगा। आप जब सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो आप जो जो आप पेस्टिसाइड जो आप खेत में फल जो उगने वाले पौधों को देते हैं उसे काफ़ी कम मात्रा में आप उस समय देते हैं जब बीज को आप बीजोपचार करते हैं। तो बीजोपचार करने के लिए कुछ फंगीसाइड जैसे कार्बेंडाजिम ले लिया हमने, और अगर आपके खेत में कोई विशेषता आपको पता है कि कोई कीड़े या कोई बैक्टीरिया फंगस का अटैक बहुत ज़्यादा है, तो उस बैक्टीरिया फंगस को मारने वाला कीड़ा आप बीजोपचार में ज़रूर कीजिए। तो बीजोपचार में हम वो केमिकल लेते हैं जो आपके खेत के उगने वाले पौधों को पहले फसल को पहले से बर्बाद करता है। तो जैसे सपोज मेरे यहाँ पे फंगीसाइड, मतलब मैं जानती हूँ कि हमारे यहाँ पे कोई फंगस अटैक अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा है, तो हम कार्बेंडाजिम लेते हैं। और कार्बेंडाजिम कैसे लेंगे, 2 ग्राम पर kg सीड, मतलब 2 ग्राम 1 kg प्रति 1 kg सीड में हम वो केमिकल लेकर बीजोपचार करने के समय बीजोपचार करते हैं उससे। तो जब हमने बीज को 72 घंटे के लिए छोड़ दिया था, तो उसी समय हमने उसमें केमिकल मिला दिया बुआई करने के आधे घंटे पहले, मिलाकर हम उसको छोड़ते हैं आधे घंटे तक। उसके बाद हम आधे घंटे के बाद उसकी बुआई उससे बुआई करते हैं, उस धान को इस्तेमाल करते हैं। और फिर हमने बीज को लेकर हमने लाइन में सीधे, मतलब जैसे आप एक बार लाइन में गिराते जाइए, जिस तरह से आप गेहूं की बुआई करते हैं तो आप गिराते जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, हमें स्पेसिंग का, तीसरा चीज़ स्पेसिंग का हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है उसमें DSR में। तो DSR मतलब ये हुआ कि हम बीज को हाथों से गिरा रहे हैं, हम उसका रोपण नहीं कर, जैसे हम सीडलिंग्स होता है तो हम सीडलिंग का रोपण ही नहीं कर रहे हैं, हम बीज को डायरेक्टली अपने हाथ से फील्ड पर गिरा रहे हैं। तो उसके लिए आप स्पेसिंग मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, मतलब कम से कम पौधे और पौधे के बीच तो स्पेसिंग मेंटेन करना मुश्किल है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले तो रो टू रो स्पेसिंग मेंटेन करनी है, मतलब 2 लाइन जो आप खींच रहे हैं उस लाइन के बीच में कम से कम 20 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। तो हर लाइन आपका 20 सेंटीमीटर का दूर होना चाहिए। फिर जब आप बीज गिराते हैं तो बीज आप कोशिश कीजिए, वैसे कहा जाता है कि DSR का स्पेसिंग आपका 10 से 15 होता है, लेकिन हाथ से आप गिराते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता है। भले अगर कोई सीड ड्रिल से कर रहा हो तो हो जाए, स्पेसिंग अपना टाइमली गिर जाता है 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर जब हम हाथ से कर रहे होते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता है। तो उस समय क्या करना है कि आपने लाइन पे अपने लगातार आप बीज गिरा दीजिए। जब बीज अंकुरित हो जाता है, मतलब कि आप 5 से 6 दिन 1 हफ्ते के बाद देखिएगा आपके बीज निकल आए, तो उस 2 स्पेस के बीच में जो एक्स्ट्रा पौधे हैं आप उनको हाथ से खींचकर निकाल दीजिए, और फिर पौधे और पौधे के बीच की स्पेसिंग 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर आप मेंटेन कीजिए। ध्यान रखिए वैरायटी पे डिपेंड करता है, 10 से 15 सेंटीमीटर पौधे का पौधे स्पेसिंग जो होती है। दूसरी, ये तीसरी चीज़ हो गई। तो पहली चीज़ मैंने बताई आपकी वैरायटी, आपकी किस्म, आप उस हिसाब से चूज़ कीजिए जो आप अच्छे से इस्टेब्लिश कर सके, शॉर्ट ड्यूरेशन हो, मीडियम ड्यूरेशन हो, क्योंकि हम लेट से बुआई कर रहे हैं इसकी। दूसरी चीज़ ये कि बीजोपचार आपको ज़रूर करना है। तीसरी चीज़, आप जो स्पेसिंग करते हैं आप उसकी स्पेसिंग 20 into मतलब 20 लाइन टू लाइन की दूरी और पौधे पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर आप ज़रूर मेंटेन करके रखें। और उसके बाद आप जब हमने उसकी रोपाई कर ली, ठीक है, जब हमने लाइन खींचा, हमने बीज डाल दिया, उसके बाद हम उस पर खाद डालते हैं। तो खाद में आप यूरिया, SSP, MOP मतलब NPK जो कहते हैं, ठीक है। तो NPK कैसे डालना है, नाइट्रोजन का जो दर होता है वो 100 से 120 केजी प्रति हेक्टेयर के लिए होता है, यानी कहे तो अगर हम उसको यूरिया के टर्म्स में बताएं तो 217 से 220 केजी प्रति हेक्टेयर यूरिया आपको डालना है। फॉस्फोरस आपको 50-60 केजी फॉस्फोरस देनी होती है, और उसके हिसाब से

0: अगर हम एसएसपी डाल रहे हैं तो आपको वही 700 से लेकर 800 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको सिंगल सुपर फॉस्फेट डालना है। और पोटाशियम, पोटाशियम जो है हम कैसे डालते हैं, 40 केजी प्रति हेक्टेयर पोटाशियम डालते हैं। तो अगर हम एमओपी यूज़ कर रहे हैं पोटेशियम को डालने के लिए, तो आपकी 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर म्यूरेट ऑफ पोटाश, ये जो फर्टिलाइजर्स आते हैं, तो आपको वैसे डालना है। तो इस हिसाब से आप खाद को डालिए। तो आप खाद को आप कैसे डालना है, हमने फॉस्फोरस, एसएसपी और एमओपी दोनों को हम बुआई के बाद डाल देते हैं, ठीक है। और यूरिया को क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया कि 220 केजी प्रति हेक्टेयर है, ठीक है। तो उस 220 केजी प्रति हेक्टेयर को हम तीन हिस्से में बांट लेते हैं, ठीक है। तो कैसे बांटेंगे, पहले हमने आधा कर लिया, और उसके बाद उसका जो बचा हुआ आधा उसको फिर से हमने आधा कर लिया, मतलब 50% हमने बुआई के समय डाला, फिर बाकी 25% हमने टिलरिंग के समय डाला, और बाकी 25% हमने जब उसका पैनिकल आता है, यानी जब उसकी फलियां आती हैं, तो हमने डाला, ठीक है। तो यूरिया को हम पूरे यूरिया को एक साथ नहीं डालते, हम उसको तीन हिस्सों में बांट लेते हैं, 50-25-25%, ठीक है। तो आधा कर लीजिए, आधा ही हम देते हैं बुआई के समय, और उसके बाद 25-25% जो है हम टिलरिंग और पैनिकल इनिशिएशन के टाइम पे ही देते हैं। तो ये हमारा फर्टिलाइजर यानी खाद देने का तरीका हो गया। तो जो लाइन हमने खोला था उसी लाइन के ऊपर आप छिड़क दीजिए, और उसके बाद उस लाइन को बंद कीजिए। तो ये तरीका होता है डीएसआर को करने का। तीसरी चीज़ ये होती है कि डीएसआर जो होती है आपकी, वो नॉर्मल ट्रांसप्लांटिंग जैसी नहीं होती है। आप ट्रांसप्लांटिंग जब करते हैं तो क्या करते हैं, आप अपने खेत में पूरा पानी डाल डाल कर, पानी बहुत ज़्यादा लगता है, आप खेत को पाटा करते हैं, पानी डालकर आप पानी भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। पर डीएसआर में आपको पानी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करनी होती, क्योंकि आपने, मैंने बताया, जैसे ड्राई डीएसआर होती है, वेट डीएसआर होती है, इसका मतलब कि ज़मीन जो है आपका बहुत ज़्यादा पानी से भरा हुआ नहीं है। नॉर्मल ट्रांसप्लांटिंग करते समय 2 से 5 सेंटीमीटर पानी आपका जमा होना चाहिए पूरे स्टेज पे, ठीक है। पर डीएसआर के टाइम पे आपको ऐसे हर स्टेज पे आपको पानी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जैसे भागलपुर में हमारा मौसम जैसा रहता है, उस तरह से, तो अगर हम जैसे बारिश काफ़ी होती है यहाँ पे, तो सिंचाई नहीं देने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप डीएसआर आराम से हो जाता है यहाँ पे। तो जो जल जमा होता है, हम उसको बहुत ज़्यादा हर समय हम जल जमा करके नहीं रखते हैं, तो ये डीएसआर की खासियत होती है, आपके पानी की बचत होती है इसमें। और दूसरी चीज़ ये कि आपको एक विशेषता जो ध्यान देना होता है, वो होता है खरपतवार का। एक जो लिमिटेशन बोलते हैं डीएसआर का, वो ये है कि इसमें खरपतवार काफ़ी आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि जो ट्रांसप्लांटिंग आपने किया तो उसमें जल जमाव होता है हमेशा, तो जो जल जमाव होता है उसके वजह से जो आपके खरपतवार हैं वो आ नहीं पाते पानी की वजह से। लेकिन डीएसआर में हमेशा पानी खड़ा नहीं होता, तो इसके लिए क्या होता है कि इसमें जो खरपतवार है काफ़ी मुसीबतें क्रिएट करती हैं। तो इसकी वजह से एक चीज़ जो विशेषता ध्यान देनी पड़ती है डीएसआर में, वो होती है कि वीडिंग, आपको खरपतवार का विशेषता ध्यान देना होता है, आपको वीडिंग करनी है। पहला आप जब ने बुआई किया तो आप प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड जैसे पेंडीमिथिलिन वगैरह डाल दीजिए, ठीक है। और उसके 2 हफ्ते बाद आप पोस्ट इमर्जेंट हर्बिसाइड डाल दीजिए, जैसे ब्यूटाक्लोर है या बिस्पायरीबैक सोडियम है, आप वो डाल दीजिए। और उसके बाद फिर आप पौधे, आपको खरपतवार दूर रखने के लिए आप फिर 25-30 दिन के बाद आप एक बार या दो बार हैंड वीडिंग, यानी हाथ से जड़ को, मतलब वीड्स को, खरपतवार को आप निकाल फेंकिए। तो ये तरीका होता है। तो ये खरपतवार बड़े परेशान करते हैं डीएसआर के समय। बाकी अगर आपने खरपतवार का ध्यान रख लिया, आपने अपने पौधों को अच्छे तरीके से स्पेसिंग दे दी, खाद दे दिया, तो आपके पौधे जो डीएसआर में है वो काफ़ी अच्छे यील्ड दिखाएंगे। कुछ यील्ड ये आपके डीएसआर के बारे में जो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। उसके अलावा जो ट्रांसप्लांटिंग है, उसके लिए नर्सरी वगैरह तैयार करनी होती है, तो नर्सरी तैयार करने का अभी समय हमारे पास जा चुका है, तो इस समय हम डीएसआर पे ज़्यादा ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
1: मैम, देर से बुआई करने के लिए धान की कौन सी किस्में उपयुक्त होती है?
0: अभी हम जो धान की बुआई डीएसआर के थ्रू करते हैं अगर, तो उसमें जो मीडियम ड्यूरेशन वैरायटीज़ हो गए, जिसको हम संकर धान बोलते हैं, तो उस तरह के संकर धान आप लीजिए, जैसे कि आपका पीएचबी 71 हो गया, पूसा आरएच 10 हो गया, ठीक है। और सबौर संपन्न भी काफ़ी हद तक ठीक है, मतलब उसका भी 145 से 150 दिन तक जाता है। तो जो हम वैरायटी लेते हैं, हम उस पर ध्यान देते हैं कि आपकी जो वैरायटी है वो 150 दिन से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अभी हम लेट सोइंग कर रहे हैं, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगा, तो आपके फसल पे प्रभाव भी पड़ेगा और आप समय पे अपने अगली फसल को भी नहीं लगा सकिएगा। तो ये आपकी वैरायटीज़ है
1: जी। मैम, तो किसान भाई बहनों, अगर आपने अभी तक धान की नर्सरी तैयार नहीं की थी, धान की बुआई नहीं की है, तो जिस तरीके से मैम ने बताया, आप धान की सीधी बुआई कर सकते हैं कुछ बातों का ध्यान रख के। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। किसान भाई बहनों आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: पिता कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UPIN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
6: CIET NCERT के जरिए पेश है तीसरी जमात के लिए उर्दू की समय दर्सी किताब सितार।
7: सबक नंबर 19, लोमड़ी और कौवा। सफा 149। एक लोमड़ी 2 दिन से भूखी थी, उसे कहीं भी खाने को कुछ ना मिला था। वो शहर के करीब आ गई, अचानक क्या देखती है कि एक दरख्त पर एक कौवा बैठा है। उस कौवे के मुंह में एक साबुत रोटी है। लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया, उसने एक तरकीब सोची। सफा 150। वो कौवे की तारीफ करने लगी। भाई कौवे, तुम कितने खूबसूरत हो, तुम्हारे पर कितने खूबसूरत है, तुम चाहे रावी में नहाओ या जहलुम में, तुम्हारा रंग एक जैसा ही रहता है। सचमुच तुम परिंदों के राजा हो। तुम्हारा गाना बहुत मीठा है, बांसुरी से भी मीठा, दिल तुम्हारा गाना सुनने को तरस रहा है, जरा गाना गाकर सुनाओ। सफा 151। कौवे ने अपनी इतनी तारीफ सुनी, वो फूल कर कुप्पा हो गया। उसने गाना गाने के लिए चोंच खोली, चोंच खुलते ही रोटी नीचे आ गिरी। सफा 152। लोमड़ी बड़े चाव से उसे खाने लगी, कौवा मुंह देखता रह गया। ब्रैकेट में सिर्फ पढ़ने के लिए।
6: अभी आप सुन रहे थे तीसरी जमात की उर्दू की समय दर्शी।

किताब सितार, समय रिकॉर्डिस्ट मयंक कुमार, समय फनकार सुम्बुल शकील और फरहान अली नकवी, हिदायत और तख्लीककार विमलेश चौधरी। यह किताब CIET NCERT नई दिल्ली भारत के जरिए पेश की गई।

0: आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
2: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनिशाला। तो आइए अब चलते हैं कक्षा 7 की ध्वनिशाला में।
3: नमस्कार, आप सभी विद्यार्थियों का हिंदी की इस कक्षा में स्वागत है। आज जिस विषय को हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एक छोटी सी कविता जो शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा लिखी गई है। यह वसंत भाग 2 जो कि 7वीं की किताब है उसका पहला ही पाठ है। तो आइए आज की इस कक्षा में हम पंछी की बात करते हैं। कविता का शीर्षक पहले ही आपको बताया जा चुका है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। शीर्षक से ही स्पष्ट है कि इस कविता में पंछी की बात की जा रही है। पंछी का मतलब चिड़िया जो उन्मुक्त होकर आकाश में उड़ते हैं, जो एक पेड़ से उड़कर दूसरे पेड़ पर जाना चाहते हैं, जो अपने मन के अनुसार खुले आसमान की ओर भाग जाना चाहते हैं, वैसे ही पंछी की बात आज इस कविता में होने वाली है। और पंछी ही क्या, हमारे आपके सबके मन में कहीं न कहीं चिड़िया एक बैठी होती है जो उन्मुक्त होना चाहती है, जो आज़ादी चाहती है। मन हमारा भी चाहता है कि हमारे मन में जो हो हम वैसा ही करें, लेकिन अक्सर ऐसा हो नहीं पाता है। और अभी जब हम आप सब लॉकडाउन में हैं, अपने अपने घरों में हैं, विद्यालय में पढ़ने और पढ़ाने के लिए नहीं जा पा रहे हैं, पार्क में नहीं जा पा रहे हैं, दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं, तो ऐसे में हमारे मन के अंदर का पंछी बार बार उड़ना चाहता है।

तो हमारी हालत भी अभी कुछ वैसी ही है। हम आजाद तो हैं लेकिन अपने घर की चार दीवारियों के बीच में। तो हमारी आपकी सबकी हालत अभी उस पंछी जैसी ही है जो कि इस कविता में कवि बताने वाले हैं। तो आइए इस रोचक, आनंददायक और अभी के समय से जुड़ी हुई कविता को पढ़ते हैं। कविता को समझने के लिए, उसका अर्थ करने के लिए आवश्यक है कि हम कविता का एक पाठ करें, और पाठ भी कैसा, जो उचित आरोह और अवरोह के साथ हो। आरोह अवरोह का मतलब उतार और चढ़ाव। अगर आप उतार चढ़ाव के साथ कविता को नहीं पढ़ेंगे, गीत को अगर उसके लय के अनुसार नहीं गाएंगे, तो उसका अर्थ समझ में नहीं आएगा। और अगर आप उचित उतार चढ़ाव के साथ उसको गाते हैं, पढ़ते हैं, तो आधे से अधिक कविता हमारे आपके सबके समझ में आ जाती है। तो आइए मैं आप सबके साथ प्रयास करता हूं इस कविता के पाठ का। मेरे साथ साथ आप भी अपने मन में इस कविता को पढ़ने का प्रयास कीजिए। अपने सामने कविता रखें और कोशिश करें कि उतार चढ़ाव के साथ हम इसको पढ़ें, और पढ़ने के पश्चात फिर हम इसके अर्थ के संदर्भ में क्या क्या बातें की गई है इस कविता में, ये समझेंगे, जानेंगे। लेकिन पहले एक पाठ। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निभौरी, कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नव की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। आपने सुन ली कविता, और मुझे लगता है कि पाठ करते हुए थोड़ी बहुत बात कविता के संदर्भ में आपके समझ में अवश्य आई होगी। आप समझ गए होंगे कि किस विषय पर लिखी गई कविता है ये। तो चलिए अब बात करते हैं इस कविता में आई हुई चिड़िया के बारे में। क्या ये चिड़िया स्वतंत्रता चाहती है, आजादी चाहती है? आपको क्या लगता है कि ये किस चिड़िया की आवाज है? क्या किसी ऐसी चिड़िया की आवाज है जिसको पिंजड़े में बंद कर दिया गया है, या ऐसी चिड़िया की आवाज है जिसे पूरी आजादी हासिल है उड़ने की, खाने की, फुदकने की, भागने की, खुले आसमान में उड़ने की? अगर आपको लगता है कि ये उस चिड़िया की बात हो रही है जिसकी आजादी छीन ली गई है, तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि आजादी की बात वही करता है, स्वतंत्रता की बात वही करता है जिसकी आजादी छिन जाती है। और वो उन दिनों को याद करता है, उन दिनों के बारे में स्वप्न देखता है जिन दिनों में उनको स्वतंत्रता और आजादी हासिल होते थे। वैसे ही जैसे आजकल आप अपने विद्यालय के बारे में सोच रहे होंगे, है ना? आपके मन में भी कहीं ना कहीं ये बात आ रही होगी कि काश दोस्तों से मिलना होता, काश पार्क में और बाहर खेलने दौड़ने भागने को मिलता, काश खेल के मैदान से निकलकर अपने कक्षा में जाते, पढ़ते, मित्रों से मिलते, हंसते बोलते, ठहाके लगाते, बाजार में घूमते। पर ये सब अभी बीते दिनों की बात है।

आप भी इन दिनों के बारे में सोच रहे होंगे, स्वप्न देख रहे होंगे। आप इन बातों को अपने दिमाग में रखें, अपने मन मस्तिष्क में रखें और फिर इस कविता का अर्थ लगाने का प्रयास करें तो देखिए कितना आनंद आएगा और आप एक एक कर कविता की पंक्तियों का अर्थ भी समझते जाएंगे। तो चलिए मैं भी आपके साथ अर्थ लगाने का प्रयास करता हूं। हम पंक्ति पढ़ते हैं और कविता का अर्थ करने का प्रयास भी करते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं पहली पंक्ति से ही। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजड़बद्ध ना गा पाएंगे। ये एक पंछी की आवाज है, एक चिड़िया की आवाज है जो कह रही है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, अपने बारे में बता रही है वो चिड़िया कि हम कैसे हैं उन्मुक्त गगन के। गगन भी कैसा, जो उन्मुक्त है, खुला है, अनंत है, असीम है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। गगन का मतलब आकाश। तो पंछी अपने बारे में बता रहे हैं कि हम पंछी कैसे हैं उन्मुक्त गगन के, खुले आसमान के रहने वाले, उड़ने वाले। पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, पिंजरबद्ध मतलब पिंजड़े में बंद होना। हम पिंजड़े में बंद होकर नहीं गा पाएंगे, हमारी आवाज चली जाएगी। वैसे ही जैसे हमें कहा जाए कि आपको एक छोटी सी जगह में बंद कर दिया जा रहा है और अब आप अपने मन की बात कीजिए प्रसन्न होकर, तो क्या हम कर पाएंगे? निश्चित रूप से नहीं कर पाएंगे। तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजड़बद्ध न गा पाएंगे। पंछी कह रहे हैं कि हम पिंजड़े में बंद होकर नहीं गा पाएंगे क्योंकि हम खुले आसमान में रहने वाले हैं। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक का मतलब क्या होता है? स्वर्ण, सोना, एक महंगा धातु है जिसके लिए बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं कि उनके पास अधिक से अधिक स्वर्ण हो और सोने के होने से उनको प्रसन्नता मिलती है, उन्हें यह विश्वास होता है कि उनके पास धन है। तो चिड़िया कह रही है, पंछी कह रहे हैं कि कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। चाहे सोने का ही पिंजड़ा क्यों ना हो, कनक की, कनक मतलब स्वर्ण, स्वर्ण की ही तीली से बना हुआ वो पिंजड़ा क्यों ना हो, हमारे पुलकित पंख, पुलकित मतलब प्रसन्न, खुश रहने वाले, जो बिल्कुल उड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, वैसे पुलकित पंख टूट जाएंगे। किससे टकराकर? कनक तीलियों, चाहे सोने का ही महंगा पिंजड़ा क्यों ना हो, हम उसमें नहीं रह पाएंगे क्योंकि हम खुले आसमान में रहने वाले पंछी हैं। अब अगली पंक्तियों की ओर चलते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। पंछी अपने बारे में कह रहे हैं कि हम तो बहते हुए जल को पीने वाले हैं, जो कटोरी में पिंजड़े में पानी दिया जाता है वो पीने वाले नहीं। हमें तो बहता जल पसंद है, चाहे वो नदी का हो, झरने का हो, तालाब का हो। तो हम बहता जल पीने वाले, हम बहते हुए पानी को पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, हम भूखे और प्यासे मर जाएंगे। क्यों? आगे की पंक्तियों में ये बताया गया है, क्योंकि कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। क्योंकि हमें भली मतलब अच्छी, हमें अच्छी लगती है क्या? कटुक, कटुक कटु शब्द से बना है। कटु का मतलब आप लोग समझते होंगे कड़वी चीजें, कटु से कटु वचन बोलते हैं, वैसे आपने सुना होगा इस शब्द को। तो कटुक निबौरी का मतलब कड़वी नीम की, नीम के जो फल होते हैं जिसे निबोली कहते हैं, वो कड़वी

नीम की निबोली हमें पसंद है, उसके बजाय जबकि अच्छे अच्छे पकवान मैदा से बने हुए सुंदर चीजें स्वर्ण कटोरी में चौना परोसा जाए। तो कहने का मतलब ये कि सोने की कटोरी में भी अच्छी चीजें खाने के लिए दी जाए, उससे अच्छी तो हमारे लिए कड़वी निबोली है। नीम के फल ज़्यादा अच्छे हमें लगते हैं इस सोने के कटोरी में, पिंजड़े में बंद होकर खाने की अपेक्षा। अब अगली कुछ पंक्तियां हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ये तो बस इन दिनों आप लोगों के मन की ही बात है, समझ लीजिए। जैसे आज कल आप लोग सपने देखते होंगे विद्यालय में पहुंच जाने का, खेल के मैदानों में दौड़ने और भागने का, अपने दोस्तों मित्रों से मिलने जुलने और ठहाके मारने का, वैसी ही कुछ इच्छा इन पंछियों की भी है। वो कह रहे हैं, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, इस सोने की श्रृंखला, चाहे सोने के बने हुए बंधन ही क्यों ना हो, वो पिंजरा सोने का ही क्यों ना हो, रत्न जड़ित ही क्यों ना हो, अलग अलग तरह के स्वर्ण के आभूषणों से, पर हमें वो अच्छे नहीं लगते। क्यों? क्योंकि हम अपनी गति उड़ान सब भूल गए हैं, हम अपने पंख नहीं खोल पा रहे हैं पिंजड़े में बंद होकर, हम खुले आसमान में उड़ नहीं पा रहे हैं पिंजड़े में बंद होने के कारण। तो ये स्वर्ण श्रृंखला, ये सोने के पिंजड़े, सोने की तीलियां हमारे किसी काम की नहीं है, सोने की कटोरी हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि हम अपनी गति उड़ान सब भूल गए हैं, अब तो बस सपनों में देख रहे हैं। सपनों में क्या देख रहे हैं? तरु, तरु का मतलब होता है पेड़, तो तरु की फुनगी पर के झूले। अब तो हम तरु की फुनगी का मतलब हुआ कि पेड़ की जो सबसे, पेड़ का जो सबसे ऊंचा हिस्सा होता है, सबसे ऊपर के भाग को, उसे फुनगी कहते हैं। तो तरु की फुनगी पर के झूले, पेड़ पर जो सबसे ऊंची जगह पर बैठकर हम झूला करते थे, बस वो हमारे लिए अब सपनों की बात हो गई है। तो पंछी उन दिनों को, उन स्मृतियों को याद कर रहे हैं और स्वप्न के माध्यम से उसको अव्यक्त कर रहे हैं। और ये सिर्फ पंछी ही नहीं, आपके मन की भी बात हो सकती है। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। ऐसे थे अरमान का मतलब इच्छा, ऐसी हमारी इच्छा थी कि उड़ते, कैसे उड़ते, नीले नभ आसमान की, देखिए यहाँ पर नभ का मतलब है आकाश, और आकाश की विशेषता बताने के लिए एक और शब्द का प्रयोग किया गया है, नीले। तो नीले नभ, नीले आसमान की सीमा पाने के लिए हम उड़ते। और आगे की कल्पना यह है कि लाल किरण सी चोंच खोल, आप देखें कि लाल किरण, जो सूर्य की किरण होती है वो लाल रंग की होती है, जब सवेरे सवेरे की किरण होती है, और कई चिड़ियों के चोंच भी लाल होते हैं। तो लाल किरण सी चोंच खोल, लाल किरण जैसी चोंच को खोलकर हम क्या करते, आसमान में इतनी दूर उड़ जाते, इतना ऊपर पहुंच जाते कि तारों की कल्पना है, तारक अनार के दाने। हम तारों को अनार की तरह, जैसे अनार को चुगते हैं अपने चोंच से, वैसे उन तारों को खुले आसमान में पहुंचकर अपनी चोंच में भर लेते। ये सब चिड़ियों की कल्पना में ही चलने वाली बातें हैं। जब आज़ादी नहीं है उनके पास, जब वो उड़ नहीं सकते, तो अपनी इच्छा स्वप्न के माध्यम से और ऐसे व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। इतना ऊपर पहुंच जाते कि तारों को भी भर लेते हम अपनी चोंच में। अब आगे की पंक्ति

उपलब्धियों की ओर हम बढ़ते हैं, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। पंछी कह रहे हैं, अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि होती सीमाहीन क्षितिज से, सीमाहीन क्षितिज, क्षितिज जहां धरती और आसमान एक साथ मिलते हुए से प्रतीत होते हैं, ऐसा लगता है कहीं दूर आसमान में कि धरती और आकाश मिल रहे हैं, उसे हम क्षितिज कहते हैं। तो होती सीमाहीन क्षितिज, और क्षितिज वास्तव में कहीं होता नहीं, दिखाई पड़ता है बहुत दूर कि वहां पर क्षितिज है, पर वास्तविकता यह होती है कि क्षितिज कहीं होती नहीं। यह हमारा भ्रम होता है कि वहां धरती और आसमान आपस में मिल रहे हैं। तो ये पंछी कह रहे हैं, अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसा क्षितिज जो सीमाहीन है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। होड़ का मतलब प्रतियोगिता, कंपटीशन, दौड़ लगाना एक तरह से आप समझिए। तो होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, इन पंखों की प्रतियोगिता होती, हम बाजी लगाते, हम होड़ लगाते एक दूसरे से आगे निकल जाने की, और इन पंखों की बाजी में हम लगा देते उस सीमाहीन क्षितिज तक पहुंचने के लिए। मतलब ये कि एक तरह से पंखों की प्रतियोगिता, पंखों की बाजी लगती सीमाहीन क्षितिज तक पहुंच जाने के लिए। और आप जानते हैं कि हर किसी के भागने, दौड़ने या उड़ने की एक सीमा होती है। उस सीमा से आप अधिक उड़ेंगे, दौड़ेंगे, थक जाएंगे, गिर जाएंगे, और कई बार तो आपके सांस भी उखड़ जाएंगे। और बहुत लोग तो भागते दौड़ते या ऐसी जगह पर मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं, उनकी मौत भी हो जाती है। तो पंछी ये इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि उन्हें कोई चिंता नहीं है कि उनका क्या होने वाला है, पर इन पंखों की होड़ा होड़ी में जो आनंद है, इसके लिए वो सीमाहीन क्षितिज तक भागने के लिए भी, पहुंचने के लिए भी तैयार हैं, उतनी बड़ी उतनी लंबी उड़ान भरने के लिए भी तैयार हैं। और फिर पंछी कह रहे हैं कि अगर ये होड़ होगी, अगर ये प्रतियोगिता होगी, तो फिर क्या होगा, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, जो क्षितिज दिख रहा है, जो कि एक भ्रम है, उससे हम या तो जाकर मिल जाते, वहां पहुंच जाते, या तंती सांसों की डोरी। सांसों की डोरी तनने का मतलब यह है मृत्यु हो जाना, या तो हम उड़ते उड़ते उस प्रतियोगिता में मर जाते, हमारे सांस उखड़ जाते, दम टूट जाता, या फिर हम उस क्षितिज को ही मिलन बना लेते, हम उस क्षितिज तक पहुंच जाते। आगे की पंक्तियां हैं, नीर न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अब बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं ये, एक तरह से पूरी कविता का निचोड़ इसमें मौजूद है। पंछी कह रहे हैं कि नीड का मतलब घोंसला, हमें टहनी का, पेड़ की डालियों का नीड ना दो, घोंसला नहीं बनाने दो, तुम चाहो तो तुम्हारे बस में है। एक तरह से ये मनुष्यों को कहा जा रहा है कि हम जिस प्रकार से पेड़ काट रहे हैं, पंछियों के लिए रहने वाले जगह को खत्म, तहस नहस करते जा रहे हैं, उसी को संबोधित हैं ये पंक्तियां। नीड न दो चाहे टहनी का, हमें पेड़ के, पेड़ की टहनी का चाहे घोंसला न बनने दो। चाहे आश्रय मतलब रहने की जगह, चाहे हमारे रहने की जगह को छिन्न भिन्न कर डालो, खत्म कर डालो, तहस नहस कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं, लेकिन पंख तुमने नहीं दिए हैं, पंख तो प्रकृति से मिले हैं, ईश्वर ने दिए हैं, जिसने बनाया है इस प्रकृति को, उसी ने ये पंख भी दिए हैं।
लेकिन पंख

ये हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। हमारे अंदर उड़ने की जो लालसा, इच्छा और बेचैनी है, आकुल उड़ान का मतलब ये हुआ कि अंदर जो बेचैनी उड़ने की है, इच्छा है, उसमें विघ्न का मतलब व्यवधान, रोकना, उसमें कोई विघ्न नहीं डालो, वो खत्म न करो, क्योंकि वही है जिसके बल पर हम जिंदा रहते हैं। तो कुल मिलाकर ये कविता कहने को तो पंछियों के बारे में है, चिड़िया के बारे में है, लेकिन इस कविता में आज़ादी की बात की जा रही है, स्वतंत्रता की बात की जा रही है। चाहे हम हो, आप हो या कोई और हो, जब उनकी स्वतंत्रता छिन जाती है तो वो कैसा महसूस करते हैं, इसकी बहुत शानदार रोचक अभिव्यक्ति चिड़ियों के माध्यम से इस कविता में की गई है। आप इसे अपने आप से भी जोड़ सकते हैं, आप किसी और से भी जोड़ सकते हैं, चाहे तो खुद चिड़िया बनकर अपने मन की अभिव्यक्ति आप इस तरह से कर सकते हैं। तो एक तरह से ये कविता हमारे आपके सबके मन की बात है। तो ये कविता पंछियों की भी है और हमारी भी है, और पंछियों और हम, इन दोनों के माध्यम से इस कविता में पर्यावरण और प्रकृति के बारे में भी बातें की गई है। यह बताने की कोशिश भी की गई है कि अगर यह प्रकृति और पर्यावरण का संतुलन खत्म होगा, अगर पंछियों को उन्मुक्तता नहीं मिलेगी, उनकी आज़ादी खत्म हो जाएगी, छिन जाएगी, तो आज न कल इस पर्यावरण में भी असंतुलन पैदा होगा और हमें, आपको, सबको इसका परिणाम भुगतना होगा। तो ये है इस कविता का सार, संक्षेप। आपने पूरी कविता सुन ली, समझ ली, मेरे साथ साथ अर्थ करने के प्रयास में आप शामिल हुए। आइए अब इस कविता के माध्यम से हम कुछ भाषा की भी बात करते हैं, कुछ गतिविधि और कुछ भाषा की बात। आपने देखा होगा इस कविता को पढ़ते हुए कि बहुत सारे शब्द ऐसे आए हैं कि उन शब्दों को बताने के लिए एक और शब्द उनसे पहले रखे गए हैं, और शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। जैसे किरण के पहले आपने देखा होगा लाल, लाल किरण, श्रृंखला के पहले आपने देखा होगा स्वर्ण श्रृंखला। ये वैसे ही है जैसे हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं काले बादल, तेज बारिश। अब ये किरण की विशेषता है, किरण कैसी है तो किरण लाल है। श्रृंखला के लिए विशेषता, श्रृंखला की विशेषता बताने के लिए वहां पर एक और शब्द स्वर्ण श्रृंखला का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से बादल शब्द, जब आप कहते हैं कि बादल काले हैं, तो स्पष्ट करने के लिए कि बादल काले हैं, जिसकी बात आप कह रहे हैं वो काले बादल की बात है, आप काले शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से बारिश की विशेषता, जब आप बताते हैं कि बहुत तेज बारिश हो रही है या हल्की बारिश हो रही है, तो बारिश की विशेषता को बताने के लिए आप तेज या हल्की शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इस कविता को पढ़ते हुए आप भाषा की बात भी सीख सकते हैं, व्याकरण की बात भी सीख सकते हैं। अलग से भाषा या व्याकरण की बात पढ़ने की जरूरत नहीं है, कविता में ही व्याकरण है, बस हमें देखना है कि उसका प्रयोग किस प्रकार हुआ है। अब जैसे किरण की विशेषता के लिए लाल शब्द, श्रृंखला की विशेषता के लिए स्वर्ण शब्द, तो इसे ही विशेषण कहते हैं। व्याकरण की भाषा में जब किसी की विशेषता बताने के लिए किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर विशेषण है। तो आपको अलग से विशेषण पढ़ने की शायद आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और बेहतर तरीका भी यही है कि आप कविता पढ़ते हुए, कहानी पढ़ते हुए, जहां जहां विशेषण का प्रयोग किया गया है उसको पहचानें, और पहचान कर या तो उसको चिन्हित करें या अलग से लिख लें। तो आगे जब कभी भी ऐसे शब्द आएंगे तो निश्चित रूप से आप समझ जाइएगा कि ये विशेषता बताने वाले शब्द हैं, इसलिए ये विशेषण है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि भूखे प्यासे शब्द का प्रयोग किया गया है। अब भूखे प्यासे का मतलब क्या हुआ? छिन्न भिन्न शब्द का प्रयोग किया गया है। भूखे प्यासे का मतलब भूखे और प्यासे, इसको अगर आप अलग अलग कर

0: लिखेंगे तो, जैसे आप दाल भात कहते हैं, भाग दौड़ कहते हैं, तो भाग दौड़ जब आप कहते हैं तो भाग और दौड़, तो इस तरह के दो शब्द जब जुड़े होते हैं तो इसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। तो आप यहां समास की बात को भी समझ सकते हैं, भूखे प्यासे के माध्यम से, छिन्न भिन्न के माध्यम से, भाग दौड़ के माध्यम से, और भी बहुत सारे शब्दों का उदाहरण आप सोच सकते हैं और लिख सकते हैं। तो आप 5-10 और ऐसे शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए और उनको भी लिखिए, तो आप विशेषण की बात भी समझ जाएंगे कविता को पढ़ते पढ़ते, समास की बात भी समझ जाएंगे कविता को पढ़ते पढ़ते, और अंत में आप सब के लिए एक सोचने के लिए, समझने के लिए और चेतना फैलाने के लिए एक छोटी सी गतिविधि, जिसके बारे में आप सब विचार कीजिएगा इस पाठ को पढ़ने के बाद, खत्म होने के बाद, कि क्या पक्षियों को पालना उचित है। इस कविता को पढ़ने के बाद भी आपको लगता है कि पक्षियों को पिंजड़े में बंद कर पालना चाहिए, और क्या हमारे पर्यावरण के लिए ये ठीक है? अगर अच्छे से आपके समझ में ये कविता आ गई है तो आप इस गतिविधि को करें, सोचें, अपने मित्रों से बातचीत करें, घर वालों से बातचीत करें, और फिर इस कविता की समझ को आगे बढ़ाएं अपने घर, परिवार, समाज, विद्यालय और दोस्तों के साथ। धन्यवाद। ऐसे ही किसी और पाठ के साथ आगे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।
1: इस कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ थे डॉक्टर नीलकंठ कुमार। अभी आपने सुना पाठ्यक्रम पर आधारित ध्वनि शाला। निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, तनु गुप्ता और जगबंधु जाना। ध्वन्यांकन बटी लैंगलिंगडो और तकनीकी सहायक सौम्या मलिक। निर्माण अजीत होरो। तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।
2: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं, हो आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुड़बक।
2: खांसी? हाँ। इसको तो एक आध महीना हो गया।
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात। आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
5: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
4: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
6: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
7: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
8: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
7: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
8: आपकी सेहत की बातें,
7: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
8: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
7: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
8: वो कहाँ पर?
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
8: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
7: उन्नत कृषि। किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम जिसका नाम है उन्नत कृषि, और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर महेश कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक सस्य विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, और आज हम इनसे चर्चा करने वाले हैं धान में

0: खरपतवार प्रबंधन के बारे में। वैसे तो पता है आप सभी को किसान भाइयों की, हमारे राज्य में धान की खेती बहुतायत में हो रही है और अगर समय पर खरपतवार प्रबंधन ना किया जाए तो 50-70% तक उत्पादन में गिरावट दर्ज हो सकती है। तो ज़रूरी है कि खरपतवार का प्रबंधन किया जाए। तो डॉक्टर साहब आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम जिसका नाम है उन्नत कृषि में।
1: थैंक यू।
0: और डॉक्टर साहब हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि खरपतवार प्रबंधन है क्या?
2: देखिए, खरपतवार प्रबंधन में अगर हम बात करें तो चाहे कोई भी फसल हो, जितने भी उसमें अनवांटेड बीड हैं, जैसे कोई पौधा है, धान की हम कोई प्रजाति लगाए हुए हैं, उसके अलावा धान का दूसरी प्रजाति हो या कोई दूसरा प्रकार का पौधा हो, उसको हम खरपतवार की श्रेणी में लाते हैं। तो उसका सही समय पे उसका पूर्णतया नियंत्रण करना, जिससे कि मुख्य फसल पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव ना पड़े, हम उसको खरपतवार प्रबंधन में कर सकते हैं। खरपतवार प्रबंधन के लिए बहुत सी विधियाँ हैं हमारे पास। कुछ एग्रोनॉमिकल मेथड हैं, सस्य वैज्ञानिक मेथड्स हैं, कल्चरल मेथड्स है, इंजीनियरिंग मेथड्स है, इंटरकल्चरल ऑपरेशंस हैं, खरपतवार नाशी हैं, इत्यादि बहुत सी विधियों का हम एक साथ प्रयोग कर सकते हैं खरपतवार के प्रबंधन के लिए। आपको मैं बताना चाहूँगा कि धान के खेत हमारे बिहार राज्य में 3.5 मिलियन हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया में हो रही है और अगर शुरू के 40 दिनों तक खरपतवार का प्रबंधन ना किया जाए, इन खरपतवारों को समय नियंत्रण ना किया जाए, तो शुरू के 40-50 दिन का समय जो होता है, 40 दिन तक का जो समय होता है, वो बहुत ही क्रांतिक होता है। अगर इसमें हम इसका प्रबंधन कर देते हैं तो हमारा उत्पादन बहुत अच्छा होता है, और 40 दिनों तक हम खरपतवार को नहीं प्रबंधन कर पा रहे हैं तो उत्पादन में 40% से लेकर के 70-80% तक भारी कमी देखी गई है, उत्पादन में कमी हो जाती है। इसलिए इन खरपतवार का प्रबंधन ससमय करना बहुत ज़रूरी है।
0: तो डॉक्टर साहब ने आप सभी को बताया किसान भाइयों और बहनों कि 40 दिन के अंदर खरपतवार का प्रबंधन हो जाना चाहिए, अगर नहीं होता है तो उत्पादन में कमी आ सकती है, और अगर आप उत्पादन में वृद्धि लाना चाहते हैं तो खरपतवार प्रबंधन 40 दिन के अंदर कर दें। इसके बाद डॉक्टर साहब हम आपसे जानना चाहेंगे खरपतवार प्रबंधन क्यों करना चाहिए?
2: देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये ज़रूरी है कि हमारे पास जो मुख्य फसल धान है या धान की कोई पर्टिकुलर हम वैरायटी लेते हैं, उसके अलावा उसमें कोई पिछले साल का धान जो है झड़ करके उसमें जर्मिनेट कर जाता है या कोई दूसरी धान जर्मिनेट कर जाती है, तो उसको भी हमें निकालना पड़ता है। खरपतवार जो हमारे हैं, विभिन्न प्रकार के चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हों, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हों, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इनका नियंत्रण करते हैं तो जो है हमारे जो फसल पर है जो कंपटीशन होता है वो कम हो जाता है। क्योंकि खरपतवार भी जो है प्रकाश, जल तथा पोषक तत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं मुख्य फसल से, तो ससमय इनका नियंत्रण करने से हमारा जो है फसल को एक अच्छा वातावरण मिलता है और उत्पादन बढ़ जाती है। या धान की कोई पर्टिकुलर हम वैरायटी लेते हैं, उसके अलावा उसमें कोई पिछले साल का धान जो है झड़ करके उसमें जर्मिनेट कर जाता है या कोई दूसरी धान जर्मिनेट कर जाती है, तो उसको भी हमें निकालना पड़ता है। खरपतवार जो हमारे हैं, विभिन्न प्रकार के चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हों, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हों, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इनका नियंत्रण करते हैं तो जो है हमारे जो फसल पर है जो कंपटीशन होता है वो कम हो जाता है। क्योंकि खरपतवार भी जो है प्रकाश, जल तथा पोषक तत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं मुख्य फसल से, तो ससमय इनका नियंत्रण करने से हमारा जो है फसल को एक अच्छा वातावरण मिलता है और उत्पादन।
0: आप सुन रहे हैं उन्नत कृषि और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर महेश कुमार सिंह जी और इनसे हम चर्चाएं कर रहे हैं आज धान में खरपतवार प्रबंधन के बारे में। तो हमारी चर्चाएं चलती रहेंगी, आपसे मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। उन्नत कृषि

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है

0: कुपोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
1: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन एफएम। उन्नत कृषि। स्वागत है एक बार फिर से एक छोटे से ब्रेक के बाद। और आज हम बातें कर रहे हैं धान में खरपतवार प्रबंधन के बारे में। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर महेश कुमार सिंह जी। तो डॉक्टर साहब, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि धान में बहुत सारे खरपतवार आते हैं, तो कौन कौन से जो खरपतवार हैं वो धान में आते हैं और इसका प्रबंधन कैसे किया जाए, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे।
1: धान जो है खरीफ फसल है, जिसकी बुआई हम विभिन्न जिलों में मानसून के शुरुआत होने से लेकर के जुलाई 15 अगस्त तक कर लेते हैं। तो चूँकि खरीफ मौसम में खरपतवार बहुत अच्छे से उगते हैं और इनका ग्रोथ रेट जो विकास दर है बहुत फास्ट होता है, तो जितने भी खरीफ के खरपतवार हैं लगभग सभी आते हैं। इन खरपतवारों को हम मुख्य रूप से तीन भागों में बाँट सकते हैं, जिसमें पहला ग्रुप होता है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, जिसमें आपका गाजर घास है या ऐसे घास जिनकी पत्तियां थोड़ी चौड़ी होती हैं और लंबाई कम होता है। दूसरा ग्रुप होता है सकरी पत्ती वाले खरपतवार। तो सकरी पत्ती वाले खरपतवार में अपेक्षाकृत देखा जाए तो इनकी जो पत्तियां होती हैं वो जनरली थोड़ा सा लंबा होता है और चौड़ाई इनका कम होता है। जैसे आप धान में देख लीजिए सावा, सवई इत्यादि, ये सब प्रमुख हैं सकरी पत्ती के ग्रुप में। तीसरा ग्रुप हम बांटते हैं मोथा कुल के खरपतवारों का, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो 6 प्रकार के मोथा होते हैं, जैसे साइप्रस रोटेंडस, साइप्रस डिफॉर्मिस, साइप्रस एरिया, इस प्रकार के मोथा कुल के कुल 6 खरपतवार हैं जो इस सीरीज में आते हैं। तो किसान भाइयों, जब हम बात करते हैं तो जो हमारा खरपतवार नाशी दवाइयां हैं वो खरपतवारों के प्रकार के आधार पर भी हम देते हैं। अगर चौड़ी पत्ती वाले ग्रुप के खरपतवार हैं तो उसके लिए हम 2,4-D या ऐसी दवाएं जो चौड़ी पत्ती के खरपतवार को मारती हैं वो प्रयोग करेंगे। सकरी पत्ती वाला खरपतवार, उसके लिए हमारे पास अलग दवाइयां होंगी, और सिर्फ मोथा कुल का खरपतवार, उसके लिए अलग दवाइयां होंगी। तो अब हम बात करते हैं धान में जो है खरपतवार प्रबंधन के लिए हमें क्या क्या करना है, इन सभी चीज़ों को एक साथ लेकर चलते हैं। चूँकि धान एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है हमारे राज्य की और ससमय इसकी बुआई किया जाए तो खरपतवार एक प्रमुख समस्या के रूप में आती है। खरपतवार का ससमय प्रबंधन करना बहुत जरूरी होता है। अमूमन देखा गया है कि अगर हम शुरू के 40 दिनों तक खेत को खरपतवार से मुक्त रखते हैं, अर्थात खरपतवारों का हम 40 दिनों के अंदर अच्छे से नियंत्रण कर लेते हैं, तो उत्पादन में पर्याप्त बढ़ोतरी हो जाती है, उत्पादन में कोई कमी नहीं आती है। लेकिन अगर किसी कारणवश हम खरपतवारों को ऐसे ही छोड़ दें, 40 दिनों तक उसका कोई नियंत्रण ना करें, तो हमारे खेत में जो है 50-70% तक उत्पादन में कमी आ जाती है। तो हम बात करते हैं खरपतवार का प्रबंधन कैसे करें। इसके लिए जैसे हमने पहले बताया कि खरपतवारों को हम मुख्य रूप से तीन बड़े ग्रुपों में बांट सकते हैं, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, सकरी पत्ती वाले खरपतवार एवं मोथा कुल के खरपतवार। अब हम धान की आज अपने राज्य में दो तरह से बुआई होती है। एक जो है धान की हम सीधी बुआई कर लेते हैं, तो उसमें खरपतवार नाशी दवाएँ थोड़ा सा दूसरी प्रयोग होती हैं, और दूसरा है रोपित धान, जिसको हम नर्सरी डालते हैं। नर्सरी के बाद हम मुख्य फसल में, मुख्य खेत में जो है 20-21 दिन बाद जो नर्सरी है, सीडलिंग है, उसकी रोपाई कर देते हैं। तो चूँकि जो रोपित फसल है उसमें एक सैचुरेटेड कंडीशन होता है, उसमें हम धान में कादवा लगा देते हैं जिसको हम पडलिंग कहते हैं, पडलिंग करके उसको रोपाई करते हैं, तो खरपतवार उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर में नहीं आते हैं। तो हम पहले बात करते हैं धान की सीधी बुआई, जो आजकल बहुत तेज़ी से पॉपुलर होता जा रहा है अपने क्षेत्र में, राज्य में। तो धान की सीधी बुआई हम जब किए हैं या कर रहे हैं तो उसमें हमें खरपतवार का प्रबंधन कैसे करना है, उसके लिए पहले ज़रूरी होता है कि हम खरपतवार प्रबंधन के विभिन्न जो विधियां हैं उनका प्रयोग में लाएं। तो सबसे पहले अगर हम धान में धान की सीधी बुआई करना है तो हमें ध्यान देना होता है कि हम जो है खेत की एक गहरी जुताई कर दें गर्मी में। जो ही हमारा धान रबी फसलें, जैसे गेहूँ है या दलहनी फसल है रबी की सीजन की, तो वो जनरली अप्रैल तक या मई के फर्स्ट सप्ताह तक जो है कट के खाली कर देते हैं खेत को। जो ही हमारा खेत खाली होता है गर्मी में गहरी जुताई कर देना चाहिए, जिससे क्या होता है जो खरपतवार के बीज हैं वो 15-20 सेंटीमीटर नीचे चले जाते हैं। तो जब खरपतवार के बीज जो है एक बार ज़मीन में नीचे की सतह में चले जाते हैं तो उनको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है, प्रकाश न मिलने से उनका जमाव नहीं होता है। तो पहला तो हमें खेत की गहरी

तय करना है, जिससे कि सरफेस लेयर पे जो भी खरपतवार के बीज हैं वो जमीन के नीचे चले जाएं। दूसरा जो पेरेनियल वीड्स होते हैं, जो बहुवर्षीय खरपतवार हैं, जैसे मोथा है, दूब है, ये सभी कास है, ये सभी जो है शकर से या उसके गांठों से फैलाव करते हैं। तो जब हम गर्मी की गहरी जुताई कर देते हैं एक बार, तो क्या होता है कि ये गांठे या जिसके शकर से हैं ये सब सूख जाते हैं और आगे खरपतवार का प्रेशर जो है मुख्य फसल में कम हो जाता है। तो ये जरूरी होता है कि सबसे पहले हम गर्मी की गहरी जुताई करें, उसके बाद हम खेत की जब बुआई कर देते हैं, तो दूसरा विधि है धान की सीधी बुआई में हम ब्राउन मैन्योर का प्रयोग कर सकते हैं, या धान की सीधी बुआई जब हम करते हैं तो उसमें हम 25 से 30 किलोग्राम बीज धान का लेते हैं, उसी में हम 30 किलोग्राम ढैंचा का बीज भी मिला देते हैं। तो इससे क्या होता है, धान और ढैंचा दोनों साथ साथ जमाव करता है। उसके बाद हम जब फसल हमारा 30 दिन का हो जाता है, 30 से 35 दिन का हो जाता है, उसमें हम सबसे सस्ती दवा जो है 240 हम लेते हैं और 600 ग्राम सक्रिय तत्व लेते हैं, क्योंकि 240 जो बाज़ार में है वो 50% का भी है और 38% का लिक्विड वाला भी आता है। तो हम सक्रिय तत्व की बात कर रहे हैं, 600 ग्राम सक्रिय तत्व लेते हैं, अर्थात अगर हम लिक्विड वाला 240 लेते हैं तो जो बाज़ार का प्रोडक्ट आएगा वो करीब 1.5 लीटर हो जाता है, 1.25 से 1.5 लीटर हम प्रोडक्ट को लेकर के छिड़काव कर सकते हैं खड़ी फसल में, धान की खड़ी फसल में जिसमें ढैंचा का बीज हम लगाए हुए हैं। तो क्या होता है, उस समय 30 दिन पर ढैंचा करीब 1 से 1.5 फीट का हो जाता है। तो ढैंचा का जब इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, इतना ज़्यादा पौधा होता है, तो उसे बाकी जो खरपतवार हैं वो नहीं उग पाते, या उगे भी होते हैं तो बहुत पतले पतले रहते हैं। और 30 दिन पर 35 दिन पर हैं जब 240 डाल करके उसको 800 से 1000 लीटर पानी में घोल लेते हैं और उसके बाद उसके फसल पर छिड़काव कर देते हैं, तो जो ढैंचा है, ढैंचा धीरे धीरे क्या होता है, 24 घंटे में ही वो झुलस करके ज़मीन पर गिर जाता है। गिर जाने के बाद क्या करता है, वो पतवार का काम करने लगता है। तो वो फिर जो पतवार का काम करता है तो शेडिंग इफेक्ट बनाता है, जिससे क्या होता है कि जो खर पतवार ज़मीन में अगर हैं भी उसके बीज, तो वो जम नहीं पाते हैं। और शुरू के 30 दिन तक ऑलरेडी जो जमे हुए खरपतवार है वो ऑलरेडी बहुत पतले और कम संख्या में थे, तो 240 के साथ जब हम ढैंचा पर देते हैं तो ढैंचा तो मर ही जाता है और उसको एक मल्च का काम करता है ज़मीन पर, तो आगे खरपतवार लगभग नहीं के बराबर आता है। तो इस प्रकार से हम ब्राउन मैन्योरिंग भी कर लेते हैं और खरपतवारों को भी धान की सीधी बुआई में कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हम जो हमारे पास विभिन्न प्रकार के खरपतवारनाशी दवाएँ हैं, इनका भी प्रयोग कर सकते हैं, चूँकि खरपतवारनाशी दवाएँ भी पर्यावरण को कहीं ना कहीं से क्षति पहुंचाती हैं, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जो है खरपतवारनाशी दवाओं का प्रयोग कम से कम करें, लेकिन अंततः मजबूरी में हमें खरपतवारनाशी दवाओं का ही प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि ये सस्ते भी हैं और प्रभावी भी हैं। तो इसके लिए जो प्रमुख रूप से खरपतवारनाशी दवाएँ हैं उसमें हम पेंटीमिथिलीन का प्रयोग करते हैं। पेंटीमिथिलीन एक पीले रंग का लिक्विड आता है जो 30% का मौजूद है बाज़ार में। तो इसका जो सक्रिय तत्व लेते हैं हम लोग, 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व लेते हैं, वो प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। चूँकि 30% वाला आता है प्रोडक्ट, तो बाज़ार का जो प्रोडक्ट आएगा विभिन्न नाम से आता है, तो किसी भी प्रोडक्ट को हम बाज़ार का जो पेंडीमिथिलीन प्रोजेक्ट है उसका हम 3.3 लीटर 1 हेक्टेयर के लिए लगता है, अर्थात बाज़ार का प्रोडक्ट जो है 1 लीटर से 1.25 लीटर प्रति एकड़ जो है प्रयोग कर सकते हैं। जबकि हमने जो सक्रिय तत्व बताया जो केमिकल रूप में पेंडीमिथिलीन होता है, वो 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर लगता है। तो इस प्रकार हम देखें तो सक्रिय तत्व 1 लीटर या 1 किलोग्राम पेंडीमिथिलीन लेते हैं, उसको 800 से 1000 लीटर पानी में घोल लेते हैं, धान की जो सीधी बुआई किए हैं उसके 48 घंटे के भीतर यानी 2 दिन के भीतर ही हमें प्रयोग करना होता है। ध्यान हमें रखना होता है कि हम जब नाजल का प्रयोग करें, जब हम कोई भी खरपतवारनाशी दवा प्रयोग करते हैं तो जो स्प्रे होता है उसका जो नाजल होता है वो फ्लैट फैन नहीं रखा जाता है। फ्लैट फैन से एक फ़ायदा होता है कि सभी जगह जो आपका खरपतवारनाशी दवा है वो बराबर मात्रा में गिरता है, बराबर मात्रा में स्प्रे होता है, और स्प्रे करते हुए हम पीछे की ओर हटते हैं। पीछे की ओर हम इसलिए हटते हैं क्योंकि जब जो ही हम दवा का प्रयोग करते हैं, स्प्रे करते हैं ज़मीन पर बुआई के 48 घंटे के भीतर, तो वो जो है एक पतला सा लेयर बना देता है, आपकी आंखों से दिखाई नहीं देगा लेकिन एक पतला सा बिल्कुल लेयर बना देगा ज़मीन पर, और जो ही खरपतवार अंकुरण करते हैं उस लेयर को छूते हैं वो जल करके नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम जो धान की सीधी बुआई है उसमें पेंडीमिथिलीन 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से हम प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद जब हमारा सीधा बुआ हुआ धान लगभग 20 से 25 दिन का हो जाता है, उसमें हम दूसरी प्रकार की खरपतवारनाशी दवाएं प्रयोग करते हैं जिसको हम बोलते हैं पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड, क्योंकि इन सभी दवाओं का प्रयोग हम
खरपतवार तथा फसल की जमाव के बाद करते हैं, इसलिए हम इनको पोस्ट हार्वेस्ट पोस्ट इमरजेंट

0: सर्बिसाइड कहते हैं। तो पोस्ट इमरजेंट सर्बिसाइड में हम प्रयोग कर सकते हैं, सबसे अच्छी दवा है बिसपाइरिवेट सोडियम। क्योंकि बिसपाइरिवेट सोडियम एक ऐसी दवा है जिसका मात्र 40 ग्राम सक्रिय तत्व लेते हैं और प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। इसको भी हम 800 से 1000 लीटर पानी में घोल लेते हैं और बुआई के वहीं 20 से 25 दिन बाद हम इसका छिड़काव कर देते हैं। तो इससे जितने भी सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार हैं और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं ये सब लगभग नियंत्रण में आ जाते हैं। सिर्फ मोथा जो है या मोथा कुल का दूसरा खरपतवार है तो ये नियंत्रण में नहीं आ पाते हैं, तो वहाँ पर हमें दूसरी दवा प्रयोग किया जा सकता है। उसके लिए हम लोग पाइरोजोसल्फ्यूरॉन ले सकते हैं। पाइरोजोसल्फ्यूरॉन जो बाज़ार में साथी के नाम से भी उपलब्ध है और जो बिसपाइरिवेट सोडियम हमने बताया वो बाज़ार में नामनी गोल्ड और ओडीसी के नाम से उपलब्ध है। चूँकि वो 10% का आता है तो हमने बताया था बिसपाइरिवेट सोडियम का 40 ग्राम सक्रिय तत्व लेना है, अर्थात जो बाज़ार का प्रोडक्ट होगा 10% वाला उसका 400 ml मात्रा हो जाता है प्रति हेक्टेयर के लिए। उसको हम 1 हेक्टेयर पानी में घोल लेते हैं और उसका 20-25 पर छिड़काव कर देते हैं। दूसरी दवा हम बोल रहे थे पाइरोजोसल्फ्यूरॉन, जो बाजार में साथी के नाम से उपलब्ध है, तो पाइरोजोसल्फ्यूरॉन का 20 ग्राम सक्रिय तत्व लेते हैं वो 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। ध्यान रखिए मात्रा बहुत कम है, मात्रा मात्र 20 ग्राम सक्रिय तत्व है और उसको 1 हेक्टेयर अर्थात 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया में या 2.5 एकड़ में आपको देना है। तो बेहतर होगा कि सबसे पहले 20 ग्राम सक्रिय तत्व मात्रा जो है जो बाजार का प्रोडक्ट है साथी के नाम से वो 10% का आता है तो उसका 200 ml मात्रा जो है प्रति हेक्टेयर पड़ जाता है प्रोडक्ट का। जो ब्रांड है जो प्रोडक्ट है साथी नाम का या और भी किसी नाम से ब्रांड से आएगा 10% का है अगर तो 200 ml प्रति हेक्टेयर लगेगा। इसको भी आप 800 से 1000 लीटर पानी में घोल लीजिए और बुआई के बाद आप 20 से 25 दिन बाद आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। ध्यान रखिए चाहे बिसपाइरिवेट सोडियम या पाइरोजोसल्फ्यूरॉन दोनों में से किसी एक को ही देना है और इसका छिड़काव करके हम जो सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार हैं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं हम साथ ही देने से क्या होता है जो मोथा कुल के खरपतवार है अगर नरम अवस्था में है मोथा तो लगभग वही 50-60% नियंत्रण में आ जाता है। तो इस प्रकार से हम धान की जो सीधी बुआई है उसमें खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों कभी कभी ये देखा गया है कि
1: अरे यार फिर पिट गया बेल देना इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
2: कब से?
1: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
2: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं हो आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुढ़बा।
1: खांसी?
2: हाँ।
1: इसको तो एक आध महीना हो गया।
2: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
1: डॉक्टर खांसी तो है।
2: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
2: हाँ तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
1: ठीक है।
2: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: सुनो सुनो सुनो सभी एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
4: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
3: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
5: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
6: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चियों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल है, तो तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब

भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है खासतौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं, खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है। तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है? बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा? जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा, इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों, याद रखिए, अफवाह से नहीं, सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही, लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार।

0: आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
2: उन्नत कृषि।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों और हमारे किसान भाई बहनों, आप सभी को ये बिल्कुल अच्छे से पता होगा कि मखाना की अभी मांग काफी तेजी से बढ़ रही है और आगे भी इसकी मांग बढ़ती रहेगी और काफी अच्छा मूल्य भी किसान भाई बहन मखाना की खेती से कमा सकते हैं। तो मखाना की खेती बिहार में कैसे की जाए और किन किन जिलों में मखाना की खेती अच्छे ढंग से की जा सकती है, इस बारे में विस्तार से बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पंकज कुमार। सर, आप हैं आणविक विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग से, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
3: नमस्कार मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। जैसा कि जानते हैं, मखाना अभी पूरे बिहार, पूरे भारत और पूरे विश्व में यह हर दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। लेकिन महत्वपूर्ण क्यों हो गया, कैसे हो गया, ये कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन हम किसान भाइयों के लिए आए हैं इसलिए कि बिहार में मखाना का खेती पूरे विश्व का जो है वो 85% होता है। लेकिन 85% होता है तो क्यों इतना योगदान है, और अगर इतना योगदान है तो हम इसका खेती कैसे और किस विधि से करें कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो, और जिसमें हम जो आमदनी दुगुनी की बात करते हैं, इसमें तो 10 गुनी आमदनी होने की संभावना रहती है। सबसे पहले मखाना के बारे में जानने के लिए इसलिए शुरुआत से कोशिश करेंगे हम लोग, क्योंकि कई नए किसान भाई बहन होंगे। तो मखाना का वनस्पति नाम जो है वो यूरोलोफिरॉक्स है। ये नाम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें काटा जो होता है, इसीलिए इसका नाम यूरोलोफिरॉक्स पड़ा है। और यह जो है एक निम्फेसी फैमिली मतलब परिवार का एक परिवार, जैसे आप देख सकते हैं कि वाटर लिली भी इसी तरह का पानी में होता है, तो किस परिवार का ये भी जानना जरूरी है। और मखाना का उत्पादन जो है उसके लिए जो वातावरण चाहिए, उष्ण और उष्णकटिबंध दोनों परिस्थिति में मखाना की खेती बहुत अच्छे से किया जाता है। खास करके यह विश्व में जो है दक्षिण पूर्व तथा पूर्व एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में भी उपलब्ध है, लेकिन भारत के उत्तरी बिहार में सबसे अधिक इसकी खेती की जाती है तथा नेपाल के सीमा के तराई वाले क्षेत्र में भी इसका बहुत ज़्यादा किया जाता है। अब हम आएंगे बिहार पर। बिहार में खास करके यह मधुबनी, दरभंगा, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा में किया जाता है। क्यों इसे इसकी खेती जो है इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होती है, क्यों नहीं अन्य जिलों में इसकी खेती होती है,

तो खेती के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वह है जमीन का चुनाव, खेतों का चुनाव। खेतों का चुनाव का ये महत्वपूर्ण है कि खेत कैसा होना चाहिए, ये दूसरी है। सबसे उत्तम और सबसे पहला जो हमारा प्रश्न होना चाहिए कि क्या हम मखाना खेती के लिए तैयार हैं, तो हमको कैसा ज़मीन, कैसा ज़मीन मतलब निचली ज़मीन जहां हमें पानी का ठहराव हो, क्योंकि बिना पानी का हम मखाना की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो भाइयों सबसे पहले तो आप ऐसे ज़मीन को खोजें जो निचली भूमि है, जहाँ पानी रुकता हो। लेकिन कई बार हम लोग जानते हैं कि बाढ़ आने के कारण वो पूरा का पूरा लेके चला जाता, तो उतना भी गड्ढा वाला ज़मीन नहीं देखना। तो इसकी खेती करने के लिए मुख्यतः दो विधि होती है, एक तो तालाब विधि होती है, दूसरा खेत विधि होती है। तालाब विधि में क्या है कि तालाब गड्ढे होते हैं, काफ़ी गड्ढे होते हैं, तो उसमें हम जो है किस तरह का बीज का उपयोग करें, पानी कितना रहना चाहिए, और खेत में अगर करते हैं तो उसमें पानी कितना रहना चाहिए। तो भाइयों मैं बताना चाहूँगा आपको कि अगर खेत में पानी लगाना है तो उसमें 1 से 1.5 फीट पानी आपको लगाना पड़ेगा जब तक आप उसका जो है बीज को करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तालाब में तो बहुत पानी होता है, तो क्या उसमें कैसे हम रोपाई करेंगे, तो उसमें जो है रोपाई नहीं बुआई विधि का हम प्रयोग करेंगे। और बुआई विधि के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें जो है आपको सबसे ज़्यादा मतलब 80 किलोग्राम बीज जो होता है वो 1 हेक्टेयर में पर्याप्त होता है। अब इतना बीज देने का क्या मतलब है, तो मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि इनका जर्मिनेशन रेट जो होता है, बीज से जो पौधे निकलने की क्षमता होती है वो 50 से 60% ही होती है। इसलिए आपको सबसे ज़्यादा इस चीज़ पर ध्यान देना होगा। लेकिन यही अगर हम खेत में करते हैं तो खेत में इसका जो है, जैसे आप धान के लिए आप बिचरा का प्रयोग करते हैं, उसी तरह इसके भी लिए भी बिचरा का प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें, एक बेड रेज क्या होता है कि आप एक भूमि बनाएं जहां पे जो है आप इसको एक गड्ढा कर करके वहाँ के भूमि को आप जो है पानी से 1-1.5 फीट पानी देके वहाँ पे बीजों को बुआई कर दें, और 40 से 50 दिन के बाद उसमें जर्मिनेशन आना शुरू हो जाता है। जैसे जर्मिनेशन आना शुरू हो जाता है और पानी अगर आपका घट रहा है तो उसमें पानी का प्रयोग करें, और इस पानी के प्रयोग करने से क्या होगा कि आपका बीज जो जब 3 पत्ते के लायक हो जाएगा तो आप उसका प्रत्यारोपण कर सकते हैं। प्रत्यारोपण करने के लिए आप जहाँ पे आप जिस खेत में करना चाहते हैं उस खेत का सबसे पहले 2 तरह का आप जो है फर्टिलाइज़र का यूज कर सकते हैं, जिसको एक बेसल डोज कहते हैं, एक फोमिगेशन कहते हैं। तो बेसल डोज में आप सबसे पहले जो भी आप एनपीके देते हैं वो दीजिए, और एनपीके के में भी जो नाइट्रोजन है उसका स्प्लिट डोज कीजिए। स्प्लिट डोज क्या होता है कि अगर आप 70 kg नाइट्रोजन का यूज करने वाले हैं तो उसमें 35 kg का यूज पहले करें और 35 kg का जो है स्प्रे करें। तो 35 kg में आप क्या करेंगे, नाइट्रोजन का स्प्रे बाद में करेंगे, जो कि आप पौधा लगाने के बाद। तो पौधा लगाने के लिए जो सबसे आप बीजों का भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप देखे होंगे मखाना में कई तरह के बीज होते हैं, कई तरह के मतलब उसका ग्रेडिंग जो होता है 1 से 19 तरह का होता है, और साइज जो है वो 4 mm से 8 mm 0.4 mm से 8 mm वेरी करता, और अगर सेंटीमीटर में देखें तो 0.8 सेंटीमीटर से 1.3 सेंटीमीटर वेरी करता। तो हमको बीजों का जो सिलेक्शन है वो सही करना होगा। तो हम सबसे पहले बीजों का ग्रेडिंग करें, और जो बोल्ड सुंदर गोल बीज है उसको छांट लें, उसको हम जर्मिनेशन के लिए लगाएं, और जर्मिनेशन के बाद उसका हम क्या करेंगे, प्रत्यारोपण करेंगे। तो सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे किसान भाइयों, अगर बीज अच्छा है तो ही आपकी अच्छी उपज होने की संभावना रहेगी। तो बीज का सिलेक्शन करना है, ग्रेडिंग का सिलेक्शन करना है, और अच्छे ग्रेड के बीज को हम प्रत्यारोपण के लिए लेके जाएंगे। मखाने के बुआई के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, प्रति हेक्टेयर जल क्षेत्र में 80 किलोग्राम की बीज जो होते हैं वो पर्याप्त होते हैं, और बुआई से पूर्व बीज में बेहतर अंकुरण हेतु 1 सप्ताह तक इसको भिगोकर जूट के बोरे में छायादार स्थान पर रखें, ताकि जो है उसकी जो है वायबिलिटी जिसको कहते हैं जर्मिनेशन करने की क्षमता जो है उसमें बना रहे। और बीच बीच में अगर आपको लगे कि नहीं उसका जो है मॉइस्चर जो

0: पन है वो घट रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में आप उसमें पानी का छिड़काव भी कर सकते हैं। मखाने के बीज बुआई नए तालाब में पूरी तरह से की जाती है, ऐसा नहीं कि जिस तालाब में अगर कभी मखाने की खेती नहीं हुई है तो क्या हम उसमें नहीं कर सकते, ज़रूर हो सकती है, लेकिन आपको बीज जो है उसमें दुगुना थोड़ा लगाना पड़ेगा। वो मैंने जैसा पहले बताया कि इसमें 50 से 60% ही अंकुरण करने की क्षमता होती है। तत्पश्चात जो है पुनः बीज को बोने की आवश्यकता होती है। पुराने तालाब में भी ऐसा नहीं है, अगर पुराने तालाब में है तो उसमें बीज का फिर से उपयोग नहीं कर सकते हैं। पुराने तालाब में चूंकि प्रत्यारोपण करना आसान नहीं होता है, इसलिए आप बीज का छिड़काव यानी बुआई विधि को अपना सकते हैं, और इसमें नई फसल आने से पहले भी उसमें क्या होता है कि सारे का जर्मिनेशन नहीं होता है, इसलिए आप उसको फिर से उसमें डाल सकते हैं बीजों को, और खाली स्थान में जो है उसका प्रत्यारोपण भी बड़े बड़े पौधों का कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हम देखें कि फसल की बुआई विधि से ऐसे करते हैं। अब हम दूसरे जो विधि है रोपाई विधि, रोपाई विधि में क्या है, दो विधियाँ होती है। प्रथम विधि मखाने के थलावे कहते हैं, थलावे युक्त पौधा को निकाल कर रोपाई कर सकते हैं। थलावे मतलब क्या होगा, पूरा जड़ से उसको उखाड़ के एक दूसरे जगह प्रत्यारोपण करना होता है। दूसरी विधि क्या है, मखाने के पौधे में जिसे तालाब से निकाल कर जड़ में जो है मिट्टी नहीं होती उसकी रोपाई कर सकते हैं, वो 2 से 3 पौधे होने के स्थिति में करते हैं। मखाने की रोपाई का कार्य जो है वो मुख्यतः जो है तालाब में कतार से कतार और पौधे से पौधे की दूरी में आप 1 से 2 मीटर की दूरी रख सकते हैं, 1 से 1.5 मीटर की दूरी रख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं इसके पौधे की लंबाई जो है जो क्या कहते हैं चौड़ाई जो है वो 1.5 से 2 मीटर तक हो जाती है, इसलिए जो है ये काम जो है आपको करना। और किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि आप जो है कम से कम इसकी जितना भी रुपाई का काम है मार्च के अंदर कर लेते हैं तो आपको अच्छी फसल मिलने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। जहाँ तक इसका निकोनी का बात है तो इसमें जो भी करना है आपको पहले ही करना पड़ेगा, कारण कि अगर पौधा का जो लीफ है पत्ता जो है वो जब फैल जाता है तो उसमें घुस करके निकालना किसी भी चीज़ को बहुत ही कठिन होता है। धन्यवाद।
1: तो सर आपने जो भी जानकारी दी उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहनों के लिए काफी उपयोगी साबित होगी। तो जिस तरीके से किसान भाई बहनों सर ने बताया उन बातों का ध्यान रख के आप मखाना की खेती कर सकते हैं, और ख़ास तौर से अगर आप मखाना की खेती के लिए बिल्कुल नए हैं तो आपके लिए ये जानकारियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें। उन्नत कृषि
2: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
3: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
2: लेकिन ऐसा क्यों?
3: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
2: तो इसका हल क्या है?
3: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
2: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें।
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार करियर की बातें।

0: सकते हैं।
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
0: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
0: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।

की शुरुआत भागलपुर से माना जाता है। कहते हैं जब बिहुला ने रसोई बनाकर बाला को खिला पिला दिया तो बाला ने राम राम कह के अपना प्राण त्याग दिया। यह देखकर बिहुला रोने लगी, जिसे सुनकर उसकी सास सोनिका वहां आई और बिहुला को बुरा भला कहने लगी। तब बिहुला ने नागा को दिखाकर कहा कि देखिए, इसी ने आपके बेटे को काटा है। इसी कथा से संबंधित एक रोचक प्रसंग मैं आप लोगों को गीत के माध्यम से सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ।

0: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार, मैं हूं आरजे अनु। आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। दोस्तों, उन्नत कृषि कार्यक्रम में खास बातें होती हैं आपके लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए। जानते हैं खेती के बारे में और खेती से जुड़ी बहुत सारी बातें। फिलहाल आज का विषय है हमारा अरहर में लगने वाले कीटों का प्रबंधन। दलहनी फसलें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये हमें बहुत, मतलब ये पौष्टिक से भरे हुए रहते हैं और हमारे शरीर को जो एक पौष्टिकता चाहिए वो मिलता है हमें इन दलहनी फसलों से। लेकिन जब हमारे किसान भाई मेहनत करते हैं इन्हें उगाने में, इन फसलों को उगाने में, तो कई बार उनको नुकसान का सामना भी करना पड़ता है और वो वजह है कीटों का। जी हाँ, कीट पतंगे जो ये हमला कर देते हैं, तो नुकसान भी होता है फसलों के साथ साथ हमारे किसान भाइयों को। तो आज हम बातें करेंगे इसके प्रबंधन के बारे में, यानी कीटों के प्रबंधन के बारे में। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर किरण कुमारी मैम, और ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कीट विज्ञान विभाग से, और साथ ही मैं बता दूँ कि ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो जैसा कि हमारा विषय है मैम, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि अरहर फसलों को हानि पहुंचाने वाले कौन कौन से कीट हो सकते हैं।
1: अरहर फसल को हानि पहुंचाने वाले कीटों में प्रमुख हैं फली छेदक कीट, दूसरा है प्लूम मॉथ, पॉड फ्लाई, पॉड बग, काला भृंग एवं दीमक। ये सभी कीट जो हैं अरहर को हानि पहुंचाते हैं।
0: तो हमने जाना कि कौन कौन से कीट हो सकते हैं जो अरहर को मतलब कि हानि पहुंचा सकते हैं। तो इसके बाद मैम, अगर हमारे किसान

0: भाई अगर इसे पहचान जाएंगे तो आई थिंक इसका जो प्रबंधन है वो आसानी से किया जा सकता है। तो हम जानना चाहते हैं कि हम इन कीटों को, जो अलग अलग कीटों के नाम आपने कहे, कि हम उन्हें कैसे पहचानेंगे। साथ ही ये भी बताएं कि ये जो कीट हैं, जितने भी प्रकार के कीटों के नाम कहे आपने, ये भी बताएं कि ये कैसे हानि पहुंचाते हैं।
1: जी, फली छेदक कीट से हम शुरू करते हैं, क्योंकि यह जो है इसका जो लार्वा है ये लगभग 40 से 50% तक हानि पहुंचाता है। तो फली छेदक कीट, इसका वयस्क वो एक पतंगा है, यह पत्तियों पर, अरहर की जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों पर अंडे दे देते हैं, और इन अंडों से फुटकर फिर इल्लियाँ निकलती हैं जिसे हम पिल्लू कहते हैं। पिल्लू शिशु, ये जो इनके पिल्लू हैं वो फिर पत्तियों पर खाती हैं, और जब फिर जब ये फली लगती हैं तो फलियों में घुसकर खाती हैं। और ये पिल्लू जो हैं शुरू में हरे रंग के होते हैं, बाद में धीरे धीरे भूरे हो जाते हैं। और ये इनके जो पिल्लू के जो शरीर है, उस शरीर पर उनके शरीर के बगल में साइड, जिसको बोलते हैं साइड में, तीन तीन धारियां होती हैं, भूरे रंग की धारियां होती हैं। इससे हम आसानी से पहचान जाएंगे कि यह जो है फली छेदक कीट का लार्वा है, या जिसे पिल्लू कहते हैं। और यह जब फली लगता है तो फली में घुसकर खाता है। जब जैसे ये बड़ा हो जाता है तो ये अपने आधे शरीर को फली के अंदर घुसा देता है और आधे शरीर को फली के बाहर रखकर उसे खाता है। और ये जो प्लूम मॉथ है, प्लूम मॉथ जो ये, इसका भी वयस्क पतंगा ही होता है, और ये भी पत्तियों पर अंडे दे देती हैं, और इनसे भी फुट करके अंडों से वो पिल्लू निकलते हैं, और जिनके शरीर पर रोएं रहते हैं। और ये जनवरी से फरवरी तक इनका जो प्रकोप अधिक होता है, और शुरू में ये तो कलियों और फूलों में छेद कर हानि पहुंचाते हैं, फिर जिससे कि फूल और फलियां भी झड़ जाते हैं, और जब फली बनती हैं तब फली में भी छेद कर ये हरे जो दाने होते हैं उनको खा जाते हैं। कभी कभी अधखाए जो दाने होते हैं उन पर सफ़ेद या काले फफूंद भी आ जाते हैं। और जो पॉड फ्लाई है जिसे फली मक्खी कहते हैं, ये काले रंग का और चमकीले पंखों वाली ये मक्खी होती है, और ये जो मादा की मक्खी होती है ये फली के अंदर अंडे देती हैं, और अंडों से सफ़ेद रंग का वो पिल्लू निकलता है जिसे मैगोट भी हम लोग कहते हैं। ये फली के अंदर ही विकसित होकर जो हरे दाने हैं उनको नष्ट कर खाता है। और जिस ये बारीक छेद कर, मतलब बारीक यानी बहुत ही छोटे छोटे महीन छेद कर फलियों पर छेद बनाकर खाते हैं, और इस इन छेदों को देखकर जब छेद महीन महीन हो जाते हैं तो हम पता लगा सकते हैं कि ये जो है फली मक्खी का आक्रमण हो गया है।
0: अच्छा।
1: और पॉड बग ये जो है चूसक कीट है, ये भूरे रंग के होते हैं, और इसके वयस्क और जो निम्फ होते हैं, इसके जो शिशु होते हैं उसको निम्फ कहा जाता है। ये निम्फ भी ये फलियों से रस चूसकर खाते हैं, जिससे फलियां सिकुड़कर छोटी पतली हो जाती हैं। और काला भृंग, यह भी एक कीट है जिसे एपियन भी कहते हैं। ये पत्तों एवं फूलों पर इनका ये खाते हैं, और जल्द मध्य एवं देर से पकने वाली सभी किस्मों पर जो है अरहर के जो किस्म हैं इन पर इसका प्रकोप होता है। काला भृंग बहुत ही छोटे आकार का होता है, और इसका आगे का मुंह जो वो नुकीला होता है। खरीफ मौसम में यह जो है उड़द और मूंग पर भी दिखाई पड़ता है, और जब अरहर के पत्ती फूल, जब अरहर फसल लग जाते हैं तब ये अरहर के

0: पत्तियों और फूलों को छेद कर खाते हैं, और इस तरह से जब फूल को छेद कर खाते हैं तो फूल सूखने लगते हैं। इसका शिशु जो है वो गंदे उजले रंग का होता है, उजला रंग होता है परंतु वो थोड़ा गंदा लिए हुए रंग का होता है, और इसका मुंह का रंग जो है ये मुंह का रंग वो गहरा भूरा होता है, और इसका शरीर थोड़ा मुड़ा हुआ होता है, जैसे सी आकार में मुड़ जाता है उस तरह से इसका शरीर मुड़ा हुआ होता है। और यह फलियों में भी प्रवेश कर जो हरे दाने हैं उनको खाता है जी। और कभी कभी दीमक का भी प्रकोप देखा गया है, सभी इलाकों में तो नहीं लेकिन कुछ इलाकों में, जिसमें जिन मिट्टी में थोड़ा सा नमी अधिक होती है उसमें दीमक का भी प्रकोप देखा गया है। ये दीमक जो है जो नवजात जो पौधे होते हैं उनके जड़ों को खाकर नष्ट कर देते हैं
1: जी। तो किसान भाइयों, आपने जाना कि ये कौन कौन से कीट हैं, किस तरीके से हानि पहुंचाते हैं, और इसके साथ बहुत ज़रूरी होता है कि हम इनका प्रबंधन करें इनके पहचानने के बाद, ताकि हम अपने फसलों को बचा सकें। तो मैम अब थोड़ी बात कर लेते हैं प्रबंधन के बारे में
0: जी। हम शुरू करते हैं फली छेदक कीट का नियंत्रण कैसे करेंगे। तो फली छेदक कीट का प्रबंधन जो है वो जैसे ही वो चना ये सॉरी अरहर जो हम लगाते हैं वैसे ही फेरोमोन ट्रैप लगा देना चाहिए, क्योंकि फेरोमोन ट्रैप जो है इसका फली छेदक जो है, ये फली छेदक चना को भी हानि पहुंचाता है, और जब अरहर के फूल आते हैं तो उसमें खेतों में चना भी होता है, तो चना में भी यह कीट जो है आक्रमण करता है, इसलिए इसे चना फली छेदक कीट के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसे चना में हम फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं, उस तरह से अरहर में भी फेरोमोन ट्रैप, कम से कम जब अरहर में फूल आने लगे, फूल आने के पहले फेरोमोन ट्रैप 10 ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से अवश्य लगा देना चाहिए, और 3 सप्ताह के अंतराल पर जो फेरोमोन का ल्यूर होता है उसे बदल देना चाहिए, बदलते रहना चाहिए 3-3 सप्ताह के अंतराल पर। और अगर रासायनिक कीटनाशी का प्रयोग करना है तो रासायनिक कीटनाशियों में प्रोफेनोफॉस 50 EC दवा का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर प्रथम छिड़काव 50% जब फूल आ जाए तब करना चाहिए, एवं दूसरा छिड़काव 50% फलियां जब लग जाएं तब करना चाहिए। दूसरा कीटनाशी है स्पिनोसाइड दवा कीटनाशी जो है उसका 1 ml प्रति 5 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। इसके साथ ही नीम आधारित दवा का भी प्रयोग करना चाहिए। नीम आधारित दवा में निम्बिसिडी, नीमार्क, नीमाजल, इन कीटनाशियों में इन कीटनाशियों का 5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। प्लूम माथ कीट के लिए प्रोफेनोफॉस जो कीटनाशी है उस दवा का भी छिड़काव किया जा सकता है, प्रोफेनोफॉस दवा का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर, इसे भी फूल 50% फूल आने के पहले 50% फूल आ जाए तो पहला छिड़काव एवं दूसरा छिड़काव 50% फलियां लग जाएं तब करना चाहिए। और पॉड फ्लाई का नियंत्रण के लिए इंडोक्सा कार्ब 14.5 SC का 0.5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि पॉड फ्लाई का नियंत्रण हो जाता है। तीसरा है पॉड बग कीट का प्रबंधन के लिए, चूंकि यह चूसक दवा है इसलिए इस कीट का नियंत्रण के लिए नीम आधारित दवा का भी छिड़काव किया जा सकता है। नीम आधारित दवाओं में निम्बिसिडीन, नीमार्क, नीमाजल, अचूक या नीम का तेल का 5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव किया जा सकता है। अगर नीम का तेल का प्रयोग कर रहे हैं तो

0: इनेमल प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव किया जा सकता है। रासायनिक कीटनाशियों में इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL का 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। दूसरा छिड़काव यदि आवश्यकता हो तो 15 दिन के बाद फिर इसका इसी कीटनाशी का यानी इमिडाक्लोप्रिड से छिड़काव करना चाहिए। जो मैंने बताया काला भरिंग एपियन, इसके नियंत्रण के लिए भी इंडोक्साकार्ब 14.5 SC दवा का 0.5 ml यानी 0.5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। दीमक का भी प्रकोप जिन एरिया में इनका प्रकोप होता है तो इसके लिए बीजोपचार करके लगाना चाहिए। बीजोपचार के लिए क्लोरपाइरीफॉस दवा का 4 ml प्रति किलो बीज में मिलाकर और इसमें 15 ml पानी मिलाकर तब बीज को उपचारित कर लगाना चाहिए, बुआई करनी चाहिए। और खड़ी फसल में अगर दीमक का प्रकोप हो जाए तो क्लोरपाइरीफॉस दवा का 3 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।
1: तो किसान भाइयों, आपने जाना कि कीट के प्रकार को जाना, अपने साथ ही ये भी जाना कि आप उन्हें कैसे पहचान सकते हैं, वो हानि कैसे पहुंचाते हैं। साथ ही बहुत ज़रूरी बात था प्रबंधन इनका, तो ये भी आपने जाना कि हम कैसे इनका प्रबंधन कर सकते हैं। तो आपको बता दें, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ थी स्टूडियो में डॉक्टर किरण कुमारी मैम और ये थी असिस्टेंट प्रोफेसर कीट विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो किसान भाइयों, आशा करती हूँ कि अगर आपके अरहर के फसलों में कीट लग चुके हैं या कुछ ऐसे आपको पहचान दिख रहे हैं तो जल्द से जल्द उसका प्रबंधन करें ताकि आप अपने फसलों को बचा पाएं। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन आप सभी से और भी बातें करूंगी मैं और लेकर आऊंगी एक और भी अलग विषय को। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बक
2: खांसी?
3: हाँ।
2: इसको तो एक आध महीना हो गया,
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
5: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
4: ये मौसम है टीकाकरण करवाने का। तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
6: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
7: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
8: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
7: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
8: आपकी सेहत की बातें,
7: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
8: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
7: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
8: वो कहाँ पर?
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
8: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।

ഉന്നത് കൃഷി. नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा. दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में. दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो बिहार के युवाओं,

0: तौर से जो युवा है वो इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी सोच को साकार करने के लिए बिहार सरकार ने बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 लागू की है, और जिसका उद्देश्य है युवाओं को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाना। तो इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कृति। डॉक्टर कृति है कृषि प्रसार विभाग से, और साथ ही मैम है असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, और मैम स्टार्टअप जागरूकता के कार्यक्रमों से भी जुड़ी हुई हैं। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद उमा।
0: मैम सबसे पहले तो आप हमें ये समझाइए कि बिहार स्टार्टअप पॉलिसी क्या है, इसके बारे में बताइए।
1: बिल्कुल, अगर हम बिहार स्टार्टअप पॉलिसी की बात करें तो बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 राज्य सरकार की एक दूरदर्शी पहल है, जिसका उद्देश्य बिहार में नवाचार, उद्यमता और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना है। इस नीति के माध्यम से युवाओं को वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और इंक्यूबेशन सुविधा एवं निवेशकों से जुड़ने का अवसर प्रदान किए जाते हैं, तथा इसके माध्यम से सरकार चाहती है कि बिहार का जो युवा है, युवा वर्ग है, वो केवल नौकरी की प्रतीक्षा ना करें बल्कि अपने विचारों को व्यवसाय में बदलकर दूसरों को भी रोजगार प्रदान करें, ताकि वो जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बन सके।
0: यस मैम। मैम अगर हम स्टार्टअप को आसान भाषा में समझना चाहें तो आप इसे कैसे समझाएंगे?
1: अगर इसको सरल भाषा में कहें तो कोई ऐसा नया व्यवसाय जो किसी समस्या का नवीन समाधान प्रस्तुत करता हो वो स्टार्टअप कहलाता है। लेकिन यदि कोई युवा किसान के लिए मोबाइल, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि जैसे कोई युवा किसान है जो या कोई यदि कोई युवा किसान के लिए मोबाइल ऐप विकसित करता है जो कि महिला स्थानीय उत्पादकों को ऑनलाइन बेचने में का प्लेटफॉर्म बनाती है, या कोई शोधार्थी नई कृषि तकनीक विकसित करता है, तो ये सभी स्टार्टअप की श्रेणी में आ सकते हैं। अगर ये उनके इस तकनीक से, जो नवीन तकनीक है, इनसे ना केवल वो जीविकोपार्जन अपना इनकम बढ़ा सकते हैं बल्कि इससे वो समाज को भी फायदा पहुंचा सकते हैं और कई और भी लोगों को वो जॉब दे सकते हैं।
0: मैम बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के बारे में जैसे आपने बताया, कुछ उद्देश्य अभी आपने बताए, लेकिन अगर हम विस्तार से इसके मुख्य उद्देश्य के बारे में समझना चाहें तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
1: इसका अगर प्रमुख उद्देश्य देखा जाए तो सबसे पहला तो उद्यमता को बढ़ावा देना होगा, उसके बाद युवाओं में नवाचार और व्यवसायिक सोच विकसित करना, इसका ये प्रमुख उद्देश्य अगर माना जाए तो सबसे पहले कि जो हमारे युवा वर्ग हैं उनके अंदर एक इनोवेशन, नवाचार और व्यवसायिक सोच जो होता है, जो उसको फाइनेंशियली कैसे कन्वर्ट कर सके, वो लोगों को कैसे उससे व्यवसाय के रूप में उसको डेवलप कर सके, ये प्रमुख हैं। इसके साथ साथ स्टार्टअप को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना भी है, साथ ही इंक्यूबेशन और को वर्किंग स्पेस उपलब्ध करवाना है, प्रशिक्षण और मेंटरशिप एवं विशेषज्ञ का मार्गदर्शन देना, इसके साथ ही साथ जितने भी सरकारी प्रक्रिया है उसको और भी सरल बनाना, और स्कूल और विश्वविद्यालय में उद्यमता शिक्षा को बढ़ावा देना। मैं हम आगे बात करेंगे कि इंक्यूबेशन और को वर्किंग स्पेस जो है ये सब क्या होता है,
0: लेकिन मैम अभी मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या स्टार्टअप शुरू करने के लिए सरकार कोई सहायता देती है और कितनी सहायता देती है?
1: बिल्कुल, यह जो है इस नीति का सबसे आकर्षक पहलू माना जाता है जो कि वित्तीय सहायता है। तो अगर हम स्टार्टअप में वित्तीय सहायता की बात करें तो जो योग्य स्टार्टअप होते हैं, जो एलिजिबल स्टार्टअप होते हैं, उनको सरकार 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त सीड फंड प्रदान करती है। यह राशि स्टार्टअप के विकास, प्रोटोटाइप निर्माण, मार्केटिंग, उत्पाद विकास एवं प्रारंभिक संचालन के लिए उपयोग की जा सकती है। इस राशि पर कोई ब्याज नहीं लगता तथा पुनर्भुगतान के लिए लगभग 10 वर्ष तक का समय सीमा दिया जाता है।
0: हम सीड फंड, जैसे कि आपने बताया, बहुत सारे लोग इसे बैंक लोन समझ लेते हैं, क्या ये एक ही है या इसमें कोई अंतर है?
1: बिल्कुल, आपने सही पूछा। इसमें कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सीड फंड और बैंक लोन में क्या अंतर होता है। जैसे कि अभी हमने बोला कि 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त सीड फंड प्रदान करती है, मैंने बैंक लोन नहीं बोला। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर हम बैंक लोन की बात करें तो बैंक लोन में ब्याज देना पड़ता है, नियमित ईएमआई चुकानी होती है, और कई बार तो हमारी हमें गारंटी भी देनी पड़ती है। लेकिन अगर हम बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के अंतर्गत मिलने वाला सीड फंड, ब्याज मुक्त एक फंड होता है, इसकी बात करें तो इसका उद्देश्य जो होता

0: होता है वो स्टार्टअप को प्रारंभिक सहयोग देना होता है। यह समान बैंक ऋण से अधिक उद्यमी अनुकूल व्यवस्था है।
1: और इसमें क्या महिलाओं को और जो सामाजिक रूप से वंचित वर्ग हैं उनके लिए कोई विशेष सुविधा है?
0: बिल्कुल, महिला उद्यमों को तो बिल्कुल अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है तथा उनको प्रशिक्षण एवं मेंटरशिप में भी विशेष सहायता दी जाती है। और इसी प्रकार से जैसे STSC उद्यमी जो होते हैं उनके लिए भी अतिरिक्त लाभ, विशेष सहायता तथा स्टार्टअप फंड में आरक्षित प्रावधान भी रखे गए हैं जिससे अधिक से अधिक युवाओं को अवसर मिल सके।
1: मैम, अगर कोई युवा स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए, अगर आप प्रोसेस इसका पूरा बता दे तो?
0: बिल्कुल, मैं इसे एक चरणबद्ध तरीके से समझाना चाहूंगी। इसका सबसे पहला चरण जो है वो समस्या की पहचान यानी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है। सबसे पहले तो हम ये तय करें कि हम जो समस्या का समाधान करना चाहते हैं, जैसे कि किस समस्या का समाधान करना चाहते हैं, जैसे किसानों की फसल का रोग पहचान, खाद्य प्रसंस्करण, जैविक उत्पादन विपणन, ग्रामीण ई कॉमर्स या कृषि मशीनरी साझा सेवा, इस टाइप के जो भी समस्याएं हैं हमारे समाज के रूप में, पहले हम उसको आइडेंटिफाई करें। अगर हम दूसरे, ये तो पहला चरण हो गया, इसके बाद हम दूसरे चरण की तरफ बढ़ेंगे जहां हम बिजनेस आइडिया तैयार करें। तो इसके लिए कुछ प्रश्नों के उत्तर तैयार करें, जैसे समस्या क्या है, उसका समाधान क्या हो सकता है, इसमें नया क्या होगा, और इसके जो ग्राहक होंगे, सबसे पहले जो मार्केटिंग, जो हमारे कंज्यूमर होंगे उनके बारे में हम सोचेंगे, और आय का स्रोत क्या होगा, हम जो बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हमें उसमें कहाँ से फंडिंग आएगा और कितना पैसा जो हमारे जो कंज्यूमर होंगे उनसे किस रूप में हमें आय मिल पाएगा। तो ये हो गया दूसरा चरण। अब हम आगे बढ़ते हुए तीसरे चरण पे जाएंगे जिसमें हम बिजनेस प्लान बनाएंगे। तो ये एक मजबूत, इसमें एक हम बहुत मजबूत बिजनेस प्लान तैयार कर सकते हैं जिसमें कि जैसे उद्देश्य होना चाहिए, हमारा उत्पाद होगा या सेवा होगा, प्रोडक्ट होगा या सर्विस होगा, इस पे भी हम सोचेंगे। फिर हमारे संभावित ग्राहक कौन होंगे, है ना, फिर हम बाजार को भी देखेंगे कि हमारा जो बाजार है वो लोकल मार्केट है, कितनी दूरी पे है, और इसके लिए जो हमारे जो स्टार्टअप जो स्टार्ट करेंगे उसके लिए वित्तीय सहायता कहाँ कहाँ से हमें मिल सकता है, और इससे रिलेटेड राजस्व मॉडल क्या हो सकता है। तो ये हो गई हमारे पहले चरण, दूसरे चरण और तीसरे चरण। इसके आगे है चौथा चरण जिसमें हम आवश्यक दस्तावेज तैयार करेंगे। तो अगर हम समानता देखा जाए तो दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड हो गया, बिजनेस प्लान हो गया, पिच डेक हो गया, जैसे कि PPT, PDF, ये सब हम कहीं प्रेजेंट करते हैं तो हमें पावर पॉइंट के रूप में उन दिखाना पड़ता है, और फिर DPIIT मान्यता जो होता है इसमें हमें एक लेना पड़ता है, उपलब्ध अगर है हमारे पास तो ये भी दस्तावेज हम अपने साथ रख सकते हैं। तो समस्या की पहचान करते हुए, बिजनेस आइडिया तैयार करते हुए, बिजनेस प्लान बनाते हुए और अपने पास आवश्यक दस्तावेज को संग्रहित करने के बाद हम पांचवें चरण पे जाएंगे जो कि है स्टार्टअप बिहार पोर्टल पे आवेदन करना। तो आवेदक को स्टार्टअप बिहार पोर्टल पर पंजीकरण करना होता है और वहां उनको अपनी प्रोफाइल बनानी होती है, उसके बाद अपने सारे दस्तावेज अपलोड करने होते हैं और अपना बिजनेस आइडिया प्रस्तुत करना होता है। अब एक बार जब उन्होंने स्टार्टअप बिहार पोर्टल पर आवेदन कर दिया, ये पांचवा चरण है, और इसके बाद हम छठे चरण की तरफ जाएंगे जहां पे मूल्यांकन और प्रस्तुतिकरण होता है। तो इसमें जो विशेषज्ञ समिति है जो स्टार्टअप बिहार के, उनके द्वारा हम जो हमारे युवा वर्ग हैं जिन्होंने अप्लाई किया है उनका, उनके विचार का मूल्यांकन होता है। तो वो देखते हैं, अब वो क्या क्या देखेंगे कि जो आइडिया आपने दिया है उसमें नवाचार है या नहीं है, इनोवेशन है या नहीं है, नयापन है या नहीं है। तो उसके बाद सबसे पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है नवाचार, न्यूनेस। उसके बाद उसमें व्यवहार्यता है या नहीं है, बाजार जो है उसका संभावना है या नहीं है, उसके बाद रोजगार सृजन की क्षमता है कि नहीं है, कि हम खुद ही नहीं हम औरों को भी रोजगार इससे दे सकते हैं कि नहीं है, फिर इससे सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, सामाजिक प्रभाव क्या हो सकता है। तो ये सब जो हैं कुछ पॉइंट हैं जिसके आधार पे मूल्यांकन करती है जो विशेषज्ञ समिति है स्टार्टअप बिहार के। मूल्यांकन और प्रस्तुतिकरण के बाद सातवें चरण पे हम पहुंचेंगे जहां पे हम इंक्यूबेशन और मेंटरशिप की बात करते हैं। इन सब को देखते हुए जो हमने छठे

0: रन की बात की, जो जहाँ पे हमारा मूल्यांकन हुआ, प्रस्तुतिकरण हुआ, उसमें से अब जो आइडिया है उसमें स्वीकृत हो गया। मान लीजिए आपका आइडिया सेलेक्ट हो गया, तो सेलेक्ट होने के बाद जितने भी सेलेक्टेड स्टार्टअप होते हैं उनको इंक्यूबेशन सेंटर अलॉट किए जाते हैं। तो उसमें स्वीकृति मिलने के बाद जैसे स्टार्टअप को मेंटरशिप सेशन, मतलब उनको समय समय पे आपको गाइडेंस मिलता है, उनको जो सहायता की जरूरत होती है, कार्यालय सुविधा अगर उनको चाहिए तो वो भी दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, उनकी नेटवर्किंग कैसे बढ़ाई जाए इसके रूप में भी उनको सहायता की जाती है और उनको हेल्प किया जाता है, मदद किया जाता है कि वो निवेशकों से कैसे संपर्क में आए। जैसे बहुत बड़े बड़े बड़े मेगा फेस्ट होते हैं जहाँ पे ऐसे स्टार्टअप्स को इनवाइट किया जाता है ताकि वो दूसरे से मिल सके, उनको एंजल इन्वेस्टर मिल सके जो उनके आइडिया को में इन्वेस्ट करना पसंद कर सके। तो ऐसे प्लेटफॉर्म भी उनको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाती। उसके बाद सबसे जो लास्ट है वो है सीड फंड हेतु आवेदन। जब विचार व्यवहारिक साबित हो जाता है तब स्टार्टअप सीड फंड के लिए आवेदन कर सकता है और जो यह राशि जो है वो चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाती है और इसके उपयोग की निगरानी भी की जाती है। ऐसा नहीं कि आपको पैसे दे दिए गए और फिर उसका कोई हिसाब नहीं रखा जाता है, आपको ये पैसे, ये सीड फंड जो होता है ये दिया तो जाता है पर इसकी निगरानी भी रखी जाती है। तो इस तरह 8 चरण में जो है स्टार्टअप पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
1: मैम आपने 8 चरणों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया, लेकिन अब ये सवाल है कि क्या हर स्टार्टअप जो कोई शुरू करना चाहता है वो इसी प्रक्रिया से आगे बढ़ेगा, एक जैसे प्रक्रिया से आगे बढ़ेगा?
0: समानता जो होते हैं कोई भी स्टार्टअप वो 6 चरण से गुजरते हैं। यानी कि सबसे पहला अगर हम बात करें एक सफल कंपनी बनाने का जो पूरा सफर तय किया जाता है उसको हम 6 स्टेज के रूप में देख सकते हैं। सबसे पहला जो स्टेज होता है उसको हम कहते हैं आइडिएशन स्टेज। और आइडिएशन स्टेज में हम क्या करते हैं तो हम अपने नए विचारों को जन्म देते हैं, हमारे माइंड में, हमारे जो मस्तिष्क में नए नए विचार आते हैं, जो नवाचार आते हैं उसका जन्म होता है। सो विचारों का जन्म होना आइडिएशन स्टेज कहलाता है। दूसरी जो स्टेज है, दूसरा स्टेज, उसको हम वैलिडेशन या प्रोटोटाइप स्टेज कहते हैं। तो ये वैलिडेशन या प्रोटोटाइप स्टेज का मतलब होता है प्रारंभिक मॉडल विकसित करना, जो दिमाग में आपका आइडिया आपने उसको मॉडल के रूप में विकसित किया। तीसरा स्टेज की जब बात कर ले तो इसको हम कहते हैं अर्ली ट्रैक्शन स्टेज। अर्ली ट्रैक्शन स्टेज में क्या करते हैं हम, प्रारंभिक ग्राहक प्राप्त होना इसमें हम ट्रैक करते हैं, अर्ली ट्रैक्शन स्टेज कहते हैं। इसके बाद ग्रोथ स्टेज आता है जिसमें हम अपने व्यवसाय को विस्तार करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। ग्रोथ स्टेज के बाद नेक्स्ट स्टेज जो आता है वो होता है स्केलिंग स्टेज। इसमें हम अपने जो व्यवसाय है उसको राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करेंगे, तो इसको स्केलिंग स्टेज कहते हैं। और सबसे लास्ट स्टेज जो होता है एक अगर हम स्टार्टअप की बात करें तो उसमें होता है मैच्योर स्टार्टअप स्टेज, मतलब अब आपका जो स्टार्टअप है वो मैच्योर हो चुका है। इसमें इसका मतलब है कि अब आपका स्टार्टअप स्थापित हो चुका है और एक सफल कंपनी के रूप में उभर चुका है। तो ये समानता 6 स्टेज होते हैं, 6 चरण होते हैं किसी भी स्टार्टअप के।
1: यस मैम, मैम जब हम बिहार की बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, तो ऐसे में क्या कृषि के क्षेत्र में भी स्टार्टअप की कोई संभावनाएं हैं?
0: बिल्कुल, ये अगर हम कहें तो सबसे ज्यादा जो संभावनाएं हैं, आप जितने भी स्टार्टअप देखेंगे मैक्सिमम सबसे ज्यादा जो की जाती है ना वो एग्रीकल्चर के ही क्षेत्र में की जाती है, क्योंकि इसमें बहुत मतलब व्यापक संभावनाएं हैं, अत्यंत व्यापक। अगर इसकी बात करें तो जैसे कि एग्रीटेक हो गया, ड्रोन की सेवाएं हो गई, मिट्टी परीक्षण की बात करते हैं, सॉइल टेस्टिंग, फसल रोग पहचान करने की, और खाद्य प्रसंस्करण, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी जो कहते हैं, मतलब फूड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, उसमें हम ये बहुत ही उभरता हुआ एक व्यापक संभावनाएं लिए हुए एक विषय है। इसके बाद जैसे जैविक खेती हो गई, ई मार्केटिंग हो गई, डेयरी और पशुपालन हो गया, FPO आजकल जो होता है संगठन के रूप में विकास होना, इस पे मुख्य बल सरकार भी दे रही है, तो FPO का हो गया, ऐसे क्षेत्रों में हजारों अवसर उपलब्ध हैं कृषि के क्षेत्र में।
1: और मैम बिहार कृषि विश्वविद्यालय जैसे संस्थाओं का इसमें कुछ अहम इनकी भूमिका होती है।
0: बिल्कुल, अगर हम बिहार कृषि विश्वविद्यालय की बात करें

तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय जो हमारा है वो बिहार राज्य का एकमात्र इकलौता कृषि विश्वविद्यालय है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हमारा जो कृषि विश्वविद्यालय है इसका कोई भूमिका ना हो, और इसकी बहुत ही अहम भूमिका है। तो युवाओं को ये जानना जरूरी है कि जो हमारी बिहार कृषि विश्वविद्यालय है ये बिहार सरकार के उद्योग विभाग के अंतर्गत हमारे यहाँ स्टार्टअप सेल भी हैं और इनक्यूबेशन सेंटर भी हैं, जो कि राज्य के सर्वश्रेष्ठ केंद्रों में से शीर्ष स्थान पर आते हैं। तो अगर हम BAU की बात करें तो ये एक स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जो हमारा स्टार्टअप सेल है, इनक्यूबेशन सेंटर है, ये युवाओं को बहुत ही मदद करता है, जैसे कि वैज्ञानिक प्रमाणीकरण में, अनुसंधान सहायता में, प्रोटोटाइप परीक्षण में, किसान परीक्षण में, मेंटरशिप में और इनक्यूबेशन जैसी सुविधाएं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इनक्यूबेशन में हम मेंटरशिप सेशन देते हैं उनको समय समय पर, उनको कहाँ से फंड उपलब्ध, इवन हम जैसे स्टार्टअप सेल है तो उनको जब स्टार्टअप बिहार पॉलिसी के लिए अप्लाई करना होता है तो हम उसमें भी उनको मदद करते हैं। और जैसा मैंने बताया कि जो हमारे जो ये दोनों सेंटर हैं ये बिहार सरकार के उद्योग विभाग के अंतर्गत आते हैं, तो हमें वहाँ से ही जो जो सेलेक्टेड स्टार्टअप्स होते हैं उनको अटैच किया जाता है। तो हमारे कई सारे स्टार्टअप्स जो हैं बिहार सरकार के द्वारा यहाँ पे अटैच्ड हैं, जो कि बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहे हैं ऑलरेडी। तो अगर BAU की भूमिका की बात है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग प्रदेश, इस अंग की धरती पर और इस

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

बोर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय
1: लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है आपके विशेष कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। लेडीज फर्स्ट में आज हम बातें करने वाले हैं बहुत सारी हमेशा की तरह। और अभी गर्मी की जो बात करें तो गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि क्या ही कहने, अभी चिलचिलाती धूप में बाहर जाने की इच्छा ही नहीं होती है, पर क्या करें, काम है तो जाना ही पड़ता है। और ऐसे में हमारी सेहत के ऊपर जो असर होता है वो तो होता ही है, साथ ही हमारे स्किन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर होता है और बुरा असर होता है। ज़रूरी है कि हम अपनी सेहत का अंदर से भी ध्यान रखें और बाहर से भी हम अपनी स्किन का, यानी कि अपनी जो हमारी ये प्यारी सी चमड़ी होती है ना, इसका भी थोड़ा थोड़ा हम ध्यान रखें। और अगर हम बात करें तो आप, बहुत ज़रूरी है कि इस मौसम में आप बहुत सारा पानी पिए और साथ ही जो भी अभी मौसमी फल हैं उसका सेवन ज़रूर करें। तरबूज है, उसमें भी बहुत प्रचुर मात्रा में पानी होता है तो उसका भी सेवन करें। इस तरीके के मौसमी फलों का सेवन करना, खूब सारा पानी पीना और जो एक बैलेंस डाइट होता है उसे मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। और साथ ही ऊपर से भी हम अगर अपने स्किन के देखभाल की बात करें तो आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, किस तरीके से आप कुछ फेस पैक का इस्तेमाल करके अपने चेहरे को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारी स्किन होती है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर के स्वास्थ्य के बारे में बताती है। अगर किसी के पेट में गड़बड़ी होगी तो आप कुछ भी कर लो, उसके चेहरे पर कुछ ना कुछ परेशानी होगी ही। और भी ऐसी बहुत सारी परेशानी होती है जो आपके चेहरे पर नज़र आती है, लेकिन फिर भी आप अंदर से बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन वो जो सूरज की किरणें हैं वो आपको परेशान किए जा रही है। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि उन सूरज की किरणों को थोड़ा मात देने के लिए हम थोड़ी सी तैयारी तो कर ही लें। जी हाँ, यानी कि थोड़ी सी स्किन केयर कर ही लें। आइए आज मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे फेस पैक के बारे में जो बहुत ही आसान है लेकिन आपके स्किन को वो प्राकृतिक रूप से ठंडा रख सकते हैं। और इसके लिए घर पर कुछ जो रखी चीजें हैं उन्हीं चीजों से आज मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से आप फेस पैक बना सकते, इस भीषण गर्मी में भी, बढ़ते तापमान के बाद भी आप अपने स्किन को बिल्कुल फ्रेश और ठंडा रख सकते हैं। आइए सबसे पहले हम तरबूज और बेसन के फेस पैक के बारे में बात करें। तरबूज में ना पानी की बहुत ज्यादा मात्रा होती है, उसे तो खाना है ही ढेर सारा, लेकिन खाने के बाद जो एक दो टुकड़े बच जाए ना, उससे आप अपने त्वचा को बिल्कुल हाइड्रेटेड रख सकते हैं। कैसे, तो आपको मैं बताती हूँ। इसके साथ आपको चाहिए होगा बेसन भी। जी हाँ, बेसन ना हमारे जो त्वचा होती है उसकी गंदगी को साफ करने में और जो भी हमारे चेहरे में एक्स्ट्रा तेल

होता है, अतिरिक्त तेल होता है, उसे हटाने में ये मदद करता है। और साथ ही ये हमारी त्वचा को लंबे समय तक हाइड्रेटेड रखने के साथ ही हमारी त्वचा की जो चमक है उसे भी बढ़ाता है। और गर्मी में होने वाली जो ड्राइनेस होती है और गर्मी में कई बार चिपचिपाहट की भी परेशानी होती है, उसे भी कम करने में ये मदद करता है। तो आपको चाहिए होगा दो चम्मच तरबूज का रस, एक चम्मच बेसन और एक चम्मच शहद। शहद हमारे स्किन के लिए बहुत ही कमाल का होता है। आइए अब हम जानते हैं कि अब इन तीनों का इस्तेमाल कैसे करना है। एक कटोरी में आप तरबूज का रस निकाल ले, इसे अच्छी तरीके से बेसन और शहद मिलाकर गाढ़ा एक पेस्ट तैयार कर ले। और जैसे ही आपका ये जो फेस पैक तैयार होता है, इसे पूरे चेहरे पर, गर्दन पर, चाहे तो आप अपने हाथों पर भी लगा सकते हैं और इसे 15 मिनट के लिए खुला छोड़ दें। और इसके बाद आप हमारे साथ जुड़े रहें 15 मिनट के लिए, कोई हमारा बहुत ही विशेष प्रोग्राम सुने और उसके बाद आप हल्के हाथों से इसे मसाज करते हुए आप धो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला फेस पैक। और दूसरा जो फेस पैक है वो है खीरा और दही का फेस पैक। खीरा और दही दोनों ही कह सकते हैं कि गर्मियों का एक बहुत ही अच्छा साथी है। खीरा है, उसमें इतने सारे पानी होते हैं और उसका जो स्वाद होता है वो भी कमाल का होता है। और दही से आप छाछ बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, और ख़ास तौर से दही इस वक्त हमारे सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और खीरा हमारे स्किन को भी बहुत ठंडक पहुंचाता है, जबकि दही की अगर हम बात करें तो दही एक बहुत ही नेचुरल मॉइस्चराइज़र के रूप में बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये जो फेस पैक मैं आपको बताने वाली हूँ ना, ये फेस पैक गर्मी में स्किन को काफ़ी हद तक फ्रेश रखने के लिए बेहतरीन माना जाता है। और साथ ही हमारे स्किन को तुरंत ठंडक पहुंचाने के लिए ये फेस पैक आप लगा सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो सन टैन को भी ये कम करने में काफ़ी मददगार साबित होता है और हमारे स्किन को भी मुलायम और फ्रेश बनाने में काफ़ी मदद करता है। आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए होगा एक छोटू सा खीरा, दो चम्मच दही और एक चम्मच गुलाब जल। गुलाब जल तो मतलब मौसम चाहे कोई भी हो, हमारे त्वचा का सबसे अच्छा साथी होता है गुलाब जल। तो आप खीरा लीजिए और खीरे को आप कद्दूकस करके उसका, खीरे को पहले छील लेना है, ठीक है? तो खीरे को आप छीलने के बाद कद्दूकस करके उसका पेस्ट तैयार कर लेंगे और इसमें दही और गुलाब जल डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करके एक स्मूथ सा पेस्ट बना लीजिए। और अब इस फेस पैक को चेहरे पर, गर्दन पर अच्छी तरीके से लगा लेना है और 15 से 20 मिनट तक छोड़ देना है। और फिर से मैं वही कहूंगी, तब तक 15 से 20 मिनट के लिए आप हमारे प्रोग्राम को सुनिए 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़िए, जहां पर बहुत सारी जानकारियां आपको मिलती है। तो फिलहाल आगे 15 से 20 मिनट के बाद आपको करना क्या है, तो 15 से 20 मिनट के बाद आप इसे ठंडे पानी से अपना चेहरा साफ कर ले। और तीसरे अगर फेस पैक की हम बात करें तो वो है एलोवेरा और चंदन का फेस पैक। गर्मी के मौसम में ये दोनों ही बहुत ज़रूरी होते हैं और ख़ास तौर से चंदन और एलोवेरा। तो कुछ लोगों को हो सकता है कि सूट ना करता हो और कुछ लोगों को सूट करता है। अगर आपको जो हमारा फ्रेश एलोवेरा होता है ना, जो आप पौधे से बिल्कुल तोड़कर निकालते हैं, कुछ लोगों को वो फ्रेश एलोवेरा सूट नहीं करता है, तो आप बाहर जो डिब्बे में एलोवेरा जेल आता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गर्मी के मौसम में ना आप क्या करेंगे कि एलोवेरा और चंदन का फेस पैक बना सकते हैं। किस तरीके से बनाना है, तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि एलोवेरा किस तरीके से हमारे स्किन को मदद करता है। तो एलोवेरा ना हमारे स्किन को हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है, जो कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और चंदन तो सभी को पता है, चंदन चेहरे को बिल्कुल ठंडक पहुंचाता है। इस बात से कौन नहीं वाकिफ होगा कि चंदन हमारे चेहरे के लिए क्या करता है। और गर्मियों में ये फेस पैक ना हमारे चेहरे की गर्मी को, और कई बार जो गर्मी की वजह से जलन होती है ना, बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि शाम ढलते ढलते उनके चेहरे पर गर्मी की वजह से ना जलन होने लगती, तो उनके लिए फेस पैक रामबाण साबित हो सकता है। और तो अगर हम बात करें तो आप इस फेस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं चेहरे की गर्मी और जलन को कम करने के लिए। साथ ही ये आपके स्किन को ठंडक भी पहुंचाता है और नमी भी प्रदान करता है। और साथ ही सोने पे सुहागा, ये नेचुरल ग्लो भी लाता है। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा दो चम्मच एलोवेरा जेल, एक चम्मच चंदन पाउडर और एक चम्मच गुलाब जल। तो गुलाब जल हर जगह फिट हो जाता है ना हमारे स्किन केयर में। और अगर मैं बात करूं तो एक छोटी सी कटोरी में एलोवेरा जेल ले। अगर आपके पास फ्रेश है और आपको फ्रेश एलोवेरा
जो पल्प है वो सूट करता है तो अच्छी बात है, वरना आप जो बाहर बाजार में मिलते हैं एलोवेरा जेल उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक कटोरी में आपको एलोवेरा जेल लेना है, फिर इसमें चंदन पाउडर और गुलाब जल डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करके एक स्मूद सा एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेना है। और फिर इससे आपको ना चेहरे को पहले साफ करना है, और फिर आप किसी फेस वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी भी चीज़ के इस्तेमाल से आप अपने चेहरे को अच्छी तरीके से साफ कर ले।

उसके बाद इस फेस पैक को लगा ले और फिर से 10-15 मिनट के लिए छोड़ दे और हमारे साथ जुड़ जाए। इसके बाद आप नॉर्मल जो टेम्परेचर का पानी होता है उससे अपने चेहरे को अच्छी तरीके से धो लें। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई, और ये जो भी मैंने आपको फेस पैक अभी बताया ना, इसे आप हफ्ते में 2 बार आराम से लगा सकते हैं। लेकिन ये नहीं करना है कि हर एक फेस पैक को इस्तेमाल कर रहा है। जो फेस पैक आपके चेहरे को सूट कर रहा है और जो फेस पैक से आप देख रहे हैं कि आपको उससे अच्छा आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है, उसके साथ आप स्टिक रहें। और जो भी फेस पैक आप लगाएं उससे पहले आप अपने चेहरे को ना अच्छी तरीके से साफ कर लें और उसके बाद ही आप फेस पैक को लगाएं। और अगर किसी भी सामग्री से आपको एलर्जी होती है तो उसका इस्तेमाल ना करें। हो सकता है कि आपको एलोवेरा सूट ना करता हो या फिर कोई और भी जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो सूट ना करता हो। तो जैसे ही आप कोई नया फेस पैक ट्राई करते हैं ना, मैंने जो आपको 3 बताए उसके अलावा भी कभी भी आप कोई भी नया फेस पैक ट्राई करते हैं ना, तो उसे पहले आप अपने कोहनी पर लगा कर देखें। कोहनी पर आप लगाएंगे ना, तो अगर आपको वहां पर कोई परेशानी नहीं हो रही है या फिर आप अपने हाथों के ऊपर लगा कर देखें आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है, तो आप अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी चेहरे पर लगाने के बाद खुजली महसूस हो या जलन हो तो तुरंत ही उस फेस पैक को हटा देना है चेहरे से। तो इन बातों का ध्यान रखकर आप आराम से इन फेस पैक का इस्तेमाल कीजिए और उम्मीद है कि इस गर्मी में भी आप अंदर से बाहर से ग्लो करेंगे और बहुत ही कमाल के और बहुत ही खुश लगेंगे। और अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो बिल्कुल आपकी खुशी में 4 चांद हम लगा देंगे। और अगर हम बात करें तो इस फेस पैक को, जैसे कि मैंने आपको बताया, ध्यान रखें कि फेस पैक को लगाने से पहले स्किन पर आप एक बार इसको ना एक बार अच्छे तरीके से टेस्ट ज़रूर कर लें, कोहनी पर लगाकर या फिर हाथ के स्किन पर लगाकर। तो इन बातों का ध्यान रखिए और गर्मी का आनंद उठाइए। ये कहना थोड़ा मुश्किल लगता है कि गर्मी का आनंद उठाइए, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि क्या कहें। तो अपना और अपनी सेहत का बहुत बहुत बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं धान की बुआई की विभिन्न तकनीकों के बारे में। किसान भाई बहनों, हम सब जानते हैं कि धान हमारे लिए एक प्रमुख खाद्यान्न है, साथ ही हमारी कृषि अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाता है। इसलिए कई मायनों में धान काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि धान की फसल अच्छी हो, उपज अच्छी हो, और इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि किसान भाई बहन ये समझे, ये जाने कि किस तरह की मिट्टी में किस तरह की बुआई करनी चाहिए। आइए इस बारे में जानते हैं डॉक्टर गायत्री कुमारी से। मैम, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं सस्य विज्ञान विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: जी धन्यवाद उमा, नमस्कार।
1: मैम, आपसे सबसे पहला सवाल कि धान की बुआई की कितने प्रकार की तकनीकें होती हैं?
2: विशेषतः धान की बुआई जो हम करते हैं वो कई हद तक डिपेंड करती है कि किस तरह की मिट्टी है या किस तरह का जल वहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर हम तरीकों की बात करें, विभिन्न तकनीकों की बात करें, तो बेसिकली तीन चार तकनीकें होती हैं। एक होती है डायरेक्ट सोइंग, जिसको हम सीधी बुआई बोलते हैं। एक होती है ट्रांसप्लांटिंग, जिसको हम रोपाई विधि बोलते हैं। उसके बाद होती है श्री विधि, जिसको हम सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन बोलते हैं। और एक होती है मैकेनिकल सीडिंग, जिसमें हम अगर ड्रम सीडर वगैरह कोई मशीन्स यूज़ करके हम बुआई करते हैं बीज की। तो ये कुछ तकनीकें होती हैं। अब किसानों के पास जो भी फैसिलिटी अवेलेबल है, कैसा ज़मीन है, उस पर जल जमाव हो रहा है या नहीं, या मिट्टी किस तरह का है, तो उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की बुआई तकनीकें इस्तेमाल करना चाहते हैं।
1: जी मैम, तो मैम आप इन तीनों तकनीकों को विस्तार से समझा दीजिए।
2: पहली जो हमारी डायरेक्ट सोइंग यानी सीधी बुआई हो गई, तो डायरेक्ट सोइंग कहने का मतलब ही है कि हम या जब बुआई कर रहे हैं तो हम सीधे अपने जो मेन लैंड है, अपनी जो ज़मीन है, उस पर हम सीधे बुआई कर रहे हैं। तो दो प्रकार की डायरेक्ट सोइंग होती है, यानी सीधी बुआई दो तरीके की होती है। एक तो हमारी सूखी बुआई होती है और एक गीली बुआई होती है। सूखी को जिसको हम ड्राई DSR बोलते हैं, और गीली बुआई जिसको हम वेट DSR बोलते हैं। तो सूखी क्या होती है कि जब किसानों के पास अगर पानी, वर्षा नहीं हो रही है बहुत ज़्यादा, या फिर पानी की कमी है, इरिगेशन नहीं दे पा रहे हैं, तो उस समय जल जमाव बहुत कम होता है ज़मीन पे। तो उस केस में क्या कर सकते हैं कि जब हम वर्षा, जैसी पहली वर्षा आती है उसमें हम प्लाविंग करते हैं, और उसको सूखने के बाद, मतलब ज़मीन हमारी जो होती है वो हल्की सूखी होती है, और उसके बाद हम उसकी बुआई करते हैं, अपने धान की बुआई करते हैं। और दूसरी जो होती है गीली बुआई, गीली DSR जो होती है, उसमें जब अगर हमारे पास पहले क्या करते हैं वतर DSR जिसको बोलते हैं, उसमें हम थोड़ा इरिगेशन दे देते हैं। वर्षा अगर रहती है तो

0: मिट्टी काफ़ी गीली रहती है, तो हम उस समय प्लॉविंग करते हैं, उसके बाद हम पानी के ड्राई होने का वेट करते हैं। और जब हमारी मिट्टी में फील्ड कैपेसिटी जिसको बोलते हैं, यानी कि जब हल्की बहुत मॉइस्चर रहे मिट्टी में, तो हम सीधी बुवाई करना चालू करते हैं धान की। अब सीधी बुवाई करना कैसे है, हम सीधी बुवाई करने के लिए जैसे धान की कोई भी वैरायटी है, अगर आप उसकी स्पेसिंग तो पहले देख लेते हैं, मतलब जनरली 20x10 के स्पेसिंग पे हम बुवाई करते हैं। तो क्या करेंगे कि हम लाइन 20 रो, जो हमारी रो की डिस्टेंस होती है वो होती है 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पे हम जब रो बनाते हैं, उस पर लाइन, तो हम लाइन बनाकर और उस पर जो धान होता है उस पर सीधे तरीके से धान हम गिराते जाते हैं, उसको हम लाइन सोइंग बोलते हैं। और उसके बाद हम उसकी थिनिंग करके उसकी डिस्टेंस को मेनटेन करते हैं 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह की सीधी बुवाई से क्या फ़ायदे होते हैं कि हम काफ़ी हद तक पानी की बचत करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा मिट्टी को कोड़ना नहीं पड़ा या पडलिंग नहीं करनी पड़ी, मजदूरी कम हो जाती है इसकी वजह से, और काफ़ी हद तक समय की भी बचत होती है। जिन किसानों के पास मतलब पानी या जल जमाव नहीं है या पानी का फैसिलिटी नहीं है, तो उस केस में हम DSR जाते हैं, और DSR से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे भी होते हैं। जैसे कि हमारे काफ़ी उसकी जो उपज होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, और पानी जब बचता है, पानी मतलब पानी की बहुत ज़्यादा खपत नहीं होती है DSR में। दूसरी होती है हमारी ट्रांसप्लांटिंग विधि। तो ट्रांसप्लांटिंग विधि में क्या होता है कि पहले हमें नर्सरी लगाना होता है, तो नर्सरी हम अलग जगह करते हैं, और फिर जब नर्सरी का पौधा हमारा 20 से 25 दिन का हो जाता है, तो उस 20 से 25 दिन पुराने पौधे को हम उखाड़ कर एक एक करके हम उसको ज़मीन में लगाते हैं, हमारे मेन लैंड में लगाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब हम नर्सरी लगाते हैं, तो नर्सरी में जब बुआई कर रहे हैं, तो नर्सरी मेन लैंड जब हम अपना प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके समझ लीजिए मेन लैंड के सोइंग के 20 से 25 दिन पहले हमें अपना नर्सरी तैयार करके अपना बिछड़ा गिरा देना होता है। तो नर्सरी भी हम कई तरीके से तैयार करते हैं, चाहे वेट नर्सरी हो गया, ड्राई नर्सरी हो गया, डेपॉग नर्सरी हो गया, जो भी। तो अब हम जनरल जब बिछड़ा गिरा देते हैं, तो उसके बाद 20 से 25 दिन के बाद क्या होता है कि जब हमारा धान में दो पत्तियाँ, दो लीफ जब अंकुरित होकर निकल आती हैं, तो उस समय उसको हम निकालते हैं, और अपने मेन लैंड की तैयारी जो हमने कर रखी होती है, मेन लैंड की तैयारी कैसे करनी होती है, पडलिंग करना होता है, इरिगेशन करके उसको अच्छे से कोड़ना होता है, ताकि जब हम बीज निकाल रहे हैं, जो सीडलिंग्स हम जो निकाल रहे हैं, उसके जड़ें काफ़ी अच्छे से पकड़ ले हमारी मिट्टी को, तो इसके लिए हमें पडलिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है।
1: पडलिंग यानी कि
0: हम कई बार, एक पडलर होता है, तो पडलर से हम कई बार मिट्टी को कोड़ रहे, अच्छी तरह से मिट्टी को मिला रहे, हमने पानी दिया, इरिगेशन दिया अपने मिट्टी में, और उसके बाद हमने कई बार पडलर चला दिया। इससे क्या होता है कि जो मिट्टी, जो बड़े बड़े ढेर थे, वो अच्छे अच्छे फाइन मतलब काफ़ी छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं, और ये टूट जाने से क्या होता है कि वो काफ़ी स्टिकी मतलब काफ़ी अच्छे से वो जड़ों को पकड़ लेती हैं। तो जब हम ट्रांसप्लांट करेंगे, मतलब जब हम वो सीडलिंग्स को, हम अपने बिछड़े जब हमारे बड़े हो जाते हैं, दो पत्ते जितने बड़े हो जाते हैं, तो उसको हम जब उखाड़ते हैं और दोबारा मेन लैंड में लाकर लगाते हैं, तो वो मेन लैंड में काफ़ी अच्छे से उनकी जड़ें पकड़ लेती हैं। तो इसलिए पडलिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे मेन लैंड के लिए, इस केस में जब हम ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं तब। तो ट्रांसप्लांटिंग में क्या किया हमने, पहले नर्सरी तैयार किया, जब हमारा बिछड़ा गिराया हमने, और जब वो 20 से 25 दिन पुराना हो गया, तो हमने उस बिछड़े को, हमने उस पौधे को, मतलब हमने उस सीडलिंग को निकाला, और निकाल कर उसने अपने मेन लैंड में उसको ट्रांसप्लांट कर दिया। और ट्रांसप्लांट करने के समय हमें ये ध्यान ज़रूर रखना है कि हमारी मिट्टी की पडलिंग काफ़ी अच्छे से हो गई हो, अतः क्या होगा कि जड़ें हमारी जो पौधे रहेंगे उसके जड़ें पकड़ेंगे नहीं मिट्टी पे। तो इसलिए ट्रांसप्लांट करना बहुत ज़रूरी होता है, और इस पर कुछ विशेष ध्यान रखनी पड़ती है हमारी ट्रांसप्लांटिंग में। वो ये कि जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं, तो उसमें दूरी अच्छे से मेंटेन होनी चाहिए, 20 से 25 या 20 से 10, मतलब 20x10 या 20x25, ये हमारा 20x10 या 20x15, तो ये हमारा ट्रांसप्लांटिंग करने का स्पेस होता है, यानी दो रो टू रो के बीच की स्पेसिंग हमारी 20 होती है, और पौधे पौधे की स्पेसिंग जो होती है हमारी 10 से 15 सेंटीमीटर होती है, डिपेंडिंग अपॉन द वैरायटी, किस तरह की वैरायटी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये विशेष ध्यान देना होता है आपको कि आपकी स्पेसिंग मेंटेन रहे उसमें, और पानी हमेशा रहना चाहिए। सबसे खास बात, जब आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो उस केस में हमें ये ध्यान देना, जो कि DSR में नहीं था, हमने जब ट्रांसप्लांट किया, तो हमने विशेषता ये ध्यान रखना है कि हम जब पौधे को लगा देते हैं, तो उसमें 3 से 5 सेंटीमीटर तक की पानी हमेशा हम बरकरार रखते हैं, ताकि हमारा पौधा अच्छे से रहे। तो यूजुअली कहा जाता है कि ट्रांसप्लांटिंग हम उस जगह पे कर

खत्ते हैं जहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं हो, जैसे वर्षा हो गई और वर्षा का पानी काफ़ी हद तक उस ज़मीन पर टिका रहा, तो उस केस में हम ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं, काफ़ी आराम से कर सकते हैं। तो जिस जगह पे पानी का जल जमाव नहीं होता उस केस में हम DSR कर सकते हैं। तो ये फ़र्क हो गया। और तीसरी विधि हो गई जो हमारी श्री विधि। तो श्री विधि तो और साइंटिफिक विधि हम जिसको बोलते हैं, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ये थोड़ा साइंटिफिक इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें किसानों को विशेषतः बहुत सारे चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली चीज़ें तो हो गई हमारी नर्सरी की प्रिपेरेशन। तो जो हम नर्सरी तैयार करते हैं, अभी जैसे मैंने प्लांटिंग के समय बताया, हमने कहीं पे भी नर्सरी लगा दिया 20 से 25 दिन पे, तो उस केस में हमारे SRI के केस में क्या होता है कि हम जो नर्सरी तैयार करते हैं वो काफ़ी एरिया में, छोटे एरिया में करते हैं, और या तो हम डिपॉग नर्सरी भी तैयार करते हैं। तो उस डिपॉग नर्सरी में क्या होता है कि जब पौधे जो आपके 12 से 14 दिन के हो जाते हैं, तो उस केस में हम 12 से 14 दिन के पुराने पौधों को हम उठाकर उसको अलग अलग कर करके और फिर हम मिट्टी में लगाते हैं। तो यहाँ पे भी हम ट्रांसप्लांटिंग ही कर रहे हैं, पर ये ट्रांसप्लांटिंग से अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पहले तो हमने नर्सरी जो लगाया था पहले, तो वो 20 से 25 दिन पुराना था। यहाँ पे जो हमारा नर्सरी है वो हम 10 से 12 14 दिन पुरानी सीडलिंग को ही उठाकर हम मिट्टी में लगाते हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने जो अपनी मिट्टी को तैयार किया है वो और भी ज़्यादा हद तक, कई ज़्यादा हद तक मॉडलिंग हमने किया है। हमारी जो मिट्टी जो तैयार हुई है वो एकदम स्टिकी होती है, मतलब क्लेई होती है। स्टिकी मतलब कि जैसे आप हाथ से उठाइएगा तो चिपचिपी मिट्टी लगेगी। तो हमने मिट्टी को इस तरह से तोड़ देना है पडलर से। तो हम इरीगेशन देते हैं, पानी की कोई कमी नहीं होती हमारे खेत पे, हमने इरीगेशन दे दिया, मिट्टी पडलिंग कर दिया कई बार, और उसके बाद पडलिंग करके हमने अपने मिट्टी को इतने छोटे छोटे कण में तोड़ दिया कि जो छोटे छोटे ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स जो हम निकाल रहे हैं अपने डिपॉग नर्सरी से, वो काफ़ी अच्छे से चिपक जाते हैं। इसमें जो एक दूसरी ध्यान हमें ये देनी है कि जो हम स्पेसिंग मेंटेन करते हैं वो 25-25, मतलब 25-25 रो टू रो होता है डिस्टेंस, और 25-25 प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन करते हैं श्री विधि में। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि श्री विधि के जो छोटे छोटे जो सीडलिंग्स हैं, अगर हम उनको ज़्यादा जगह देंगे तो उससे ज़्यादा टिलर्स निकलेंगे, मतलब ज़्यादा सेकेंडरी रूट्स और सेकेंडरी स्टेम्स निकलेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं इसमें कि हम ये स्पेसिंग मेंटेन ज़रूर करते हैं 25x25 सेंटीमीटर का। दूसरी चीज़ कि जब हमने ट्रांसप्लांटिंग पहले जैसे किया था तो उसमें हमने सीडलिंग्स जो 20 से 25 दिन पुराना निकाला था, तो उसमें हमने एक जगह पे, जिसको हिल बोलते हैं, कई बार होता है कि हमने एक जगह पे एक से दो सीडलिंग्स डाल दिए, पर हमें श्री विधि में एक तरीका विशेष ध्यान ये देना होता है कि एक जगह पे हमें एक ही सीडलिंग डालना है और उसको बस चिपका देते हैं, बहुत ज़्यादा अंदर गाड़ते नहीं है उसको, बस वो इतना छोटा पौधा होता है कि वो आराम से आप अंगूठे से प्रेस कीजिएगा तो वो चिपक जाएगा। तो ये होता है, ये कुछ चीज़ें जो हमें विशेषतः ध्यान देनी होती है। तो पहला चीज़ ये हो गया कि नर्सरी 10 से 14 दिन होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि जब आप उसको हटा रहे हैं, जब आप हर सीडलिंग्स को अलग कर रहे हैं, तो एक एक सीडलिंग को ही हम एक जगह पे डालते हैं और बहुत ज़्यादा ज़ोर से, मतलब अंदर घुसाते नहीं भी, जस्ट मतलब हमको बस थोड़ा सा उसको चिपका देना है, मिट्टी पे सटा देना है, वो अपने आप खड़े हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने आप बहुत काफ़ी अच्छे से टेलरिंग होती है उसकी और काफ़ी ज़्यादा ईल्ड भी होती है। तो ये साइंटिफिक हमारा रिसर्च कहता है कि जब हम श्री विधि में लगाते हैं, प्रॉपर साइंटिफिक वे में धान लगाते हैं, तो हमारा ईल्ड जो होता है धान का, जो हमारा उपज जो होता है, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है बाकी दोनों विधियों से। तो ये हो गई हमारी श्री विधि की कुछ और विशेषता। ध्यान इसमें ये देना होता है कि श्री विधि में हम जो, जैसे आपने, हमने नॉर्मल ट्रांसप्लांटिंग किया था तो उसमें हमने कहा था कि पानी को हमें 3 से 5 सेंटीमीटर तक मेंटेन रखना है स्टेजेस में, उन पौधे में। तो लेकिन श्री विधि में क्या होता है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि हमें हर समय 2 से 5 सेंटीमीटर का पानी उसमें जमा करके रखना है, नहीं। हम क्या करते हैं, अगर किसानों के पास जैसे अगर इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, इसमें हम अल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप पानी दे रहे हैं उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद जब मिट्टी में हल्के हल्के क्रैक्स, एकदम पतले सुई धागे जितने पतले क्रैक्स अगर जब नज़र आने लगे, तो ही हम दूसरा इरिगेशन देते हैं। तो इसको हम अल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग मेथड बोलते हैं, जो कि हम श्री विधि में विशेषतः इस्तेमाल करते हैं। तो इससे क्या हुआ कि हमारे पानी बचे रहे और काफ़ी साइंटिफिक तरीके से हमने जल को उसी समय डाला जब प्लांट पौधे को उस जल की आवश्यकता है, ना कि हमने हर समय डालकर अपने जल की भी बर्बादी की, और मतलब पौधे को जब ज़रूरत है तो ही हम जल डाल रहे हैं इसमें श्री विधि में।
तो ये होती है। और

0: इसके अलावा एक चीज़ का मतलब जिसको हम लिमिटेशन बोल सकते हैं श्रीविधि की, वो ये होती है कि थोड़े लेबर भले ज़्यादा लगते हैं इसमें, पर इसमें उपज जो कहते हैं उपज काफ़ी हद तक बेहतर आती है श्रीविधि से अगर हम बुआई करें तो, अगर ट्रांसप्लांटिंग या DSR की अपेक्षा करें, तुलना करें तो उससे ज़्यादा श्रीविधि में हम पाते हैं अगर आप साइंटिफिकली बुआई उसकी करें तो। तो ये हमारी 3 तकनीकें थी। इसके अलावा एक होती है कि अगर अगर किसानों के पास मैकेनिकल ड्रिलिंग, मैकेनिकल सीडिंग की अगर उनके पास सुविधा है, तो जैसे ड्रम सीडर मेथड हो गया, तो इसमें क्या होता है कि ड्रम सीडर एक मशीन आता है जिससे सीधे सीधे अंकुरित बीजें जो होती हैं वो ड्रम सीडर में हम डालते हैं और ड्रम सीडर को चलाते हैं, और जैसे चलते जाएगा वैसे वैसे वो सीडलिंग की बुआई होते जाएगी कुछ अपनी डिस्टेंस पे। तो वो ड्रम सीडर होता है क्या, वो ऐसा मशीन होता है जैसे चक्के पे कुछ 20-25 सेंटीमीटर की दूरी पर कांटे होते हैं, तो जब जब हम उसको चलाएंगे तो वो कांटे के साथ साथ वो छेद मतलब उसी कांटे से वो जो अपना अंकुरित बीज है वो निकल कर और अपने निर्धारित स्पेस पर अपने आप लगते जाएगा जैसे जैसे हम उस मशीन को चलाएंगे। तो ये तो तब बात हो गई जब अगर किसानों के पास ये मशीन है। अगर किसानों के पास ये मशीन नहीं है तो ऊपर में से जो मैंने 3 बताए आप उन 3ों में से किसी भी तकनीकों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पे जल आपके पास कितना अवेलेबल है, आप कितना खर्च कर सकते हैं, उस पे डिपेंडेंट है ये सब।
1: जी मैम, मैम इन तकनीकों को समझाते हुए कई बार आपने नर्सरी के बारे में बात की और एक
0: जी
1: बार आपने ये भी कहा कि कई प्रकार की नर्सरियां होती है,
0: जी
1: तो मैम कितने प्रकार की नर्सरी होती है?
0: बेसिकली ये तो जब मैंने नर्सरी का बात करना इसमें इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब हम तीनों जब हमने विभिन्न तकनीकों की बुआई करने की जब बात की तो उसमें हम नर्सरी एक ही तरीके का नहीं लगाते। जैसे मैंने अभी बताया कि नर्सरी जो हमारी श्रीविधि में थी वो डिपॉग नर्सरी होती है। अगर हम ट्रांसप्लांट करें तो हम वेट नर्सरी भी कर सकते हैं, ड्राई नर्सरी भी कर सकते हैं। और DSR क्या होता है, DSR में तो हम डायरेक्टली बुआई कर रहे हैं तो उसमें हमें नर्सरी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो नर्सरी बहुत हद तक हमें डिपेंड करता है कि हम कब अपने पौधे की बुआई करना चाहते हैं। जैसे कभी क्या हो गया कि अगर हमारे हम जो धान धान के पहले हमने जिस पौधों को लगा रखा है अगर उसके काटने के बाद हमारे पास ज़्यादा समय अगर नहीं है धान को लगाने के, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम नर्सरी अपना तैयार कर लेते हैं। तो जैसे ही हम अपना पौधा काटेंगे तो तुरंत से उसकी ट्रांसप्लांटिंग कर सकेंगे। तो अब नर्सरी बेसिकली 3 तरीके की होती है। एक होती है अपलैंड नर्सरी, एक लोलैंड नर्सरी और तीसरी होती है डिपॉग नर्सरी। तो अपलैंड नर्सरी हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं है, किसानों के पास इरीगेशन की फैसिलिटी नहीं है, सिंचाई का कोई फैसिलिटी नहीं है। तो उसमें क्या कर सकते हैं किसान, उसमें ड्राई मेथड से करना क्या होता है कि हम उसमें जो हमारा अपलैंड ज़मीन होता है, अपलैंड ज़मीन मतलब कि जहाँ पे पानी जल जमाव ना हो, तो उसमें हम उसको छोटे छोटे उस जो मिट्टी है जो हमारी ज़मीन है उसको हम छोटे छोटे बेड में बांट लेते हैं। तो जैसे 1 से 1.5 मीटर के चौड़ाई तक के बेड में बांट लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा जो धान रहता है हम उसको पहले अंकुरित करा देते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्री जर्मिनेटेड सीड। तो आपको क्या करना है कि पहले 1 दिन 72 घंटे के लिए आपको जो धान है उसको पानी में भिगो कर रखना है। देखिएगा कि जब उसमें अंकुरण थोड़ी सी हो जाए तो उसको उस जौ को हम क्या बोलते हैं प्री जर्मिनेटेड सीड। तो उस जौ को आपको छिड़क देना है, जो आपने अभी बेड बनाया था उसके ऊपर आपको स्प्रेड कर देना है और उसको अच्छे से हल्के हाथ से प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद आप उसके ऊपर गनी बैग मतलब जो जूट के बैग होते हैं उसके ऊपर लगा दीजिए, बिछा दीजिए और अपना हल्का हल्का पानी आप हर 2 दिन में देते रहिए। तो इससे क्या रहेगा कि अंदर का मॉइस्चर काफ़ी हद तक मेंटेन रहेगा और उसके बाद कुछ 4-5 दिनों के बाद आप गनी बैग को हटा दीजिए, देखिएगा कि वो आपका जो बीज है वो अंकुरण हो गया है। दूसरा विधि हो गया हमारा लोलैंड नर्सरी। तो लोलैंड नर्सरी तो सिंपल होता है, जहाँ पे पानी है आप पडलिंग कीजिए अपने ज़मीन पर, पडलिंग करके उसमें पानी की कोई कमी नहीं है, पानी ठहर रहा है, उसमें प्री जर्मिनेटेड सीड लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका नेचुरल जैसा सीड आता है आप उसको सिंपल ब्रॉडकास्ट कर दीजिए। प्री जर्मिनेटेड सीड दीजिएगा तो काफ़ी अच्छा होगा क्योंकि अगर प्री जर्मिनेटेड है तो वो एक जगह पे इकट्ठा नहीं होगा। तो बेहतर है कि आप प्री जर्मिनेटेड सीड ही लें और उसको आप ब्रॉडकास्ट कर दें, और ब्रॉडकास्ट करने के बाद जैसे हम नॉर्मली अपना ब्रॉडकास्ट करने के बाद हम वेट करेंगे 20 से 25 दिन के बाद हम उसको निकाल के ट्रांसप्लांट करेंगे। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है जो मैंने श्रीविधि के लिए बताया था डेपॉग नर्सरी, तो ये डेपॉग नर्सरी के लिए तो हमें ज़मीन की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब हम सीधे क्या कर सकते हैं कि अपने सीमेंट एरिया पे भी अपना वो नर्सरी तैयार कर सकते हैं। क्या करना है, प्लास्टिक शीट लेना है, उसके ऊपर कुछ 2 से 5 सेंटीमीटर का बालू हमें परत बना लेनी है उसकी, और उस बालू के ऊपर हमने क्या करना है कि हमने बीजों को काफ़ी घने मात्रा में ब्रॉडकास्ट करके वो बीज जो हम छिड़क रहे हैं वो काफी काफी घना होना चाहिए। तो

0: घना इसलिए होना चाहिए कि जब वो बड़ा होगा, अंकुरण जब होगी उसमें और जब उसकी जड़ें आएंगी, तो वो जड़ें आपस में मिल जाएंगी, मतलब वो जड़ें आपस में एक दूसरे से बहुत एक दूसरे को पकड़ लेंगी। तो इससे क्या होगा कि एक तरह का मैट बन जाता है। तो जब आप उसको निकालिएगा बालू से, तो आप उसको रोल करके निकाल सकते हैं, ऐसे ही रोल मैट बनाकर आप उसको खेत पे लेके जाइए। खेत पे लेके जाने के बाद हर एक एक सीडलिंग को आप अलग कीजिए और उस सीडलिंग को आप मिट्टी में लगा दीजिए। तो ये होता है डपॉग नर्सरी। तो ये डपॉग नर्सरी हम श्री विधि में इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब मैंने बताया था कि पानी मॉइस्चर जो होता है वहाँ पे काफ़ी स्टिकनेस होती है, तो जब आप डपॉग नर्सरी के जो पौधे होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं और काफ़ी आसानी से वो चिपक जाता है, तो इसलिए हम श्री विधि में यूजली डपॉग नर्सरी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये तीन बेसिक नर्सरी हैं हमारे।
1: तो मैम, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि कितनी तरीके से धान की बुआई होती है, साथ ही कितने प्रकार से नर्सरी तैयार की जाती है अलग अलग बुआई के लिए। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद धन्यवाद मुझे।
1: तो किसान भाई बहनों, आप अलग अलग तरीके से धान की बुआई कर सकते हैं, जिस तरह की मिट्टी है उस तरीके से, और साथ ही अलग अलग बुआई के लिए अलग अलग तरीके से नर्सरी तैयार करनी होती है, और कभी कभी नर्सरी नहीं भी तैयार करनी होती है, जैसे कि सीधी बुआई में। तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि हमारी आज की ये चर्चा काफी उपयोगी साबित होगी। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि,

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

0: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। किसान भाई बहनों, आज उन्नत कृषि में हम बात करने वाले हैं धान के बारे में। धान बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसल है और साथ ही राज्य की खाद्य सुरक्षा और कृषि अर्थव्यवस्था में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। साल 2024-25 में बिहार में लगभग 99,34,000 टन धान का उत्पादन हुआ, जो राज्य के कुल अनाज उत्पादन में 40% से भी अधिक है। अगर हम इन सारी बातों को समझें तो धान हमारे अर्थव्यवस्था के लिए, हमारे किसानों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे में धान की उच्च उपज भी काफी महत्वपूर्ण होती है। उच्च उपज प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है कि हमारे किसान भाई बहन उन्नत किस्मों का चयन करें। साथ ही स्वस्थ और मजबूत फसलों के लिए पौधशाला प्रबंधन भी बहुत जरूरी है। तो इन सारी बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर श्रुति सुमन। मैम, आप हैं सहायक प्राध्यापिका सस्य विज्ञान विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद उमा, सबसे पहले मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि धान की खेती में पौधशाला प्रबंधन एक आवश्यक अंग है, और ऐसा कहा जाता है कि अच्छी फसल की शुरुआत ही अच्छी पौधशाला से होती है। यदि पौधशाला में वैज्ञानिक तरीके से बीज का चयन, पोषक तत्वों का प्रबंधन, सिंचाई तथा कीट रोग नियंत्रण किया जाए तो स्वस्थ एवं सशक्त पौध तैयार होते हैं, और ऐसी पौध मुख्य खेत में रोपाई के बाद अच्छी तरह से स्थापित होती है, अधिक कल्ले भी बनाती है तथा अंततः अधिक उपज भी प्रदान करती है। इसलिए किसान भाइयों, हमारे लिए पौधशाला का प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है।
0: मैम, अभी तो आपने बताया कि पौधशाला का प्रबंधन जरूरी क्यों है, लेकिन हम बात करते हैं अब पौधशाला के लिए खेत का कैसे चयन करना चाहिए। तो किस तरीके से हमारे किसान भाई बहन पौधशाला के लिए खेत का चयन कर सकते हैं?
1: पौधशाला के लिए समतल, उपजाऊ और सिंचाई की सुविधा वाले खेत को चुनना चाहिए। अगर जो है हमारे पौधशाला का खेत मुख्य खेत के पास हो तो रोपाई में सुविधा होती है। साथ ही साथ धान में जल निकास की व्यवस्था उचित होनी चाहिए। धान की खेती के लिए जल निकास की व्यवस्था उचित होनी चाहिए, तो हमें वैसे खेत का चयन करना चाहिए जहाँ पे कि वाटर लॉगिंग भी ना हो।
0: अगर मैम एक हेक्टेयर में रोपाई की बात करें तो एक हेक्टेयर में रोपाई के लिए कितने नर्सरी क्षेत्र की जरूरत होती है?
1: एक हेक्टेयर में हमें रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर नर्सरी क्षेत्र जो है वो पर्याप्त होती है।
0: और बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए?
1: सामान्यतः सामान्य किस्मों के लिए 20 से 30 केजी बीज पर हेक्टेयर बीज दर होना चाहिए, और संकर धान यानी कि जो हमारी हाइब्रिड धान है उनके लिए 15 केजी पर हेक्टेयर का बीज दर पौधशाला के लिए पर्याप्त होता है।
0: जी मैम, और बीज उपचार बहुत ज़रूरी होता है, तो किस तरीके से बुआई से पहले बीज उपचार करना चाहिए?
1: उमा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है आपने। बुआई से पूर्व बीजोपचार करना जरूरी है, क्योंकि बीज उपचार से बीज जनित रोगों से सुरक्षा मिलती है और साथ ही साथ अंकुरण अच्छा होता है। इससे पौध गलन, झुलसा

0: और अन्य रोगों का प्रकोप भी कम होता है। तो बीजोपचार करने के दो तरीके हैं। पहला तो हम नमक के घोल से बीज का उपचार कर सकते हैं, इसे लवणीय जल उपचार भी कहते हैं। लवणीय जल उपचार के लिए हमें 1.65 kg सादे नमक को 10 लीटर पानी में उसका घोल बना लेना चाहिए, और इस घोल में बीज को डालकर अच्छी तरह से हिला देना चाहिए। इससे क्या होता है कि स्वस्थ एवं भारी बीज जो हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, और हल्के खराब और के बीज ऊपर तैरने लगते हैं, और फिर ऊपर तैरने वाले हल्के एवं खराब बीज को हम बर्तन से हटा सकते हैं, और शेष डूबे हुए बीज को हमें फिर से शेष डूबे हुए बीज जो वो बीज जो डूब जाते हैं वो स्वस्थ होते हैं, और उन्हें हमें फिर से 2 से 3 बार पानी में धोकर सुखा ले छाया में सुखा लेना चाहिए, ताकि इस बीज में नमक का कोई अंश ना रहे। तो इस तरह से हम लवणीय घोल बनाकर बीज का उपचार करते हैं। इसके अलावा हम रासायनिक बीजोपचार भी कर सकते हैं। रासायनिक बीजोपचार के लिए हमें सबसे पहले फफूंदीनाशी से उपचार करना चाहिए। फफूंदीनाशी यानी कि फंगीसाइड जो है वो हमें बेवेस्टीन 1 ग्राम या फिर कैप्टन या थीरम ये 2.5 ग्राम पर केजी बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। जीवाणुनाशी दवा से उपचार हेतु स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या फिर एग्रीमाइसिन हमें 2.5 ग्राम दवा जो है उसका 10 लीटर पानी में घोल बनाकर 10 kg बीज हेतु प्रयोग करना चाहिए, और इन उपचारित बीजों को हमें भींगे बोरी में रखकर 36 से 48 घंटों तक अंकुरित कराना चाहिए। और इस दौरान ये जो जिस समय हम उपचारित बीज को भींगे बोरी में रखते हैं, इस दौरान हमें बीच बीच में बीज पर पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए।
1: जी मैम, और अगर हम पौधशाला की तैयारी की बात करें तो किसान भाई बहन धान की खेती के लिए पौधशाला की तैयारी कैसे कर सकते हैं?
0: पौधशाला की तैयारी यानी कि जो है हमारा नर्सरी, नर्सरी जो है धान के लिए 3 प्रकार से इसकी नर्सरी बनाई जाती है। वेट बेड मेथड, ड्राई बेड मेथड और डेपोग मेथड। वेट बेड मेथड यानी कि जो है वहाँ पे जनरली वहाँ पे प्रेफर किया जाता है जहाँ इरिगेटेड कंडीशन हो, यानी कि जहाँ पे जल सिंचाई की सुविधा हो, और ड्राई बेड मेथड जहाँ पे पानी की कमी हो वहाँ पे ड्राई बेड मेथड, और डेपोग मेथड एक ऐसा मेथड है ऑफ रेजिंग सीडलिंग्स है जो कि हमारे देश में फिलीपींस से ये इंट्रोड्यूस किया गया है, और इसकी खासियत ये है कि ये 1 हेक्टेयर के लिए इसमें कम एरिया में ही नर्सरी देना होता है, जैसे कि बस 25 से 30 m² एरिया में ही हम 1 हेक्टेयर के लिए इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। पर हमारे बिहार राज्य में ज़्यादा हमारे गीली नम विधि यानी कि वेट बेड मेथड का प्रचलन ज़्यादा है, तो इस विधि से जब हम करेंगे तो इसके लिए हमें पौधशाला को तैयार करने के लिए बिचड़ा तैयार करने की प्रक्रिया जो है हमें इसमें ऐसे करने चाहिए कि हमें पौधशाला की तैयारी अच्छी तरह कदवा करके तथा खेत को समतल करके करना चाहिए। इसके लिए खेत में पानी भरकर 2 से 3 बार जुताई करें, यानी कि 2 to 3 ploughings करना चाहिए, और ताकि मिट्टी जो है हमारी कादोयुक्त हो जाए और उससे खरपतवार जो है वो भी नष्ट हो जाते हैं। आखिरी जुताई के बाद जब हम थर्ड प्लॉइंग करते हैं तो आखिरी जुताई के बाद हमें उसके बाद पाटा लगाकर खेत को समतल करना चाहिए। जब मिट्टी की सतह पर पानी ना रहे तो फिर हमें जो है 1.5 m चौड़ी लंबी क्यारी बनानी चाहिए, ताकि बुआई निराई और सिंचाई की विभिन्न शस्त्रक्रियाएँ आसानी से की जा सके, और इन 2 क्यारियों के बीच में हमें 30 cm चौड़ी नाली बनानी चाहिए, ताकि उस नाली से हम वहाँ पर खड़े होकर आसानी से हम खरपतवार नाशी आदि का उपयोग कर सके और सिंचाई की क्रिया भी वहाँ पे कर सके। इसके बाद पौधशाला में हमें बीजोपचारित एवं अर्ध अंकुरित बीज को कदवा के ऊपर समान रूप से छींट देना चाहिए, और शुरू में मिट्टी को केवल गीला रखें। जब हम उसको बीज को छींट देते हैं तो उसके बाद खेत में सिंचाई कर पहले जो है हमें पानी का 1 से 2 cm तक पानी का लेवल रखना चाहिए, और बाद में 4 से 5 cm तक खेत में पानी को बनाए रखना चाहिए। और इस बात का हमें हमेशा किसान भाइयों आप लोगों को हमेशा ध्यान देना चाहिए कि बिचड़े पानी में डूबे नहीं।
1: और मैम, अगर हम पोषक तत्व प्रबंधन की बात करें तो पोषक तत्व प्रबंधन कैसे करना चाहिए?
0: 1000 मीटर स्क्वायर की नर्सरी में हमें सबसे पहले पोषक तत्व प्रबंधन के लिए 1.5 टन गोबर खाद या 200 से 300 केजी केचुआ खाद को बुआई के 10 से 15 दिन पहले डालना चाहिए, ताकि मिट्टी में जल धारण क्षमता बढ़े तथा बिचड़े उखाड़ते समय दिक्कत ना हो। फिर 1000 मीटर स्क्वायर में बीज की बुआई के

0: 5 केजी नाइट्रोजन, 5 केजी फास्फोरस और 5 केजी पोटास को समान रूप से छिड़क देना चाहिए, को क्यारी में समान रूप से छिड़क देना चाहिए। और फिर हमें बीजों को बहुत ज़्यादा अधिक गहराई में नहीं बोना चाहिए और बीज को अधिक घना भी ना गिराएं। 20 से 30 ग्राम पर मीटर स्क्वायर बीज की मात्रा इसके लिए उपयुक्त होती है। और अगर हम ज़्यादा घना बीज गिराते हैं तो इससे बिचड़े जो हैं वो पतले और कमजोर होंगे। और इसके साथ साथ ही पौधशाला को खरपतवार से मुक्त रखना चाहिए ताकि जड़ों का समुचित विकास हो एवं बिचड़े स्वस्थ और मजबूत हों। इसके अलावा जो हमारी नर्सरी है उसमें कीट व्याधि का भी नियंत्रण पर ध्यान देना चाहिए। और साथ ही साथ वैसे खेत जिसमें जिंक की कमी हो उसमें हम तीसरे सप्ताह में जिंक सल्फेट का छिड़काव कर सकते हैं। इस हेतु प्रति हेक्टेयर 5 केजी जिंक सल्फेट को घोल को 2.5 केजी चूना के घोल के साथ मिलाकर 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। छिड़काव अगर नहीं कर पा रहे हैं ऐसे जगह पे जहाँ पे ये छिड़काव नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पे बिचड़ों को उखाड़ने के बाद भी रोपाई के पहले 2% जिंक के घोल में डुबाकर उपचारित कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम नर्सरी में पोषक तत्व का प्रबंधन कर सकते हैं।
1: मैम अब अगर रोपनी की बात करें तो बिचड़े रोपने के लिए किस समय पर तैयार हो जाते हैं?
0: रोपने के लिए सामान्यतः 3 सप्ताह के बिचड़े जिसमें कि 4 से 6 पत्तियां आ जाती हैं वो अच्छे माने जाते हैं, लेकिन जो है अलग प्रभेद के अनुसार बिचड़ों का जो है समय अलग अलग होता है। तो जहां पर हम बात करेंगे जो शीघ्र पकने वाली प्रभेद होती है जो कि हम ऊपरी जमीन यानी कि अपलैंड में लेते हैं, वो जैसे कि इस प्रभेद में एग्जाम्पल में आप जानते होंगे सौबर, दीप, सहभागी, शुष्क, सम्राट, इन प्रभेदों का बिचड़ा जो है जब वो 20 से 22 दिन का हो जाता है तब तैयार होता है। जबकि मध्यम जमीन हेतु और जो यानी कि मीडियम लैंड और जो मध्यम अवधि में पकने वाले ऐसे प्रभेद होते हैं वो जैसे कि राजेंद्र श्वेता, सबौर अर्ध जल, इनका बिचड़ा जो है 25 से 30 दिन का समय लेता है। फिर निचली जमीन हेतु देर से पकने वाली प्रभेद जो होते हैं उनमें सबौर श्री, राजेंद्र महसूरी वन, स्वर्णा सब वन, इनके लिए जो है 25 से 30 दिन का बिचड़ा लेना चाहिए।
1: तो किसान भाई बहन मैम के द्वारा बताई बातों का ध्यान रखें और धान की अच्छी पौधशाला तैयार करें ताकि आपके धान की फसल भी निरोगी और स्वस्थ हो। तो मैम आपने जो जानकारी दी उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी उपयोगी साबित होगी। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद उमा।
1: किसान भाई बहनों आज के लिए इतना ही। मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक खास बात की अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
3: उन्नत कृषि उन्नत कृषि
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज उन्नत कृषि में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फल के बारे में जिसका गर्मियों में सभी को इंतजार रहता है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं लीची के बारे में। और लीची अपने स्वाद और अपने रूप के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है और ख़ास तौर से किसान भाई बहन जो लीची उत्पादन करते हैं उन्हें काफ़ी अच्छी आय मिलती है लीची उत्पादन से। लेकिन अगर उनकी लीची पर कीटों का प्रकोप हो तो उनके आय पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ऐसे में किसान भाई बहनों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि लीची के प्रमुख कीट कौन कौन से हैं, वो किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं और उनका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, उनकी पहचान कैसे की जा सकती है। इन सारी बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तारकनाथ गोस्वामी। सर आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कीट विज्ञान विभाग से, आप हैं कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
4: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सर लीची के सबसे प्रमुख कीट कौन कौन से हैं?
4: अच्छा, तो ये बहुत ही एक ससमय कार्यक्रम है और लीची के प्रमुख जो कीट बिहार में हम लोग फेस करते हैं, किसान भाइयों फेस करते हैं, उनमें 3 कीट बहुत महत्वपूर्ण है। एक है लीची का फल छेदक, जो जिसका सुंडी विकसित हो रहे फलों में छेद करके अंदर प्रवेश करती है। दूसरा है लीची का पत्ती मोड़क, इसका सुंडी कोमल पत्तियों को मोड़कर भीतर से खाती है। और तीसरा है रस चूसने वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं लीची माइट, ये बहुत सूक्ष्म एक कीट है जो पत्तियों पर आक्रमण करता है और रस चूस के नुकसान पहुंचाता है। और ये तीनों कीड़ों को अगर ससमय हम लोग प्रबंधन ना करें तो ये सारे कीट गंभीर आर्थिक क्षति पहुंचा सकते हैं।
1: तो सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि अगर इनका सही समय पर प्रबंधन ना किया जाए तो काफी गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये लीची के कीट किस प्रकार से लीची के फसल को नुकसान पहुंचाते हैं?
4: जी, तो ये प्रत्येक जो अलग अलग कीट है जिसका जिक्र हमने किया, ये इसका नुकसान करने का तरीका अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे फल छेदक, ये फल छेदक जो है फल के अंदर प्रवेश करते और उसका गुद्दे को खाते, और इसके वजह से फल बाजार योग्य नहीं होते और समय से पहले वो फल गिर जाते हैं। पत्ती मोड़क जो कीट के बारे में हमने बात किया, वो कोमल पत्तियों को मोड़कर अंदर से खाता है और इसके प्रकोप से प्रकाश संश्लेषण का क्षेत्र कम हो जाता है और नई वृद्धि बहुत भारी रूप से प्रभावित होते। और जो लास्ट वाला कीट के बारे में जिक्र किया जिसका नाम है लीची माइट, ये कोमल पत्तियों पर आक्रमण करता है और पत्तियों के निचली सतह पर भूरे रंग की मखमली परत बन जाती है, जिसके वजह से पत्तियों विकृत होकर मुड़ जाती है और पौधे की बढ़वार कम हो जाती है।
1: सर, जैसे कि आपने अलग अलग कीटों के बारे में बताया, तो वो अलग अलग कीट अलग अलग अवस्था में दिखते होंगे, तो कौन से कीट कौन से अवस्था में देखे जा सकते हैं?
4: जी, तो ये जो पत्ती मोड़क कीट है उसका अगर एग्जाम्पल ले और माइट का भी एग्जाम्पल ले, तो ये दोनों कीट नई शाकीय वृद्धि के समय दिखाई देते हैं। फल छेदक मुख्यतः पुष्पन और फल विकास की अवस्था में दिखाई देता है, इसके लिए किसानों को फूल आने, फल बनने और नई पत्ते के समय बाग की नियमित निगरानी बहुत अच्छे से करना चाहिए।
1: सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि नए बाग की निगरानी करनी चाहिए, तो ऐसे में ये भी जरूरी होता है कि जो निगरानी लगातार करते हैं वो शुरुआती अवस्था में ही कीट के प्रकोप को पहचान लेते हैं, तो अगर किन्हीं को नहीं पता है, किसान भाई बहन इस बात से अनजान है कि शुरुआती अवस्था में कैसे कीट के प्रकोप को पहचान करें, तो कैसे कर सकते हैं?
4: तो जैसे हर एक कीट का जो प्रारंभिक पहचान है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये किसान भाइयों को भी अच्छे से मालूम है। तो कुछ संकेत हम यहाँ पे बताते हैं, जैसे मुड़ी हुई अगर कमूल पत्तियों को किसान भाइयों को दिखाई देता है तो वो बिल्कुल पत्ती मोड़क कीट का संकेत होता है। पत्तियों पर भूरे मखमली धब्बे, जिसके बारे में हम पहले भी जिक्र किया, और सिकुड़ना, ये माइट का प्रकोप का लक्षण होता है। और फल पर बहुत ही छोटा छेद या कीट का अगर मल भी दिखाई देता है तो फल के ऊपर, तो ये फल छेदक का संकेत होता है। तो इसके लिए बाग का नियमित रूप से निरीक्षण करना जरूरी होता है ताकि इस सारे कीट का प्रकोप शुरू हुआ है कि नहीं, इसके बारे में किसान भाइयों को अच्छे से मालूम पड़े।
1: सर, पहचान के बाद जरूरी होता है कि उनका प्रबंधन किया जाए।
4: जी,
1: तो इन कीटों का प्रबंधन कैसे किया जाए?
4: तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि प्रबंधन समेकित कीट के आधार पर ही करना चाहिए। तो बहुत सारे व्यावहारिक और प्रभावी उपाय है लीची के बगीचे में लीची का जो क्षति करने वाला जो कीट है उसको नियंत्रण करने के लिए। जैसे बाग की स्वच्छता, ये किसान भाइयों को मालूम है कि ये हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए। तो इससे क्या होता है, संक्रमित पत्तियों, नई टहनियों तथा गिरे हुए जो फल होता है उस फल को हटाना चाहिए और इससे कीट का प्रभाव बहुत हद तक कम होता है। छंटाई बहुत महत्वपूर्ण होता है लीची में। फल तुड़ाई के बाद अधिक घनी और संक्रमित शाखाओं को छंटाई करना जरूरी है। उचित धूप और वायु संचार से कीट का वृद्धि इसके वजह से कम होती है। संतुलित पोषण का जो प्रयोग वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अधिक नाइट्रोजन का अगर उपयोग करेंगे किसान भाई तो इसका लीची का जो है वेजिटेटिव ग्रोथ, जिसको हम लोग बोलते हैं कोमल वृद्धि, उसका बढ़ती है और कीट का प्रकोप बढ़ सकता है। नियमित निगरानी, मतलब लीची का बगीचा का नियमित निगरानी बहुत महत्वपूर्ण है। और जैविक और वनस्पतिक कुछ उपाय है, जैसे नीम तेल, उसका 3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से नियमित रूप से छिड़काव करना चाहिए। ये एक पर्यावरण के अनुकूल एक उपाय है और इससे रस चूसने वाले कीट तथा छोटी सुंडिया, ये सब जो है इनके अगेंस्ट में ये बहुत कारगर होता है। कुछ प्राकृतिक शत्रु होते हैं जो आपका क्षति पहुंचाने वाला कीट है उसको खा जाता है, जैसे मकड़िया, लेडीबर्ड बिटल, लेस विंग, तो इसको बचा के रखना चाहिए, हम कहे कि संरक्षण करना जरूरी है।
1: सर अगर

0: प्रकोप अधिक हो जाए, तो ऐसी स्थिति में किसान भाई बहन क्या करें?
1: जी, तो यदि कीटों का संख्या आर्थिक क्षति स्तर से ऊपर पहुंच जाए तो स्थानीय जो कृषि विशेषज्ञ है उसका सलाह लेना चाहिए। फिर भी मैं दो तीन केमिकल का नाम यहाँ पे जिक्र करूँगा, जैसे फल छेदक और फली पत्ती मोड़क के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट बोल के एक दवा आता है जिसका 5 SG मतलब सोल्यूबल ग्रैन्यूल, उसका 0.4 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। और माइट के लिए फेनाजाक्विन 10% ईसी आता है मतलब इमल्सिफाइबल कॉन्सेंट्रेट, उसका 0.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से प्रयोग करना जरूरी है। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि छिड़काव उचित अवस्था में हो रहा है और पूरे वृक्ष का जो पत्तियां हैं और फल है उसके ऊपर बढ़िया से स्प्रे हो रहा है।
0: तो उम्मीद है कि सर ने जो भी बातें बताई उन बातों का ध्यान रख के आप लीची के उत्पादन से अच्छी आय कमा पाएंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आकर किसान भाई बहनों को इतनी उपयोगी बातें बताई।
1: धन्यवाद आपको भी।
0: आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। जाने से पहले कुछ खास बात की, अपना और अपने फसलों का रखे खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि। उन्नत कृषि। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उन्नत कृषि कार्यक्रम में और मैं अनु आप सभी के लिए खास विषय लेकर आ चुकी हूँ, आम के मूल्य संवर्धन एवं परिरक्षण। इस विषय को लेकर आज हमारे बीच है अनिता मैम। मैं आप सभी को बता दूं कि अनिता मैम SMS हैं KVK सबौर में और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के अंतर्गत। तो आज बहुत सारी बातें आज मैडम से हम जानेंगे, आम के मूल्य संवर्धित उत्पाद के बारे में, क्यों परिरक्षित करना चाहिए आम के मूल्य संवर्धित उत्पादों का या फिर आम को। तो आज इसके बारे में सबसे पहले मैम से जानते हैं कि आम के क्या कुछ फ़ायदे हैं। मैम,
2: थैंक यू अनु। आम के फलों, आम को जो कहा जाता है हमारे यहाँ कि फलों का राजा, आम फलों का राजा है, तो आम फलों का राजा ये काफ़ी पुराने समय से कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि आम फलों का राजा कहा जा रहा है उसके पीछे सही में कारण है। यह आम का फल काफ़ी पौष्टिक होता है, स्वादिष्ट होता है, गुणकारी होता है। इसके फल में विटामिन ए और कैरोटीन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। यहाँ 100 ग्राम जो है उसमें प्रति 100 ग्राम में 4500 IU पाया जाता है विटामिन ए, जो कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा हुआ। इसके अलावा इसमें विटामिन सी संतरा और सेब से कई गुना ज़्यादा पाया जाता है। और वैज्ञानिकों का कहना है कि आम में मक्खन, जो हम मक्खन कहते हैं, काफ़ी शक्तिवर्धक है, मक्खन के मुकाबले की शक्ति होती है।
0: अच्छा।
2: इसके अलावा इसकी गुठली, जिसको कि हम लोग सोचते हैं कि कोई काम का नहीं है, लेकिन उस गुठली से उसका जो गिरी होता है, उसके अंदर गुठली के अंदर जो गिरी होता है उसमें वसा और कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो इसलिए उसको हम लोग सुखा करके आटा के रूप में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। इसका छिलका जो है, उसका छिलका को हम सुखा कर जलाने के काम में ला सकते हैं। इसके गुठलियों के रेशा से बुश बनाया जाता है। इसके बाद यहाँ तक के चिकित्सक कहते हैं कि आम जो है वह ब्लड और वजन बढ़ाने में कारगर साबित होता है, यदि इसके हम नियमित रूप से अपने डाइट में लें। यदि कितने लोग दुबले पतले हैं, वो वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए आम एक बहुत अच्छा आहार है। और इसके अलावा इसके नियमित सेवन से त्वचा में निखार आता है। इसमें चूंकि विटामिन्स मिनरल्स पाया जाता है, तो ऑटोमेटिक है और ये एनर्जी रिच फूड है, तो इसमें त्वचा में निखार आता है। जो यूरिन संबंधित कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो दूर होता है और यूरिन मूत्र जो है हमारा खुलकर आता है। शरीर में स्फूर्ति आती है। नर्वस सिस्टम में किसी तरह का खराबी हो तो वो भी इसके सेवन से दूर होता है। नींद आने की किन्हीं को समस्या को नींद नहीं आती है, तो इनका आप सेवन करेंगे तो आपको नींद भी आएगा। और जो गर्भवती स्त्रियां यदि इसका सेवन करती है तो उसके बच्चे सुंदर और स्वस्थ बच्चे को वजन देती है। इसका सेवन करने से कमजोरी दूर होता है। और यदि हम रात में सोने से पूर्व ताजा रस का सेवन करें तो कब्ज दूर होता है। और गुठली का जो गिरी होता है उसका, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, उसको हम लोग आटे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ उसको यदि महीन चूर्ण बना लें तो मंजन की भांति उसको हम दांत साफ करते हैं तो पायरिया आदि रोग से हम लोग को
0: छुटकारा मिलता
2: है। इस तरह से हम देखते हैं कि आम का बहुत फायदा है। यहाँ खाने को छोड़कर यदि उसका औषधीय भी गुण है, उसका काफी पौष्टिक वैल्यू है और उसको हमें सेवन अवश्य करना चाहिए।
0: जी, मैम अब बात करते हैं परिरक्षण और मूल्य संवर्धन की, तो इसकी क्यों जरूरत पड़ी, क्यों करते हैं हम परिरक्षण?

0: मूल्य संवर्धन।
1: अनु, ऐसा है कि जो भी हमारा फल सब्जी या भी कोई भी कृषि का उत्पाद होता है वह मौसमी होता है, तो उसका उसमें कुछ उसमें अलग अलग कैटेगरी है। कुछ तो होते हैं कि जैसे कि हम उसका यदि तोड़ लिए तो 2 महीना 3 महीना तक भी हम उसको सुरक्षित आराम से रख सकते हैं, जैसे कि अनाज दलहन ये वगैरह है। और कुछ होते हैं कि आप 10 दिन 15 दिन ही रख सकते हैं, जैसे कि और से सब्जी फल में आते हैं। कुछ होते हैं कि 1 सप्ताह ही रख सकते हैं, जैसे कि आलू प्याज है उसको भी कई महीने रख सकते हैं। लेकिन जैसे फूल गोभी है तो 1 सप्ताह रख सकते हैं, वो भी मतलब 1 सप्ताह से तक में उसको खर्च कर देना, खत्म कर देना, उससे उसका क्वालिटी खराब होने लगता है। 2 3 दिन 3 दिन तक ही वो फ्रेश रहता है। कुछ
0: अच्छा।
1: चीज़ तो ऐसे है कि 1 2 दिन में ही हमारा खराब होने लगता है। तो उसकी सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंस है परिरक्षण एवं मूल्य संवर्धन का, कि बेमौसम में उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना।
0: जी
1: यदि जो चीज़ की मौसमी है, यदि उसका हम कोई प्रोसेसिंग नहीं, प्रसंस्करण नहीं करते हैं, परिरक्षण नहीं करते हैं, मूल्य संवर्धन नहीं करते हैं, तो वो खराब हो जाएगा। लेकिन
0: हाँ
1: यदि हम इन प्रक्रियाओं को अपनाते हैं तो उसका हम लाइफ को बढ़ा देते हैं। वो जिस मौसम में उसकी उपलब्धता नहीं रहना चाहिए उस मौसम में भी वो उपलब्ध होता है।
0: जी
1: दूसरा, कि यदि हम कोई जो किसी चीज़ को उत्पादन में जो खर्च लगता है उससे परिरक्षित करने में कम खर्च लगता है। तो जैसे कि हम सरकार आंकड़ों की यदि बात करें तो लगभग 40% जो हमारा फल सब्जी है वह उत्पादन होकर जो उपभोक्ता तक जाने से पहले ही खत्म हो जाता है।
0: खराब हो
1: यदि
0: जाता है।
1: उसको हम परिरक्षित करके बचा लेते हैं तो हम एक तरह से जो हमारा प्रोडक्शन है वो बढ़ा लिए, क्योंकि जो खराब हो रहा था तो उसको बचा लिए।
0: अच्छा
1: इसके बाद यदि हम इसको घरेलू स्तर पर करके महिलाएं करती हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो ऑक्सीजन में यूज करती है तो खाद्य एवं पौष्टिक सुरक्षा हासिल होता है। इसके अलावा यदि वो इसको स्वरोजगार रूप में अपनाती है तो आमदनी भी होता है, रोजगार भी होता है। घर बैठे महिलाएं इसका करती है तो महिलाओं का सशक्तिकरण होता है। युवाएं इसको करते हैं तो युवाओं का पलायन हमारा रोकता है, उनको घर में अपने रोजगार मिल जाता है। तो इस तरह से हम काफी फल सब्जी का काफी महत्व है और इसको हमें अवश्य करना चाहिए।
0: जी मैम, देखा जाता है कि तेल युक्त अचार तो बनाए जाते हैं आम के, लेकिन क्या लोगों के मन में सवाल है कि क्या तेल रहित अचार इसके बनाए जा
1: हाँ
0: सकते हैं?
1: बिल्कुल अनु, तेल रहित अचार हम बना सकते हैं। और तेल रहित अचार आजकल बहुत लोकप्रिय भी हो रहा है।
0: अच्छा
1: इसको बनाने के लिए कच्चे आम के छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, उसमें 20% नमक, 7.5% पीसी लाल मिर्च और 1% हींग जो है, जो तो जो हमारा आम को मेजर कर लेते हैं उसके भार के अनुसार उसमें मिलाते हैं, और मिश्रण को बार बार हिलाते हुए उसे कुछ घंटे धूप में रखते हैं। उसके बाद उसको बोतल में डाल देते हैं और 4 5 दिन तक उसको धूप में लगाते हैं। उसके बाद फिर वो खाने के लिए तैयार हो जाता है। उसको आप अच्छे स्वच्छ जगह पर भंडारित कर दीजिए, उसको उपयोग कीजिए। इसमें आपको तेल की कोई आवश्यकता नहीं है।
0: हाँ, मतलब आप अगर तेल आपको पसंद नहीं है और तेल रहित आप अचार बनाना चाहते हैं वो भी बन सकता है इससे। मैम, अब बात करते हैं आम के मूल्य संवर्धित उत्पाद की। ये जानकारी सभी लोग जानना चाहते हैं कि कौन कौन से मूल्य संवर्धित उत्पाद हम बना सकते हैं इससे।
1: आम के बहुत ढेरों सारे मूल्य संवर्धित उत्पाद हैं। जैसे एक तो आप तेल रहित अचार मैंने आपको बताया, इसके अलावा तेल युक्त अचार जो कि हम सदियों से बनाते हैं, ये घर की हर गृहिणियाँ बनाती हैं, जिस पे हम लगता है चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अमचूर जो पाउडर बनाते हैं वो भी लगभग हमको लगता है घर की हर महिलाएं बनाती ही
0: जी
1: है। तो अमचूर बनाती हैं महिलाएं जनरली, वो सुखा कर बनाती हैं आम की फांकों को। लेकिन उसमें हम थोड़ा सा चेंज करना चाहेंगे। यदि आम की फांकों को आप पोटासियम मेटाबसल्फाइड के 0.2% घोल में 5 मिनट तक डुबोने के पश्चात धूप में सुखाते हैं तो आमचूर का क्वालिटी गुणवत्ता आपका ज़्यादा अच्छा
0: ज्यादा
1: होता
0: बढ़
1: है। ऐसे
0: जाता
1: आमतौर पर महिलाएं उसको सीधे धूप में
0: है, धूप
1: सुखा
0: में
1: करके
0: सुखा
1: बनाती
0: करके।
1: हैं। लेकिन यदि ये आप एक स्टेप कर लेती हैं तो आपका आमचूर का गुणवत्ता बढ़ जाता है। इसके अलावा आप पन्ना भी, आजकल जब धूप होता है तो हर घर में पन्ना बनता है, यहाँ तक कि चौक चौराहे पर भी पन्ना मिलता है, और दिल्ली जैसे शहर में पैकेजिंग करके भी पन्ना बिकता है। मतलब इसका काफ़ी मार्केट है। तो ये पन्ना आप बना सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, आम के कच्चे फलों को भून लें या उबाल लें, उसका गूदा निकाल लेते हैं और उसमें प्रति किलो गूदे में 0.8 kg शक्कर, 0.4 लीटर पानी, 80 ग्राम नमक, 20 ग्राम काली मिर्च और 20 ग्राम साइट्रिक अम्ल मिलाकर गर्म करते हैं। तो उसके बाद इसके जैसे स्क्वैश को हम लोग बोतल में भरते हैं उसी तरह बोतल में भर देते हैं, और इसमें KMS पोटासियम मेटाबाइसल्फाइड बोतल में भरने से पूर्व उसमें हम लोग मिला देते हैं। कि जैसे 5 लीटर है तो उसमें 3 ग्राम के अंदाज से

के दर से उसमें मिला करके उसको पैक कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आमचूर बना सकते हैं, पन्ना बना सकते हैं। इसके अलावा जो आम का कच्चा आम हमारा काफी आंधी में गिर के बर्बाद हो जाता है, उस आम का हम लोग कच्चे आम का स्क्वैश बना सकते हैं। कच्चे आम का स्क्वैश बनाने के लिए आप आंधी में गिरे हुए फल भी ले सकते हैं या फिर प्रॉप फल भी ले सकते हैं, जो भी आप पास उपलब्ध हो वो ले सकते हैं। उस फलों को आप अच्छे से धो कर स्टील के चाकू से छिलका उसका हटा दें, टुकड़ों में काट लें। यदि गुठली वाला है तो टुकड़े में नहीं भी काटते हैं तो उसको पूरा डाल दें, लेकिन यदि गुठली नहीं हुआ है तो टुकड़े में काट करके बीज का जो आपका बीज है उसको निकालना अति आवश्यक है, नहीं तो उसको पकाएंगे तो वो चूंकि हार्ड नहीं हुआ रहता है तो वो स्वाद को खराब कर देता है। इसलिए यदि छोटा फल है तो उसको टुकड़ों में अवश्य काट करके बीज का जो बीज है उसको निकाल लीजिए। यदि आपका पूरा मैच्योर है तो गुठले में नहीं भी टुकड़े में काटते हैं तो उसको एज सच भी आप उबाल सकते हैं। तो या तो आप टुकड़े में काटिए या फिर गुठली सहित है तो आप उसको ऐसे छील करके बराबर पानी के साथ उसको हम लोग पूर्ण रूप से गल जाए तब तक उसको हम लोग उबालते हैं। उसके बाद उबालने के बाद उसको या हमारे पास यदि मशीन है पल्पर है तो पल्पर में डाल करके उसको गुदा को अलग कर लेते हैं, रेशा बीज को अलग कर लेते हैं। यदि नहीं है तो हम हाथ से मसल करके गुठली को हटा देते हैं। मिक्सी है तो मिक्सी में उसको हम लोग थोड़ा पीस लेते हैं। उसके बाद कपड़े से मसलिन के कपड़ा मार्किन के कपड़ा से छान करके उसके गुदा को हटा लेते हैं, रेशा को साइड कर देते हैं। इसके बाद उस जो आपका गुदा हुआ है उस गुदे को हम लोग थोड़ा सा हल्का सा भफा लेते हैं, क्योंकि हम लोग हाथ लगाए हैं, भफा करके उसको रख लेते हैं, ठंडाने देते हैं। और हम लोग जितना रस निकला उस रस को मेजर करके उसका डेढ़ा चीनी लेते हैं, चीनी का आधा पानी लेते हैं। चीनी पानी का हम लोग आंच पे चढ़ा करके जब तक चीनी नहीं गल जाए तब तक पकाते हैं, उसके बाद हाँ चाशनी बनाते हैं। उसके बाद प्रति केजी चीनी के उसमें हम लोग 4 से 5 ग्राम 4 ग्राम क्योंकि कच्चे आम का बना रहे हैं इसलिए 4 ग्राम साइट्रिक एसिड डालते हैं। उसके बाद जब चाशनी हमारा चाशनी और आम दोनों जो आम का रस दोनों ठंडा जाता है तो धीरे धीरे आम के चाशनी को हम लोग आम में डालते हैं, गूदा में डालते हैं और धीरे धीरे चलाते रहते हैं। उसके बाद इसमें हम लोग जब पूरे अच्छे से मिल जाता है तो 5 लीटर स्क्वैश में आपको 3 ग्राम KMS की दर से थोड़े से पानी में घोल करके उसमें मिला देते हैं और आप इसको अब ये आपका बॉटलिंग कर देते हैं और इसको आप पैक करके रख दीजिए। इसको जब पीना हो तो 3 से 4 भाग पानी मिलाकर 1 भाग ये मिलाकर के आप इसको पीजिए और इसका आनंद लीजिए। इसी तरह से आप पके आम का भी स्क्वैश बना सकते हैं, बिल्कुल यही प्रक्रिया है। आपको पके आम में जैसे यहाँ आप 4 ग्राम साइट्रिक एसिड डाले तो वहाँ 5 से 6 ग्राम साइट्रिक एसिड डालिए प्रति केजी चीनी के हिसाब से और उसको आपको कच्चा आम को आपको उबालना पड़ा पानी से तो उसमें उबालना नहीं, उसको सीधा छिलका कुछ हटा करके उसके गुदे को निकाल लेना है, गुदा को भफा लेना है। भफा के जैसे कच्चे आम के लिए प्रक्रिया है उसी तरह पके आम के स्क्वैश बनाने की भी प्रक्रिया वही है, इसी तरह से आप उसका स्क्वैश बना सकते हैं। इसके बाद आपका आम का जैम बना सकते हैं, ये कच्चा और पके दोनों आम का जैम बना सकते हैं। इसके लिए मान लीजिए कच्चा आम है तो उसको छील करके टुकड़ों में काट लीजिए, फिर थोड़ा सा पानी में से गर्म करके गुदा को नरम कर लेते हैं। अब गुदे की मात्रा का 3/4 या बराबर, मान लीजिए खट्टा आम है तो बराबर चीनी दे दीजिए, यदि पका आम है तो 3/4 में चीनी मिला करके पकाते हैं। उसी यदि पका आम, ये तो कच्चे आम का हो गया, यदि पका आम हम लेते हैं तो पका आम का गुदा लेते हैं उसी के मात्रा में चीनी डालकर उसको पकाते हैं। अब चाहे कच्चा आम को पका रहे हो चाहे पका आम को पका रहे हो, पकाने के बाद जो जितना आप चीनी डाले हैं प्रति केजी चीनी के हिसाब से 5 ग्राम साइट्रिक एसिड डाल देते हैं हम उसमें। यदि कच्चा आम है तो उसमें आप 4 ग्राम भी साइट्रिक एसिड डाल सकते हैं और पका आम ज़्यादा पका है तो 6 ग्राम भी साइट्रिक एसिड डाल सकते हैं। उसके बाद जब इसका तापमान 105 से 180 डिग्री तक पहुंच जाए तब इसको हम लोग उतार करके इसमें 0.02% सोडियम बेंजोएट थोड़े से पानी में घोल करके उसमें मिला देते हैं और इसके बाद उसको हम लोग अच्छे डब्बे में साफ किया हुआ डब्बा में उसको गरम गरम ही डाल करके देते हैं। फिर जब ठंडा जाता है तो उसके ऊपर एक मोम का लेयर डाल करके उसको हम पैक कर देते हैं। इस तरह से हम लोग आम का जैम बना सकते हैं। इसी तरह से हम लोग आम का मुरब्बा भी बना सकते हैं। आम का मुरब्बा बनाने के लिए पूर्णतः विकसित और स्वस्थ एवं अधपका आम का चयन करना चाहिए। उसको अच्छे से पानी से धो लीजिए, फिर आम के छिलकों को हटा करके उसका 9 सेंटीमीटर मोटाई और आम की गोलाई में बड़े बड़े टुकड़े काट लीजिए। अब उसके बाद अब इन टुकड़ों को 2 से 3% नमक के घोल में डुबाएं ताकि इन्हें काला होने से बचाया जा सकता है। इन टुकड़ों को पतले कपड़े में

0: लपेट कर खौलते पानी में 5 से 10 मिनट तक डुबोएं। बाद में इन्हें सूखे कपड़े पर फैलाकर सुखाएं। थोड़ी देर बाद इन टुकड़ों में जो स्टील या लकड़ी का सिकचा हो या फिर फॉर्क हो उससे थोड़ा छेद कर दीजिए और एक बर्तन में आम के टुकड़े के वजन के बराबर चीनी लेकर पानी में चाशनी तैयार करें। पानी और चीनी का अनुपात 1:3 होना चाहिए। उसमें आप इसके 1.5 से 2 ग्राम प्रति किलो चीनी के हिसाब से साइट्रिक अम्ल मिला दें। चाशनी तैयार हो जाने पर उसमें आम के टुकड़े को डाल दें और तब तक गर्म करें जब तक चाशनी 3-4 तार ना छोड़ने लगे। अब मुरब्बे को ठंडा कर दें और ठंडा होने पर उसे स्वच्छ जीवाणु रहित बोतलों में भर दें। उसके बाद आप उसको पैक कर दीजिए। उसको चाहें तो उसके ढक्कन को मोम से भी सील कर सकते हैं। फिर आप इसका आनंद लीजिए। इस तरह से हम लोग विविध मूल्य संवर्धित उत्पाद बना सकते हैं। उसका परिरक्षण करके विविध परिरक्षित उत्पाद बना करके उसका सालों भर मजा ले सकते हैं। इसको रोजगार ले कर सकते हैं और अपने घर के खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को भी पूर्ण कर सकते हैं।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और श्रोताओं, आशा करते हैं कि आप भी आम के जो मूल्य संवर्धित उत्पाद हैं बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बनाएं जैसे कि मैडम ने आपको बताया। तो आज के लिए इतना ही। अगले दिन एक अलग विषय के साथ हाजिर होंगे हम इसी फ्रिक्वेंसी पर। तब तक के लिए नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

0: में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी बातें। तो आज भी एक खास विषय, और आज हम बात करेंगे, जी हाँ, अच्छे फलन के लिए तुड़ाई उपरांत लीची और आम के बागों का प्रबंधन कैसे करें। तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर रूबी रानी। मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। मैडम, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद
0: मैडम। जैसे कि आज का जो हमारा विषय है, अच्छे फलन के लिए तुड़ाई उपरांत आम और लीची के बागों का प्रबंधन, तो इनके तोड़ने के बाद बाग का प्रबंधन कैसे करना चाहिए हमारे सभी किसान भाइयों को जो बागवानी कर रहे हैं इस फल की, और ताकि आने वाले समय में अच्छी फलन उन्हें प्राप्त हो सके।
1: किसान भाइयों, बागवानों, सबको नमस्कार। सबसे पहले मैं बता दूं कि किसी भी बगीचे की उत्पादकता एवं उसके उत्पाद की गुणवत्ता के लिए बहुत आवश्यक है कि बगीचे का समुचित प्रबंधन किया जाए। वास्तव में होता क्या है कि किसान को जब फूल आने लगते हैं पौधों में, चाहे लीची में चाहे आम में, तब वो पूछना शुरू करते हैं कि अब इसमें क्या करें ताकि मेरा फलन ज़्यादा हो। लेकिन ये आवश्यक है कि तुड़ाई के बाद ही उसका सही ढंग से प्रबंधन करें, चाहे कीट व्याधि का प्रबंधन हो, चाहे पोषण प्रबंधन हो, चाहे उसकी तुड़ाई हो, प्रूनिंग हो, और कुछ भी तरह की जो है समस्याएं हैं उसका प्रबंधन अगर सालों भर वैज्ञानिक विधि से किया जाए तो कीट व्याधि का भी प्रकोप कम होता है, साथ ही साथ फल की गुणवत्ता में भी वृद्धि होती है, जिससे बागवान को उत्पाद का अधिक मूल्य और मुनाफा प्राप्त होता है।
0: जी,
1: तो हम एक एक करके बताना चाहेंगे कि लीची और आम में तुड़ाई के उपरांत
0: क्या
1: करना चाहिए, बगीचे में क्या करना चाहिए ताकि अगले साल में आने वाले फलन जो हो वो ज़्यादा अच्छा हो और अच्छी उत्पाद गुणवत्ता युक्त भी हो।
0: जी मैम, अब कुछ क्रियाकलाप की बात करते हैं, तो क्या कुछ क्रियाकलाप करना चाहिए तुड़ाई के बाद बागों के प्रबंधन के लिए?
1: सबसे पहले आम और लीची के तुड़ाई के समय में तुरंत या उसके तुरंत बाद बगीचे में बहुत सारी सूखी एवं टूटी टहनियाँ, पत्ते, सड़े गले फल आदि रह जाते हैं, जो कि कीट एवं व्याधि के लिए वैकल्पिक आधार का स्रोत का काम करते हैं। जब वो पेड़ में नहीं रहते हैं तो टूटे पत्तों में, टहनियों में, और जो सड़े वाले फल होते हैं या तो पेड़ पे सड़ जाते हैं या फिर टूटने के बाद सड़ जाते हैं, तोड़ने के दौरान जो है बहुत सारे फल नीचे गिर जाते हैं जिसमें भी विभिन्न प्रकार के जो है कीड़े का प्रकोप होता है। अतः सर्वप्रथम आवश्यक है कि फलों की तुड़ाई के उपरांत बगीचे की अच्छी तरह से सफाई की जाए। सफाई में क्या करें, रोगग्रस्त टहनियों, पत्तियों, सड़े फलों को बगीचे से बिल्कुल बाहर निकाल दें। साथ ही पेड़ में अगर कोई रोगग्रस्त टहनियाँ हो, पत्तियाँ हो, कीड़ों का आदि का प्रकोप हो, तो उसका जो है, अगर वो टहनी काटने लायक हो तो उसको काट दें, अगर वो टहनी काटने लायक नहीं हो तो उन सभी रोगों और व्याधियों का समुचित प्रबंधन करें ताकि उसका प्रकोप बढ़ नहीं पाए। अगर टहनियाँ अधिक झुकी हों, अर्थात जमीन पर भी कोई सटी हुई हो, क्योंकि उसमें जब फल लगते हैं तो फल के जो नीचे वाले भाग होते हैं उसमें भी अगर फल होता है तो लोग छोड़ देते हैं कि तुम्हारा फल इसमें लगा हुआ है, हम इसको छोड़ देते हैं। परंतु फल की तुड़ाई के बाद वैसी टहनियाँ जो जमीन को छूती हुई हों या अधिक झुकी हुई हों, उनकी छटाई भी आवश्यक है ताकि जो है 1 से 1.5 मीटर जमीन तक जो है वो बिल्कुल खाली रहे, कोई टहनी रहे और हवा का आवागमन अच्छे से हो सके।
0: जी मैम, अब बात करते हैं पोषण प्रबंधन की, तो आम और लीची के बागान में जो है पोषण प्रबंधन कैसे करना चाहिए?
1: सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, जैसे जून के महीने में लीची की तुड़ाई जो है जून तक ख़त्म हो जाती है, जून के महीने में जो है आप लीची का जो है तुड़ाई के उपरांत की सूखी टहनियाँ, आड़ा तिरछा और रोगग्रस्त टहनियाँ, वृक्ष के छत्रक के बाहर जाती टहनियों को छटाई कर दें ताकि उसमें समुचित हवा और सूर्य का प्रकाश हमेशा मिलता रहे। और छटाई के उपरांत जो है बेधक छटाई अगर समुचित ढंग से करेंगे तो जो स्टेम बोरर का कीड़ा है उसका प्रकोप कम हो जाता है और छत्रक के अंदर की तरफ भी फल आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि छत्रक के अंदर में भी तब उचित हवा और सूर्य के प्रकाश का आवागमन होना शुरू होता है। साथ ही साथ लीची की मकड़ी से आक्रांत टहनियाँ जो हैं उसको भी काटकर बगीचे से दूर मिट्टी में दबा दें। उसके बाद बागों की हल्की जुताई करें, जिससे जून जुलाई के महीने में जो भी खरपतवार और मिट्टी के साथ सड़े गले की मिट्टी के साथ मिट्टी में पड़े कीड़े और मकोड़े, उसके लार्वे नष्ट हो जाएं। और इसके बाद जब तुड़ाई हो जाता है तब उसके बाद जो है उसके पोषण प्रबंधन करते हैं, चाहे आम हो या लीची हो, तुड़ाई के उपरांत ही उसका हम पोषण प्रबंधन करते हैं। पोषण प्रबंधन के लिए सबसे पहले बगीचे की सफाई करते हैं, उसके थाले का निर्माण करते हैं, और पोषण कहाँ पर दिया जाना चाहिए ये बहुत महत्वपूर्ण भाग।

0: तो इसके लिए बताएंगे कि जो भी छत्रक का फैलाव हो, उस छत्रक के फैलाव से आप एक सीधी जहाँ पर लकीर खींच दें ऊपर से नीचे तक, और तने के से और उस दूरी को चार बराबर भागों में बांट दें। यानी कि जो भी छत्रक का फैलाव हो वहाँ से और पेड़ के तने की दूरी को चार बराबर भागों में बांटें, एक भाग अंदर की तरफ, एक भाग बाहर की तरफ को छोड़ दें, और बीच वाले जो दो भाग हैं उसी में मुख्यतः आप फर्टिलाइजर का उपनिवेश करें, वहीं पर फर्टिलाइजर डालें। क्योंकि पौधे का अधिकतर जो है वो अवशोषी जड़ें जो होती हैं, रूट हेयर्स जो रहते हैं, जो कि पानी और पोषण का अवशोषण करते हैं, उन्हीं क्षेत्रों में रहता है। इसलिए पहले थाली का सफाई करके पेड़, जो भी बगीचे में आपकी सूखी टहनियाँ, रोगग्रस्त टहनियाँ, सड़े गले पत्ते हो, उसको हटा दें, एक बार जुताई कर दें, फिर उसको थाले का निर्माण करके पोषण प्रबंधन करें। पोषण के रूप में अगर आपका वृक्ष जो है, बगीचा जो है, वो व्यावसायिक रूप से फल रहा है, 10 वर्ष या 12 वर्ष से ऊपर का है, तो उसके लिए आप जो है नाइट्रोजन 800 से 900 ग्राम, फॉस्फोरस 400 से 50 ग्राम, और पोटास जो है 800 से 1000 ग्राम प्रति पेड़ प्रतिवर्ष दें। इसके साथ ही 40 से 50 किलो आप जो है कंपोस्ट भी उसमें डालें। ध्यान रहे कि ये मात्रा जो है प्रतिवर्ष प्रति पेड़ के लिए है, और इसकी मात्रा जो है, इस मात्रा की 3/4 भाग आप जुलाई माह में डालें, और 1/4 भाग जो है फल के उपरांत, फल जब लग जाता है तब उसके बाद अप्रैल के प्रथम या दूसरे सप्ताह में दें, ताकि उसमें फल की बढ़वार ज़्यादा अच्छे से हो सके, फल का साइज बढ़ सके। लेकिन 3/4 भाग आप जुलाई के महीने में ही, जून लीची के केस में जून के अंतिम से लेकर के जुलाई अगस्त महीने तक, और आम के केस में जुलाई अगस्त से लेकर के मध्य सितंबर तक आप पोषण का प्रबंधन कर लें।
1: जी, कई बार मैम देखा जाता है कि आम और लीची के बागों में कीट व्याधियों का प्रकोप हो जाता है, तो इसका प्रबंधन कैसे कर सकें, कैसे करें?
0: कीट व्याधि के प्रबंधन के लिए आपको तुड़ाई के उपरांत ही ध्यान देना पड़ेगा, तुरंत ध्यान देना शुरू करें होगा। जैसा कि मैंने बताया कि तुड़ाई के उपरांत जो भी रोगग्रस्त टहनियाँ, उसकी प्रूनिंग कर लें, उसकी छटाई कर लें, और जहाँ पर भी आपको लगे कि कीड़े मकोड़े हैं उसका उचित प्रबंधन कर लें। अब है कौन कौन से कीड़े मकोड़े ज़्यादा लगते हैं।
1: जी,
0: लीची के केस में बता दें कि लीची माइट का प्रकोप बहुत होता है। इसका ये लक्षण होता है कि पत्तियाँ में जो है वो ब्राउन कलर का, कॉफ़ी के कलर का एक वेलवेट नुमा संरचना बन जाती है पत्ती के पिछले भाग में, और धीरे धीरे ये पत्ती सिकुड़ जाती है
1: जी।
0: और ये जो वेलवेट नुमा आकार का जो है बनता है, वो संरचना जो बनती है पत्ती में, इसको कहते हैं इरेनियम। और उस इरेनियम के नीचे जो है वो उसके कीड़े रहते हैं, माइट के जो है वो कीड़े रहते हैं, लीची माइट के कीड़े रहते हैं। तो इसलिए जो अगर आप इसमें स्प्रे करेंगे तो उसमें वो इफेक्टिव नहीं होगा। इसके लिए आवश्यक है कि जो भी आक्रांत पत्ते हैं उसको आप तोड़ करके उसको दूर, बगीचे से दूर आप जो है गड्ढे बना करके उसमें डाल दें और उसको ढक दें। इसके बाद आप विटेबल सल्फर 0.3% 1 ग्राम पर, 1 से 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप उसका छिड़काव करें, और छिड़काव जो है 20 दिन के अंतराल पे 2 बार करें। इससे आपको, लेकिन आवश्यक है कि जो भी आक्रांत टहनियाँ हों उसको काट कर आप बिल्कुल हटा दें और बगीचे में ना छोड़ें। और इस तरह से जो है आप लीची के माइट से आप बचाव कर सकते हैं अपने लीची को। उसी तरह से अगस्त सितंबर के महीने में शूट गॉल का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है, प्रभाव देखने को मिलता है, तथा जाला बनाने वाले भी टेंट कैटरपिलर का प्रभाव भी बहुत होता है। इसकी रोकथाम के लिए सबसे प्रथम जाला साफ करके प्रभावित भाग को काट देना चाहिए, और अधिक प्रकोप होने पर 0.2% कार्बरिल का 3 ग्राम प्रति लीटर या 0.04% मोनोक्रोटोफॉस यानी कि 1 ml प्रति लीटर मोनोक्रोटोफॉस का छिड़काव करना चाहिए। रेड रस्ट या एंथ्रेक्नोज के नियंत्रण हेतु, क्योंकि एंथ्रेक्नोज जो है वो फलों को काफ़ी आक्रांत करता है, एंथ्रेक्नोज के कारण फल का जो है वो रंग बड़ा ख़राब हो जाता है और काला काला पड़ने लगता है, इसलिए एंथ्रेक्नोज के नियंत्रण हेतु कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी छिड़काव करें, ताकि आपके फल की गुणवत्ता बरकरार रहे। ये खासकर आम के पौधे में होता है और बरकरार रहें। कभी कभी क्या होता है, अधिक बारिश की होने की वजह से बाग में जल जमाव की समस्या हो जाती है,

0: जल निकासी की समस्या नहीं हो पाती है और पेड़ में तना छेनक का प्रकोप भी बहुत ज़्यादा हो जाता है ऐसे जगहों में। तो अगर आपको तना छेदक का प्रकोप दिखे तो आप अगस्त सितंबर के महीने में जाला को साफ करके, जो भी उसका जो अगर तना छेदक का प्रकोप होता है जहाँ पे, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वो छेदक जो है कुछ बुरा लकड़ी जो है अंदर के तने में घुस करके उसको लकड़ी जो है काट करके बाहर बुरादा के रूप में गिराते हैं। तो जहाँ भी आपको बुरादे के रूप में लकड़ी दिखे आम के पेड़ के बाहर, आप समझ जाइए कि इसमें तना छेदक है। और उसके उपचार के लिए उस वहाँ पे जो जहाँ पर आपको गिर रहा है वो लकड़ी का, उसको साफ करके उसको क्लोरोपाइरीफॉस का स्प्रे करें। इसके अलावा क्या होता है कि तना में छेद कर देते हैं, लीची में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, तना में छेद करते हैं और बहुत जालेदार संरचना, गोल गोल संरचना बना के जाले के रूप में वो बाहर निकलता है। तो सबसे पहले आप लीची के पेड़ में जाले को साफ करें, या आम के पेड़ में भी ये प्रकोप देखने का मिलता है तो आप उसको अच्छी तरह से सफाई करें। जहाँ भी आपको छेद दिखे उसमें कपड़े में पेट्रोल लपेट के उस छेद की सफाई करें। उसके बाद न्यूवान से भींगी रुई छेद में डाल करके उस छेद को गीली मिट्टी से बंद कर दें और इस तरह से वो वाष्पीकृत गंध के प्रकोप से वो कीड़े नष्ट हो जाते हैं। और इस तरह से आप जो है स्टेम बोरर से आप अपने लीची या आम के पौधे को बचा सकते हैं। इसके अलावा जो है अक्टूबर नवंबर महीने में रेड बेंडेड कैटरपिलर का जो है उसका भी बहुत ज़्यादा प्रकोप देखने को मिलता है। आजकल किसान बहुत परेशान हैं इस रेड बेंडेड कैटरपिलर से। वो कैसे पहचानेंगे कि रेड बेंडेड कैटरपिलर है? तो आम में जो है वो जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, आम 2 से 3 सेंटीमीटर बड़ा हो जाता है, तब देखते हैं कि आम के निचले भाग में एक छिद्र टाइप से दिखता है और वहाँ पे थोड़ा भूरे रंग का छेद दिखता है। उसके कुछ दिन के बाद से आम नीचे से फटने लगता है। तो इसका सबसे अच्छा प्रबंधन तभी होगा जब अक्टूबर और नवंबर के माह में हम इस पर ध्यान देंगे, क्योंकि उसके लार्वे, उसके जो अंडे होते हैं वो अक्टूबर नवंबर महीने में आम के पेड़ के तने जो होते हैं उसमें जो कुछ तने के जो नीचे क्रैक्स होते हैं, जो खुरदरे भाग होते हैं उसके नीचे वो अंडे छुपे रहते हैं। तो उस समय आपको बहुत आवश्यक है कि क्लोरोपाइरीफॉस से बहुत अच्छी तरह से आम के पूरे तने को आप स्प्रे कर दें। अगर उसके अंडे नष्ट हो जाएंगे तो लार्वा बाहर नहीं आ पाएगा, लार्वा बाहर नहीं आएगा तो फिर आपको इस आक्रांत से बच सकते हैं। और आजकल ये बहुत एक तरह से महामारी का रूप ले चुका है। आम में 2/3 3/4 भाग कभी कभी किसी बगीचे का पूरा नष्ट हो जाता है और इसलिए इसका रोकथाम बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आवश्यक है ये काम आप अक्टूबर नवंबर माह में करें
1: जी।
0: इसके अलावा अक्टूबर नवंबर माह में आपको उकठा रोग या डाईबैक की समस्या भी देखने को मिलती है। अगर डाईबैक की समस्या में क्या होता है कि ऊपर से टहनियाँ सूखने लगती हैं, आम की हो या लीची की हो समझ सूखने लगती हैं, तो आप इसके लिए क्या करें, प्रभावित शाखाओं को 5 से 10 सेंटीमीटर हरे भाग के साथ काट कर हटा दें। उसके बाद 0.3% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव 15 दिन के अंतराल पे 2 बार करें। इस तरह से जो है आप इस डायबैक के रोग से भी आप छुटकारा पा सकते हैं। लीची और आम में फूल आने तक, नवंबर मास के बाद से फूल आने तक कभी भी जो है सिंचाई और पोषण का प्रबंधन ना करें। आम और लीची में ध्यान रखें, आम और लीची में नवंबर माह के बाद सिंचाई और पोषण का प्रबंधन आप नहीं करें। अगर आप पोषण देते हैं, लोग क्या होता है कि वर्षा के बाद प्लॉइंग करते हैं खेत में, बगीचे की खेती प्लॉइंग करते हैं और उनको लगता है कि अब ये फूल आने वाला है तो हम अच्छे से पोषण दे दें ताकि जो है हमारा आगे आने वाले साल में फलन अच्छा हो। लेकिन जब आप नवंबर महीने में आप पोषण करेंगे तो क्या होता है कि फल बनने की प्रक्रिया जो शुरू होने वाली होती है वो बंद होकर के पत्तियां बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो आपके पौधे तो बहुत अच्छे दिखेंगे, हरे भरे दिखेंगे, लेकिन उसमें फूल नहीं आएंगे। इसलिए आवश्यक है कि आम और लीची में पोषण का प्रबंधन आप सितंबर के माह तक ही कर लें तो बेहतर है। दूसरी बात

0: अक्टूबर के महीने में आप जो है बगीचे की जुताई अवश्य करें। आप हम ये नहीं करें कि आप पोषण प्रबंधन करें, अक्टूबर नवंबर महीने में बगीचे की जुताई अवश्य करें ताकि बरसात में होने वाले जो भी खरपतवार हो उगे हैं उसकी सफाई अच्छे से हो सके, क्योंकि खरपतवार जो है कीट और रोग का एक अल्टरनेट माध्यम होता है, दूसरा माध्यम होता है। अगर कोई कीट वादी पेड़ में अगर नहीं है तो भाग करके वो तत्काल में जो है वो खरपतवार में छुप जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि बरसात के बाद जो है आप एक बार बगीचे की अच्छी तरह से जुताई करें, पेड़ के में थाला बनाएं, पेड़ के थाला को साफ रखें और चूना तूतिया और पानी का घोल 5:5:50 में बना करके पेड़ के धड़ों को 3 से 4 फीट ऊंचाई तक अच्छी तरह से पुताई कर दें। इससे आपको बहुत सारे रोगों से निजात मिल पाएगा। तो ये करना आवश्यक है, लेकिन ध्यान रहे आप थाला तो बनाएंगे, थाला की सफाई करेंगे, लेकिन पोषण अभी नवंबर महीने में बिल्कुल नहीं करें, अन्यथा आपको फूल बनने की प्रक्रिया बंद हो करके पुनः पत्तियां का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा एक मिली बग जो कि आम में या बहुत सारे फूल या फल के पौधों में लगते हैं, कि छोटा छोटा उजले रंग का थोड़ा सा गद्देदार टाइप का जो है वो कीड़े जो है लग जाते हैं, खासकर जो मुलायम पत्तियां होती हैं टिप पे बहुत ज़्यादा इसका प्रकोप होता है, उसको मिली बग कहते हैं, या आम में उसका प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको गुजिया किट भी कहते हैं। इसके रक्षा हेतु दिसंबर माह में तने पर भूमि से 40 मीटर की ऊंचाई तक मिट्टी का लेप लगा दें, उस मिट्टी में क्लोरोपायरीफॉस का भी आप समावेश कर दें, और मिट्टी का लेप लगाने के बाद जो है इसके ऊपर, उस मिट्टी के लेप के ऊपर 25 सेंटीमीटर चौड़ाई की पॉलीथीन आप लपेट दें, और उसके ऊपर नीचे पॉलीथीन के ऊपर और नीचे दोनों भाग में को आप सुतली से बांध दें, तने के धड़ को चारों तरफ से सुतली से बांध दें, और पट्टी के नीचे की तरफ थोड़ा सा ग्रीस लगा दें, क्योंकि इसी महीने में वो मिली बग के जो लार्वा होता है वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू करता है। अगर आप वो प्लास्टिक की पट्टी लगा के उस पर ग्रीस लगा देंगे तो गुजिया कीट जो है उसे पार नहीं कर पाएंगे, वो वहीं पर चिपक रह जाएंगे, और यदि कीटों का प्रकोप अधिक हो तो ये आवश्यक है कि मिट्टी में क्लोरोपायरीफॉस को भी 200 ग्राम प्रति पेड़ की दर से मिला दीजिए, और उसके बाद से उसको प्लास्टिक से लपेट करके और नीचे और ऊपर पोर्शन में ग्रीस लगा दें ताकि आप जो है गुजिया कीट से आप बचा सकें। साथ ही साथ छाल खाने वाले मतलब बार्क ईटिंग कैटरपिलर और तना छेदक कीड़ों को भी पहचान कर पहले इसका जाला साफ करें नवंबर महीने में भी, और मोनोक्रोटोफॉस या डाइक्लोरोफॉस का 0.05% के घोल से छेद में डाल करके उसको छेद बंद करें। ये सारे जो है अगर आप इस तरह का प्रबंधन दिसंबर माह तक करते हैं तो ये आप आने वाले फलन के समय में आप जो है बहुत सारे कीट और व्याधि का से आप निजात पा सकते हैं, और उसके बाद आपका जो फल की गुणवत्ता भी अच्छी होगी और उसकी उपज भी ज़्यादा होगी।
1: जी ये बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी मैम, और आशा करते हैं हमारे सभी किसान भाइयों को इससे लाभ मिलेगा। तो किसान भाइयों और हमारे श्रोताओं, अगले दिन एक अलग विषय के साथ हाजिर होंगे हम इसी फ्रिक्वेंसी पर, तब तक के लिए नमस्कार।
2: उन्नत कृषि

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आज के कार्यक्रम में हम बातें करने वाले हैं सेहत से जुड़ी हुई। क्या हो गया है ना कि आजकल के समय में फोन हमारा इतना अच्छा साथी बन गया है कि इसका प्रभाव हमारे जीवन के हर एक चीज पर पड़ता है, फिर चाहे वो रिश्ते हों या फिर हमारी दिनचर्या। और हमारी दिनचर्या तो इतनी बुरी तरह से बिगड़ी है कि उसकी वजह से ढेर सारी बीमारियां भी हो रही है हमें, चाहे मोटापा हो, डायबिटीज हो, हार्ट की बीमारी हो, बहुत सारी बीमारियां सिर्फ इसी वजह से हो रही है क्योंकि हमारी दिनचर्या एक जैसी है ही नहीं। कभी 10 बजे सो गए, कभी 12 बजे सो गए, कभी 3 बजे सो रहे हैं तो

किसी दिन शाम को 6 बजे ही नींद आ गई, कभी सुबह 4 बजे जग रहे हैं, कभी 6 बजे जग रहे हैं, कभी 10 बजे जग रहे हैं। और ये जो सोने और जागने का ठीक समय नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर अच्छे से अपने आप को संतुलित नहीं बना पाता है। सोचिए, आपके ऑफिस वाले कभी आपको सुबह 6 बजे बुला रहे हैं, कभी 8 बजे बुला रहे हैं, कभी 10 बजे बुला रहे हैं, और आपको छुट्टी दे रहे हैं कभी 7 बजे, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे। तो आपका दिमाग भन्ना जाएगा या नहीं? उसी तरीके से हमारे शरीर का दिमाग भी भन्ना जाता है और वो हमारे अंदर ढेर सारी बीमारियां पैदा करने लगता है। तो क्या होते हैं सही समय पर नहीं सोने और जागने के नुकसान, आइए इस बारे में जानते हैं और किस तरीके से आप इसे सुधार सकते हैं, इसके बारे में भी हम बातें करेंगे। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। विज्ञान कहता है कि हमारे शरीर का एक सर्कैडियन रिदम होता है। ये शरीर का एक 24 घंटे की जैविक घड़ी है। जैसे हम रूटीन बना कर रखते हैं ना कि इस टाइम पे ये काम करना है, इस टाइम पे ये काम करना है, उसी तरीके से हमारा शरीर भी 24 घंटे का एक रूटीन बना कर रखता है। और जो हमारे दिमाग का हिस्सा होता है, जिसे कि हम SCN कहते हैं, वो यही तय करता है कि कब नींद आएगी, कब भूख लगेगी, हार्मोन कब निकलेंगे। और अगर एक ही समय पर हम सोते और जागते हैं तो जो सोने वाला हार्मोन होता है, यानी कि मेलाटोनिन, जिसे कि हम स्लीप हार्मोन भी कहते हैं, वो सही समय पर निकलता है। और जब ये सही समय पर निकलता है तो हमें नींद अच्छी आती है, गहरी आती है। और जब हम गहरी और अच्छी नींद सोते हैं तो सुबह उठने में भी हमें थकान बिल्कुल नहीं लगती और हम बिल्कुल तरोताजा, फ्रेश महसूस करते हैं। अगर हम सही समय पर सोते हैं तो हार्मोन और शरीर पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो कॉर्टिसोल, जिसे कि हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, वो संतुलित रहता है। इसके साथ ही इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बेहतर रहती है। जी हाँ, इंसुलिन, जिससे कि डायबिटीज का खतरा होता है, वो भी आपके निश्चित समय पर सोने और जागने से काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इसके साथ ही ग्रोथ हार्मोन भी सही समय पर निकलता है, जिससे कि हमारे जो मांसपेशी होते हैं वो रिपेयर होते हैं। और इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन हमारे लिए एक एंटी एजिंग की तरह भी काम करता है। यानी कि बहुत लोगों को आपने देखा होगा ना कि उम्र से पहले ही वो काफी बूढ़े लगते हैं। इसके पीछे हालांकि कई सारी वजहें होती हैं और उनमें से एक वजह ये भी होती है कि आप सही समय पर, आप निश्चित समय पर नहीं सो रहे हैं, नहीं जाग रहे हैं। निश्चित समय पर सोने और जागने के क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, इसके लिए कई सारे रिसर्च भी किए गए हैं। और रिसर्च क्या कहते हैं इसके बारे में अगर हम बात करें, तो जो लोग रोज अलग अलग समय पर सोते हैं, उनमें मोटापा, डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी जो बीमारियां हैं वो काफी ज्यादा पाई जाती है, और उनमें हार्ट डिजीज का खतरा भी 20-30% अधिक होता है। वहीं जो लोग निश्चित समय पर सोते हैं, जागते हैं, उनकी जो याददाश्त शक्ति होती है वो बेहतर होती है, वो किसी चीज़ पर फोकस अच्छा कर सकते हैं, उनका जो रिएक्शन टाइम होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। अच्छा, आइए अब हम ये जानते हैं कि हमारा आयुर्वेद क्या कहता है। जी हाँ, अगर हम आयुर्वेदिक दिनचर्या की बात करें तो ये कहता है कि रात 10 से 2 बजे तक, जो कफ से पित्त काल कहा जाता है, इस समय हमारा शरीर लीवर डिटॉक्स करता है, टिश्यू रिपेयर करता है और डाइजेशन को रीसेट करता है। लीवर डिटॉक्स यानी कि जो आपके लीवर में जितनी भी गंदगियाँ हैं वो रात के 10 बजे से 2 बजे तक साफ होते हैं। हमारे शरीर में अगर कोई चोट लगी है या फिर किसी और तरह की कोई परेशानी है तो वो रिपेयर भी इसी समय में होता है, हमारा डाइजेशन भी उस वक्त रिसेट होता है। तो 10 से 2 बजे का जो समय होता है वो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है आयुर्वेद के हिसाब से, हमारे शरीर के रिपेयर के लिए, हमारे शरीर को साफ सुथरा करने के लिए। इसलिए अगर हम 10 से 2 बजे तक जागते रहते हैं तो हमारा शरीर तो दूसरा काम कर ही नहीं पाता, इस वजह से हमारा शरीर और भी खराब होता जाता है। और अगर आप 10 बजे के बाद जागते हैं तो आपके अंदर पित्त दोष बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी होती है, यानी कि गैस से संबंधित समस्या होती है, त्वचा की समस्या होती है, गुस्सा ज़्यादा आता है, आपके अंदर घबराहट जैसी परेशानी बढ़ती है। वहीं अगर आप 10 बजे तक आयुर्वेद के हिसाब से सो जाते हैं तो आपको ये सारी परेशानी नहीं होती है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में जागो, तो इससे क्या होता है? अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं तो उस वक्त हमारा दिमाग सबसे शांत और सबसे स्पष्ट होता है। अब अगर आप कभी किसी फैसले को लेने में उलझे तो आप ब्रह्म मुहूर्त में जागिए और उस वक्त थोड़ा ध्यान कीजिए और फिर सोचिए कि आपके फैसले का समाधान क्या क्या हो सकता है।
वैसे आपको बता दें कि ब्रह्म मुहूर्त जो होता है वो सुबह 4 से 6 बजे के बीच का माना जाता है। वहीं ये जो मुहूर्त होता है यानी कि 4 से 6 बजे का, उस समय कहा जाता है कि ध्यान करने के लिए और पढ़ाई करने के लिए बहुत ही सर्वोत्तम समय होता है। ये आपने सुना होगा ना, हमारे मम्मी पापा हमेशा कहते हैं कि सवेरे जाकर पढ़ाई करो, उस वक्त अच्छी पढ़ाई होती है, उस वक्त जो चीज़ें याद करते हैं वो याद रह जाती है, क्योंकि उस वक्त हमारा दिमाग बिल्कुल शांत रहता है।

जाता है और ऐसे में हम जो भी पढ़ते हैं वो याद रह जाता है। और अभी जो कि शुरुआत में ही हमने बात की, हमारा जो मोबाइल है वो आजकल हमारे ज़िंदगी में इस तरीके से शामिल हो गया है कि क्या कहने। हालांकि कुछ लोग लैपटॉप पर स्क्रीन पर पूरे दिन काम भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग मोबाइल पर भी टाइम वेस्ट करते हैं। और अगर आप मोबाइल पर काम कर रहे हो या फिर किसी स्क्रीन पर काम कर रहे हो, तो ध्यान रखें कि जो स्क्रीन से ब्लू लाइट निकलती है ये दिमाग को सिग्नल देती है कि अभी दिन है, मत सो। और इसका वैज्ञानिक प्रभाव ये पड़ता है कि ये ब्लू लाइट मेलाटोनिन को 50-80% तक दबा देती है, जिससे नींद आने में 30-90 मिनट की देरी हो सकती है। इससे ज़्यादा भी देरी हो सकती है अगर आप लगातार फ़ोन को चला रहे हैं, दिन भर फ़ोन चला रहे हैं और सोने से ठीक पहले भी आप फ़ोन चला रहे हैं, तब तो आपको नींद आने में काफ़ी वक्त लग सकता है। इसका परिणाम ये होता है कि आपकी नींद बहुत हल्की आती है, आपकी नींद बार बार टूट जाती है, और जब आप सुबह जागते हैं तो आपको बहुत थकान लगती है। तो साइंस और आयुर्वेद दोनों को माने तो रात 9:30-10 बजे तक सोना सबसे सही है और सुबह 5-6 बजे तक जगना सबसे बेहतर माना जाता है। और जो लोग दिन भर स्क्रीन पर काम करते हैं वो सोच रहे होंगे हम क्या करें, हमारे पास तो हमेशा ब्लू लाइट रहता है, तो आप दिन में काम कीजिए। लेकिन ध्यान रखिए कि सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल, टीवी या तेज़ लाइट वाली कोई भी चीज़ है तो उसे बंद कर दीजिए। आप दिन भर काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। वैसे तो कहा जाता है कि सोने से 3 घंटे पहले ये सारी चीज़ें बंद कर दीजिए, लेकिन अगर आपके पास काम ज़्यादा है तो कम से कम 1 घंटा पहले तो ये काम ज़रूर करें। तो आप सोने से पहले कर क्या सकते हैं, तो आप हल्का संगीत सुनिए, अगर आपको किताबें पढ़ना पसंद है तो पढ़िए, पढ़ना बहुत अच्छा माना जाता है। और एक रूल बना लें कि बिस्तर पर मोबाइल का यूज़ करना ही नहीं है। और इसके साथ ही अब तक हमने मोबाइल के बारे में बात की, हमने कहा ना आपको कि रात में जो हमारा शरीर होता है वो हमारे शरीर को रिपेयर करता है, उसे ठीक ठाक करता है। तो उस दौरान अगर हमारा शरीर सोचिए खाना पचाने में लग जाए तो हमारा शरीर रिपेयर कब होगा। इसलिए सुझाव दिया जाता है कि देर रात खाना नहीं खाना चाहिए, खास तौर से सोने के 3 घंटे पहले तक आप अपना खाना फिनिश कर लीजिए। और अगर आपको उसके बाद कुछ खाना भी हो तो बहुत हल्का, तला भुना नहीं और बहुत स्पाइसी मत खाइए। अगर आपको बहुत तेज़ भूख लगी गई हो या फिर आप काम में बिजी रहे और आपको खाने का वक्त नहीं मिला, तो ये कभी कभार हो तो ठीक है, लेकिन आमतौर पर आपको सोने से कम 3 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि खाना जो होता है हमारा 3 घंटे में पच जाता है, और जब हम सोएंगे तो हमारा शरीर खाना खाने में वक्त नहीं लगाता बल्कि वो हमारे शरीर को रिपेयर करता है। और अगर हम सिंपल सी बात करें तो कितनी नींद से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सोते कब हैं और क्या आप निश्चित वक्त पर सोते हैं या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। तो आज से आप समझ जाइए कि अगर आप 12 बजे सो रहे हैं ना तो रोज़ 12 बजे सोइए, अगर आप 3 बजे सोते हैं तो रोज़ 3 बजे ही सोइए, और अगर आप 10 बजे सो रहे हैं तो रोज़ 10 बजे सोइए। हाँ, कभी कभार 1-2 घंटा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कोशिश करें कि आपके सोने और जागने का समय निश्चित हो। अगर आप आयुर्वेद के हिसाब से 10 बजे तक नहीं सो सकते हैं, आपका काम लंबे समय तक चलता है, 12-1 बजे तक चलता है, तो कोई बात नहीं, हर रोज़ 1 बजे सोइए। आपके शरीर को पता लग जाएगा कि यही है हमारा स्लीप साइकिल, हम 1 बजे के बाद ही सोएंगे और 1 बजे के बाद ही हमें अपने शरीर को रिपेयर करने का काम करना है, तो आपका शरीर वैसे अपने आप को ढाल लेगा। हमारे बहुत सारे साथी सोच रहे होंगे कि वैसे मुझे तो रात का कोई काम है नहीं, हमारा सारा काम तो शाम को ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर हम 10 बजे बिस्तर पर जाएं भी तो हमें नींद ही नहीं आती। कहाँ से आएगी आपको 10 बजे नींद, क्योंकि आपके शरीर को पता है कि आप तो 2-3 बजे सोने वाले प्राणी हैं। इसलिए अचानक अगर आप अपने शरीर को कहेंगे कि आपको 10 बजे अब सोना है, तो आपका दिमाग स्लीप हार्मोन नहीं रिलीज करेगा। इसके लिए आपके शरीर को धीरे धीरे इस आदत में ढालना होगा। अगर आप मान लीजिए कि आपको रात के 1 बजे हर रोज़ सोने की आदत है, उसी वक्त आपको नींद आती है, तो आप पहले दिन क्या करेंगे कि आधा घंटा टाइम पीछे करेंगे, यानी कि आप उस दिन 12:30 बजे सोने की कोशिश करेंगे और फ़ोन 11:30 बजे तक चलाना बंद कर देंगे। और 12:30 बजे अगर आप सोने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे आपको नींद आ जाएगी। ये काम आप 1 हफ्ते करेंगे, फिर उसके बाद जागने का भी उसी तरीके से, अगर आप 9 बजे सुबह जाग रहे हैं तो जागने का भी समय आधा घंटा पीछे कर दीजिए। बस 1 हफ्ते आप ऐसा कीजिए, फिर देखेंगे कि खुद ही आपको 12:30 बजे नींद आ रही है और आप 8:30 बजे जग जा रहे हैं, फिर आधे घंटे और पीछे करिए। इसी तरीके से कुछ दिन लगेंगे, हो सकता है कि 1 महीना लग जाए, लेकिन आपका जो रूटीन है वो धीरे धीरे सही हो जाएगा। किसी भी अच्छी चीज़ को करने में वक्त तो लगता है ना, और अच्छी आदतें बनाना तो बहुत मुश्किल है, अच्छी आदतें बहुत मुश्किल से बनती है। तो बस इन्हीं बातों का ध्यान रखिए, अच्छे से सोइए और अच्छे से

आगे और अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रखे, फ्रेश रखे और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक कहावत तो आपने सुनी होगी, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। ये कहावत हमारे यहाँ बहुत मशहूर है। इसका मतलब होता है कि अकेले रहकर हम कोई बड़ा बदलाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम संगठित हो जाएं तो नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे किसान अगर संगठित हो जाए, यानी कि अगर हम किसानों का संगठन बना ले, जिसे कि हम FPO कहते हैं, तो फिर किसानों की कमाई बढ़ सकती है और बहुत तरह के उन्हें लाभ भी मिल सकते हैं। तो आज हम FPO के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि किसान संगठन के बारे में बात करने वाले हैं। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नेहा पांडे जी। आप हैं कृषि प्रसार शिक्षा विभाग से, आप हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, आप हैं सहायक प्राध्यापक। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: नमस्कार मैडम।
1: मैम सबसे पहले तो आपसे यही सवाल है कि किसान संगठन या फिर जिसे हम FPO भी कहते हैं वो क्या है और हमारे किसान भाई बहन अभी भी इससे अनजान कैसे हैं?
2: जी ये आपका बहुत ही बुनियादी सवाल है। देखिए बिहार में अधिकतर किसान छोटे या सीमांत हैं, उनके पास ज़मीन कम है। अब जब वे अकेले खाद बीज ये सब खरीदने जाते हैं तो उन्हें महंगा मिलता है, और जब फसल बेचने जाते हैं तो बिचौलिए उनके बहुत ही कम दाम देते हैं। किसान उत्पादक संगठन इन्हीं छोटे किसानों का एक समूह है। यह एक कंपनी की तरह काम करता है, लेकिन इसके मालिक खुद किसान ही होते हैं। जब 100 से 200 किसान एक साथ मिलते हैं तो उनकी सौदेबाजी, जिसे हम बार्गेनिंग पावर कहते हैं, वो काफ़ी बढ़ जाती है।
1: तो मैम FPO में सस्ते बीज भी मिलते हैं, सस्ते बीज के साथ क्या संगठन से जुड़ने के बाद कोई और भी फायदा होता है? खेती के तरीकों में भी क्या बदलाव आता है या आया है?
2: जी इन संगठनों से जुड़ने के बाद क्या होता है कि बहुत सारे फायदे मिलते हैं, जैसे कि कस्टम हायरिंग सेंटर खोला जाता है, जिसके तहत किसानों को हम बड़ी जो उपकरणे होती हैं कृषि से संबंधित, जैसे कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ड्रोन, इन जैसी महंगी मशीनें खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। संगठन से बहुत कम किराए पर ये ले सकते हैं। इससे मजदूरी का खर्च भी कम हो जाता है और समय की भी बचत होती है। बिहार सरकार और केंद्र सरकार FPO की नई मशीनें खरीदने के लिए भारी सब्सिडी भी देती है। इसके अलावा संगठन के माध्यम से कृषि वैज्ञानिकों से सीधे जानकारी मिलना आसान हो जाता है।
1: जी मैम, तो जैसे कि आपने बताया बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है बाज़ार की। जैसे कि हम जानते हैं किसान भाई बहन भी इस बात से रूबरू होंगे कि खेत में जो टमाटर 2 रुपए किलो मिलता है वो बाज़ार पहुंचते ही 40 रुपए किलो हो जाता है। इसमें किसान भाई बहनों को बहुत फ़ायदा तो नहीं होता है, लेकिन अगर वो किसान संगठन से जुड़ जाए तो किसान संगठन उनकी कैसे मदद कर सकता है?
2: जी यही तो पूरा खेल है, फ़ायदा तो होता ही नहीं है, बल्कि उनका जो कॉस्ट है, जो पैदावार करने की कॉस्ट है, कभी कई बार ऐसा होता है कि वो भी नहीं निकल पाता है। तो अकेले किसान के पास अपनी फसल को भंडारण करने की जगह नहीं होती है, इसीलिए वह उसे औने पौने दाम में बेच देता है। लेकिन संगठन के पास अपना गोदाम या कोल्ड स्टोरेज, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, जिससे कि वो उसे जब बाजार में इसका मूल्य ज़्यादा हो तब बेच करके अधिक मुनाफा कमा सके। दूसरी बात यह है इसका प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग। अगर आप केवल मखाना बेचेंगे तो कम पैसे मिलेगा, लेकिन अगर संगठित होकर मिलकर मखाना की ग्रेडिंग करें, उसे पैकेजिंग करें, ब्रांडिंग करें, तो मुनाफा 2 गुना 3 गुना तक हो सकता है।
1: जी मैम, तो मुनाफा हो सकता है अगर हमारे किसान भाई बहन संगठन से जुड़े, लेकिन अब सवाल यह है कि वो संगठन से कैसे जुड़े, या फिर अगर वो आपस में संगठन बनाना चाहें

0: तो उसकी प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से वो सरकार से मदद ले सकते हैं?
1: जी, तो सबसे पहले तो जो किसान भाई बहन है उन्हें अपने क्षेत्र में कम से कम 10 से 20 जागरूक किसान जो है उनके साथ एक बैठक करने की जरूरत है। अपने जिले के कृषि विभाग या कि नाबार्ड उनके कार्यालय में संपर्क करने की जरूरत है। सरकार भी एफपीओ बनाने के लिए 15 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देता है और विशेषज्ञों की मदद भी देती है। बिहार में जीविका के माध्यम से भी कई महिला किसान संगठन में बहुत अच्छा काम कर रही हैं।
0: मैम, अब मैं चाहूंगी कि आप विस्तार से बताएं कि इसकी प्रक्रिया क्या है और चरण दर चरण अगर कोई किसान भाई बहन चाहें एफपीओ बनाना तो किस तरीके से बना सकते हैं।
1: जी जरूर, तो इसका जो तैयार होने का प्रक्रिया है ये मुख्यतः 3 चरणों में होता है। किसान संगठन मुख्य रूप से एक कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत होते हैं। तो पहली प्रक्रिया में क्षेत्र और फसल का चयन किया जाता है। सबसे पहले एक ऐसे क्षेत्र का चुनाव किया जाता है जहां किसान एक जैसी फसलें उगाते हों। जैसे आम उगा रहे हैं तो सारे किसान आम उगाएंगे, मखाना की खेती हो रही है तो सारे किसान मखाना की खेती करेंगे, या सब्जी की वो एफपीओ होने वाला तो सारे किसान सिर्फ सब्जी ही लगाएंगे अपने खेत में। फिर कम से कम 10 या उससे अधिक प्राथमिक जो किसान हैं, हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी आवश्यकता होती है। हालांकि एक सफल एफपीओ के लिए कम से कम 300 से 500 किसानों का लक्ष्य रखा जाता है। उसके बाद बारी आती है पंजीकरण कराने की। तो इसके लिए कम से कम 5 निदेशक जो कि बनाए जाते हैं किसानों के बीच से ही, उनका डिजिटल हस्ताक्षर जिसे DSC कहते हैं और DIN डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर वो बनवाना होता है। उसके बाद उस संगठन की नाम की स्वीकृति ली जाती है। अपने जो कंपनी बनाई है इसके लिए एक बहुत ही यूनिक सा नाम चुना जाता है और फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ROC के से वो स्वीकृत कराया जाता है। उसके बाद बारी आती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तैयार करने की, जिसमें कंपनी के नियम लिखे जाते हैं। उसके बाद आपको पंजीकरण का प्रमाण पत्र ROC के द्वारा जांच के बाद प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसके बाद आप इसके प्रबंधन और संचालन के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कि किसानों के बीच से ही चुना जाता हो वो चुनने की आवश्यकता है। उसके बाद उसमें CEO व्यावसायिक कार्यों के लिए एक CEO और एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट की नियुक्ति की जाती है।
0: मैम, अगर FPO बनाने के लिए ऋण की ज़रूरत हो, वित्तीय सहायता की ज़रूरत हो तो वो किसान भाई बहनों को कैसे मिलते हैं और क्या क्या सुविधाएं मिलती है सरकार की तरफ?
1: जी, पूंजी के लिए भारत सरकार और नाबार्ड विशेष मदद देते हैं। जैसे कि पहला है इक्विटी ग्रांट स्कीम। इसके तहत यदि किसानों ने मिलकर 5 लाख रुपए जमा किए हैं तो सरकार भी संस्था को 5 लाख रुपए का अनुदान देगी। उसके बाद इसका अधिकतम 15 लाख रुपए तक इसकी सीमा हो सकती है। दूसरा तरीका है क्रेडिट गारंटी फंड, जिसमें अक्सर बैंकों को बिना गारंटी के लोन देने में डर लगता है। इसके समाधान के लिए SFAC स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम और नाबार्ड क्रेडिट गारंटी देते हैं। इससे इसके तहत FPO जो है उसको बिना किसी जमीन या संपत्ति को गिरवी रखते हुए 2 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकता है। और इसकी सुरक्षा, यदि FPO लोन नहीं चुका पाते हैं तो सरकार उस लोन को एक बड़े हिस्से की भरपाई बैंक को करनी पड़ती है। तीसरा है प्रबंधन लागत सहायता, जिसमें कि CEO का वेतन, ऑफिस का किराया, बिजली बिल और अन्य खर्चों के लिए 18 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है।
0: तो मैम, इसके अलावा किसानों को, किसान भाई बहनों को और कौन कौन से लाभ मिलते हैं?
1: जी, इसके अलावा जैसे कि FPO में संगठित होने से इनको सबसे पहले कि सस्ता इनपुट मिल जाता है। थोक में खरीदने के कारण बीज, खाद, कीटनाशी बाजार से करीबन 10 से 15% सस्ते दामों में मिल सकते हैं। इसके अलावा मशीनरी बैंक्स जैसे FPO अपना कस्टम हायरिंग सेंटर खोल सकते हैं, जिससे किसानों को सस्ते दामों में ट्रैक्टर या ड्रोन किराए पर मिल सकता है। और साथ ही मूल्य संवर्धन, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर किसान अपने फसल को ब्रांड बनाकर ऊंचे दामों पर शहरों में बेच सकते हैं। और एक आपको चौथा मुख्य लाभ है

0: सीधा बाजार मिल जाएगा, बिचौलियों को हटाकर डायरेक्ट डायरेक्ट प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में, कंज्यूमर को आप अपना माल बेच सकते हैं।
1: मैम, अब किसान भाई बहन उनके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि FPO बनाने के लिए किसान भाई बहन कहाँ से सहायता लें।
0: जी, FPO बनाने के लिए सरकार ने CBBO क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नियुक्त किए हैं। ये विशेषज्ञ संस्थाएं 5 साल तक किसानों को पंजीकरण से लेकर बाजार दिलाने तक में मदद करती हैं। आप अपने जिले के कृषि विभाग, नाबार्ड कार्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। बिहार में जीविका भी महिला किसानों को FPO बनाने में बहुत सक्रिय भूमिका निभा रही है।
1: बहुत ही अच्छी ये चर्चा रही। मैम, मैं चाहती हूँ कि आप किसान भाई बहनों को अंत में कोई संदेश दें।
0: जी, किसान भाई बहन, बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि संगठन में ही शक्ति है। अपने गांव में छोटे छोटे समूह बनाइए और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाइए। और याद रखिए, उन्नत बीज, उचित बाजार, किसान संगठन है खुशहाली का आधार। धन्यवाद।
1: मैम, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाई बहनों, अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। लेकिन जाने से पहले खास बात की, अपना और अपनी फसलों का रखें खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।